और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों और सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सई और जहद राह रात से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे आमाल जाया हो गए। कयामत के रोज हम उन्हें कोई वजन न देंगे। उनकी जजा जहन्नम है उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी ना चाहेगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें खत्म न हो, बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो वो भी किफायत न करे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं तो एक इंसान हूं तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को शरीक न करे।

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس سمندری سفر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات. پچھلے دو حلقوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآنی آیا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. तो किसी गार की तरफ जाकर पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी कुछ रहमत खोल देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में कोई सहूलत मुहैया कर देगा। सामने कराम, इस आयत की तफसीर पर हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। यहाँ जो हमें कुरानी मोती मिला है उसे आप खलवत भी कह सकते हैं, या जिंदगी के दरमियान एक ज़रूरी वक्फा लेना, इस तरह भी आप इसकी ताबीर कर सकते हैं। तो जैसे कि कल जिस मौजू पर हमारी बात ख़त्म हुई थी कि इस्लाम में असल मतलूब क्या है, इस्लाम का असल तसव्वुर क्या है, क्या इस्लाम चाहता है कि इंसान को गार में पहुंचा दे? बात तो ऐसी नहीं, बल्कि इस्लाम में तो असल मतलूब ये है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم। वो मोमिन जो लोगों के साथ रहता है और उनसे पहुंचने वाली अजियत पर सब्र करता है, उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता और उनकी अजियत पर सब्र नहीं करता। तो सामने कराम, यहाँ तस्वीर वाज़े होने लगती है कि इस्लाम इंसान को गार में पहुंचाकर वहाँ ऐसे यूं ही नहीं छोड़ देता, वो उसे गार से वापस शहर में भी बुलाता है। जमात के साथ नमाज है, ख़ानदान के हकूक़ हैं, वालिदैन हैं, पड़ोसी हैं, ज़रूरतमंद की मदद है, मुआशरे के साथ खैर का ताल्लुक है। गोया ये जो वक्फा है, बाज़ औक़ात सफ़र के दरमियान मेंटेनेंस स्टेशन हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह कुरान एक और मकाम पर रहबानियत का जिक्र करता है, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ। रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद की, हमने उनसे यानी हमने उसे उन पर फ़र्ज नहीं किया था। यह आयत के इस हिस्से के पूरे सियाक और तफसीर में तफसीलात हैं, लेकिन कम से कम इतना वाज़ह है कि इस्लाम ने दुनिया से मुस्तकिल कट जाने वाली जो मोनेस्टिक ज़िंदगी को मुसलमान की उमूमी दीनी ज़िंदगी का नमूना नहीं बनाया है। हमें माशरे के अंदर रहना है,

इस बाजार में दियानत दिखानी है, इसी खानदान में हुस्न अखलाक, ऑफिस में अमानत, महल्ले में खैर, इसी इंसानी दुनिया में सब्र, अदल और खिदमत के साथ रहना है। अगर कोई खलवत हमें लोगों के हुकूक से बेनियाज बना दे तो वो उस तवाजुन से हट रही है जिसकी तरफ इस्लाम हमें ले जाता है। सामने किराम, एक बड़ी इस्लामी हकीकत यह है कि दीन सिर्फ मैं और मेरी जात का मंसूबा नहीं। यूं समझिए कि किसी को इल्म सिखाना, परेशान हाल की मदद करना, किसी जरूरतमंद के काम आना, किसी इंसान की मुश्किल आसान करना, ये सब भी बंदगी के बड़े दरवाजे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं खलवत में अपने रब के साथ बहुत सुकून महसूस करता हूँ, इसलिए अब लोगों के मसाइल, खानदान की जिम्मेदारियां और माशरे के हुकूक मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो शायद ये मसला कुछ अलग है। यानी ये अगरचे खलवत की ताबीर में ये मसला बताया जा रहा है, लेकिन मसला यहाँ बिल्कुल अलग है। तो इस्लाम जो हमें खूबसूरत तवाजुन देता है वो ये कि यहाँ खलवत का मतलब ये है कि एक वक्फा लेना, एक शख्स लोगों से कुछ देर दूर हो जाता है ताकि लोगों से हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, वो खामोश होता है ताकि वापस आकर उसकी गुफ्तगू ज्यादा माना खेज हो, वो अपने ताल्लुकात को दूर से देखता है ताकि वापस जाकर कुछ ताल्लुकात को बेहतर कर सके, कुछ में हुदूद कायम करे और कुछ की कदर पहले से ज्यादा जान ले। इसी तरह वो आसमान को देखता है, उसमें गौर करता है ताकि जमीन पर वापस आकर या जमीन की तरफ नजरें वापस हटाकर अपनी परेशानियों को सही तनासुब में देख सके। इसी तरह वो अपने रब के साथ कुछ खास टाइम, खास वक्त गुजारता है ताकि बंदों के दरमियान वापस आए तो उसके अंदर मजीद सब्र, आदल और ज्यादा रहमत का मामला करें। सबने किराम, खलवत इस या इस जरूरी वक्फे को समझने के लिए एक आखिरी मिसाल देता हूँ। वो ये कि कश्ती समंदर में मुसलसल सफर कर रही है, वो समंदर छोड़ने के लिए बंदरगाह नहीं आती, वो कुछ देर बंदरगाह पर इसलिए रुकती है कि ईंधन ले, नक्शा दुरुस्त करे, सामान तरतीब दे और फिर दोबारा समंदर में उतर जाए। इंसान के वक्फे का मतलब भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि बंदरगाह को घर न बनाइए मगर ऐसी जिंदगी भी न गुजारिए जिसमें कश्ती कभी बंदरगाह तक पहुंचती ही नहीं। और अब अगला सवाल बिल्कुल फितरी है, अगर वक्फा या खलवत की बात जो कही जा रही है ये खामोशी वक्तन फोक्तन इस्लाह, तजदीद और तफक्कुर का एक जरिया है, तो उसकी हदूद क्या हैं? कितनी खलवत मुफीद है और कहाँ तन्हाई नुकसान में बदलने लगती है? किन जिम्मेदारियों से खलवत के नाम पर पीछे नहीं हटा जा सकता और किस तरह पहचाना जाए कि मैं वाकई अपने बातिन को संवारने के लिए कुछ देर पीछे हटा हूँ या सिर्फ लोगों और मुश्किल जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार कर रहा हूँ? अब इस सवाल को समझने के लिए एक मिसाल लीजिए। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स हमारे सामने आता है, चेहरे पर थकन है, लोगों से कुछ तल्ख तजुर्बात हुए हैं, शायद किसी ने दिल दुखाया है, शायद माहौल ने उसे मायूस किया है। वो कहता है बस अब मैं लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, कहीं पहाड़ों में चला जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रहना चाहता हूँ। सुनने में जुमला बहुत रूहानी मालूम हो सकता है, मगर एक लम्हे के लिए इस मंजर को रोक दीजिए और सवाल सिर्फ इतना कीजिए कि शख्स अल्लाह की तरफ जा रहा है या लोगों से भाग रहा है। तो दोनों हरकतें बाहर से एक जैसी दिखाई दे सकती हैं मगर अंदर का सफर बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। इसीलिए इस्लाम में वक्फा की जो बात कर रहे हैं या खलवत का जो इस्तेलाह है, गार में पनाह लेने की जो बात आई है, ये उमूमी तौर पर मुस्तकिल तर्ज जिंदगी नहीं बल्कि मखसूस जरूरत के तहत इख्तियार किया जाने वाला एक महदूद वक्फा हो सकती है। असल जिंदगी में इंसान वापस आता है, लोगों के साथ मामलात करता है, खानदान के हुकूक, माशरे में खैर, फिर कभी जरूरत महसूस हो तो कुछ देर अपने बातिन को समेटने के लिए पीछे भी हटता है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा, बंदरगाह कश्ती के सफर का हिस्सा है, मंजिल नहीं। कश्ती अगर कभी बंदरगाह ना आए तो थक सकती है, लेकिन अगर बंदरगाह ही में खड़ी रहे तो फिर वो कश्ती अपने मकसद सफर से महरूम हो जाएगी। अब आते हैं एक मखसूस हदीस की तरफ जिसमें हमें एक खास मंजर सामने आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शदीद फितनों के जमाने का जिक्र फरमाया है जिसमें किसी मुसलमान के लिए अपने दीन की हिफाजत करते हुए पहाड़ों और बारिश की जगहों की तरफ अपनी बकरियों के साथ चले जाना बायस खैर हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है। तो सवाल ये कि क्या कभी मुकम्मल किनारा कशी की भी कोई सूरत हो सकती है?

0: फिर जहन ने सवाल उठाने शुरू किए। एक ख्याल आया, फिर उस ख्याल पर दूसरा ख्याल, फिर उसी पर तीसरा। अब उसके पास कोई उस्ताद नहीं, कोई समझदार साथी भी नहीं जिससे पूछ सके कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वाकई दुरुस्त है। और यही वो मकाम है जहाँ वक्फे की एक अहम शर्त सामने आ जाती है, वो ये कि खामोशी इल्म का मुतबादिल नहीं। तन्हाई या फिर आप अपने आप में जब खोए हुए होते हैं, जो सोचने लगते हैं, तो ये आप सोचने का वक्त तो आपको मिल रहा है, लेकिन हर वो बात जो तन्हाई में जहन में आए हकीकत नहीं बन जाती। और इसीलिए अगर तवील वक्फा हो तो तवील वक्फे के साथ साथ इल्म नाफे और दुरुस्त रहनुमाई की ज़रूरत भी है। और ऐसे कई वाकयात मुशाहदे में आए हैं कि तवील वक्फा वहाँ फ़ायदे के बजाय शदीद जहनी उलझन का सबब बना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वक्फे के नाम पर हम मस्जिद का रुख तो कर लेते हैं या जाए नमाज बिछा कर बैठ जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन फ़ोन साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ दरअसल खामोशी का दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो कुरान और जिक्र के लिए लिया गया वक्त स्क्रॉलिंग में बदल गया, फिर स्क्रॉलिंग किसी नामुनासिब कॉन्टेंट तक पहुँची या किसी ऐसी गुफ्तगू का दरवाज़ा खुल गया जिससे वो पहले बच रहा था। अब एक अजीब तजाद है, जिस वक्फे के लिए वो दरअसल खलवत या वक्फा के तरफ बढ़ा था, तो वो उस मकसद के बिल्कुल बरखिलाफ अमल कर रहा है, उस मकसद की शुरूत के बिल्कुल बरखिलाफ अमल कर रहा है। और बहुत सो का मसला ये होता है कि अगर तन्हाई आ जाए तो उसके लिए यानी मसला बन जाता है, बार बार गुनाह के दरवाज़ा खोल देती है ये तन्हाई, तो उसके लिए महज मैं वक्फा ले रहा हूँ ये उन्वान ज़्यादा मुफीद नहीं। मुमकिन है मुकम्मल तन्हाई के बजाय मस्जिद का पुरसकून गोशा बेहतर हो, मुमकिन है फ़ोन साथ न ले जाना ज़रूरी हो, मुमकिन है अकेले रहने के बजाय किसी सालेह माहौल में खामोश मुताला ज़्यादा महफूज हो। मकसद इंसान को तन्हाई में साबित करना नहीं, मकसद इंसान की हिफाजत और तामीर है। और शायद गुनाह खलवत का तस्वुर इसी जगह हमें अपने आप से मिलवाता है। लोगों के सामने इंसान की एक तस्वीर होती है, तन्हाई में दूसरी, मजलिस में जबान संभली हुई, तन्हाई में कुछ अलग ही है, लोगों के सामने निगाहें झुकी हुई, बंद कमरे में कुछ अलग ही मामला, लोगों के सामने गुफ्तगू महज़ब, घर में या तन्हाई में कुछ अलग ही रवैया। तो दरअसल ये सवालात दूसरों को जज करने के लिए नहीं, असल में यहाँ तमाशाई भी हम हैं और किरदार भी हमारा। तो दरअसल खलवत या तन्हाई, खामोशी, वक्फा लेना, ये से हम दोधारी तलवार भी कह सकते हैं। गुनाह का खतरा भी हकीकी है, मगर इसमें इखलास का दरवाज़ा भी गैर मामूली तौर पर खुल सकता है। वो नेकी जिसे कोई नहीं जानता, वो दुआ जिसे कोई इंसान नहीं सुनता, वो आंसू जिसकी कोई तस्वीर नहीं, वो कुरान जिसकी कोई स्टोरी अपलोड नहीं होती, वो तौबा जिस पर किसी मजलिस से दाद नहीं मिलती। और यही दरअसल तन्हाई का इम्तिहान है, जब ऑडियंस चली जाए तो मेरे और अल्लाह के दरमियान क्या बाकी रहता है। उस तरह सामने किराम आया करीमा فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا का खुलासा ये है कि ये जो कुरानी मोती है ये इंसान को गार का असीर नहीं बनाती, गार से निकलने के बाद रास्ता ज़्यादा साफ दिखाई देती है। बहरहाल सामने किराम, हमारी इस पूरी गुफ्तगू का आगाज़ दरअसल एक गार से हुआ था। एक तरफ असहाब कहफ का वो गार जहाँ चंद नौजवानों ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुनिया के एक हंगामा खेज माहौल से फासला इख्तियार किया, दूसरी तरफ गार हिरा की वो खामोश फिजा जहाँ बैसत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में वक्त गुजारते थे, फिर हम रात की खामोशी, नमाज के अंदर जहनी यकसोई, एतिकाफ, जिक्र, तफक्कुर और अपने आप के मुहासिबे से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे कि खलवत आखिर इंसान के साथ करती क्या है। लेकिन अब इख्तिताम पर मैं चाहता हूँ कि हम खलवत को किसी खूबसूरत तस्वुर की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा मंजर की तरह देखें, क्योंकि कभी एक बंद कमरा इंसान के लिए अपने आप से मुलाकात की जगह बन जाता है और कभी वही बंद कमरा उसके नफ्स के लिए एक ऐसी दुनिया खोल देता है जहाँ कोई जाहिरी निगाह उसे रोकने वाली नहीं होती।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।

0: हम आगे बढ़ जाते हैं, मगर इस तन्हाई में आपको वाह वाह और शाबाशी देने वाला कोई नहीं। और तब कभी इंसान पहली मर्तबा अपनी जिंदगी को किसी रेपुटेशन के बगैर देखता है। इस आईने का मकसद इंसान को जलील करना नहीं, अपने आयब देखने का मकसद अपने आप को जख्म पहुंचाना नहीं, बल्कि हकीकत देखना है ताकि इस्लाह मुमकिन हो सके। क्योंकि जो शख्स ये कहने की हिम्मत रखता है कि हाँ यहाँ कमी है, वो अगला सवाल भी पूछ सकता है कि अब उसे बेहतर कैसे करना है। और यहाँ आपकी तन्हाई, आपका ये वक्फा मुहासिबे से आगे बढ़कर मनसूबा इस्लाह में तब्दील होती है। यहाँ ये सवाल आ सकता है कि अगले हफ्ते में क्या बदलूंगा, कौन सी आदत कम करनी है, किस से बात साफ करनी है, कौन सा हक अदा करना है, फोन के इस्तेमाल में कौन सी हद कायम करनी है। और यही वो मकाम है जहाँ सूरतुल कहफ की आयत के उस हिस्से का मफहूम वाज़ेह हो जाता है। अस्हाबे कहफ का गार एक हकीकी गार था, एक मखसूस तारीखी और ईमानी बहरान के अंदर की पनाहगाह। हम इस आयत से जदीद वक्फे के लिए कोई मुस्तकिल फिक्ही हुक्म अख्ज नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता उस मंजर से एक मानवी तस्वीर जरूर सामने आती है कि कभी बज़ाहिर तंग जगह इंसान के लिए वसत का आगाज बन जाती है, कभी बाहर दुनिया बहुत वसी होती है मगर इंसान अपने अंदर घुटा हुआ होता है, और कभी चंद खामोश लम्हों की महदूद जगह उसे वो चीज दिखा देती है जो मुसलसल दौड़ में नजर नहीं आ रही थी। याद रखिए, अस्हाबे कहफ के किस्से का मकसद ये नहीं कि हर मोमिन अपना गार तलाश करके मुआशरे से गायब हो जाए। हमारी गुफ्तगू में कहफ एक वक्फ़े हिफाजत और तजदीद की तस्वीर है, मुस्तकिल रिहाइश का नक्शा नहीं। वैसे हर कोई इस बात पर मुत्तफिक है कि मुस्तकिल गोशा नशीनी ये इस्लामी आइडल नहीं, तो हो भी नहीं सकता। उजलत और मुखालतत का हुक्म हालात, फितनों, हुकूक, शख्स की सलाहियत और नफा व जरर के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए इस हदीस को भी अपनी जगह रहने दीजिए। المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، यानी लोगों के साथ रहना, उनके हकूक अदा करना, उनकी मुश्किलात बर्दाश्त करना और खैर पहुंचाना इस्लामी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। मगर इस हदीस को यूं भी ना समझा जाए कि अब इंसान को कभी खामोश होने, सोचने या अपने आप को समेटने की जरूरत ही नहीं। मुखालतत असल हो सकती है और बामकसद खलवत या तन्हाई इस असल को बेहतर निभाने की तैयारी है, और ये हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील है। और समझने कराम प्रोग्राम के अख्ताम पर हमारी पूरी गुफ्तगू को हम एक जुमले में यूं समेट सकते हैं कि जिंदगी में लोगों के दरमियान रहने का हुनर भी सीखिए, और कभी अपने रब के सामने तन्हा बैठने की सलाहियत भी बचाए रखिए, क्योंकि मुसलसल भीड़ इंसान को अपने आप से गाफिल कर सकता है, और मुसलसल तन्हाई उसे इस दुनिया के हुकूक से दूर कर सकती है जिसमें अल्लाह ने उसे जिम्मेदारी के साथ भेजा है, जिम्मेदारी के साथ रखा है। तो तन्हाई या वक्फा इन दोनों के दरमियान एक खामोश पुल है। हम शोर से गुजरते हुए इस पुल पर कुछ देर रुकते हैं, अपने दिल की सिमत देखते हैं, अपने सफर का नक्शा खोलते हैं, और फिर वहीं घर नहीं बनाते बल्कि दोबारा सफर पर निकल जाते हैं। और शायद तब फ़ऊ इलल कहफ का ये मंजर हमारे लिए एक याद दहानी बन जाता है कि कभी दिल को भी एक महफूज गोशा चाहिए, ऐसा गोशा जहां दुनिया की आवाज कुछ देर मध्यम हो और इंसान ये सुन सके कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें लोगों के दरमियान इस हाल में वापस लाए कि हमारे दिल ज्यादा साफ, हमारी सिमत ज्यादा वाजे और हमारे आमाल ज्यादा नाफे हों। نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم اصلح لنا قلوبنا واعمالنا وارزقنا ايمانا صادقا ثابتا انك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين। प्रोग्राम कुरान की मोती के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुल जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।
4: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
5: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
6: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
7: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाएं। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: सुतरी आसान भाषा में बात करना भाई, वो शीरी वो लज्जम घटम घट्टा घट से निकल कर बिल्कुल साफ और वही खैरियत है, ऐसी वाली बात करने वाली आज दिन है खासो खास, तो इसी हवाले से भी इंशाल्लाह ताला बातचीत करेंगे। बाकी आपको अपडेट्स तो मैं देता ही रहूंगा ट्रैफिक के हवाले से भी और कुछ न्यूज़ भी जो जरूरी हैं बिल्कुल सुबह ही सुबह जानने के लिए इंशाल्लाह ताला, और साथ में फिर इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट के हवाले से सरवर मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है ही भाई, आपका अपना गेम लेकर तीन का दम खेलेंगे हम, जहां पर दो बहुत मेरे आसान सवाल नहीं होंगे, दो मुश्किल होंगे, एक आसान होगा, आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला बातचीत होगी। फिलहाल आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आज आपका क्या खासम खास दिन है ये भी आप मुझे बता सकते हैं, नंबर आपको बताइए 443-443-77 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं भाई, और 666-22-107 पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। एक बार और बताता हूँ 666-22-107 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें हम सिर्फ मैसेजेस ले पाते हैं कॉल नहीं ले पाते हैं, तो इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, एंड कॉल करने के लिए जो नंबर है वो है 443-443-77। मैं आप एक दूसरे का साथ FM 107 ओए राइम हो गई देख लिए साहब, तो भाई एक इंशाल्लाह ताला 10 मिनट मुझे लगता है यस प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है वो हम अल्लाह सुभान व तआला के नाम से करेंगे, तो यहाँ पर मॉर्निंग अस्कार जो है वो आप समाप्त कीजिए, समाप्त फरमा लीजिए, और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और चलिए भाई अब आप लोगों के मैसेजेस से कर देते हैं शुरुआत। शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ फेथ इज व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट एंड आर स्टिल एबल टू से अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अनदर डे, मे अल्लाह ease all your challenges. Astaghfirullah. Say Astaghfirullah always because Allah loves those who repent. Start your day with Bismillah and end with Alhamdulillah. So Baba Khair कहते हैं और सबको good morning कहते हैं। बड़ा ही अच्छा message भाई माशाल्लाह। और इनका नाम यहाँ पर नहीं है, नाम होता तो मैं नाम भी रहता। बहुत अच्छी दुआ सभी को और बड़े अच्छे मैसेज से शुरुआत भी। गुड मॉर्निंग कहते हैं मेरा भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोहम्मद इकबाल, क्या हाल चाल है मेरे भाई के। आसिफ भाई आ गए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा आज खास दिन ये कि आज मंगल है, जुमेरात आने में दो दिन बचे हैं, इतनी खुशी, इतनी खुशी। आसिफ भाई क्या बात है। ओके, ये क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जीशान भाई कैसे वा, ठीक वा। सरवर भाई कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रिद्वान है यहाँ पर, रिद्वान बहुत सा हैंडसम मैन, क्या बात है यार, 80s की फोटो लगा रखी है इन्होंने। सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक अलबकरा से। अहलेन अहलेन, उठ गए तौफीक भाई आज सुबह सुबह, ऐसे कैसे हो गया, आपकी तो नाइट ड्यूटी चल रही थी भाई, तो सोने का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम सरवर अंकल, ओ हाय, हाउ आर यू, टुडे इज माय साइंस एग्जाम व्हिच हैज माय फेवरेट चैप्टर अलीना। ओ अलीना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करने वाले हैं, इंशाल्लाह हर चीज़ में खैर होगी और आप कामयाब भी होंगी। आपके डेली एग्जाम चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे एग्जाम है यार, एक दिन का गैप तो बनता ही बनता है, क्यों छुट्टी नहीं मिल रही एग्जाम के बीच में आपको, मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल जाके टीचर से मत कर लेना बेटा। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार दोबारा से पढ़ना है, इस बात को जरूर याद रखिए, दोबारा जब आप पढ़ेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत ईजी है, जैसे मैंने कल बताया था, ठीक है, यही याद रखने का है और कोई टेंशन लेने का नहीं है। ओके भाई बढ़ते हैं आगे, पहले ये जरा शुरुआत के मैसेजेस पढ़ दूं भाई, कल भी मैसेजेस रह गए थे, तो ऐसा ना हो कि कोई ये सोचे कि मेरे मैसेज नहीं पढ़े गए तो मैं मैसेज नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। 666-22107 पे जरूर मैसेजेस भेजिए एंड कॉल करने के लिए आपको नंबर पता ही है 4434-4437। तो इंशाल्लाह ताला अभी लाइन भी हम ओपन कर रहे हैं। रियाज अहमद है यहाँ पर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, पहचान तो गए होंगे, कैसा लग रहा है भाई सुबह का शो। कल मैं सोच रहा था कि आफ्टरनून डेढ़ वाला

चलाने, तो मैं और आप फिर वही करेंगे जो हमें करना चाहिए एक्चुअली. एग्जाम क्यों देंगे भाई है? Alright, Assalamualaikum, good morning, Adab, Firoz Khan, Waalaikum Assalam and Adab and a very good morning to you too. Firoz bhai, kaise hain? Khairiyat se hain? Assalamualaikum, Sarur bhai, kaise hain aap? Muhammad Fahad Ismail, aap har jagah maujood hote hain. Kya matlab hai is baat ka? Kehna kya chahte ho, Fahad Islam? Kehna kya chahte ho? मेरा मतलब यार मैं समझ नहीं रहा, मतलब ये अच्छी बात कह गए या कुछ और दूसरी बात कह गए. बहरहाल चलिए भाई आ जाते हैं अब आज के मौजू की जानेब. और जैसे कि मैंने आपको बताया था आज खासम खास दिन है और उसी के हवाले से हम लोग बातचीत करने भी वाले हैं. तो भाई सबसे पहले तो आज जबानों का दिन है, आसान जबान का दिन है, उसके हवाले से बात भी करेंगे और कुछ और भी जानना चाहूँगा. तो भाई नाकामी से ज़रा हम पहले ज़बान के हवाले से बात करना चाहेंगे. आज इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे है, यही दिन है भाई, प्लेन लैंग्वेज डे. और इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, तो भाई बात को ऐसे साफ और आसान अल्फाज में कहना कि सामने वाले को समझने के लिए डिक्शनरी ना खोलनी पड़े. सीधी सी बात यह है कि क्या कहेगा, ओहो एक सेकंड रुकिए जरा मैं पूछ के आता हूँ. तो काफी गाढ़ी जो लैंग्वेज हो जाती है, फसा कहते हैं उसको अरबिक में, तो फसा लैंग्वेज बोलने की जरूरत क्या ही होती है हर जगह. वेयर एवर एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, आप जब भी बोलें. और बाकी यार कन्वर्सेशन में हमारा कितने, देखो हम लोग एक्चुअली कतर हमारा जो एक कहना चाहिए सकाफत की हब है, कल्चरल हब है, लैंग्वेज का भी, लोगों का भी. और इतनी खूबसूरत यहाँ पर जबानें बोली जाती हैं हमारे कतर के अंदर हैं. कितनी जबानें हम सुनते हैं, उर्दू है, अरबिक है, अरबिक से शुरुआत करें, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, तमिल है, हमारे पठान भाई बोलते हैं, पश्तो है, और दूसरी भी हैं, सिंगलम है, हमारे बांग्लादेशी भाई, ओए होए होए, हम जाएगा आएगा और फिर आपको पूरा बाज बाज आएगा, ये जेड लग जाता. और उधर हमारे पठानी भाई कितने हैं यार जबरदस्त. सरूर भाई हम आपको बोल रहा है, हम आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, आप हमें बहुत सताता है, नहीं छोड़ेगा. तो इसमें सबसे अच्छी बात यह, इतनी खूबसूरत बात यह है कि ये लोग यार लैंग्वेज सीख लेते हैं बहुत जल्दी. मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल में 90% तो जानते ही जानते हैं उर्दू हिंदी में बात करना, अपनी बात समझाना एक्चुअली. और ऐसे हमारे पठान भाई का भी है, पश्तो भाई का, और जितने भी दूसरी जगह के हैं वो लोग भी है ना भाई, उर्दू तो जानते ही जानते हैं, समझाने आपको अपनी बात पूरी तरीके से समझा देंगे. और इवन अरबिक बहुत अच्छी होती है बांग्लादेशी भाई की भी, और पाकिस्तान के हमारे जितने मतलब पठान भाई वगैरह हैं उन लोगों की भी अरबिक बहुत अच्छी होती है, जो अपनी बात दूसरों को अच्छी तरीके से समझा पाते हैं. और हम लोग भी जितनी कोशिश करते हैं भाई बोल ही लेते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि आज हम इसी के हवाले से बात करने वाले हैं, जबान जानते कितनी है आप और उनके फायदे आप उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, और क्या अरबिक सीखने से आपको कतर में काम करने में आसानी हुई है, क्या इंग्लिश की वजह से आपको जॉब में तरक्की मिली है, या किसी दूसरी जबान ने आपको नए दोस्त बनाने और दूसरे कल्चर समझने का मौका दिया है और उसमें आपको आसानी हुई है. और भाई मज़ेदार सवाल ये कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जबान में कुछ और कहना चाहा लेकिन सामने वाले ने मतलब कुछ और ही निकाल लिया हो, ऐसा भी होता है यूजुअली, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा यार काफी बार. तो मुझे बताइए कि आप कितनी जबानें जानते हैं और उनमें से कौन सी जबान ने आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा दिया है, और रोजमर्रा की जिंदगी में आप वो जबान कितनी बोल पाते हैं, कितनी यूज कर पाते हैं. व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है हमारा 666-22-107, अपने मैसेजेस आप भेज सकते हैं, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 4434-3-7-7.

0: भाई मुझे दो कॉल मैंने रिसीव करने की कोशिश करी मगर मुझे कामयाबी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लैंडलाइन में कोई मसला तो नहीं है। एनी हाउ आई विल रीस्टार्ट दिस। मैंने किया तो है, देखते हैं कि इस वक्त ये कॉल हमारी कनेक्ट हो पाई। आई वाह आई वाह आई वाह। हाय
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन। कैफ अल हाल शेखू।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।

0: हाँ ये देखिए,
1: यही है
0: आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंत कोई
1: लामिम फी फतूर अशंती अंतसी बरनामी कुल्यम सासबा सासिता मिन सातिसा या अखी वाजी तवील आलत ताप शोगल नाजिन सभी लक मजबूरिया।
0: अरे बस कर पगले, अब क्या रोला है, फतूरे जितने सारे निकल जाएंगे। तो आज इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं शहजादा भाई के, एक्चुअली ये जो जबानें हैं, ये जो मुख्तलिफ जबानें हैं और स्पेशली हमारी अरबिक जबान जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, जो कतर में लोग हैं हमारे मुख्तलिफ, तो पहले तो ये बताइए कि आपको अरब कंट्रीज में कितने साल हो गए?
1: काफी साल हो गए, मैं पहले सऊदीया में भी रहा, 10-11 साल सऊदीया में।
0: इसीलिए मैंने कहा ना अरब ममालिक में आपको कितना टाइम हो गया, क्योंकि यूजुअली जो गल्फ में काम करता है फिर वो गल्फ में ही काम कर रहा होता है ज्यादातर।
1: यानी ये दोनों इंक्लूडिंग करेंगे कतर और सऊदी अरबिया ना, तो 20+ हो गए।
0: 20+ हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: क्योंकि मैं सेल्स फील्ड में था, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड प्रोडक्ट था, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, ग्रोसरीज, तो सऊदी में तो ज्यादातर यही था ना, मतलब जैसा जिस हम एरिया में जाते थे ना, नए नए दुकानें पकड़ते थे, सेल्स का टारगेट होता था, टारगेट अचीव करना होता था ना, तो फिर वो मैंने बहुत जल्दी पिकअप किया था वहाँ पे 3 ही महीने में ना। मेरे को पहला तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मेरे को तो गिनती भी नहीं आती थी, तो मैंने काफी मतलब उसमें ना पहले मतलब गिनती तो कर लू 100 तक, यानी पैसे कितने बोलना है, पैसे कितने लेना है, पैसे कितने बोलना है ना, तो माशाल्लाह। हाँ उधर यानी मेन जो रहा सारा जो मेहनत का जो कामयाबी का जो इला रहा ना, वो सऊदी अरब से मिला। यहाँ तो मतलब जिस जैसा जहाँ जिस कैरेक्टर जो जिस हिसाब से मिल जाए तो उसको उस तरह से उसके रंग में रंग जाता हूँ मैं। इस तरह ही है यहाँ पे तो। हाँ इस तरह से ऐसे ही।
0: वैसे आपकी मादरी जबान तो उर्दू ही है ना?
1: हाँ उर्दू।
0: आपका ताल्लुक तो हिंदी है मेरे ख्याल में, बॉम्बे से है गलबन है?
1: हाँ हाँ जी जी जी, बॉम्बे से ही हूँ मैं।
0: नहीं वो मुझे याद आ गया ना, वो पहले जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि वो पहले तो जो मूवी है साइन करने के लिए मुगले आजम आपके पास ही आई थी, फिर आपने दिलीप कुमार के पास
1: भी। सही। आप है ना बॉलीवुड को भी आप अगर तराश लो, या गाने से लेके स्टोरी से डायलेक्ट से लेके, तो उसमें आपको कितना परसेंट उर्दू मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी जहाँ तक मेरा।
0: बिल्कुल, एक्चुअली दिस इज नॉट उर्दू, उर्दू अगर बात करें तो फिर वो थोड़ी मतलब अलग हो जाती है, हिंदी बात करें तो थोड़ी अलग हो जाती है, ये हमने बीच की एक जबान निकाली हुई है, उर्दी कह लीजिए, उर्दू का उर ले लिया और हिंदी का दी ले लिया, तो ये उर्दी कहता हूं मैं इसको, उर्दी हम लोग जो बोलते हैं, ये हमारे फिल्मों में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज उर्दी एक्चुअली। ये मेरा अपना लफ्ज निकाला हुआ है, कोई बुरा ना माने, क्योंकि समझाने के लिए जरूरत होती है ना भाई, ये हम जो जबान बोलते हैं, जो इस वक्त हम बात भी कर रहे हैं, मैं और शहजादा सलीम सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ये बीच की एक ऐसी जबान है, और इसकी वजह क्या है, इसीलिए आज ये खासम खास दिन इंटरनेशनल प्ले लैंग्वेज डे जो है इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है दुनिया भर में, कि भाई ये साफ जबान प्लेन जबान एक दूसरे को समझाने में बात करने में मदद करती है। आप देखिए यूजुअली जो हमारे कुरान करीम की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है हमारी बोलने वाली अरेबिक से, एंड इवन फिर वो डायलेक्ट वगैरह और दूसरी जगहों के हिसाब से लैंग्वेज जो है वो बदलती रहती है ऑब्वियसली, बट जो बात करने वाली समझाने वाली अरबी के वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इवन जो अरब्स हैं खास, जब आप उनसे बात करते हैं, आप कितनी ही अच्छी बात कर लीजिए, वो समझ जाएंगे कि आप अरब नहीं है। हाँ आप बोल बहुत अच्छी अरबिक रहे हैं, मेरे ख्याल में लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात से, तो वो जरूर समझ जाते हैं। तो इसलिए अपनी जबान को एक नॉर्मल वे में बात करना और दूसरे तक अपना मैसेज पहुंचाना, ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्या कहते हैं शहजादा भाई?
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनका अरबियों का अपना एक उनका एक अपना अखलाक, अपना एक तरीका है उनका, लेकिन उसमें हम फिर भी ढलते हैं ना, उसमें मतलब जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है हर लोग के लिए, कि जो 1-4 जबानें जानता है ना, तो उसका इसका जो बेनिफिट मिलता है जगह जगह जहाँ जहाँ जिस माहौल में है ना, तो बड़ा ही, और वो खुशी भी होती है ना सामने वाले को भी ना, कि ये यानी यहाँ सऊदी अरब में तो काफी मतलब खुशी होते है जो डायरेक्ट अरबी बात करता है ना, तो हाँ माशाल्लाह बोल के उसको क्रेडिट भी देते हैं कि हाँ बहुत जबरदस्त इस तरह से।
0: अच्छा,
1: तो एक से चार जबान पांच जबान जितनी आप जबाने मतलब आप जानते हो ना, उसका बहुत बड़ा एक खुशी भी है और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग में इधर उधर कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्ट हो जाए ना, तो काफी अभी इंडिया में भी कई लोग स्टूडेंट वगैरह जो आते हैं ना सूडान वगैरह से,
0: सही,
1: कभी बॉम्बे में भी कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ कनेक्ट हो जाते हैं कभी कभी ना, बड़े खुश होते हैं वो यार हमारी जबान बोलने वाला
0: यार कोई है। बिल्कुल सही एक्चुअली जब इससे एक छोटी सी बात और याद आई कि मेरे वालिद साहब मतलब जब मैं पढ़ाई के लिए चला गया अलीगढ़ तो अब्बा जब भी छुट्टी आते थे तो मेरे यूजुअली क्योंकि माहौल वही था तो वहां पर जितने भी अरब पढ़ने आते थे फिलिस्तीन से सूडान से ओमान से स्पेशली जॉर्डन से उनके साथ ही मेरा उठना बैठना होता था और वही क्योंकि खान पान वैसे ही था सबका सब तो मुझे उनके साथ मजा आता था और उनको मेरे साथ, तो अब्बा जब भी आते थे अब्बा उनसे बात करते थे तो ये वाली जो आपने बात बताई ना तो बड़े खुश होते थे भाई कि ये यार कितनी मतलब मजेदार चीज है एक दूसरे को बात समझाना और जो जिसमें मुतमईन है और जिसके जिस तरीके से बात समझ में आ रही है उस तरीके से अपनी बात समझाना इज रियली ऑसम भाई। वाह वाह वाह वाह, इससे अच्छा खुलासा

0: शेफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और हमारे साथ जुड़ने का, मोहब्बत नवाजिश, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए भाई, अच्छा दिन हो इंशाल्लाह।
1: और वो जो हमारे जो जो पूछते हो भाई है ना, हमारे जितने भी मतलब पढ़ाने ना हमारे,
0: ओके,
1: तो हाँ उनसे थोड़ा सा मेरा तो हमेशा रहता ही रब्ता, तो कभी गैप होता है ना तो वो उनका एक जो उर्दू बोलने का तरीका ना, बड़ा मजा आता है,
0: बहुत मजा आया, और बहुत ही इतनी मतलब उर्दू वैसी मीठी है और वो जब बात करते और भी ज्यादा मीठी हो जाती है।
1: तो मेरे से मुखातिब होते हैं ना सरोवर भाई, तो यही बोलते ओ यार सलीम भाई यार, तुम तो किधर नजर नहीं आता यार, ऐसा तो गुजारा नहीं,
0: तुम नजर नहीं आता भाई, किधर था सलीम भाई, किधर चला जाता है,
1: बोलता है अच्छा वो बोलते ना यार, ऐसा तो गुजारा नहीं होगा यार, ये गुजारा नहीं होगा
0: भाई। दोस्ती और यारी अगर वाकई सीखनी है हमें तो हम अपने पठान भाइयों से सीखें, वाकई
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वाकई
1: बहुत मोहब्बत ही,
0: क्या निभाते हैं यार, क्या निभाते हैं।
1: मैंने तो रोटी खाया, हाँ मैंने तो ना साथी में ना रोटी खाया है, और हम एक ही प्याले में ना हमने पानी पिया है,
0: वाह वाह,
1: एक ही प्याले।
0: ये देखिए ये वही बात हो रही है,
1: टर्न करके
0: जो मुख्तलिफ कल्चर है हमारे कतर के आके कैसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। बहरहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका दिन अल्लाह ताला अच्छा गुजारे, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। All right, ladies and gentlemen, बच्चों बुजुर्गों दोस्तों, आज बात हो रही है जबानों के हवाले से, तो आप मुख्तलिफ जमाने जानते हैं अगर, और किस तरीके से आप आसान अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, 666-22107 पे आप मैसेजेस भेज सकते हैं, 443-443-77 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम, सहलन सहलन,
2: क्या हाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम रियाज है।
0: ओहो रियाज अहमद साहब, अभी आपका भी मैसेज पढ़ रहा था मैं, कल मन वही वाले रियाज भाई?
2: जी जी जी।
0: अहलेन अहलेन, कैसे है रियाज भाई, खैरियत से हैं?
2: ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक है,
0: अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बताइए कैसी हुई सुबह और कहाँ पहुँचे अभी तक?
2: सुबह तो हमारी बस वही बात है कि हम सुबह उठते नहीं है, हमें उठाया जाता है।
0: आए? ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती उठो, कौन उठाता है?
2: आलस आलस।
0: अच्छा
2: आलस, आलस।
0: तो घड़ी उठा रही है या कोई और? मैं
2: घड़ी अच्छा, उठाती है।
0: अच्छा, अच्छा मैं समझ गया,
2: मोबाइल उठा देता है, जब मोबाइल थक जाता है तो फिर ड्यूटी वाला कोई बंदा उठा लेता है, लेकिन उठा लेता है, कामयाब हो जाते हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी ऐसी ही अता करता रहे और इंशाल्लाह ताला खैर हो। तो रियाज भाई क्या कहते हैं, कितनी जमाने आती है भाई को, क्या क्या बोल लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कितनी जमाने बोल लेते हैं?
2: मैं तो पठान हूँ, हमारी जुबान है
0: पश्तो जबान है। हाँ
2: और जी जी।
0: अच्छा क्या, मैं माजरा चाहता हूँ अगर मैं कुछ गलत कह दूँ, पश्तून आखिर में नून को मतलब वादे करते हुए भी कोई लफ्ज है पश्तून या पश्तो ही
2: जी
0: होता?
2: जी पश्तून, पश्तून या पश्तून,
0: पख्तून या पश्तून, ओके
2: हाँ ये दोनों बोले जाते हैं।
0: अच्छा, सो दिस इज फ्रॉम पख्तून ख्वा मे बी?
2: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: एंड इट इज ख्वा और खा,
2: इसे पख्तून ख्वा
0: ओके ओके, इसमें इसमें नून गुन्ना नहीं है, इसमें ख्वा में ख्वा नहीं है, ख्वा है ख्वा, ओके मैं गुन्ना लगा देता था एक्चुअली, ओके
2: जी जी
0: ऑलराइट। तो ये दोनों ही मतलब पठान जो हैं हमारे ज्यादातर उधर से ही,
2: मेरे आज अलग है बोलने वाले, जैसे हम हैं तो हम पख्तून बोलते हैं,
0: ओके
2: जो मतलब नीचे इलाकों के लोग हैं या वो भी पठान है, वो भी सेम एरिया है, लेकिन वो लोग पश्तून बोलते हैं।
0: ओके यार, गजब यार भाई, बहुत ही बढ़िया, मेरा आज एक कंफ्यूजन क्लियर कर दिया आपने यार।
2: जी जी, तो मतलब जुबान वही है लेकिन वो बोलने का स्टाइल, जैसे वो पेवर आदि पेवर लैंग्वेज जो है ना सरोवर भाई, वो कोई नहीं बोलता है जो

0: अहलन व सहलन, खुश आमदीद एंड स्वागतम। बिल्कुल भाई, स्वागत वेकअप सरवर मिर्जा आपके साथ, और आपसे कह रहा हूँ वेकअप वेकअप, उठ जाओ भाई, उठ जाओ उठ जाओ, आंखें खोल लो पूरी तरीके से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको भाई धक्के लगते हैं घर पे, इधर गए इधर धुक, उधर गए उधर दीवार आ गई धुड़, जब उठते एकदम अरे भाई अच्छा हो गई सुबह, उठ जाओ। तो आज हम खैर खासम खास बात कर रहे हैं हमारी भाषाओं के हवाले से, भाषा के आसान इस्तेमाल करने के हवाले से, जहां पर अभी तक हमने जाना कि कितनी ही प्यारी जबानें हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, और हम कितना ज़्यादा उसमें कामयाब होते हैं एक दूसरे को अपनी बात समझाने में। तो फिलहाल आइए, कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर आप लोग के मैसेजेस भी लूंगा, पहले इनसे कर लेते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: नहीं, मैं तो रास्ते में हूँ भाई, मैं गरीब हूँ दिल के तुम्हारे।
0: अरे मेरा भाई, मेरा भाई,
1: अचानक से देखा भाई सरवर भाई कैसा कॉल कर
0: दिया यार, आपका मैसेज था तो मैंने कहा कि पहले इसको पढ़ने से पहले आपको कनेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद लाइन लग जाएगी, फिर मुश्किल होगा। और यहाँ पर चलिए, अब आपसे बात हो रही तो जो कुछ लिखा है वो आप बता ही दीजिए, काम करिए।
1: खुशामदीद
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कितनी उर्दू सीख ली आसिफ भाई? आसिफ भाई वैसे बॉम्बे में कौन सी बोली बोली जाती है?
1: भाई हम लोग तो मराठी है, मतलब हम लोग की लैंग्वेज तो मराठी लैंग्वेज है, हिंदी तो बोलते हैं, मतलब हिंदी की लैंग्वेज में हम लोग मराठी मिक्स करके बात करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आए कुछ।
0: किसको समझ नहीं आए, एक दूसरे से बात करने में समझ भी नहीं आए
1: या? एक दूसरे से जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मतलब मेरे से बात करते करते मैं समझ जाऊंगा कि आ भाई तुम छपरी इंसान हो, मराठी बात नहीं कर सकते बराबर।
0: कौन से इंसान हो, कौन से
1: छपरी?
0: ये क्या होता है यार, मतलब मैंने इसको दोबारा पूछ के गलती तो नहीं कर दी? यार कुछ बेइज्जती हो गई क्या इसके अंदर?
1: नहीं आप, आपकी नहीं भाई, इतनी बड़ी इतनी हिम्मत नहीं है हमारी कि हम आपकी।
0: अरे नहीं नहीं यार, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
1: आपको एक बात बोलता है, जैसा मतलब हम लोग जैसे मराठी लैंग्वेज बात करते हैं ना, तो कोई हम लोग के सामने आके कोई भी मतलब एक्स वाई जेड हिंदी ना कोई भी पीपल आके बात करेगा हम लोग से मराठी लैंग्वेज में, तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि मराठी आदमी नहीं है, बस ठीक है मराठी बात कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं।
0: यही पॉइंट हमने, यही मैंने पॉइंट मेंशन किया कि जो जिस जबान को कितना ही अच्छा समझ ले दूसरी जबान को, और कितना ही अच्छा बोल ले, जो उस जबान को बोलने वाले हैं वो उनको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि हाँ ये बोल बहुत अच्छी रहा है, बट ये जैसे कि आपने कहा वो जबान बोलने वाला नहीं है, तो ऐसा है, ये हकीकत है, एक्चुअली ये हकीकत है।
1: हम लोग एक बात और बोलना चाहता हूँ, हम लोग इधर जो कतर में है, कतर की लैंग्वेज बात करते हैं हम लोग, और खुदा ना खास्ता अगर हम लोग मराठी लैंग्वेज में बात करने लग गए तो हम लोग को बैन लग जाएगा।
0: ओ, अच्छा ऐसा कुछ है,
1: हर सेंटेंस में हर सेंटेंस अच्छा, के बाद गाली निकलती है,
0: माने दूसरे निकलते हैं, हल्का बटन दबा प्रेम, बटन दबा।
1: मेरे को पसंद लैंग्वेज जो आती है, मेरे को अरबी लैंग्वेज सबसे ज्यादा पसंद आती है।
0: अच्छा, ये पुणे में भी मराठी बोली जाती है ना?
1: अरे पुणे की लैंग्वेज भाई कट्टर
0: यार, मैं वही आ रहा हूँ एक्चुअली, मैं पुणे की लैंग्वेज से बहुत ज्यादा करीब हो गया हूँ, मेरी बहन इज फ्रॉम पुणे एक्चुअली, तो उसकी वजह से मुझे पता चला, और फिर मुझे पता चला कि भाई खैर थोड़ा टॉपिक से इधर हो जाएंगे हम, कि पुणे में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके नाम ऐसे हैं कि अगर वो नाम भी ले लिए जाए ना हमारे यहाँ घर में बैठ के तो गड़बड़ हो जाता है मामला। मैं खैर में पुणे वाले सुनने होंगे अगर समझ रहे होंगे मेरी बात, तो बहरहाल अच्छा है यार अल्हम्दुलिल्लाह।
1: कम से कम हम लोग के देखो बम्बई में एक
0: नहीं बोलना, नहीं कुछ ऐसा नहीं बोलना ना, ना प्रेम ना,
1: मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है एक ऐसी जगह है कि मतलब नाम लेंगे तो तुम बोलेंगे अरे ये क्या यार गंदा नाम ले रहा है।
0: आई नो मैंने ये सीखा और ये पता चलती हैं चीजें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि भाषा का एक ये भी असर है जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देता है। तो आसिफ भाई अरबी कितनी सीख गए अभी, कितना टाइम हो गया गल्फ में, पहली बार बाहर आए कतर या पहले आप थे?
1: किल्ला मालूम ना बाबा,
0: कुल्लू मालूम है,
1: कुल्लू मालूम
0: ये अब देखिए, आप अगर कुल्लू मालूम कहेंगे ना किसी से, किसी अरबी के सामने
1: तो जाकर वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएगा।
0: अच्छा नहीं, आपको कितना टाइम हो गया आसिफ भाई कतर में?
1: मेरे को कतर में 2000 नहीं, कतर में मेरे को आए हुए 3 साल हो गया, और इससे पहले मैं इमारात में था। मैं
0: अच्छा आप इमारात में भी रहे हैं, ओके
1: तो मेरे को टोटल हो गया है 9.5
0: ईयर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे, अल्लाह ताला आगे बढ़ाए, आपके रिस्क में बरकत हो और इसी तरीके से आप इंशाल्लाह और आगे बढ़ते चले जाएं, यही हमारी दुआ है आसिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।
1: आज तो टीम का दम नहीं खेल पाएंगे भाई, क्योंकि आज तो बहुत जल्दी हाजिरी लग गई हमारी।
0: अरे नहीं, आप बिल्कुल खेल सकते हैं यार, जब चाहें आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे कह भी सकते हैं, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास यार, नो वरीज आसिफ भाई।
1: टाइम
0: ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। ऐसा नहीं है, हूँ चाय वालों की टीम में, मैं कॉफी आजकल मजबूरी में पी रहा हूँ, बात अलग है। ऑल राइट आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके ख्वादीन हजरात, बच्चों बुजुर्गों दोस्तों, बच्चे तो अब स्कूल उतर गए हैं ऑलरेडी, अब आप लोगों से आज का दिन खासम खास जुड़ने का वो ये कि आज हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि आज है इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे। मतलब इसमें ज्यादा काबिल मत बनो भाई, कुछ मिला मिला के मत बोलो, ज्यादा अच्छा बनने के लिए इसमें ज्यादा गाढ़ा मत करो इस लैंग्वेज को, आसानी से अपनी बात कहो, आसानी से अपनी बात समझाओ, इसी हवाले से बात हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: अहलेन अहलेन, कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं वसीम बोल रहा हूँ।
0: वसीम भाई
2: जी, मैं दुबई से हूँ, कतर दुबई आना जाना है, आपका रेडियो सुनता हूँ मैं।
0: अहलन वसहलन भाई, अहलन वसहलन, मोस्ट वेलकम। वसी नाम है या वसीम है आखिर में?
2: वसीम खान।
0: वसीम खान, ओके वसीम खान, कहाँ से है ताल्लुक आपका?
2: इंडिया से।
0: इंडिया में किधर से?
2: इंडिया वैसे तो मेरे अम्मी अब्बू हैं राजस्थान से।
0: ओके,
2: मेरा बर्थडे है कर्नाटका।
0: ओके ओके ओके, क्या खूबसूरत जगह से हैं भाई आप माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं वसीम भाई, कितनी
2: अभी आपका रेडियो सुन रहा था कि लैंग्वेज के ऊपर बात कर रही थी
0: जी, क्या कहना चाहते हैं?
2: मैंने फोन कर लिया आपको, आज पहली बार फोन किया आप।
0: अहलन वसहलन सर, अहलन वसहलन, बहुत अच्छा किया आपने, और आपको बता दूं कि अब आप फंस गए, पूछिए कैसे
2: जी। हमारा क्या है, हम ट्रेलर चलाते हैं दुबई से, कतर आते हैं सऊदी।
0: अरे मेरी तो बात सुनो वसीम भाई पहले
2: जी।
0: अब मैंने कहा कि अब आप फंस चुके हैं पूरे तरीके से, पूछिए कैसे
2: जी, कैसे बताएं तो सही।
0: एक बार जब ये नंबर आप मिला लेते हैं ना, तो ये पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी से निकल नहीं पाता है।
2: जरूर जरूर आपसे रास्ते रहेंगे
0: हमेशा। ओहो हो, आदत हूँ, लग जाऊंगा। वसीम भाई खैरियत से है?
2: मेरे को 5 महीने हो गए कतर चलते हुए, मैं रेडियो आपको सुनता हूँ।
0: माशाल्लाह, अहलन वसहलन सर, एनी टाइम। और ये मोहब्बत है आपकी कि आज आपने हिम्मत कर ली थोड़ी।
2: बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
2: सुबह सुबह जब रेडियो चालू करते हैं ना
0: जी,
2: तो बहुत अच्छा लगता है आपका सुनकर, आपकी आवाज बहुत अच्छी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, और समझाते भी बहुत अच्छी तरह
0: है आप। अहलन वसहलन सर, मैं आपको बताऊं, अगर आप डेली सुन रहे थे अभी तक, तो वो जो शख्स है वो अलग था, और आज आपकी अलग शख्स से मुलाकात और बात हो रही है, शायद हम लोग काफी आवाज मिलती जुलती है।
2: तो आप कबीर भाई हैं, फिर वो अपने
0: बहन हैं, नहीं फिर तो आपको पता, फिर तो आप क्लियर हैं, बस फिर तो क्लियर है, मैं समझ गया।
2: सबका सुनता हूँ, आपका भी सुनता हूँ, कबीर भाई का भी सुनता
0: हूँ। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, मोहब्बत है। चलिए सर, सर ये तो आपने बस एकदम गले मिल लो, पहले इधर आओ टाइट एकदम, ये वसीम भाई, अब बताओ कि क्या बात कह रहे थे?
2: बहुत है आपका प्यार, बहुत है।
0: तो क्या बात कर रहे थे भाषा के हवाले से?
2: भाई भाषा के हवाले, आप जो पूछ रहे हैं कितनी भाषा बोलते हैं क्या है, मैं भी वैसे तो हूँ राजस्थानी,
0: हाँ
2: मैं मारवाड़ी बोल लेता हूँ, कन्नड़ बोल लेता हूँ, मराठी बोल लेता हूँ।
0: वाह,
2: अभी सऊदी आ गया, अरबिक बोल लेते हैं।
0: वाह,
2: और इंग्लिश बोलते ही हैं पढ़ाई के हिसाब से।
0: क्या बात है यार, 5 हो गई और अपनी लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, 6 6 languages यार, ये तो कमाल है यार, मैं ताली ताली बजाऊंगा भाई, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा। ये देखिए खास ताली बजी, 6 लैंग्वेज बोला मेरा भाई वसीम भाई, 6 languages, क्या बात है यार, ये तो यार
2: मारवाड़ी,
0: हाँ
2: मारवाड़ी में जैसे हम लोग हरियाणा साइड के हैं,
0: पंजाबी भी बोल लेते हैं
2: पंजाबी नहीं बोल पाते, पंजाबी समझ लेते थोड़ी बहुत,
0: समझ लेते हैं थोड़ी बहुत, बोल नहीं पाते, चलिए अच्छी बात है ये भी है। बहरहाल यार बहुत ही बढ़िया भाई वसीम भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने पहली बार कॉल भी किया हमें।
2: आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज कॉल लिया हमारा, हमने पहली बार लगाया कॉल लग गया।
0: अरे सर ये कॉल लगती रहेगी, हमारा दिल से दिल लगा हुआ है, तो कॉल तो बहुत छोटी चीज है वसीम भाई, इसके बारे में तो टेंशन लेने का ही नहीं, इंशाल्लाह ताला आगे भी जुड़ते रहिए। अहलन वसहलन, आज आपकी रवानगी है क्या दुबई के लिए?
2: अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ।
0: एयरपोर्ट की तरफ?
2: नहीं नहीं, ये अपना क्या नाम है, कतर से बाहर है, ये पोर्ट है ना, शिप
0: पोर्ट। ओके ओके, माय बैड, मैं नहीं था, पोर्ट की तरफ जा रहे हैं आप। ओके ओके ओके, तो भारत चलिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुबई वालों, दुबई रहते हैं ना, दुबई कतर बताया आपने, बस सही है, तो वहाँ वालों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, और हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू।
2: हम लोग चार भाई गाड़ी चलते हैं, चारों में आपका रेडियो सुनते हैं।
0: अरे सर वो तो आपकी मोहब्बत है, मैं कह रहा हूँ कि इसको और फैलाइए, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट जब आप देखेंगे ना तो उसमें आप हमें सुन सकते हैं, तो सिर्फ गाड़ी में ही ऐसा नहीं है, हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप अपने मोबाइल से 24 घंटे सातों दिन हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जब आप लिखेंगे ना उर्दू रेडियो कतर इंटरनेट पे जाके, तो आपसे आप आराम से हमें ढूंढ लेंगे, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, ठीक है? ओके वसीम भाई, ओके ओके ओके, आपका दिन अच्छा हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अहलन वसहलन, अहलन वसहलन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे देखिए प्यारे प्यारे वसीम भाई, और क्या हो रही है बातचीत, और कैसे कैसे बताया जा रहा है भाई कि हम ये लैंग्वेज जानते हैं, हम 6 लैंग्वेज बोल रहा है अपना आदमी, यार कमाल ही है यार। तो क्या कहते हैं भाई, टाइम वेस्ट करे बगैर दूसरे कॉलर को करता हूँ कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश रहेगी आज, और देखेंगे कि हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है। कनेक्ट तो मैंने किया था, ये कहाँ निकल गए, चलिए दूसरे कॉलर को कनेक्ट करते हैं। हेलो सलाम वालेकुम। हाँ भाई अहलेन अहलेन अहलेन, कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई जान?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, नाम चेंज करने की जरूरत क्या थी?
0: क्या करने की?
3: सर्वर
0: सर्वर
3: क्या थी?
0: सर्वर नाम चेंज करने की जरूरत क्या थी? क्या बात है भाई, देखिए क्या मिक्स आ रही है शायरी, चेंज इस्तेमाल किया लव, वाह वाह वाह वाह। हाँ कौन हूँ?
3: सुना हूँ
0: हाँ हाँ,
3: स्वीट से मिस्टी बन गए।
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय, यार ये तो आपने वाकई ताज़ा ताज़ा बनाया भाई, और बड़ा ही अच्छा बनाया आज के दिन के हवाले से। मैं बता दूं दूसरे लोग जो भी इस वक्त सुन रहे हैं कि बड़ा अच्छा मिक्सण है इस वक्त इंग्लिश और उर्दू का, जो नसीम भाई क्योंकि शायर हैं, इन्होंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा बनाया होगा हमारे लिए।
3: हैं ये तो आपके
0: जर्रा नवाजी है। नसीम भाई कैसे हैं और कैसा रहा आज का दिन? नसीम भाई वैसे कहाँ से ताल्लुक है आपका?
3: मेरा ताल्लुक ना पूछे तो बेहतर है।
0: अच्छा निकाले गए थे क्या वहां से, जहाँ से ताल्लुक? अच्छा शेर आ रहा है, शेर, ओहो यार बता दिया करो किस बात में भी शेर आ रहा है, मैं कहीं और निकल जाता हूँ, आने दिए। मेरा ताल्लुक ना पूछो तो बेहतर है,
3: बेहतर है।
0: हाँ
3: जहाँ बोलाओ वहीं हूँ मैं।
0: जहाँ बुलाओ वहीं हूँ मैं। बुलाओ नहीं, जहाँ कहो वहाँ हूँ मैं, नहीं जहाँ सोचो वहाँ हूँ मैं, अच्छा मिल रहा है, या जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाता हूँ मैं भी हो सकता है मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं, बदल लिए थोड़ा।
3: ये अच्छा है,
0: इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा नसीम भाई, तो फौरन करेंगे या कैसे? मेरा भाई कैसा नसीम भाई, जैसा प्यारा प्यारा, बहुत ही बढ़िया भाई, और बड़ी अच्छी बातें आपकी एज यूजुअल, हमेशा की तरह नसीम भाई। और भी कुछ कहना चाहते हैं?
3: बातचीत करनी थी।
0: जी जी जी, बताएं।
3: ऐसे मेरा ताल्लुक तो खैर नेपाल से।
0: नेपाल से है, ओके, तो नेपाल फिर तो बॉर्डर से ही होगा, आई एम वेरी श्योर।
3: जी जी,
0: कौन सा बॉर्डर लगता है?
3: पूरे नेपाल तो बॉर्डर ही लगता है।
0: कौन सा आपका, कौन सा बॉर्डर लगता है?
3: बिहार लगता है।
0: बिहार कौन सा
3: बिहार? बिहार
0: अरे कौन

0: सा बॉर्डर का नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। क्यों डर रहे हो, कुछ लेके भागे हो वहां से? वसीम भाई अच्छा ये बताइए कि कितनी बोली, कितनी भाषाएं आप बोल लेते हैं? वो अरबी बोल लेते हैं, नेपाली तो आप बात करते ही होंगे ऑब्वियसली।
1: नहीं नहीं नहीं, सबसे वीक हूँ मैं नेपाली बोलने में।
0: अरे ये क्या कह रहे हो भाई, पासपोर्ट वहां का और भाषा कहीं और की। तो ये बताइए नेपाल में भी कितनी भाषा बोली जाती है? मतलब दो तीन है शायद वहां पे भी, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
1: दो तीन नहीं है, वहाँ बहुत भाषा है।
0: अरे बहुत तो 176 हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट वाली हैं, मतलब जैसे इंडिया में उर्दू हिंदी, अब ठीक है इसमें इधर उधर निकलते रहेंगे और फैलती रहेंगी। हाँ नेपाली,
1: हिंदी भी बोलते हैं और मैथिली भी बोलते हैं।
0: मैथिली मैथिली मैथिली, नाउ आई रिमेम्बर, मुझे यही
1: हम लोग मैथिली बोलते हैं सर, नेपाली हमें नहीं है।
0: थोड़ी थोड़ी कहाँ, आपको तो बहुत अच्छी आती है यार, आप तो शायरी कर रहे हैं यार, इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या होगी। आपने बड़ी अच्छी महारत हासिल कर ली है दूसरी जबान पे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसमें और भी इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आपका दिन अच्छा बनाए। जी कुछ और कह रहे
1: हैं? नहीं नहीं, इसलिए मैं बोला था कि जहाँ आपको वहीं हूँ मैं,
0: वहीं हूँ मैं।
1: क्या बात, असल में मैं पूरी क्या बोलते तो 18-19 साल जो है इंडिया ही में गुजार रहा हूँ।
0: अच्छा इंडिया में ही गुजारे हैं, इसलिए लैंग्वेज ज्यादा क्लियर है। क्या बात है मेरा भाई की। चलिए भाई नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करिएगा जुड़ने की जब हम गेम खेलेंगे। थैंक यू सो मच भाई। तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक, मुझे मालूम आप लोग की कॉल आ रही है, मैं बस यूं गया यूं वापस आया बिना गाना प्ले करे, आपका आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर आगे गाने वगैरह के लिए बढ़ूंगा।

0: FM 107. Time check.
1: हेलो हेलो हेलो हेलो वेकअप वेकअप वेकअप घड़ी में 6 नहीं 7 बज के सही 6 मिनट भाई
0: आप सुन रहे हैं
1: वेकअप
0: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: बिल्कुल इस वक्त वेकअप पे आप सरवर मिर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर एक कॉलर जैसा कि मैंने वादा किया था कि गाने की तरफ मैं नहीं गया भाई मैंने कहा कि पहले होगी इनसे बात क्योंकि बहुत देर से ये कर रहे हैं हमारा इंतजार हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह
1: अहले
2: مرحبا
1: صباح الخير صباح النور الحمد لله اخوي كيف انت كيف انت
2: الحمد لله اخبارك انت
1: اب ہمارا مشتی دو ہی ہے یہ دیکھیں پٹھانی اور بنگلہ دیشی دونوں ملا دی میں نے اس کے اندر قادر بھائی एक्चुअली मैंने आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही और मुझसे बात हो रही थी रईस भाई की उनसे कॉल कट गई तो वो मुझे समझा रहे थे फर्क क्या है पख्तून में एंड पश्तून में और कौन है जो पश्तून बोलते हैं कौन है जो पख्तून बोलते हैं तो ये सारी चीजें आज मेरे समझ में आ गई हैं खादिम भाई तो आप वो

0: असल में
1: असल में ये
0: पख्तून है।
1: ओके, जो रईस भाई बात कर रहे थे मुझसे, आपने सुना था उनको बात करते हुए?
0: नहीं, अभी बस जस्ट अच्छा। तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने 37-38 बार ट्राई किया।
1: अरे मेरे भाई, मैं देख रहा था कि ये कॉल सबसे ज्यादा आ रही है और मुझे नहीं पता था ये आप ही का नंबर है, तो मैंने फौरन इसको वो किया।
0: वो जो भाई साहब के साथ रहे थे कि अभी आप फंस गए, तो मैं बोलने वाला था, यही बोलने वाला था कि पिछले 8 साल से जो हम फंसे हुए हैं ना FM 1 से
1: अच्छा है, ताली की तरह ताली।
0: आप यकीन नहीं करोगे सर्वर भाई, अभी तक मैंने घर में बच्चों के साथ नहीं 7 मिला रहा हूँ। इसे कहते हैं मोहब्बत। मैंने घर में कॉल नहीं मिला, बच्चों से बात नहीं हुई मेरी।
1: मेरा भाई कैसा खादिम भाई जैसा है यार, और खादिम भाई पे पैसा ही पैसा है यार।
0: सर्वर भाई बातें तो कोई आपसे सीखे
1: नहीं यार, ये हकीकत है यार, आप दिल के करीब है।
0: मुझे खुशी हुई,
1: अच्छा
0: एक बात पे मुझे खुशी हुई कि चलो आपकी नींद तो खराब हो गई ना,
1: ये खुशी की बात है यार।
0: ये मेरे लिए खुशी की बात है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा के लिए कि सर्वर भाई को
1: हमेशा की खराब कर दो,
0: एक हमेशा के लिए, 1 महीने इधर, 1 महीने दोपहर और 1 महीना शाम।
1: क्यों खादिम भाई,
0: डॉक्टर
1: मैं तो यार आपके पैसे भी नहीं लेके भागा यार।
0: मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये आपकी नींद FM 107
1: तोड़ दी,
0: मैनेजमेंट ने खराब
1: कर
0: बहुत ज्यादा।
1: चलिए यार, आपको देखिए खुश होने चाहिए, अब यही बात खुशी दे रही है मेरे भाई को, तो सच्ची बात क्या हो सकती है मेरे लिए, यही खुशी की बात है। आप ये होता है जहर का असर जो काम करता रहता है आपके अंदर, वो घोल दिया गया है।
0: नहीं, घोल नहीं है, हमारे हमारी रूह जो है रूह में वो बची हुई है ये FM 107 की आवाज। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ FM 107 से, लेकिन मैं जब भी दूसरों की बातें सुन के ना, कसम से मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो दीवाने सारे माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत है,
1: मोहब्बत है, ये वाकई मोहब्बत है।
0: आप सर्वर भाई, ये फैमिली चैनल है, और ये ऐसा है ना कि सबको जोड़ के रखा हुआ है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये काम भी आगे हम लोगों से लेता रहे,
0: सऊदी में भी लोग सुन रहे हैं, बस अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, सलामत रखे।
1: आमीन खादिम भाई, आमीन खादिम भाई। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं? मेरे ख्याल में 4 से 5 तो कहीं नहीं गई आपके पास। यस यस यस, आई नो
0: है मेरी।
1: वाह,
0: और उसमें ये है कि कुछ अल्फाज थोड़े से रशियन के भी याद है,
1: ओ माई गॉड,
0: फारसी के भी याद है थोड़े, लेकिन वो इसमें गिनती नहीं करते हैं।
1: वाह, और वाह, वाह, वाह।
0: ये है कि मैं परसों बात भूल गया था, वो बच्चियों की तालीम और बच्चियों की बेटियों की जिंदगी के बारे में ना, ऐसे कुछ बात चल रही थी।
1: ओके ओके,
0: मेरी एक भतीजी रशिया में पढ़ती है,
1: अच्छा माशाल्लाह,
0: उसने रशिया में एक स्टेट में
1: ओके
0: उसने 12th में टॉप किया था।
1: वाओ भाई, ताली तो अब इसमें बजेगी यार, वाह वाह वाह,
0: बनाया हुआ है, गोल्ड मेडल दिया हुआ है
1: वहां पे रशिया में ही।
0: उनकी जो जितना भी एजुकेशन वो यानी जब तक चाहे वो पढ़ेगी, और वो रशियन गवर्नमेंट उसका
1: अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, और तमाम बच्चियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और क्या खबर है यार, देखिए दूसरी जगह जाके अपना डंका बजाना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना, जबरदस्त यार, क्या ही कहने, क्या ही कहने, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी।
0: आप यकीन करें, वो जो गोल्ड मेडल दिया हुआ था, तो वो गोल्ड मेडल ऐसा नहीं कि वो गोल्ड था, वो सब हमारे सब फैमिली के लिए एक जिंदगी थी।
1: वाह वाकई यार,
0: बहुत खुश हम लोग,
1: बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आप जब उससे बात करते होंगे उसी के सिलसिले में आप कुछ रशियन सीख भी गए एक्चुअली।
0: जी, रशियन में बात करते हैं एक्चुअली, उनको इनको
1: अच्छा
0: उनको बच्ची को पश्तो अभी नहीं मालूम, बिल्कुल याद नहीं है, और वो रशियन में बात करती है, हाँ पश्तो में बात करते हैं बस वो इंग्लिश में और पश्तो में हम लोग ज्यादा मैच करते हैं और वो रशियन और इंग्लिश बोलते
1: हैं। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह, अल्लाह ताला खुश रखे आपकी तमाम फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला खैरियत से रखे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैं तो आया था आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पे अटैक किया आपने।
1: नहीं यार, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मुझे डिस्टर्ब करें, आप मेरी वजह से दूसरों को कर देंगे, मैं ये जानता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एंड फॉर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, खास आपकी फरमाइश पे बिना का गीत माला की माला में एक और गाना। किस किस को याद है गाना?
2: जरा मुस्कुराते
1: शान,
2: मुस्कुराते जरा मुस्कुराते है खुशी।
1: Enjoy कीजिए ट्रैक, इस वक्त वेक अप सुन रहे हैं आप सर्वो मिर्ज़ा आपके साथ, ओनली वन FM 107, दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं

कतर, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सबकी मॉर्निंग बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और इस वक्त अभी अभी जिन्होंने हमारे साथ हमें कनेक्ट किया है, ट्यून इन किया है FM 107, तो उन लोगों को बता दूं कि आज बातचीत हो रही है लैंग्वेज के हवाले से, भाषा के हवाले से, और वो भी प्लेन लैंग्वेज, क्योंकि आज है इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे, यानी कि साफ, आसान और समझ में आने वाली जबान के इस्तेमाल को इस्तेमाल करना, फरोख देना। अब मैं खुद फरोख बोलूंगा तो आप कहेंगे खुद ऐसी बातें कर रहा, तो समझना भाई, एक दूसरे की बात समझना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक दो चार मैसेज उसके बाद आप लोगों की कॉल फॉर श्योर, क्योंकि ऐसा ना हो मैसेजेस वाले नाराज हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरूर भाई, यहां पर एक अच्छा सा पोस्टर बना के भेजा है मेरा, एंड दिस इज शमशाद भाई, आई बिलीव, यस आई थिंक सो। कहते हैं मुझे अरबिक, पंजाबी, उर्दू और उर्दी जो अभी आपने कहा वो आती है निकलेज। अच्छा अच्छा यार रिद्वान, आपने मेरी बात सराही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरूर भाई, आप कहां से? मैं कहां से? मोहम्मद दिलशाद है, दिलशाद कर गए आप मेरा। मैं हूं साहब अलीगढ़ से, यूपी इंडिया, और हमारा प्यारा शहर अलीगढ़। मेरे ख्याल में तो जानते ही होंगे, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको, मैं अलीगढ़ से हूं, फ्रॉम यूपी इंडिया। ये जनाब की आवाज जावेद अख्तर से मिलती जुलती है, फिरोज खान शेखू भाई की, मुंबई वाले। अच्छा ले भाई, शहजादा सलीम, आपकी आवाज को जावेद अख्तर से मिलाया जा रहा है यहाँ पर, क्या बात है यार। कौन है जिन्होंने ये बात कही ये भी बता देता हूँ, नाम नहीं है यहाँ पर, इनका गिनती लिखी हुई है, तो 8811 जो है इनका नाम यही है गिनती। कहते हैं कौन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, कहां से छेड़ू दास्ता, कहां तमाम करूं, कहां से शुरू है MBB, आपका मैसेज समझ में भी तो नहीं आता। कहते हैं हमसे पूछो साहब, आई नो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सरवर जी, गुड मॉर्निंग कतर, आपको और तमाम लिसनर को यहां पर गुड मॉर्निंग कहते हैं। और बड़ा से सैड सा इमोजी बना के भेजा, ऐसा क्यों है यार? कहते हैं सुन रहा हूं बट पाकिस्तानी, पंजाबी, पश्तून। अच्छा बाय बाय, इतनी लैंग्वेजेस इनको पसंद है कहते हैं। मोहिन भाई, अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, आई होप आप ठीक होंगे। मूर फरद साहब है हमारे साथ, बिल्कुल ठीक हूँ फरद भाई, आप कैसे, खैरियत से? अरे रमेश भाई केदार, वाह, अरे कभी तशरीफ तो लाइए यार, हम तीन का दम भी खेल रहे हैं आपके लिए, आप आते ही नहीं है भाई, क्यों आई ऐसे? गुड मॉर्निंग कहते हैं, कैसे हैं आप भाई? रमेश भाई क्या इनकी आवाज है, और क्या ही यार जेंटलमैन है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सलाम मिर्ज़ा भाई, वेरी नाइस योर शो एंड योर वॉइस। सुरजीत उमकर्ण से, क्या बात है सुरजीत भाई, बड़ी अच्छी जगह से आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, पख्तून और पश्तून आर सेम, मींस पश्तून फैमिली और ग्रुप और कबीला। ओके आज काफी कुछ समझ गया हूँ मैं। बी सेफ कहते हैं, इनका नाम यही रखा हुआ है, आपका नाम क्या है भाई? बी सेफ, इंशाल्लाह ताला आपकी बात पे अमल भी किया जाएगा। कहते हैं क्या कहते हैं, रियाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम भाई, पहचान तो गए, अच्छा ये तो हो गया था, मेरी कॉल कहाँ वड़ गई यार आपकी दो चार बार आवाज कटी रियाज भाई, एंड उसके बाद मजा तो बहुत आ रहा था आपसे बात करने में, उसके बाद कॉल कट गई। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, क्या हाल है? इरफान फॉर कबीर, आई यूज्ड टू से 500 MG KBR फॉर यू, आई मस्ट से 1 TB। इरफान मेरी जान, ओके यार, बड़े यार खूबसूरत आदमी है यार ये तो यार।

0: भी बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, गुड मॉर्निंग, मंसूरा मुंतजा से रौदत अल खैल एंड डी रिंग रोड तक हैवी ट्रैफिक, अगर इधर से आए तो स्कूल में जरूर डांट पड़ेगी। यार थैंक यू सो मच इरफान अल कासमी, हमारे ट्रैफिक एजेंट हमें बता रहे हैं कि भाई इस जगह पे आप लोग समझ गए ना, फिर बता देता हूँ, मंसूरा मुंतजा से रौदत अल खैल एंड डी रिंग रोड तक हैवी ट्रैफिक है, बताते हैं। और ये खबर इन्होंने दी है हमें 7:06 पे, एक्चुअली मैं अब पढ़ रहा हूँ तो 15 मिनट पहले की अपडेट है ये, उस हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिएगा, ट्यून कर लीजिएगा। मैंने आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, आई ट्राई टू कॉल यू इट्स मोर देन 18 टाइम्स बट अनफॉर्चुनेटली कॉल नॉट कनेक्टेड, अभी करता हूँ बस काइंडली प्लीज कॉल, जजाकअल्ला। 5039 है यहाँ पे, नहीं यार ये तो दूसरे नंबर है। चलिए अब कॉलों का सिलसिला भी शुरू करते हैं, फिर इस बीच शायद ये भाई भी कनेक्ट हो जाए, इनका नाम तो ले लूं वरना कहेंगे मेरा नाम भी ले लिया। मोहम्मद आसिफ थे हमारे साथ एंड हियर वी गो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अहलेन अहलेन, कैसे हैं भाईजान और कौन है? जमाल भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम गलत ले लो यार, डांट भी तो पड़ जाती है।
1: आप
0: नहीं सकते। क्या बात है मेरा भाई, कैसा सर्वर मिर्जा जैसा, अपनी तारीफ भी खुद करता। चलो
1: तमाम हमारे प्यारे सामीन
0: और अरे यार जमाल भाई एक बात बता दूं, आज ज्यादा गाली मत कर देना उर्दू को आज उल्टा दिल है आज आसान आज मैं बताऊं क्या है, आज है इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे, मतलब साफ आसान और समझने वाली जबान जो है उसको इस्तेमाल करना, और ये इंटरनेशनली पूरी वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन और सेलिब्रेट किया जाता है। तो अच्छा हुआ कि आप तशरीफ लाए और आपके उर्दू में बात करते हैं, खालिस उर्दू में बात करते हैं, फसाह में तो नहीं मगर हाँ खालिस उर्दू में बात करते हैं। उस हिसाब से मैंने आज शुरू में भी समझाने की कोशिश करी कि क्या फ़र्क है उर्दू में हिंदी में और जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो क्या है, तो मैंने उसको नाम दिया है उर्दी। आप क्या कहते हैं, मतलब उधर उर्दू का उर ले लिया और हिंदी का दी ले लिया तो मैंने मिला दिया, तो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उर्दी है।
1: कसम से 100% नहीं 200% इत्तेफाक करता हूँ, एकदम बिल्कुल समय घूम है।
0: क्योंकि आप जो हाँ क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो उर्दू नहीं है और वो हिंदी भी नहीं है एक्चुअली, और ये यही वो लैंग्वेज है जो हम लोगों को कनेक्ट करती है, इवन वो बॉलीवुड हो बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो और आपस में भी हम लोग जो बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा जमाल साहब के, और आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हैं, पहले तो आज ये खुलासा हो जाए।
1: जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा बहुत उर्दू तो बोल ही लेता हूँ,
0: थोड़ा बहुत नहीं आप अच्छी उर्दू बोलते हैं जिसकी मुझे बहुत खुशी है, कम है ऐसे लोग।
1: और उसके अलावा मैं अरबी बोल लेता हूँ।
0: अरबिक, क्योंकि जाहिर उर्दू अच्छी है या उतनी ही अच्छी बोल लेते हैं या ठीक ठीक अच्छी?
1: ठीक ठाक अच्छा बोल लेता हूँ।
0: वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके,
1: और उसके अलावा मैं नेपाली बोल लेता हूँ।
0: नेपाली, क्योंकि शायद आप नेपाल से ही हैं गालबन,
1: वही समझ लीजिए
0: है ना। हाँ आप बॉर्डर वगैरह से हैं जहाँ तक मुझे याद है,
1: सरहदी इलाके से ताल्लुक है मेरा।
0: ओके बिल्कुल सही। ओके
1: तो मैं नेपाली बोल लेता हूँ, और इसके अलावा जब मैं महाराष्ट्र में होता हूँ तो मराठी बोलता
0: हूँ। यार ये है भाई, अपना हाथ लाइए, गिव मी 5, ये सही है। मतलब यार इतने तिरछे चले जाते हैं आप, मैं तो ये कहूंगा इतने तिरछे के मराठी बोल लेता हूँ यार, कमाल है भाई।
1: मराठी बोल लेता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में होता हूँ तो मराठी बोलता हूँ।
0: वाह,
1: और जो हमारी अपनी मतलब देहाती लैंग्वेज है, जो मतलब इलाकाई है
0: यार, वो तो जरूरी भी होती है यार हमारे यहाँ की। हमारे की बताऊँ मैं, हमारे यहाँ की सुनोगे जमाल भाई, दो मिनट मैं सुनाता हूँ हमारे यहाँ, हमारे की जो देहाती है वो कैसी है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपसे कैसे कहूंगा, हाँ भाई कहाँ को जा रहा है, इधर को आ, अरे भाई। और अगर वो कहेगा कि किससे कह रहे हो, मुझसे तो नहीं कह रहे, तो कौन से कह रहे हो, मौते तो ना कह रहे हो ये हमारी जो बिल्कुल ठेठ कहना चाहिए देसी लैंग्वेज, जो मुझे लगता है कि शायद लोग जानते होंगे जो हमें यूपी वाले हैं। एनी हाउ, तो मतलब मराठी भी बोल रहे हो यार जमाल भाई, ये तो यार कमाल ही कर दे रहे हो यार, क्यों यार ऐसा यार।
1: जी मैं मराठी बोल लेता हूँ भाई।
0: अच्छा थोड़ी बोल के बताइए, मतलब मुझसे बात करिए। और भाई सर्वर क्या हालचाल है, कैसी हुई तुम्हारी सुबह ऐसे ये मराठी में?
1: अजून काय चाललंय तुमचा, बरा
0: आहे का? भैया अरे भैया, अच्छा और इसको अगर नेपाली में, नेपाली में
1: इसी सेम चीज को मतलब नेपाली में बोलना है।
0: हाँ सेम सेम सेम। सर्वर कैसे हो?

0: क्या हाल चाल है तुम्हारी? सुबह कैसी चल रही है? कैसी हुई? समथिंग लाइक दिस।
1: सरोज भाई संचय हो?
0: अच्छा ये तो आसान है यार, संचय।
1: हाँ मतलब कुछ कुछ वही वही है, अच्छे के लिए जो पूछा जाता है।
0: अच्छा संचय हो, संचय हो। अच्छा क्या बात है यार, ये तो आसान है, मैं सीख सकता हूँ इसका मतलब नेपाली भी? क्या कहते हैं
1: नेपाली? नेपाली एक्चुअल में मैंने आके यही सीखा है, कतर में
0: आए हैं और है नेपाल से।
1: इससे पहले मुझे नहीं पता।
0: तो वहाँ क्या कर रहे थे?
1: इससे पहले मुझे नहीं कुछ पता नहीं था, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर मैं मुंबई में रहा हूँ ना, तो क्या कहते हैं हमारा कुछ।
0: अच्छा दैट्स व्हाई यू स्पीक मराठी आल्सो। ओके ओके, बॉम्बे में रहे आप?
1: जी जी।
0: ओके ओके ओके,
1: हमारी फैमिली अभी भी मुंबई में है।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग मुंबई में ही सेटल हैं एक्चुअली? ओके।
1: नहीं सेटल तो नहीं है, मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए वहां गया हुआ था। तालीम खत्म नहीं हुई इसलिए बच्चे को।
0: ऑल राइट, चलिए भाई अल्लाह ताला कामयाब करे यार, बड़ी अच्छी। ये तो देखिए कुछ नई नई बातें आज एक दूसरे के बारे में जानने के लिए मिली, वही शुरू होती है जबान शेरी, वो लज्जम वो गट्टम गट्टा गट पे और खत्म हो जाती है। मैंने कहा जमाल भाई को आज जरा जाने तो सही अच्छे से। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। जमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और मैसेज देना चाहते हैं आज जबान के हवाले से? कोई जी मैसेज क्या देना चाहते हैं
1: आप जबान के हवाले से? मुझे ये लगता है ना कि सब मतलब बहुत लोग है ना जो देखिए यहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 साल से भी लोग हैं, 20 साल से ज्यादा के लोग भी पाए जाएंगे आपको, है ना, लेकिन वो फोकस नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं शायद, मुझे लगता है अरबी वगैरह सीखने में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरी जगह जाते हैं, है ना, तो सबसे अहम चीज वहाँ की लैंग्वेज है। अगर आप कहो कि आप जुबान जानते हो,
0: बहुत अच्छी बात,
1: तो आपको वहाँ रहने में, आपको वहाँ बसने में बहुत ढेर सारी सहूलियत।
0: आपको मैं एक मिनट रोकूंगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने वादे किया है जो मैं एक इसके ऊपर बात भी करना चाह रहा हूँ। जब भी हम जर्मनी जाते हैं, हम फिनलैंड जाते हैं, हम आयरलैंड जाते हैं, वेयर सो एवर, हम वहाँ की जबान सीखते हैं और फिर जाते हैं, ये बात है नहीं है। हम अरब मालिक में आते हैं तो हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई वहां तो हम अपना काम चला ही लेंगे, तो अरबी बगैर सीखे पहुंच जाओ। ये एक जो प्रैक्टिस है ना, मुझे लगता है ये हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो बात सही है कि आपकी हाँ आपकी वहाँ जबान आप चला लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से देसी लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ अराउंड, और वो आपकी बात समझ लेते हैं।
1: छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ।
0: जी जी,
1: छोटी सी मतलब आपको ये दिखाता, ये वो बताता है
0: जी।
1: एक छोटा सा बात कर, मेरे साथ हादसा पेश आया था यही कतर में।
0: ओके,
1: मदीना खलीफा में। तो मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ था, काम कर रहा था, तो मेरे साथ लेबर भी होते थे, तो हम अपने सामान डिलीवर करने के लिए गए थे अलमीरा में। और वो लोहे की मजबूत वाली ट्रॉली उसपे मतलब जो हमारी कंपनी का आइटम था वो उसमें रखा हुआ था, और हमारा एक लेबर बेचारा, उसके साथ हम भी हेल्प कर रहे थे, तो हम उसको लेके जा रहे थे। इत्तेफाक से उस ट्रॉली का सामान आगे की तरफ इतना था कि हमें सामने से बराबर नजर नहीं आ रहा, तो कुछ अंदाजे के हिसाब से, और वहां पे रैक वगैरह लगा होता है तो वो कंजेस्टेड एरिया होता है, मतलब थोड़ा तंग एरिया होता है, उसमें से जा रहा था, तो एक अरबी के पैर में वो ट्रॉली लग गई। वहां अलमीरा के जो स्टाफ थे उन्होंने जब देखा, वो स्टाफ के लोगों ने भी जब देखा, अपने काम करने वाले लोगों, तो वो थोड़े से मतलब एकदम से वो हो गए, घबराहट उनके अंदर भी आ गई। तो सोचिए हम लोगों की क्या कैफियत रही होगी, क्योंकि भाई वो थोड़ी देर में गुस्सा हो जाते हैं,
0: नहीं कोई भी हो फिकर ये होती ही होती, भले इस जगह बच्चा होता, कोई लेडी होती तो शायद और भी ज्यादा परेशानी होती, तो फिकर अपनी जगह जायज थी। ओके देन,
1: तो वहां पर घबराहट के शिकार मैंने सबको देखा, और वहां का जो सुपरवाइजर था वो सुडानी था बेचारा, तो उसने कहा कि यार ये तो ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला आदमी है, उसने मुझे बताया कि ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला,
0: वो जो साहब थे उनको गुस्सा आता ही था। ओके ओके,
1: मैंने उनसे कहा कि शेख आसिफ, इतना ही लफ्ज मैंने कहा था, आपने फरमाई शुरू कर दिया, हां हां हां हां हां हां हां हां हां हां हां
0: हां
1: हां हां हां हां हां हां हां हां हां हां
0: सही है। देखिए बात आपने हमने समझा ली, माजरत कर ली आपने,
1: सही किया, हाँ, माजरत किया और अच्छे अंदाज में करने की कोशिश की,
0: सही।
1: तो मुझे उसका मुझे फायदा क्या हुआ पता है? उस अरबी ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, खाली खाली माफ़ कीजिए।

0: तो ये देखिए फायदा होता है, जाहिर बात है आप अपनी जबान में या जो शख्स आपसे मुखातिब है या आप जिससे मुखातिब हो रहे हैं उनको आप उन्हीं की जबान में बात करते हैं, तो ये है और ये कि ह्यूमन नेचर एक्चुअली। आप जबान की हम बात कर रहे हैं जमाल साहब, अगर आप दूसरे को उसके नाम से मुखातिब करेंगे, उसका नाम लेकर उससे मुखातिब होंगे, तो वो भी एक बात अलग होती है। तो यहाँ तो आप लैंग्वेज ही बोल रहे हैं उसकी, आप समझ रहे हैं, मतलब मैं कहूँ जमाल भाई, अब ये चीज़ हमारे बीच में एक मोहब्बत एक खुलूस कायम कर रही है ना, या मैं आपसे खाली तू से बात करूँ या दूसरे इस बिना नाम लिए बात करूँ, तो ये एक इम्पैक्ट है, ये एक चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, हम सभी को सीखनी चाहिए, मुझे सीखनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए।
1: क्या कहते हैं भाई, आपको पता है, सॉरी मेरी कॉल लंबी हो जाएगी, एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आप किसी से मुखातिब है और हमारे और उनके दरमियान कोई ऐसी बात हो रही है जो नाराजगी का सबब बनती है और कोई इंसान थोड़ा सा हाइपर हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो एक चीज जान लीजिए कि आपकी जो खामोशी है वो उसे मजीद गुस्से की तरफ बढ़ाएगी, उसका गुस्सा कम नहीं करेगी।
0: सही सही,
1: ये इंसानी नेचर में है हमारी और
0: बिल्कुल
1: आपकी
0: सही,
1: में
0: बिल्कुल
1: कि अगर हम और आप देखते हैं कि सामने वाला खामोश है बिल्कुल
0: सही
1: भाई, तो हमारे गुस्से में इजाफा होता जाता
0: जी,
1: है
0: कहीं कहीं थोड़ा। जी जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
1: और अगर हम बात कर लेते हैं उससे
0: जी,
1: और उसको ये महसूस जरा सा हो जाए कि सामने वाले ने तो सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि इसके मतलब गुफ्तगु का लहजा भी थोड़ा शीरी है
0: जी,
1: बैठा है, तो वो ना चाहते हुए भी आपको अगल बगल के लोगों को देख
0: दर गुजर कर जाएगा। बिल्कुल सही बहुत प्यारी बात भाई, बहुत जबरदस्त जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, बड़ी अच्छी बातें करने के लिए और दूसरों तक अच्छा पैगाम पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई।
1: सनर भाई आप कहते हैं कि बैकअप करते हैं ना
0: जी,
1: जितने सोए लोग होते हैं
0: जी
1: उनको जगाते हैं
0: जी,
1: तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज तो मुझे यही लगता है राहत इंदौरी का एक शेर है,
0: इरशाद
1: जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि चांद हर छत पर है,
0: आए, आए, आए, आए, आए, आए।
1: और सूरज और हर आंगन में सूरज है, खाब से जागो नींद से जागो तो कुछ खाब
0: दिखाएंगे तुम्हें, आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए।
1: क्या बात, ये जो सुनारे खाब का और
0: ये, हाँ ये खाब दिखाते रहिए, मैं तो कहूंगा ये खाब हम मिलके दिखाते रहे भाई, बहुत ही बढ़िया साहब, जमाल साहब बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना ख्याल रखिए,
1: अहलन
0: वसहलन सर, थैंक यू सो मच, इसी तरह दुआओं में याद रखिए, मोहब्बत से नवाजते रहिए, शुक्रिया बहुत बहुत जमाल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। Alright, ladies and gentlemen, बच्चों बुजुर्गों दोस्तों, और यहाँ पर बातचीत चल रही है आज जबान के हवाले से, आज खासम खास दिन भी है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप, बहुत बार कॉल मिला नहीं, कौन है ये, शुएब भाई हमारे साथ, शुएब भाई अभी लो यार अभी बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, हाउ आर यू, यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग बट वी आर मिसिंग द 130 प्रोग्राम, कहा यहाँ पे मोहम्मद रफीकुल भाई ने, इंशाल्लाह ताला वहां पे भी मुलाकात हो जाएगी जल्दी, कैसी बातें कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कमालुद्दीन शेख मेरा भाई, कमालुद्दीन आसिफ भाई यहाँ पे चाय दिखा के मुझे चिढ़ा रहे हैं और मेरा ख्याल में ब्लैक कॉफी पी रहे हैं भाई, मैं तो घर से निकला तो घर के आगे ट्रैफिक, रोड पे पहुंचा तो वहां ट्रैफिक, ओ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, चारों तरफ ट्रैफिक, कहां पे हो आसिफ भाई, कहां पे है ट्रैफिक, जरा अपडेट करो ना सबको, सर भाई नो प्रीवियस शो कोडिंग प्लीज, सेम कोड टॉक बाय डिफरेंट आरजे इज क्वाइट बोरिंग, योर शो योर वे, अप्रिशिएट योर ओन स्टाइल, मेरा भाई कैसा, किसके जैसा, नाम क्या है, सीबी जैसा, यार नाम तो बताओ सीबी अपना, यार व्हाट इज योर नेम सीबी, यहां पे फोटो तो बड़ा अच्छा लगा रखा है आपने, गाड़ी चला रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हा हा हा हा हा, खामोश कौन है ये जो हा कर रहे हैं, सरवीर भाई आप, क्या बात है मेरा भाई आपकी भी बात ऐसी हो जैर इकबाल, चलो भाई बढ़ते हैं आगे यार, क्या कहते हैं, गाना सुनाऊं क्या या कॉल ले लूं, अरे भाई एक ही गाना चला है, इल्जाम लग जाएगा इल्जाम, हेलो अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, सबह अल खैर,
0: सबह अल नूर, सबह अल नूर, कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, क्या जावेद भाई हमारे साथ जुड़ गए, गलत नाम बताया तो माजरत,
2: لا لا انت بالضبط 100% انت

0: हिस्सा लिया, पूरा दिल मेरे में कहाँ समाएगा।
1: क्या बात है यार जावेद, दिल खुश कर दिया, सुबह बना दिया आपने मेरी यार। आप अभी अभी तशरीफ लाए और हमारे साथ कनेक्ट भी हो गए। मोहब्बत है यार, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इसका और कोई और नाम है ही नहीं एक्चुअली। दिस इज मोहब्बत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: छोटी सी बात क्या, जी जो सवाल किया था इसके अंदर यह है कि मुझे जुबान का हर जगह पर बड़ा फायदा। इससे पहले जो जमाल भाई ने कहा जुबान का, माशाल्लाह मैं पैदा यही हुआ लेकिन मैं अरबिक स्कूल में बिल्कुल नहीं गया।
1: सेम हियर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ।
0: हाँ, लेकिन मुझे इतना अबूर हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके इख्तियार में है कि आप किस तरह वो चीज को अडॉप्ट करते हैं।
1: सही,
0: आपके इख्तियार में लंग
1: है। सही, सही, सही।
0: तो अगर पसे पर्दा, मतलब कोई बंदा मुझे ना देखे और अरबिक में बात करता हूँ तो वो रियलाइज नहीं करेगा कि ये पाकिस्तानी है, वो नहीं करेगा, वो मेरा लहजा है। इंग्लिश का भी मैंने वैसे अडॉप्ट किया हुआ है, फ्रेंच का मैंने वैसे अडॉप्ट किया है, पर्शियन वैसे अडॉप्ट किया हुआ है,
1: क्या कहने,
0: फिलिपिन का भी वैसे अडॉप्ट किया है। क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे जाके ये मेरा शौक भी था, मैं इसको हासिल करूं और इसका मुझे सिर्फ फायदा है।
1: ये एक है ना, तो जबरदस्त बात के शौक था एक्चुअली, और इतना जबरदस्त शौक तो ये तो बात होनी ही थी भाई। तो कम से कम 7 लैंग्वेज तो आप बोल ही रहे हैं जावेद भाई, एटलीस्ट
0: तकरीबन
1: है ना। वाह,
0: तकरीबन
1: वाह।
0: तो उसमें ये है कि एक तो जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर वो कोई और लोग हैं, कोई और मुल्क है, जब आप उनकी जुबान बोलते हैं, एक तो है कदर करना और एक होता है इंतहाई कदर करना कि वो आपको बड़े आपको, मतलब वो ऐसे मतलब प्राउड की नजर से देखते हैं ना कि यार ये बंदा जिससे मुलाकात हो रही है हमारी जुबान में ही बात कर रहा है।
1: यही जो चीज है एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली, इसी के हवाले से आज हम ये मैसेज भी दे रहे हैं और पैगाम भी पहुंचा रहे हैं कि भाई एक दूसरे का ख्याल करें, और उसमें भाषा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, जो जबान है। बहरहाल भाई जावेद भाई, अब मैं यार क्या ही आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने तो हमें लूट लिया ये कह सकते हैं। आपकी मोहब्बत है भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती अपनी सही करिए और जल्दी से आप गर्मी वाले वेदर में अपने आप को जो है ढालने की कोशिश करिए। बहुत बर्फ में घूम आए आप। अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। थैंक यू सो मच जावेद भाई, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट देन, तो भाई क्या कहते हैं अब, एक यार एक गाना यार, थोड़ा सा ब्रेक, पानी तो पी लो भाई लोग। इससे अच्छा क्या हो सकता मॉर्निंग में भाई, सोने नहीं का।

0: यार वाकई भाई मुश्किल है रिहाई आपके प्यार में। यार गाना बना देते हैं विशाल डडलानी भी यार, और फिर आतिफ असलम उस्ताद और अनु मलिक तो नहीं, अनुष्का ऋतु और मिशी।
1: आप सुन रहे हैं

0: वेकअप, जल्दी से वेकअप हो जाइए। और मुझे लगता है अब तो वेकअप हो ही गए होंगे सब ज्यादातर भाई, मगर जो जो अगर अभी अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए उन तमाम लोगों के लिए बता दूं कि आज बात हो रही है भाषा के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि आज खासम खास दिन है, इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे, यानी कि लैंग्वेज का, भाषा का बिल्कुल आसान, साफ और समझाने वाले अंदाज में बात करने का दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इसके हवाले से हम एक दूसरे को अपनी बातें भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। यहां पर एक कॉल, उसके बाद आप लोगों के मैसेज, बढ़ते हैं इनकी जानिब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम रहमतुल्ला। अरे भाई, अरे रईस भाई किधर है, रईस भाई किधर है आप यार,
1: आज यार आज हम आपके प्रोग्राम में ना बोल करना भाई, अभी बहुत बहुत मुश्किल है भाई यार, आप बहुत मुसीबत यार, पहली बार इतना इतना जद्दोजहद करने के बाद
0: ऐसा कहोगे तो ऐसा ना हो कि लोग कॉल करना बंद कर दे। ये मोहब्बत है आप लोगों की, ये आप लोग की मोहब्बत है, मेरी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा बात करें।
1: और इस तरीके से सामने वाले को मतलब घुमाल के ले लेते हैं ना,
0: मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। रईस भाई क्या, रईस भाई कह रहते हैं कि हम एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि फिर कोई बात ही नहीं रहती। रईस भाई कैसे हैं और कैसा शुरू हुआ दिन आपका?
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारे तमाम भाई लोग भी मतलब जुड़े, जिनके हम मुंतजर रहते हैं, जिनके कॉल के, जैसे जमाल साहब हो गए, हमारे जावेद साहब भी आ गए माशाल्लाह, वो भी अपने
0: यार उन्होंने तो कमाल कर दिया, आपके दोस्त और हरदिल अजीज जावेद साहब अभी उतरे ही हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो गए। बताया उन्होंने कि 99 बार उन्होंने ट्राई किया, 100वीं बार उनकी कॉल लग गई।
1: वही हाल मेरा खुद का है, मैंने वेटिंग करके करके मैं अपना गाड़ी पंपिंग करके मैंने 70 बार, फिर भी मैं मतलब गाने के उसमें मैं अपने आप को ब्रेक लगा के रोक के
0: मैं रोकूंगा रईस भाई। और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई हम लोग, जाहिर बात है सुबह के औकात ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा रश में होते हैं, तेजी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, बट फिर भी बहुत ज्यादा ख्याल से हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ी चलाते में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
1: हम यहीं पे लोकल उसमें मतलब है, हम लॉन्ग रोड में होते हैं, तो हम बिल्कुल कल हम पालो में हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए, बहुत से हमारे दोस्त बैठे हुए थे गाड़ी में। अच्छा। बोलने लगे, लगाओ, मैं बोला नहीं, गाड़ी चलाने के टाइम कॉल नहीं लगाऊंगा।
0: वाह, ये ताली ताली इसी बात पे यार, खासम खास रईस भाई के लिए
1: जहन का मतलब ये हो जाता मुंतशिर होके, और सामने वाला एक गलती की वजह से कितने लोगों के ऊपर,
0: हाँ, खुदा ना खास्ता। तो हंसी में कहते हैं ना कि खसी नहीं होनी चाहिए बल्कि खसी नहीं होनी चाहिए, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी सुबह को बहुत अच्छा बनाए और पूरे ही दिन को इंशाल्लाह ताला खूबसूरत बना दे अल्लाह ताला, यही हमारी दुआ है। तो रईस भाई क्या कहते हैं, खूब सारी भाषाएं जानते हैं, लैंग्वेजेस जानते हैं रईस भाई?
1: तो यार शायद है कि मैं आगे निकल जाऊं और लोगों से भी।
0: तो भाई अभी तक का टॉप स्कोर है जावेद भाई का, इससे पहले जमाल भाई थे, जमाल भाई से पहले एक और थे शायद कोई, रईस भाई, खादिम भाई, 5, 6, 7, 9, 7 तक पहुंची कहानी शायद जावेद भाई की। तो आप क्या कहते हैं, 8
1: तकरीबन

0: तकरीबन देखो, एक तो समझ लो उर्दू अपनी हो गई, हिंदी मतलब ये सब हो गया, और उसके बाद में आजमगढ़ का लैंग्वेज, ये तो भाई अब हम लोग यूपी के हैं तो समझ लो कि ये जो आपका सहारनपुर के साइड का, ये सब का तो मतलब समझना और बोलना भी कोई इतना बड़ी बात नहीं है, तो उसको एक ही, मैं उसको अलग नहीं करते हैं, हम एक साथ में रखते हैं। नेपाली हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, अरबी हो गया, इंग्लिश हो गया,
1: ले भाई ये सब दस हो गया।
0: बहुत बहुत लैंग्वेज से मतलब, अब पंजाबी लोग के साथ माशाल्लाह लग जाता हूँ ना, तो पंजाबी लोग भी माशाल्लाह खुश हो जाते हैं बात करने के टाइम पे।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। पर्सनैलिटी हो तो ऐसी हो यार कि सबको आप अपनी बात समझा सकें और अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और उनकी बात भी समझ सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला क्या कह रहा है हम ये समझें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो एहसास हैं, वो जज्बात हैं, वो जो कनेक्शन है ना, वो जबान से ही सबसे ज्यादा अच्छा पैदा होता है। एक्चुअली मेरा ये मानना है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। सही कह रहा हूँ?
0: और अरबी के ऊपर मैं खुद जब यहाँ पे, क्योंकि मैं सऊदी में कुछ अरसा में गुजर, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी की अपनी पढ़ाई भी है माशाल्लाह, अरबी जामिया से ही अपनी तालीम जो भी है वहीं से की है
1: माशाल्लाह।
0: तो उसके बाद तो जब अरब में, सऊदी अरब में गए तो माशाल्लाह उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जल्दी पकड़ लिए, और उसका फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ तक कि मेरी गलती से एक फाइन भी पड़ा मेरे ऊपर यहाँ पे कतर में।
1: अच्छा।
0: और वो भी लंबी फाइन, 3,000 का फाइन। तो लोगों ने कहा ओवरटेक का भाई, हाईवे ट्रक को ओवरटेक करना बहुत बड़ा क्रिटिकल, अभी तो रोड बन गए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से।
1: कहाँ, किचन में है क्या?
0: थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त कर लीजिए।
1: ये तो बेलन रखने की आवाजें आ रही हैं, बर्तन खनक रहे हैं क्या? अब नाश्ता बदराज हुआ, इस क्या बना दिया?
0: तो असल में
1: हाँ यार कमाल कर दिया यार।
0: चलो, थोड़ा सा शांति मिला होगा आपको गाड़ी
1: ओके,
0: तो असल में मसला क्या हुआ, तो मुझे फाइन पड़ा, लेकिन अब बहुत से लोग बोले कि उससे बात कर लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके, अब जब फाइन तो कट गया, अब सारे लोगों ने कहा कि भाई बिना कैप्टन जो सबसे बड़े मतलब होते हैं, वही लोग इसको कैंसिल कर सकते, दूसरे के हाथ बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन के पास मतलब जाके, मतलब कुछ जो सूडानी मतलब पुलिस वाले थे उन्होंने मदद किया।
1: मैं समझ गया आपकी बात पूरी तरीके से, और आपने आप अपनी बात समझाने में कामयाब रहे एक्चुअली, कि आपकी गलती नहीं थी उसके अंदर। तो जाहिर बात है जब हम अपनी बात समझा लेते हैं तो उसका हमें फायदा होता है, ऐसे ही कुछ है।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फाइन भी मैंने समझ लो बात करके, और उन्होंने मेरे जबान को मतलब बात को समझा
1: आपकी बात को, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या
0: ये सब फायदे होते हैं मेरे भाई,
1: ये सब फायदे होते
0: हैं, बहुत बहुत बड़े। अब महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रह चुका था ऑलरेडी मैं, तो महाराष्ट्र में रहने के बाद में जब वहाँ के लोगों से, तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है,
1: आप
0: जहाँ पे रहते हैं जिस मतलब, और मेरा आदत भी है कि जिस माहौल में मैं रहता हूँ ना, तकरीबन वहाँ का जबान सबसे पहले सीखने की कोशिश करता हूँ कि उससे क्या है ना, कि सामने वाले को वहाँ के लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है,
1: ये बहुत बड़ी मतलब ये होता है,
0: तो वो लोग भी आपके मदद के लिए खड़े हो जाते हैं फौरी तौर पे। हाँ
1: सही,
0: बहुत बहुत फायदेमंद चीज होती है मेरे भाई। तो
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। और चलिए भाई, अब ये है कि आगाज कर देते हैं, रईस भाई की कल भी आमद हुई थी तो हमने अपने 3 का दम का आगाज कर दिया था, आज फिर रईस भाई के साथ ही हम 3 के दम का आगाज भी करते हैं। तो चलिए भाई रेडी हो जाइए, आपसे 3 सवाल पूछूंगा जिसमें 2 बहुत आसान होंगे और 1 उससे भी ज्यादा आसान होगा, है ना? पता है, ठीक है, रेडी है?
0: आप तो आखिर में ही फंसाते हो, चलो कोशिश करते हैं। कल तो माशाल्लाह फंसा नहीं था दोस्त,
1: हाँ कल तो गया था। कल तो निकल गए थे, तो चलिए भाई अभी फिर कोशिश करते हैं, ठीक है, रेडी है?
0: जी बारकल्ला इंशाल्लाह।
1: चलिए साहब, पहला सवाल आपकी तरफ आता हुआ ये कि आप क्या कहते हैं कि किताब को पढ़ा जाता है या फिर देखा जाता है?
0: पढ़ा जाता है,
1: देखा नहीं जाता।
0: देखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, जी
1: बार दोनों चीजें।

0: चाहिए। अच्छा, पैरों से चलते हैं या लिखते हैं?
1: चलते हैं जनाब, चलते।
0: अरे यार, लोग लिखते भी हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ अभी। पैरों से तो लिखते भी हैं। दोनों चीजें करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, दोनों चीजें कर लेते हैं जो करने वाले हैं। चलिए, अब तीसरा सवाल आपके लिए। ऐसी क्या चीज है जिसको काटते भी हैं, पीसते भी हैं, बांटते भी हैं, मगर खाते नहीं है?
1: खाते नहीं है, काटते भी हैं। फिर से रिपीट करें।
0: ऐसी क्या चीज है जिसे हम काटते भी हैं, पीसते भी हैं और फिर बांटते भी हैं, मगर उसको खाते नहीं है?
1: यार, जहन से मतलब।
0: अच्छा, और इंटरनेट नहीं चेक करना है। तमाम लिसनर से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग नेट मत चेक करिएगा, वरना भाई मजा ही नहीं है फिर, गेम का मजा ही अधूरा है।
1: वो तो धड़ल्ले से जवाब दे दिए तो फिर मजा नहीं रहेगा।
0: तो चलिए भाई, बताइए ऐसी क्या चीज है रईस भाई।
1: में
0: मुझे घड़ी लगानी पड़ेगी लग रहा है। तो आज मैं रईस भाई से जीता।
1: चलो हमारा भाई, एक दिन हम जीते, आप एक दिन आप। ये तो
0: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रईस भाई। एज यूजुअल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपके दिन को खूबसूरत बनाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई ख्वातीन और हजरात, अब वक्त हो चला है कि हमने अपने गेम का भी आगाज कर दिया है और आपने सुनी लिया है कि बहुत आसान से तीन सवाल हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। 443-443-77 हमारा नंबर है और वहीं आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे 666-22-107। यहाँ पर कुछ नंबर हैं, कुछ जिनको मैं कॉल भी करूँगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, बस यूं गया और यूं वापस आया। कहीं भी जाइएगा, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: Time check. 8:06 and for now.
1: Qatar transport and local traffic updates.
2: तो भाई बिल्कुल यहाँ पर कुछ अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और आइए शेयर कर ही देता हूँ। जनाब ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से यहाँ पर हम बात करेंगे और जो उसकी लिस्ट है रिक्वायरमेंट्स की, कंडीशंस की, फीस की, उसके हवाले से कुछ आपको बता देता हूँ जल्दी से और उसके बाद ट्रैफिक जो इस वक्त रोड पर है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। कदर में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए या रिन्यू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस और फीस की तफसीलात जो हैं वो जारी की हैं और इसके मुताबिक एप्लीकेंट्स को प्रूफ आइडेंटिटी, पर्सनल फोटोग्राफ, मेडिकल एग्जामिनेशन और आई टेस्ट सबमिट करना होगा। वो तमाम लोग जिनके पास डीएल नहीं है और अभी सोच रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनके लिए आसानी भी करे, बहुत ख्याल से

आपको ये काम भी करना है, और ये तमाम चीजें जो मैं बता रहा हूं इसका ख्याल करना है। वो क्या क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पर्सनल फोटोग्राफ, मेडिकल एग्जामिनेशन, आई टेस्ट सबमिट करना होगा, और रेसिडेंट्स जो हैं उनके लिए वैलिड रेसिडेंसी परमिट भी जरूरी है, यानी हमारी QID। मोटरसाइकिल और लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एज 18 साल है, जबकि हैवी व्हीकल, मशीनरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ये याद रखने की जरूरत है। अच्छा साहब, लाइसेंस फीस के हवाले से बात करें तो इसके मुताबिक लाइट व्हीकल लाइसेंस कतरीज के लिए 500 कतरी रियाल है, और जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल के लिए है। नॉन कतरीज यानी जो खारजी हैं, जो एक्सपेक्ट्स हैं, हम सब के लिए 250 कतरी रियाल है, और जिसकी मुद्दत है 5 साल, 5 ईयर्स। मोटरसाइकिल लाइसेंस कतरीज के लिए 300 कतरी रियाल है, और नॉन कतरीज के लिए 150 कतरी रियाल है। तो ये तो कुछ इनके जो पैसे हैं वो मैंने बताए। हैवी व्हीकल की बात करें और मशीनरी लाइसेंस की फीस की बात करें तो कतरीज के लिए 600 कतरी रियाल है, और नॉन कतरीज के लिए 300 कतरी रियाल रकम जो है वो रखी गई है। अच्छा साहब, एप्लीकेंट्स को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी जरूरी होगा। ड्राइविंग टेस्ट में ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट से मुतालिक हिस्सा भी शामिल है। MoI ने 9 ऑथराइज्ड ड्राइविंग स्कूल्स की भी लिस्ट जारी की है, जिनमें रयान है, गल्फ है, दोहा है, करवा है, और भी दल्ला वगैरह भी शामिल हैं। तो ये जो ऑथराइज्ड हैं MoI के साथ, सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला के साथ, MoI ने ये भी दहानी करवाई है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, और इस पर कैद या भारी जुर्माना भी लगता है। तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो ये कुछ जरूरी अपडेट आप लोगों के लिए, जो भी इंशाल्लाह ताला ट्राई करने वाले हैं उन सब के लिए मैं कहूंगा ऑल द बेस्ट। चलिए जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर रोड के हवाले से। मुझे जहाँ तक दिख रहा है सीनिंग रोड ऑल क्लियर, बढ़ते हैं आगे असद वगैरह की तरफ भी। नॉर्मल ट्रैफिक इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि जाहिर बात है पीक आवर्स जो थे छोड़ने वाले, बच्चों के स्कूल वाले, बस वाले, वो पूरे हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई अपडेट दिखती है और बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी करके बता सकते हैं। अगर आपको कहीं ट्रैफिक दिखता है या कोई और भी अपडेट देनी है आपको ट्रैफिक के हवाले से, तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सनहिया की तरफ भी मैं देख रहा हूं कि नॉर्मल ट्रैफिक है। आगे इस तरफ अगर आ जाते हैं वेस्ट बे, इट्स ऑल गुड। कॉर्निश पे भी मुझे नॉर्मल ही दिख रहा है, बाकी आप लोग की अपडेट का इंतजार भी रहेगा। तो ये कुछ ट्रैफिक अपडेट। तो जनाब, जो इंटरनेशनल दिन है आज, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अब थोड़ी बातचीत और अपडेट अपनी तरफ से कर दूं मैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी है आज, और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आफत और तबाही कभी भी आ सकती है, इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। हर घर और कम्युनिटी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। अवेयरनेस और प्लानिंग से जानो माल का तहफ्फुज बेहतर बनाया जा सकता है, और आज का पैगाम यही है कि तैयारी बेहतरीन हिफाजत साबित होती है। इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर है, जैसे कि मैंने बताया था, नाकामी जिंदगी का हिस्सा है और हर शख्स कभी ना कभी उसका सामना करता है। भाई, हर फेलियर जो है, हर नाकामी जो है, हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर ही जाती है, ये बात हम सब जानते हैं, और इसको बेहतर बनने में हमें मददगार भी साबित होती है। हमें बेहतर बनाने के लिए जब भी नाकाम होते हैं तो उससे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपने आप को एक और मौका दें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साहब, कामयाब लोग भी कई मर्तबा नाकाम हुए होते हैं, ये हम सब देखते हैं। जितने भी आज बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं या बड़े बड़े लोग आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाम हुए थे। भाई, ऐसी बात नहीं है, वो भी फेल हुए थे, उनको भी परेशानी हुई थी, उनको भी बिजनेस में लॉस हुआ था, वो भी मैथ्स में, साइंस में एक आध बार फेल हुए थे, ऐसा नहीं है। उनको भी झटका लगा था, उनका भी कोई अजीज इस दुनिया से चला गया था। तो ये सारी चीजें होती हैं जो इंसान को और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं और उसको आगे बढ़ने में मददगार साबित होती हैं। तो साहब, गलतियों से सीखना ही असल तरक्की है, और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि फेलियर एंड नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। और फिर खासम खास दिन जिसपे आज हमने खूब सारी बातें करी, आप लोगों के खूब सारे अच्छे अच्छे जवाब आए और रिस्पॉन्स आए। आज का दिन इंटरनेशनल प्लेन लैंग्वेज डे।

0: जो है उसके हवाले से हमने बात करी, साफ सीधी और आसान जबान के इस्तेमाल की अहमियत जो ये आज का दिन है उजागर करता है। जब बात आसान अल्फाज में कही जाए तो हर शख्स उसे बेहतर समझ सकता है और समझा भी सकता है, ये हम सब जानते हैं। मुश्किल और पेचीदा जबान जो है भाई अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है, ये मेरा भी मानना है। मैं भी खूब गाड़ी गाड़ी चीज़ें बोल सकता हूँ, मतलब लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट जहाँ रिक्वायर हो वहाँ आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बाकी उसको किताब और कॉपी तक ही अगर रहने दें तो अच्छा है। हाँ, वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, अपनी महारत उसमें ज़रूर हासिल करें, मैं ये नहीं कह रहा, बट ज़रूरी है कि जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ तो मेरे बोल के फायदा क्या है मेरे भाई, इसी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन से गलत फहमियाँ कम होती हैं और पैगाम आसानी से पहुँचता है, जैसा कि मैंने बताया। और आज का पैगाम यही है कि आसान लिखिए, आसान बोलिए और बेहतर तौर पर समझाइए दूसरे को हमेशा। ऑलराइट देन, अब बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। और जैसे कि मैंने बताया कि गेम वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे, और वहीं आप अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजेस, उसके बाद हम गाने की जानिब बढ़ेंगे। क्या कहते हैं, कहते हैं अब्दुल रऊ साहब, थर्ड सुरमा। अच्छा ओके, ये सवाल जो मैंने किया था रईस भाई से उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, अब्दुल रऊ साहब ये इसका जवाब नहीं है। इस्तेमाल तो हम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं ना, तो काफ़ी करीब हैं आप, काफ़ी करीब हैं, बट आप अगर चाहें तो हम गेम भी खेल सकते हैं। क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिशाम है हमारे साथ, कैसे हैं हिशाम भाई, खैरियत से हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, हमारा कॉल तो रिसीव करो शेख अज़र, केबल ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला आसानी करे। तो केबल ब्रिज अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा है, तो भाई अपना ख्याल भी रखें, और अगर आप उस तरफ से निकलना चाह रहे थे या जा रहे थे तो दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट आई है मुझे शेख अज़र साहब की, और ये है भाई अभी से तकरीबन आधा घंटा पहले की, तो इतनी देर में मैंने इनका मैसेज लिया है। बहरहाल तो अगर आप लोग उस तरफ से गुजर रहे हैं तो इस बात का ख्याल कर लीजिए कि दूसरा रूट ले लें। बहरहाल एक चीज़ और भी है इसके अंदर जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग घरों से निकल रहे होते हैं तो अब इतनी आसानी हमारे पास तो ये मैप वगैरह के सिलसिले से या GPS के सिलसिले से, तो क्यों ना हम एक बार देख लिया करें भाई घर से निकलने से पहले, क्या कहते हैं। उसमें तो हमें आ जाता है ना अगर रेड मार्किंग्स वगैरह जो उसके अंदर होती हैं GPS में, जब आप देखते हैं मैप वगैरह का, रूट वगैरह का। एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनका हाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सरवर भाई।
0: शेख कैफल हाल, कुल तमाम, कोई से
1: आज ये मेरी किस्मत कहाँ से खुल गई भाई।
0: कैसे हैं साहब, खैरियत से हैं अब्दुल रऊ साहब।
1: एक काम करो, पूरे खानदान वाले का नाम बोल दो आप।
0: यार अज़र भाई, आपको आपको सताने में सुबह सुबह मजा आता, मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं, क्या करूं।
1: बेशक आप हमारे बड़े भाई, ये बेशक
0: यार मैं आपको बताऊं, आज मैं आपकी बात काट रहा हूं, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज खासम खास दिन, हमने बात करी, पता नहीं आप अभी तक हमसे कनेक्ट हो पाए थे नहीं, आज हमने भाषा के हवाले से बहुत कुछ बात करी है अज़र भाई, और जब हैदराबादियों की उसमें लैंग्वेज ना शामिल है तो भाई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता भाई, प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। कैसे हैं,
1: वाली फायदा ना रहता आपको, मैं लगभग 7:15 से आपको मैं सुन रहा
0: हूं मेरा भाई। कैसा अज़र भाई पे पैसे ही पैसा, और क्या बताओ दो भाई,
1: अल्लाह आमीन करे। उसके बाद जमाल भाई की जो कॉल थी ना, इतनी लंबी थी, मैं दिल में बोल रहा रे राज भाई क्या टिकट है भाई।
0: ओह माय गॉड, नहीं बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने की मिली, सबसे समझने के लिए मिली।
1: बिल्कुल,
0: आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं अज़र भाई।
1: सरवर भाई, ये लोग आपको फोन करके जो इतनी इतनी देर बात करते हैं ना, ये लोगों की मोहब्बत है, लोग मोहब्बत जाहिर करते हैं आप लोगों से।
0: हाँ नहीं भाई, ये तो है, हम इस बात को समझते हैं।
1: क्यों मान लो, क्योंकि इतना वक्त निकाल के आप लोग, तो खैर आपका तो एक जॉब है आप कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो आपके जितने भी लिसनर्स, फॉलोअर, जो भी फैंस है ना,

0: ये जो वक्त निकाल के बात कर रहा ना, ये दिल से मोहब्बत है। और जितनी भी बात आप लोग से बात करते हैं ना, दिल भरता ही नहीं, ये हकीकत बात
1: है। वी अंडरस्टैंड दिस और हम इस बात को बहुत सराहते हैं, और ये यकीन जानिए ये मोहब्बतें ही हैं आप लोगों की जो हमारे ऊपर बरसती रहती हैं, और बड़ा मजा आता है। और इसीलिए इसी सिलसिले को कायम धायम रखने के लिए हम कुछ अलग भी करते हैं, यही कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बातचीत हो, ज्यादा से ज्यादा कतर के हवाले से आपको बता सकें, कतर की जितनी भी सकाफत है, जो कल्चर है, जो कानून है, वो हम सब अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके अलावा जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, मतलब दुनियावी प्रोग्राम जो होते हैं, दीनी प्रोग्राम जो होते हैं, बस हम एक दूसरे को अच्छे से अच्छा बताएं, अच्छे अच्छा सीखें, अच्छे से अच्छा करें, यही हमारी नियत होती है अदर भाई इन सारी चीजों के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं, अल्लाह ताला ने हम लोगों को कामयाब किया हुआ है, हमें और आपको सबको मिला के। तो बस इसी तरीके से दिन भी गुजर जाता है और बात जो है वो बन जाती है। तो कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं अदर भाई?
0: बेशक आपकी बात पे सहमत है, तो यही वजह है जो आप लोगों को सुन के और आप लोगों से बात करने की वजह की है, कुछ आप लोग से सीखने हमारे को मिलता है, कुछ हमारे से सीखने आप
1: बिल्कुल
0: लोग
1: सही
0: मिलता।
1: बिल्कुल
0: यही
1: सही,
0: एक दो एक बिल्कुल बहुत सही है,
1: बिल्कुल सही है। ये टू वे ट्रैफिक है भाई, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही जा रही हैं, और दोनों तरफ से हम एक दूसरे को सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो और दूसरी लैंग्वेज कोई जानते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमारी भाषा है उसके अलावा अदर भाई?
0: जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो फंसी उर्दू हमारी हैदराबाद,
1: ओके
0: जी, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद अरबिक है, और उसके बाद एक फे की लैंग्वेज है।
1: कौन सी?
0: फे वाली बात।
1: यार वो तो बहुत ही खतरनाक है यार, वो तो बहुत ही खतरनाक है, मैं समझ गया।
0: हाँ लेकिन फे की बात
1: यार, ये मेरे घर में, असल में मेरे घर में भी होता है ये, और आपस में जो लेडीज है ना वो ज्यादा बात करती हैं ताकि मुझ तक ना पहुंचे। और यकीन जानिए मेरे ख्याल में 20 साल से मैं इसको पकड़ने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे कामयाबी नहीं मिली। और ये उसमें वो लेडीज जो है घर की, वो तमाम कामयाब है, आपस में एक दूसरे को बात करके समझा लेती है जब कभी मैं बैठा होता हूँ। मगर मैं ये ताज्जुब कर रहा हूँ कि आपको भी आती है यार, ये कमाल है। मुझे कोई मर्द जो है वो पहली बार दिखा है फेकी बोली बोलने और समझने वाला। आपने कहा
0: मर्द भी किसी से कम नहीं है, लेकिन क्या है कभी कभी छुपा के रखने ना पड़ता बहुत के हिसाब से।
1: ओ यस, कि मुझे भी आती है ताकि वो हमारे सामने बोले और हम समझ जाएं कि बात क्या हो रही है। वेरी गुड यार।
0: लेकिन ये हमारे जो सिस्टर इन लॉ है, हाफिज कुरान है, तो अच्छा, मैं उनके पास से
1: तो यार मुझे भी सिखा दो यार, मुझे थोड़ी कोचिंग क्लासिंग दे दो यार इसकी यार।
0: बहुत इजी है समझना है, बस बहुत इजी है। अच्छा? आप यकीन मानिए मैं तो एक से दो तीनों को ट्राई किया
1: और
0: उसके बाद जो है ना माफाई बोपा लाफा बफात कपर को बफात में से आपात दिखा दी।
1: क्या बोला ये बोला क्या
0: बोला? बहुत आसान है। हाँ? बात करते रहो आ जाती यही बात।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, ये देखिए एक नई चीज निकल के आई भाई, कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, नई सीखने को मिल ही जाता है। मगर अदर भाई मैं आपसे क्लास लेने वाला हूँ इसकी एकदम अलग से, ठीक है?
0: बिल्कुल, लेकिन जब मैं सिस्टर इन लॉ से जब मैं कभी बात करता हूँ तो उन्होंने बोलते तुम ऐसा कैसा सीख लिया जी, तुम मैं कभी कभी मैं भूल जाती मगर तुम अच्छा सीख लिए बोलते। वाला वॉइस तो है एक अलग रहता हूँ, मसला जॉइंट अलग रहता
1: हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चलिए भाई अब हमारा गेम टाइम भी है अदर भाई, तो मैं आपसे तीन सवाल पूछने वाला हूँ, तीनों के आपने जवाब देने। गेम भी है, गेम भी है, गेम कर देंगे अपन मिलके दोनों, बहुत आसान है। तीन सवाल मैं पूछूंगा, तीनों का आपके जवाब देने हैं, बहुत आसान से सवाल है तीन, एंड दैट्स इट। ठीक है,
0: कोशिश करने पे
1: अभी तक कोई जीता नहीं है, मैं आपको बताऊं आज कल तो दो तीन हमारे पास चैंपियन थे, आज अभी तक कोई नहीं जीता है। तो चलिए साहब पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, ये बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं?
0: ऑफिस।
1: बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते
0: नहीं
1: हैं?
0: मतलब ये इसका सीधा जवाब देना है, सीधा जवाब देना है,
1: सीधा सीधा सीधा जवाब देना है, इसमें कहीं वो कोई मिलावट नहीं। स्कूल जाते हैं। शर्ट को पहनते हैं या खाते हैं?
0: पहनते हैं।
1: वेरी गुड,
0: वाला हार्ड है, मालूम है। बोलिए बोलिए भाई।
1: ओके, इससे पहले दूसरा पूछा था मगर एक नया सवाल छोड़ देता हूँ, शायद लोगों को और ज्यादा समझ में आने लगे। एक टेबल पर पांच मक्खियां बैठी हैं, आपने एक को मार दिया, बताइए कितनी बची?
0: एक टेबल पे पांच मक्खियां बैठे हुए,
1: हाँ हाँ,
0: एक को मार दिए,
1: हाँ कितनी बची?

0: हर हाल बिल्कुल में सुपरमैन आना भाई अल्हम्दुलिल्लाह
1: सही बिल्कुल सही। एक को मार दिया तो जाहिर बात है यार सारी उड़ ही जाएंगी, वो कहां फिर बैठी रह जाएंगी हमारे इंतजार में। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अदर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: शुक्रिया आपका हमारे को कॉल।
1: अहलन व सहलन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहलन व सहलन, कभी भी एनी टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
0: अल्लाह सलामत रखे, अस्सलाम वालेकुम,
1: आमीन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके तो यार कॉल ले ही लेता हूँ मैं, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोग बिजी हो और कॉल बात ना हो पाए। यहाँ पर चैंपियन कुछ हमारे साथ जुड़ रहा है। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अंकल, और बताओ कबीर कैसे खैरियत?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमील भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमील नहीं हूँ साहब,
1: मैं कबीर नहीं हूँ साहब। तो तीसरा जवाब, तीसरा सवाल आप
2: मैं अभी उनकी खींच रहे थे ना, तो मैं सबको मैं आपको खींचेंगे बोल के आप मेरी चीज को बताओगे।
1: कैसे हैं भाई और क्या नाम है आपका, क्या नाम है भाईजान का?
2: जी मेरा नाम कार्लो जोस लोस वासन दोस लोइस मेंडोसा।
1: अजी हाँ वाकई, फिर एक बार फिर बताइए। चापलोस
2: कार्लो जोस लोस वासन दोस लोइस मेंडोसा।
1: चार्लोस दोस लोस वसई, इससे आगे नहीं हो पा।
2: कार्लो जोस लोस वासन दोस लोइस मेंडोसा।
1: क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा। मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ CGPT। मेरा भाई CGPT कैसा है? यार बता दो यार, नाम बता दो अपना, वरना तो ये खेल ही बन जाएगा। नाम का क्या नाम है भाई का मेरे?
2: भाई एक रिपीट करो ना भाई, आप इतने इंटेलिजेंट
1: है। अरे यार
2: ये खतर को चला रहे हैं आप, पूरा खतर को हाथ पे घुमा रहे हैं आप।
1: नहीं तो किसी चीज के लिए टाइम चाहिए, आप मुझे लिख के भेज दीजिए, आप देखिए आपसे अच्छा बोलूंगा इंशाल्लाह ताला। या
2: ये लिखे कोई भी नर्सरी का बच्चा तो रिपीट कर ले।
1: अरे तो सीखना तो पड़ेगा यार, सीखना तो पड़ेगा मेरे भाई। चार्लोस लोइस मेंडोसा, चार्लोस डोपलोस लोइस मेंडोसा। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा अब तो बता दिया, आई इंसिस्ट प्लीज अपना असली नाम बता दीजिए मुझे।
2: मेरा नाम अहमद है साहब, शेख अहमद है।
1: शेख अहमद फ्रॉम हैदराबाद राइट?
2: अरे वाह सही पहचान, अभी अच्छा सवाल कराना इस वजह से पहचान लिया।
1: अरे मैं तो बहुत अच्छी तरह पहचान जाता हूँ अपनों को यार। हैदराबाद में किधर से हैं आप?
2: उल सिटी का हूँ भाई, पानी हवेली जुरेश्वर हॉस्पिटल, जिसका हैदराबाद है ना उसके घर के सामने मेरा घर है।
1: क्या बात है यार, हैदराबाद वाले मेरे भाई।
2: बताए किसका है हैदराबाद?
1: जी
2: आपको बताए किसका है हैदराबाद?
1: निजाम साहब
2: जी
1: वहीं पे हैं आप, ओल्ड सिटी में। अरे अपन भी क्या समझ रहे हैं भाई, अपन जानुमा बेगम पेट में अपने रिश्तेदार रहते हो भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से ओके यार बहुत ही बढ़िया भाई। भाईजान चलिए तो गेम खेल लेते हैं फिर, रेडी हैं? ऑलराइट देन बढ़ते हैं आगे। और कौन सा सवाल पूछूं, चलिए वही वाला रिपीट कर लेते हैं। तीन सवाल हैं, ओके आपने तीनों का जवाब देना है और तीनों बहुत आसान से हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? ऑलराइट, पेन से लिखते हैं या कपड़े धोते हैं?
2: भाई सवाल जवाब सीधा देना है ना?
1: सीधा जवाब देना, नहीं नहीं सीधा जवाब देना।
2: अच्छा बताइए, पेन
1: पेन से लिखते हैं या कपड़े धोते हैं?
2: लिखते हैं भाई।
1: पक्की बात है?
2: अब लाजिम बात है ना भाई।
1: ओके
2: ना, अभी तो मैं मेरा नाम बोलती कि आपको लोगों को मैसेज करो, मैं लिख लेके रिपीट करता हूं बोलेंगे।
1: अच्छा सूरज दिन में होता है या रात में दिखता है?
2: अभी तो देखो सुबह के 8:26
1: लाजिम सूरज आया हुआ है। चलिए अब ये बताइए वो कौन सी चीज है जिसको काटते भी हैं, पीसते भी हैं और बांटते भी हैं लेकिन खाते नहीं है? बहुत ही आसान है, ले आखिर के 3 सेकंड भी गए। अच्छा भाई इसका जवाब जो है मैं लिसनर से ही जानूंगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो फायदा नहीं है, तो कम से कम ये जवाब जब तक इसका नहीं मिल रहा ये सवाल भी जिंदा है, ठीक है?

0: तो इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको मिल ही जाएगा। इस हफ्ते हम तीन का दमी खेलेंगे, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह फिर दूसरा गेम खेलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी बातें करी आपने और बड़े ही अच्छे शख्स भी हैं आप, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑलराइट देन, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, एक गाना सुनते हैं।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट.
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन.
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM.
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
5: स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
6: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है. उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन.

0: हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां उनकी मेहनत उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: एफएम 107 दिल से देसी

0: अरे भाई भानों की तो जरूरत ही नहीं है, वैसे ही दिल ले गए आप। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मूवी आई थी 10, तो मैंने 3C में देखी थी, लाजपत नगर दिल्ली, नया ना खुला था जब ये थिएटर वहां पर। विशाल शेखर, के शान एंड तुलसी कुमारी।
1: आप सुन रहे हैं

0: हेलो हेलो वेलकम बैक एलन व फेलन, खुश आमदीद, स्वागत है और बिल्कुल सरवर मिर्जा आपके साथ। तो आपको कहता हुआ वेकअप भाई, वेकअप। मेरे ख्याल में तो अब सभी के सभी वेकअप हो चुके हैं, सभी लोग उठ चुके हैं। आइए भाई, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर कनेक्टेड हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर आप लोगों के कुछ मैसेजेस शामिल करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सरवर भाई?
0: अहलन व सहलन। हम लोग

0: मैं और मेरे सारे साथी बिल्कुल ठीक है। कौन है हमारे साथ?
1: आसिफ अंसारी।
0: ओह आसिफ भाई, हाउ आर यू टुडे?
1: गुड
0: और वेरी गुड?
2: वेरी गुड।
0: ये बात है,
2: आप एक्चुअल क्या है ना, आपका आपका जो है एनर्जी, आप एनर्जी से भरे हुए आते हैं ना सुबह सवेरे सवेरे। क्या लेते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में?
0: यार आप लोगों का साथ लेता हूँ यार। ओ क्या लाइन बोल दी मैंने,
2: क्या बात बोल दी।
0: कैसे हैं आसिफ भाई? खैरियत से हैं? और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सुबह हुई होगी इंशाल्लाह, और आगे भी सब अच्छा रहे भाई। मेरा भाई
2: सरवर मिर्ज़ा के साथ अच्छी सुबह होती है।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे आसिफ भाई, रे रे रे आसिफ भाई, आज हमने खूब सारी बातें करी भाषा के हवाले से। अब वो तो वक्त निकल गया, अब हम गेम खेल रहे हैं, तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। और बहुत ही आसान से तीन सवाल पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपने उनका जवाब देना है। दैट्स इट,
2: सीधे सीधे जवाब देने हैं, उल्टे उल्टे
0: बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल सीधे और साधे, ठीक है? चलिए साहब, तो मैं बढ़ जाता हूं इसकी तरफ। ओके, पहला सवाल आपकी तरफ आता हुआ ये, क्या हम एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं?
1: क्या हम एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
0: चलिए अच्छा हुआ आपने इजाजत दी, मैं तो जरा सा शायद मना कर देंगे। दूसरा सवाल ये, क्या पानी को पीते हैं?
1: पानी को पीते भी है, धोते भी है,
0: चलिए
1: नहाते भी है,
0: ठीक है। धोते पहले याद आया आपको? ओके, तीसरा सवाल आपकी तरफ आता हुआ, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा साफ करो उतनी ही काली होती चली जाती है?
1: कोयला?
0: नो,
1: जितनी ज्यादा साफ करो उतनी काली। इतना दिमाग तो सिर्फ पीएचडी करना होगा।
0: दिमाग का खेल ही नहीं था इसके अंदर, तो
1: दिल का खेल था
0: इसके अंदर। क्या बात है, दिल जितना साफ करो उतना ही काला होता चला जाता है, ऐसा है क्या आसिफ भाई?
1: ऐसा नहीं है।
0: ओहो आसिफ भाई बहुत ही आसान है यार, वो कौन सी चीज है जिसको जितना साफ करो उतनी ही काली होती चली जाती है?
1: कोयला है ना, उसको साफ करते रहो काला होता चला जाता है।
0: ले भाई मुझे भी खांसी लगा दी आपने, मुझे लग रहा है मैं भी खांसने लगा आपकी खांसी से। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप पहुंच गए ऑफिस अभी? काम शुरू हो गया? ड्यूटी अभी नहीं?
1: अभी नहीं, अभी तो सो के उठाऊंगा।
0: ओहो हो हो, 10 बजे की शिफ्ट है लग रहा है,
1: 10-11
0: या बस जाना है। और है चलो आज ये, आज ये कर देना, रजिस्टर ले आओ, साइन कर दो।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
0: अच्छा
1: जाना है। जाने के बाद जब कॉल आएगा उसके बाद ही जाना है,
0: उसके बाद ही
1: परचेजिंग करनी है।
0: वाह,
1: क्योंकि बॉस के यहाँ से परचेजिंग के लिए मैं हूँ ना।
0: ओके,
1: यहाँ से और उनके ऑफिस ऑफिस का काम।
0: तो भाई मैं लिस्ट व्हाट्सएप से भेज दूँ या फिर
1: आप बिल्कुल भेज दें, और उसके बाद जो है मैं जा रहा हूँ लेके आ
0: रहा हूँ। मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आसिफ भाई,
1: आप जो है पेमेंट कर दीजिएगा।
0: अच्छा नहीं भेज रहा हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, वही काफी है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यार आसिफ भाई।
1: वैसे लंच कराने के लिए अगर आप फ्री हो कभी तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ भाई।
0: अरे सर थैंक यू सो मच, यही तो मोहब्बत है आपकी, और यही चीज है जो खुश रखती है।
1: आपको लंच कराने के, आपने सही से सुना नहीं, मोहब्बत तो है वो अलग बात है।
0: तो यही तो मैं बताना चाह रहा था कि आप करेक्ट मत करें।
1: दोस्ती यारी जान से प्यारी।
0: वाह वाह वाह वाह, मेरा
1: खाना पीना अपना अपना। कानपुर का तकिया कलाम है।
0: हाँ पुराना। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।
1: अच्छा लगता है भाई आप लोगों से बात करके, पूरी टीम से आप लोगों की।
0: थैंक यू सो मच।
1: और सच बात बताऊं, जो जितनी मेहनत आप लोग करते हो ना, पूरा 5-10 मिनट देते हो, लेकिन सच में जो है बहुत अच्छा लगता है जो एक एक लिस्टनर को 5-10 मिनट देते हो, तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है।
0: शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, अल्लाह हम सबको अपने
1: हिफाजत में रखे। हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो सारी थकावट जो है आप लोग उतार देते हैं।
0: अरे सर अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, सेहतयाब रखे, और इसी तरीके से खुशी आगे,
1: इसी तरह से आप लोग को भी जो है
0: थैंक यू सर,
2: चलें ठीक है,
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो इसी दुआओं के साथ अब मुझे लगता है कि मैसेजेस की जानिब चला जाना चाहिए, क्योंकि कल भी कुछ मैसेजेस छूट गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि आज किसी को मैं निराश करूं। यहां से करता हूं शुरुआत, कहां से करूं यहां से। ओके, अस्सलाम वालेकुम खैरियत भाई। वालेकुम अस्सलाम। ओ अफसर मिर्जा साहब, अरे बरादरी क्या बात है मिर्जा जी, क्या हाल चाल है? अफसर भाई खैरियत से? भाई साहब कॉल लगा लियो। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि अगर ये मैसेजेस पूरे हो जाते हैं तो। अभी शमशाद भाई ने मुझे अपनी फोटो भेज दी है, और शमशाद भाई आप किसी से मिल रहे हैं यार? आई एम बिहारी, आई लव पठान, ये मैं हूँ शमशाद बिहार से, कल मेरे मोबाइल का बिल पे होगा, कल से बात होगी। अरे अरे अरे अरे अरे, और बंगाली भी जानता हूँ शमशाद भाई, क्या बात है यार। शमशाद भाई मैं ही आपको कॉल कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें, आप बता दिया करें, बस कॉल करने के लिए हुक्म करा करें, इंशाल्लाह ताला हमारी कॉल आप तक पहुँचेगी अगर लाइन फ्री हुई तो। ये एक चीज रहती है। तो बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं आप पठानी ड्रेस में जो आपने भेजा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कहते हैं तुझे देखा तो मैंने जाना सनम प्यार होता है दीवाना। कम ऑन यार आसिफ भाई, यार प्लीज यार, आपको डेडिकेट करता हूँ ये सॉन्ग आसिफ भाई यार, मैं समझा कोई शायरी आ रही है अच्छी अच्छी। कहते हैं जावेद भाई मोस्ट वेलकम इन द शो, माई आंसर इज दिस शहजादा सलीम। शहजादा भाई अगर आपसे बात हो रही होती तो फिर मैं आपको बताता कि ये सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि भाई जान, मैंने रमजान 27 में इनाम जीता था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्राइज। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, रमजान 500 रियाल जीता, अपडेट है। बच गया मैं। बिलाल भाई आपको इंशाल्लाह ताला कबीर भाई इस बात का जवाब जरूर देंगे। मैं बच गया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, इंशाल्लाह ताला कुछ अभी चल रहा है सिलसिला, काफ़ी लोगों को प्राइजेस मिल गए, कुछ रह गए हैं। इस बार कुछ ऐसा हुआ था मुझे जान तक याद है कि कुछ प्राइजेस नहीं मिले थे लोगों के, वो वहीं से ही मतलब ऊपर से ही नहीं पास हो पाए थे, तो वो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे ज़रूर। कहते हैं 5-5-5। अच्छा सैयद खादिम साहब ने याद दिलाया कि कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं। कार्ड कहते हैं, फरमान है क्या हमारे साथ? फरमान भाई क्या कह गए जल्दी में? कार्ड लिख के भाग के किसी और को कुछ मैसेज भेज रहे थे क्या? मुझे भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है सरवर भाई? अच्छा लगा आपको सुन के, ये मेरा पहला मैसेज है आपको, आपका जिक्र बहुत होता है सुबह के टाइम, कबीर भाई कहा गए आज, आपके सवाल का जवाब है टाइम। कौन है हमारे साथ? सैयद अली हैदर शाह। अली भाई, कबीर भाई छुट्टी गए हुए हैं और ये जवाब किसी भी सवाल का नहीं है जितने मैंने पूछे अभी तक। कहते हैं सलाम अलैकुम सर भाई, कुछ वीडियोस, ओ जावेद भाई ने कुछ वीडियोस वगैरह भेजे हैं जो घूम के आए बर्फ की वादियों में, जरूर देखूंगा जावेद भाई। ओके, यहाँ पे कहते हैं आज मैंने थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने आपने कॉल थोड़ा कम किया बात करने में। ओके, इंशाल्लाह आगे और बात करेंगे। ओके रईस भाई, दूसरा सवाल जवाब आपका ठीक है जो मैंने दूसरा सवाल किया था, पहला वाला मेरे ख्याल में आपने नहीं बताया। मुबीन भाई कहते हैं, मुबीन भाई क्या कहते हैं, जरा सा कनेक्ट हुई हमारे साथ तो फिर आगे कहानी बड़े भी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। के एम खान हमारे साथ स्मार्टी। ओके अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नसीम हिना, क्या बात है यार। ओके नसीम भाई बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। नईम उल्ला शाह हमारे साथ, ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, आए हाय हाय हाय, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है। ओए होए होए होए होए, नईम सरवर मिर्जा, नईम टू सरवर मिर्जा, क्या बात है यार। नईम उल्ला शाह बहुत ही जबरदस्त यार, एक बार और पढ़ देता हूँ। ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या फूल दिया है। मेरा कहने का तो ये भाई, मुझे कॉल आ रही है बट मुझे लगता नहीं कि मैं, चलो यार मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपसे बात करके और आगे बढ़ जाऊँ। हेलो सलाम वालेकुम, क्योंकि वक्त हो रहा है मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन का तो मुझे प्रोग्राम से अलविदा भी लेना होगा, जल्दी से इनसे बात करते हैं।
3: मुझे भी वही अंदाजा लग रहा था, लेकिन मैं सोचा एक ट्राई कर लूँ।
0: अच्छा साहब कौन है हमारे साथ?
3: मैं बीरवई रियाज हूँ।
0: रियाज भाई कैसे हैं, खैरियत से? तो चलिए,
3: कट गई थी अभी।

0: हाँ रियाज भाई जल्दी से खेल लेते हैं क्योंकि हमारे पास 3 से 4 मिनट है। ओके चलिए साहब तो जल्दी से खेल लेते हैं। ओके पंखा हवा देता है या पानी?
1: हवा।
0: ओके किताब पढ़ते हैं या खाते हैं?
1: पढ़ते हैं।
0: अगर डॉक्टर कहे 3 गोलियां लो हर आधे घंटे बाद एक खा लो तो सब कितनी देर में खत्म होंगी?
1: बोलिए।
0: अगर डॉक्टर कहे 3 गोलियां जो दी हैं वो खा लो और हर आधे घंटे बाद एक ले लो तो सब गोलियां कितनी देर में खत्म होंगी? जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी
1: अरे आधे घंटे में खत्म हो जाएगी ना।
0: आधे घंटे में वो कह रहे हैं कि हर आधे घंटे में खा लो 3 गोलियां दी हैं तो आधा घंटा तो जवाब नहीं हुआ इसका।
1: 3 गोलियां दी है आधा घंटा में खा लो
0: क्या जवाब है कितनी देर लगेगी? चलिए इंशाल्लाह ताला कल कल कल कल ट्राई करेंगे और जरूर बात होगी। रईस भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी मैसेज यहाँ पर यूसुफ भाई का, वरना आज तो यूसुफ भाई आ ही जाएंगे मेरे घर पे। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू वेकअप दिल से देसी। यूसुफ खान ट्यूजडे मॉर्निंग सबको विश करते हुए, सरवर भाई स्टूडियो का मोबाइल क्या खराब हो गया? कहते हैं रिपेयर करा ले, मेरे मैसेज कल से नहीं पड़े जा रहे। नहीं ऐसा नहीं है और मैं बिल्कुल आपका कल वाला मैसेज लीजिए यार, आपने क्या बात कर ली जबकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। कहाँ है कल का मैसेज? देखिए मैं ढूंढ भी रहा हूँ यूसुफ भाई। और क्या यार, और क्या बताऊँ यार, कहते हैं क्या कहते हैं, इनको भी चाय पसंद है ना यूसुफ भाई? यही मैसेज है ना कल का, आपने चाय के लिए कहा कि आपको चाय पसंद है, चाय वाली टीम में हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर यूसुफ भाई, जबकि 10-15-20 साल से रेडियो से कनेक्टेड है और कहते हैं कि आप सिंगर हैं, कभी कुछ सुन लिया होगा शायद। हाँ मैं बिल्कुल, मैं ये भी आदतें हैं ही यार अपने अंदर, अब क्या बताया जाए। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तो भाई फिलहाल आज के लिए सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल बखैर आफियत खैर के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी। इसी तरीके से अल्लाह ताला हम सब की सुबह और पूरा दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता चले जाए, यही दुआ है। और आपको छोड़े जा रहा हूँ नेहा भासिन के साथ, बहुत दिनों बाद सुनेंगे ये गाना, जो भी सुनेंगे और जिन्होंने सुना था पहले सुन की लागे भाई। Alright then, Sarah Mirza signing off. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: दोस्तों, मैत्राश ऐप के जरिए रिहायशी अफराद अपने रिन्यू किए गए पासपोर्ट की तफसीलात को आसानी और सहूलत के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस अमल को शुरू करने के लिए होम स्क्रीन पर रेसिडेंसी सेक्शन पर जाएं, फिर चेंज डेटा सिलेक्ट करें और उसके बाद चेंज पासपोर्ट पर टैप करें। इसके बाद अपना QID नंबर या उस एप्लीकेंट का QID नंबर एंटर करें जिसका डेटा अपडेट करना हो। फिर नए पासपोर्ट का पहला सफा स्कैन या अपलोड करें और साथ ही एक वाज़े पर्सनल फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद तमाम मालूमात को दोबारा चेक करें ताकि ये यकीन हो जाए कि सब कुछ दुरुस्त है। मुकम्मल होने के बाद अपना पसंदीदा पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें और पे पर टैप करें। आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगी और अपडेटेड QID सीधा कतर पोस्ट के जरिए आपको डिलीवर कर दी जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी खिदमत करना हमारे लिए बायस मसरत है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है।

सोचिए एक बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा है, बॉलर रन अप लेता है और फिर एक ऐसा कवर ड्राइव निकलता है कि बॉल बाउंड्री की तरफ बिजली की तरह चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये क्लास थी, स्टाइल था और पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे सुपरस्टार का अंदाज था जिसे दुनिया माजिद खान के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इसी लेजेंड की जिन्होंने अपनी स्टाइलिश बैटिंग, पावरफुल स्ट्रोक प्ले और ऑलराउंड क्रिकेटिंग एबिलिटी से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास मकाम बनाया। माजिद खान नाम तो सुना होगा आपने। माजिद खान की पैदाइश 28 सितंबर 1946 को लुधियाना यानी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके वालिद जहांगीर खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे, जबकि उनके कजिन इमरान खान आगे चलकर पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप विनिंग स्किपर बने। लेकिन माजिद खान की पहचान सिर्फ एक मशहूर क्रिकेटिंग फैमिली का हिस्सा होना नहीं थी। उन्होंने अपने कारकर्दगी से अपना नाम जो था वो उन्होंने बनाया। माजिद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ बल्लेबाजी तक लिमिटेड नहीं था। शुरुआती दौर में वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी असली पहचान एक स्टाइलिश टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर बनी। माजिद की बैटिंग में एक खास एलिगेंस थी। उनका स्टांस पुरसुकून होता, फुटवर्क बैलेंस्ड होता और जब वो फ्रंट फुट पर आकर कवर या एक्स्ट्रा कवर के थ्रू शॉट खेलते तो क्रिकेट देखने वालों के लिए वो एक खूबसूरत मंजर होता। उनका सबसे यादगार शॉट था कवर ड्राइव। ऐसा लगता था जैसे गेंद को जोर से नहीं बल्कि टाइमिंग और प्लेसमेंट से बाउंड्री तक भेजा जा रहा हो। माजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 63 टेस्ट मैचेस खेले और उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था 167। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा। वो पाकिस्तान के उन अर्ली क्रिकेटर्स में शामिल थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट के डेवलपिंग एरा को एक्सपीरियंस किया। अच्छा, ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट सेंचुरियन यानी पहला सेंचुरी स्कोर करने का जो रिकॉर्ड है वो माजिद खान के पास है। He became the first batsman ever for Pakistan to score a ODI century. तो तारीख की बात है और माजिद खान उस जमाने में जब ODI क्रिकेट एक नया गेम था और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा टक्कर देने का था, तो ODI क्रिकेट के जो फॉर्मेटिव ईयर्स में कई ऐसे बल्लेबाजों ने उस फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग या यू नो आई वुड से कि बहुत एंटरटेनिंग बनाया था, उनमें से माजिद खान वॉज वन ऑफ दोज लीडिंग बैट्समैन। और फिर आता है उनके करियर का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, कप्तानी। माजिद खान ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की लीडरशिप भी की। कप्तान के तौर पर उनका अप्रोच जनरली काम और कंपोस्ट माना जाता था। वो क्रिकेट को सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं बल्कि एक टीम गेम के तौर पर देखते थे। 1970 और 1980 के पाकिस्तान क्रिकेट के दौर में माजिद खान एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी पर्सनालिटी भी उनके गेम की तरह क्लासी थी। उनके क्रिकेटिंग करियर में अप्स एंड डाउन्स भी आए, लेकिन उनकी बैटिंग का स्टाइल और उनका टेम्परमेंट फैंस की यादों में हमेशा जिंदा रहा। 1983 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी माजिद खान का क्रिकेट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से याद रखे जाते हैं और कुछ अपने स्टाइल की वजह से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माजिद खान वॉज नेवर अ सक्सेसफुल क्रिकेटर और अ बैट्समैन। He was immensely popular and he was immensely successful. Statistics say har cheez up, you know, you cannot measure a player's caliber. Ji haan, Don Bradman ke statistics bhi utna hi important hai jitna Sunil Manohar Gavaskar ya Virat Kohli ya Babar Azam ke. Majid Khan bhi usi level ke the jinko English county cricket mein wahan ke us time ke journalists kehte the ki He is a majestic Khan. Majestic Khan से मुराद यह है कि माजिद खान के
जो यू नो जो पर्सनालिटी में एक क्वालिटी ये थी कि अगर कोई निक हो यानी बॉलर अगर गेंद डालने के बाद उनके बल्ले से लगकर कहीं विकेट कीपर या स्लिप फील्डर के पास अगर वो कैच के तौर पर या कुछ भी हो पैड पे लगने के बाद अगर कोई अपील करता तो माजिद खान बिना किसी देखे बिना रुके बिना किसी झिझक के वो क्रीज से सीधा पेविलियन के रास्ता अपना लेता था. दैट वॉज माजिद खान बिकॉज उनको लगता था कि अगर बॉलर ने अपील किया है तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है. तो ये नेवर प्रोटेस्टेड ये ही नेवर यू नो लुक्ड इनटू द अंपायर्स आईज कि भाई ये क्या हो रहा है मैं आउट तो नहीं हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ चलिए आप. उस जमाने में तो डीआरएस वीआरएस तो कुछ भी नहीं था. उस जमाने में कुछ भी नहीं था कि आप नो थर्ड अंपायर या यू नो जो कहते हैं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बताते हैं कि निक हुआ है या नहीं हुआ है आवाज़ आई है नहीं आई है. तो ये सब चीज़ें उस जमाने में तो था नहीं. तो उस टाइम माजिद खान वॉज सो पॉपुलर इनके अपने ही एक जो कहते हैं ना कि आउट से कि उनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस जो बात थी कि चलो भाई लग गया है तो लग गया है मीन्स यू नो आई माइट बी आउट. तो ये जो बलपन वाली बात थी वो माजिद खान के अंदर में सबने देखा और इसी वजह से उन्हें कहा भी जाता है कि ही वॉज मैजेस्टी खान. उनके पास रन्स थे विकेट्स थे कप्तानी थी लेकिन सबसे बढ़कर उनके पास एक ऐसा बैटिंग स्टाइल था जो देखने वालों को क्रिकेट से मोहब्बत करने पर मजबूर करता था. माजिद खान पाकिस्तान क्रिकेट का एक स्टाइलिश बैट्समैन यूजफुल बॉलर फॉर्मर कप्तान और एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन का हिस्सा रहा. उम्मीद है आपको आज का हमारा यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Doha wala Kabir FM 107 and welcome to another tech update. Dekhiye sirf kaam mera nahi update dene ka, aap mujhe update rakhiye please. Bataiye koi aisa gadget aapne istemal kiya hai recently jo aapko lagta hai ye bhai kaam ka hai, ye duniya ko pata nahi hai, public anjaane, to zarur bataiyega. Social media handles aap jante hain FM 107 Qatar. आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे अराउंड है एंड पीपल आर बाइंग इट, पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट. ये इसकी कहानी ऐसी है ना कि ये धीरे धीरे इवॉल्व होता चला जा रहा है, बट पीपल आर कंफ्यूज कि जाएं कहाँ. मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट ग्लासेस की, जो मेटा रेबैन इंटीग्रेशन के बाद ऐसा हो गया है कि गिमिक से आगे बढ़ गए. पहले लगता था यार ये सिर्फ शोशेबाजी है, ये चश्मा पहन लिया और उसमें जो है आपको एक बटन दे दिया साइड में और आप गाने वाने सुन रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हो गई थी. बट देन जब मेटा रेबैन इंटीग्रेट हुआ और लगा कि अब कुछ हो सकता है, तो लोग इसे खरीदने लगे. इट मूव्ड बियॉन्ड गिमिक्स और हर दिन का एसेंशियल बन गया. तो अभी बिल्ट इन मल्टी मॉडल AI, कैमरा कैप्चर, ओपन एयर ऑडियो, हेडसअप डिस्प्ले ओवरलेज, मेटा और रेबैन इसे और लाइट वेट करने में लगे हुए हैं. दे आर प्लानिंग कि सोशली एक्सेप्टेबल बनाया जाए और फंक्शनल बनाया जाए, क्योंकि देखिए यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप ग्लास

0: इसमें चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसे थोड़ा सा फ्रेम अलग हो सकता है कि नहीं, दैट कैन नॉट बी डन, ये अभी पॉसिबल नहीं है. बट जो करंट मॉडल है मेटा रेबेन का, वो बहुत बढ़िया. एंड आई थिंक अगर पूरी फील्ड में देखा जाए कि कौन से मेटा ग्लासेस ज्यादा पहने जा रहे हैं, सॉरी ग्लासेस पहने जा रहे हैं, स्मार्ट ग्लासेस, तो उसमें मेटा रेबेन ग्लासेस ऊपर ही रहेंगे. अभी तक उन्होंने कोई दूसरा वर्जन ऐसा कुछ लॉन्च करने का नहीं कहा है, बट दे आर डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग मोर एंड मोर इनटू देयर ग्लासेस ताकि वो खरीदा जा सके. इंडिया की बात करूं तो अभी भी ये अराउंड 30,000 से 40,000 ऐसे प्राइस टैग के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट दैट दे आर गिविंग. एंड ये अभी कतर में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं, यू स्टिल हैव टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड. पर अगर आप खरीद चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं तो बहुत जरूरी होगा. आई थिंक और भी स्मार्ट ग्लासेस हैं जो लोग लेना चाहते हैं, बट लोगों को इतना भरोसा नहीं, बिकॉज वो गिमी की लगता है. तो स्मार्ट ग्लासेस आप कौन से यूज कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा, एंड आई वुड लव टू नो, क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्ट ग्लासेस हैं जो खतर में अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, और सैडली उनमें से मेटा रेबेन ग्लासेस हैं जो शायद आपको हेड्स अप डिस्प्ले दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो अवेलेबल होने चाहिए. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. बट फिलहाल के लिए आपका एक्सपीरियंस स्मार्ट ग्लासेस को लेकर कैसा है ये जरूर बताइए, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इट. अभी क्या है वो आपने देखा होगा, शाओमी ने भी लॉन्च किया, शाओमी का हो चुका है वो मीजिया स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस जो आपको साउंड देते हैं. एंड इसके अलावा स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस के भी 2-3 उन्होंने वर्जन निकाले हैं. फिर आप देख सकते हैं JBL ने भी इसमें अपना एक राउंड खेल दिया है, उन्होंने ऑडियो सनग्लासेस लॉन्च किए हैं. अब लोग बोलेंगे JBL है भाई, Xiaomi है भाई, हलवा थोड़ी है. और 600 रियाल का प्राइस टैग इज नॉट अ बैड प्राइस टैग, क्योंकि उतने में ही आपको जो है मिल जाते हैं ये एयरबड्स एंड ऑल. सो अभी Xiaomi, JBL एंड बाकी और कंपनीज मार्केट में आ चुकी, लेकिन कतर में जो अवेलेबल हैं फिलहाल JBL के हैं. एंड अगर मेरा पर्सनल रिव्यू आप जानकर खरीदने के लिए पहुंचे तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड Xiaomi और JBL के, बट JBL ओवर Xiaomi फॉर ऑडियो एनी डे, दे आर फार फार बेटर. बट ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर उसका प्रीमियम वर्जन की तरफ जाएंगे जिसमें 2 फ्रेम्स अलग से दिए हुए हैं Xiaomi ने, तो 2 फ्रेम्स मिलेंगे आपको. एक तो लिटरल एविएटर टाइप है सनग्लासेस हैं, और एक जो है नॉर्मल ग्लासेस हैं, दोनों में अवेलेबल हैं. दोनों के प्राइस टैग JBL के मुकाबले 400 रियाल ज्यादा हैं, बट आई थिंक दैट इज वर्थ इट, क्योंकि ग्लासेस एनी वे थोड़े से महंगे होते हैं यहाँ पर. तो दैट इज हाउ इट इज. बट डू यू हैव यू बॉट एनी स्मार्ट ग्लासेस रिसेंटली, और आर यू प्लानिंग टू बाई इट? ये तो मेरा रिव्यू है, मैंने आपको बता दिया, पर आपने खरीदें तो बताइएगा. FM107 Qatar हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे. ग्लासेस का मामला भी आगे जा रहा भाई, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी दुनिया में जिसमें टेक्नोलॉजी ना आए. बट फॉर नाउ दिस वाज द टेक अपडेट्स, मिलते हैं अगले में. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में आपसे बात करते हैं और आपको इत्तला करते हैं कि कैसे नए जमाने के नए स्कैम से आप बच सकते हैं. इवन हम सॉल्यूशन भी देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह का स्कैम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है. वेल दोस्तों, एक स्कैम जो बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है वो है टिफिन का स्कैम. है टिफिन का स्कैम, ये किस तरह का स्कैम है? बात करते हैं कि अगर ये किस तरह का स्कैम है, तो ये स्कैम आम तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो नए नए किसी शहर या कंट्री में आते हैं. हो सकता है कि आने वाले एक महीने में लोग आ रहे हों, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हों, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कई ऐसे बैचलर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, लो वेज वर्कर्स होंगे, कुछ नॉर्मल वर्कर्स होंगे. इन लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है, हम लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है. कई बैचलर्स के फैमिली यहाँ पर नहीं है. अगर आप यहाँ पर अच्छी सैलरी में भी आएँ, तो कई बार आप प्रेफर करते हैं कि खाना ना बनाना पड़े. उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि भाई जो टिफ़िन सर्विस वाले, उनसे हम टिफ़िन ले लिया करें, उनको पेमेंट कर दिया करें. लेकिन ये एक स्कैम भी हो सकता है. तो फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली यहां पर नहीं है. वो सोशल मीडिया पे, मार्केट प्लेस में, व्हाट्सएप के ग्रुप पर और दूसरे क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर बहुत ही अट्रैक्टिव और फेक एड्स पोस्ट करते हैं. इन एड्स में वो बहुत ही साफ सुथरे रूम्स और टेस्टी टिफिन की फोटोज लगाते हैं और उनका प्राइस मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा कम होता है ना। पर डे के हिसाब से भी जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा यार 7 या 8 रियाल या 4 रियाल में अगर मुझे एक टाइम का खाना मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। और इसी तरह का लोभ जो है इसी तरह से आपको ललचाया जाता है। जब कोई जरूरतमंद बैचलर या वर्कर इन फेक एड्स को देखता है तो वो फौरन उनसे कॉन्टेक्ट करता है क्योंकि ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उन्हें बहुत तमीज से बात करने का आइडिया होता है। वो तमीज से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, वो आपको अपने जाल में फंसाते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के टिफिन या रूम के लिए लाइन में लग जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्म चाहिए तो भाई अभी आपको थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा क्योंकि हमारी हमारे जहां पर ये किचन है, जहां पर ये खाना हम बनाते हैं, यहां पर लिमिटेड ही टिफिन बनाया जाता है और अभी हमारे पास 2-4 टिफिन बनाने के ही ऑप्शंस पड़े हैं, यानी कि 2-4 टिफिन ही बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको एडवांस पेमेंट करना होगा या कई बार लोग कहते हैं कि आप फला जगह आइए और वहां पर आप पेमेंट कर दीजिए, हाफ पेमेंट एडवांस में कर दीजिए, आप लोकेशन भी देख लेंगे और आप खाना भी खा लीजिएगा। तो ऐसे में आप सोचते हैं यार खाना भी ऑफर कर रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। तो आप जाते हैं, उनको हाफ पेमेंट करते हैं, वो कहीं पर आपको खाना बिठा के खिलाते हैं और कहते हैं ये है टिफिन। तो आप ऐसे में भरोसा कर लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं, लेकिन खेल यहां शुरू होता है जब वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, चाहे एडवांस चाहे आपको खाना खिलाने के बाद किसी लोकेशन पे। आप फिर जब उस लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि आपको 2-4 दिन तक कोई आइडिया ही नहीं होता कि खाना आ नहीं रहा, आपने पेमेंट कर दिया है और फिर आपको एहसास होता है कि जो आपने एडवांस में पेमेंट किया है वो एक्चुअली स्कैम है, क्योंकि ना ही वो बंदा कॉल उठाता है, ना ही वो आपके मैसेज का जवाब देता है और जो आपने पैसा सेंड किया है उसको आप कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे में सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स बंद हो जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है जो पोस्ट वगैरह अगर की जाती हैं। तो इस फ्रॉड का शिकार होने के बाद उन बैचलर्स और वर्कर्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना होता है अगर रूम्स की तलाश कर रहे हो, और अगर खाने की बात है तो खाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं क्योंकि पेमेंट आप एडवांस कर देते हैं। महीनों की मेहनत से कमाई हुई हार्ड अर्न जो मनी है, जो कैश है, वो भी एक झटके में चला जाता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और अनजान शहर में उनके पास दोबारा खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते। तो ऐसे में कुछ 3 तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले, जो बहुत ही चीप में आपको टिफिन दे रहा है, इन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। उल्टा आप एडवांस पेमेंट ना करके अपने ही घर पे जहां पर आप रह रहे हैं वहां से आप टिफिन मंगवाएं जो टिफिन आपको देने की बात कर रहा है सस्ते पैसे में, सस्ते अमाउंट में। उनसे टिफिन मंगवाएं 8-10 दिन, उसके बाद फिर पेमेंट दे। एडवांस में टिफिन आता है, पेमेंट एडवांस में नहीं होती है। तो पहले 1 महीना खा ले, उसके बाद पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये तरीका आमतौर पे हर जगह फॉलो होता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपसे एडवांस में पेमेंट मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना है क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। तीसरा तरीका है, अगर आपको एडवांस पेमेंट करना भी है तो किसी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू करें या फिर किसी के ऐसे अकाउंट में करें जिससे आप ट्रैक भी कर सके कि खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा गायब हो जाए तो आप उस शख्स को अकाउंट के थ्रू ट्रैक कर सके। तो ये कुछ आम तरीके हैं जिनसे आप फ्रॉड होने से या आपके साथ स्कैम होने से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी। हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टर्म एसेट्स पर। एसेट्स क्या है? जब भी हम अकाउंटिंग, फिनांस या बिजनेस की बात करते हैं वो एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है ना, एसेट्स। अगर आप किसी बिजनेस को ओन करते हैं, इन्वेस्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपसे पूछूं कि कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो अक्सर आप एसेट्स की तरफ ही इशारा करेंगे, है ना। यहाँ तो मैं आपका जवाब नहीं सुन रही, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो एसेट्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए समझाऊं तो एसेट वो चीज है जो आप ओन करते हैं और जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। यानी अगर कोई चीज आपके पास है और वो आपको पैसा कमा कर दे सकती है पैसा बचा सकती है या फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट

कर सकती है तो वो हुआ आपका एसेट। चलिए और समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपके पास 50,000 कतरे रियाल कैश है। ऑफिस का फर्नीचर है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंपनी का व्हीकल है, इन्वेंट्री है, कस्टमर से मिलने वाले पेमेंट्स हैं। ये सब आपके एसेट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सब फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेंगे। इसीलिए अकाउंटिंग में एसेट्स को कंपनी की इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहा जाता है। अब एसेट्स की अहमियत बहुत है। सोचिए, अगर एक कंपनी के पास कोई कैश ना हो, कोई इन्वेंट्री ना हो, कोई मशीनरी ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, तो क्या वो बिजनेस चला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एसेट्स को बिजनेस का इंजन कहा जाता है। जितनी मजबूत और प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे, उतनी ही कंपनी ग्रो करने की पोजीशन में होगी। एसेट्स कंपनी की अर्निंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसेट्स के दो अहम टाइप्स भी हैं। यहाँ पर जो कॉमन टाइप है वो है करंट एसेट और दूसरा है फिक्स्ड एसेट। चलिए इस पे भी झटपट से बात कर लेती हूँ कि करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में यूज होते हैं। इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। जैसे कैश, सबसे कॉमन एसेट है कैश, बैंक अकाउंट में रखा पैसा या फिर कंपनी के पास अवेलेबल कैश, ठीक है। इन्वेंट्री, वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी बेचने के लिए रखती है। मिसाल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं तो मोबाइल फोन्स होंगे, लैपटॉप्स हैं, एक्सेसरीज हैं, सब इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री भी एसेट है क्योंकि सेल होने पर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज है समझने के लिए, वो है लायबिलिटीज, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं

अब बात कर लेती हूँ पर्सनल लाइफ में एसेट्स की. एसेट्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के पास नहीं होते, हर इंसान के पास भी एसेट्स होते हैं, जैसे उनकी कैश सेविंग, हाउस है, लैंड है, गोल्ड है, कार है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है. ये सब आपकी पर्सनल एसेट्स हैं. जितना ज्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे उतने ही आपकी फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग होगी. कामयाब लोग इनकम से ज्यादा एसेट्स पर फोकस करते हैं. इनकम आज आती है और कल खत्म हो जाती है, लेकिन एसेट्स वक्त के साथ वैल्यू क्रिएट करते हैं. इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले लाइफ में एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे. तो बस जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल बात जो मैं आपके हवाले करने वाली हूँ वो ये कि एसेट्स आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की बुनियाद है, चाहे बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ. असल दौलत वो नहीं जो आपने कमाई गवाई, बल्कि वो है जो आपने संभाल के रखी. जो लोग एसेट्स बनाना सीख लेते हैं वो वक्त के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाते हैं. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी उसके करीब पहुंचेंगे. वेल अभी के लिए इजाजत. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107. और हाँ, रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो ऐसे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز مجھے کو نہیں آ رہی ماوش,
1: نہیں آ رہی.
0: ہاں اب آ رہی ہے جی, اب آ رہی ہے. بھائی دیکھیں اس وقت اگر ٹائم کی بات,
1: السلام علیکم.
0: ٹائم
1: ہم ایسا لگ رہا ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے آئے نا,
0: جی
1: جی جی بالکل آ چکے ہیں ہم. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہی ہو میٹر وتھ آر جے صفا. وقت کیا ہوا ہے؟
0: وقت بھائی دیکھیں اپنا وقت چل رہا ہے, یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ 10:02 ہو رہے ہیں ہماری گھڑی میں.
1: جو اپنا وقت آنا تھا وہ آ گیا.
0: وقت کی کیا بات کر رہی ہیں, آنے جانے والی چیز ہے. لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ جو ہے نا وہ میل کی بہ نسبت ہوتا ہے, تو میں کہہ رہی ہوں میں یہ وقت ایسے ہاتھ کی میل جیسا.
1: اچھا
0: آتا جاتا ہے.
1: کب سے ہو رہا ہے صفا؟
0: بس جب سے گولی دوائی نہیں کھائی نا.
1: ہاں یہی لگ رہا ہے مجھے, یہی لگ رہا ہے. یہ تمہارے ساتھ جو اس قسم کے مسئلے الگ الگ سے سر اٹھاتے ہیں نا ہر دو دن کے بعد.
0: ہفتہ ہو گیا ابھی پرسکرپشن ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی رینیو کروانے, کہوں گی دوائیاں چینج کر دو اثر نہیں کر رہی ہیں. اب لوگوں کو پتا چلنے لگ گیا ہے.
1: لوگوں کو بھائی مطلب اب یہ کھلی حقیقت ہو چکی ہے, اب سب لوگوں کو پتا ہے. مطلب کسی دن یہ ہوگا تم کہیں جا رہی ہوگی, لوگ کہیں گے بھائی آؤ چلو تمہارے پاس نہیں ہے نا ہم لے چلتے ہیں.
0: نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب تو لوگوں کو پتا چلی گیا ہے, تو ودرال کے فیس سے میں پھر اب باہر آ ہی
1: نکل گئی ہوں,
0: تو بس پھر خیر ہے.
1: اب خیر
0: ہے, سب نے وہ کر لیا ہے, ایکسیپٹ کر لیا ہے.
1: ایگزیکٹلی صحیح ہے. چلیں جی, تو پھر آج کے شو میں کیا ہونے والا ہے, سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر ہے ہمارا 4434377, جبکہ میسج کر سکتے ہیں. کہاں
0: میسج کر سکتے ہیں؟ 6662107 پر. دیکھو پہلے ہی بتا رہی ہوں, روز بتاتی ہوں, پتا ہے میں مارتی دس ہوں اور گنتی ایک ہوں, پتا ہے. پتا ہے کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا جو فون پہ میسج کے نمبر پہ کال کرتے ہیں, ان کے انگوٹھے نا کنفیوز ہو گئے. ان کے انگوٹھوں کو دوائیوں کی ضرورت ہے کہ میسج کی بجائے فوراً کال پہ بٹن دب جاتا ہے ان کا. دیکھو کتنی بھی کوشش کر لو, کتنی بھی کوشش کر لو, جو میسج والا نمبر ہے.
1: بخاری کہہ رہے ہیں اسٹوڈیو کے باہر تو آواز آ رہی ہے.
0: یہ کبھی روح صحیح کہتا ہے, اس کو نا مائک کی ضرورت نہیں ہے.
1: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, تو پھر آج کا ٹاپک کیا ہے, اس کی طرف ہم آ جائیں.
0: ہاں آج کا ٹاپک تھوڑا سا سینسیٹیو ہے, سینسیٹیو. اور آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا آئی ایم فائن, ابھی آفر بھی ماوش اور میں بات کر رہے تھے, اور آج مزے کی بات یہ کہ ماوش اور میرا اختلاف ہے تھوڑا سا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا آئی ایم فائن, وین وی سے آئی ایم فائن, کیا یہ پرابلم کا حل ہے یا یہ اس سے بھی بڑی پرابلم کو چھپانے کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقہ ہے, یا اور بھی زیادہ بڑی پرابلم ہے میں کہوں گی.
1: تو یہ بتانا ہے آپ.
0: ہاں
1: اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم دونوں کا اختلاف ہے تو کون کس سائڈ پر ہوگا, یہ دیکھتے ہیں.
0: دیکھو پارٹی چوز کر لو.
1: آج ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ دو طرف ہیں نا لوگ, ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ پرابلم کو تھوڑا چھپا لینا چاہیے, اور ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں پرابلم چھپانا نہیں چاہیے, زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو کس نے کیا کہا ہوگا, اور آپ آ کے اپنا بتائیں.
0: ہاں بتا دیں کہ آپ کون سی سائڈ پہ جا رہے ہیں, پرابلم چھپانے پر جا رہے ہیں یا
1: یار میں نے بولا کیا تھا, میں تو بھول گئی, دو منٹ میں نے کیا بولا تھا.
0: میں نے یہ میرا معاملہ یہ کہ میں کہتی ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں.
1: نہیں ابھی بولو نہیں نا, پوچھا ہے.
0: چلو دیکھو میں پھر کسی غلط گلی نکل جاؤں گی لیفٹ رائٹ ہوتے ہوتے.
1: ایگزیکٹلی, تو آپ کال کیجیے بھائی 4434377. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کی کال لے لیں, ہم نہ بتائیں کہ ہمارا کیا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے, کیا ہم سمجھتے ہیں. تو آپ پلیز جلدی سے کال کیجیے, ورنہ ادروائز پھر ہمیں کھولنا ہی پڑے گا اپنا پٹارا, پھر ہم کھول کے بیٹھ گئے تو آپ کہیں گے اپنی باتیں کر رہے ہیں.
0: بھائی دیکھو کیا میں ٹھیک ہوں کہنا کسی بڑی پریشانی کو چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے,
1: یس یا پھر نہیں,
0: یا پھر نہیں, یا یہ مجھے مطلب اگر میں اس کو ایسے بھی کہہ دوں کہ یہ جو ہم مارننگ ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں نا, او گڈ مارننگ ہاؤ آر یو, آئی ایم فائن.
1: کال آگے. ہیلو
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک, ایک دوسرے لڑتے لڑاتے چل ہی رہے ہیں, گاڑی چل رہی ہے.
2: کوئی نہیں
1: آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لڑتا کون ہے نا, جو بتا رہا ہوتا ہے وہی لڑتا ہے.
0: اچھا یہ اچھی بات ہے ماویش, ٹھیک ہے.
1: میں تو بتاتی نہیں ہوں تو میں اس کا مطلب لڑتی بھی نہیں ہوں. آپ بتائیں بھائی نام کیا ہے؟
2: میں مبشر مبین بات کر رہا ہوں.
1: اچھا مبشر مبین, کیا حال چال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
2: الحمدللہ.
1: زبردست, بہت اچھا کیا آپ نے بھائی. और ये बताएं भाई कि आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे. क्या हमें तकलीफ हो तो तकलीफ को हमें तकलीफ के वक्त ये कहना चाहिए ओके आई एम फाइन, या फिर हमें अपनी तकलीफ का इजहार करना चाहिए.
2: असल में मैं ये चीज कहता हूँ कि भाई आप ये अगले जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी तकलीफ बता सकते हैं या नहीं बता सकते. ये सारी चीज उस पर डिपेंड करती है. इसमें हाँ मैं ठीक हूँ या मैं नहीं ठीक इस चीज का कोई मतलब नहीं पीछे पड़ जाता. हाँ अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है कि नहीं अगर मैं इसको बता दूंगा शायद वो मेरी हेल्प भी ना कर सके, लेकिन जो उसके वो दो लफ्ज है वो उन दो लफ्जों पे अगर बात खत्म हो जाएगी वो कम से कम जब आपको माइंड को परेशानी में आए ये तकलीफ में है वो रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ आप बैठ के कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं परेशानी तो खत्म हो गई है. तो ये अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि आपको बता रहे हैं जिसको नहीं बता
0: रहे. हकीकत बात है,
1: पॉइंट है, सही बात है.
2: वैसे हर किसी को अपनी तकलीफ नहीं बतानी चाहिए. हाँ. भाई आप हर किसी को जो आप मिसाल के तौर पे पांच पांच लड़कों का ग्रुप है या पांच दोस्तों का ग्रुप है या पांच फैमिली मेंबर है तो पांचों एक जैसे नहीं होते. उनमें से किसी एक अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे साथ ये परेशानी चल रही है. बाकी चार को अपनी बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं तो इसके बारे में क्या करना चाहिए. अगर आप उसे एक को बता देंगे कि भाई शायद वो बाकी शायद किसी को फर्क भी नहीं आपसे पड़ेगा कि भाई हाँ ये तो हंस खेल रहा है इसको तो कुछ भी नहीं है. लेकिन उनमें से कोई एक इस तरह का होगा कि जो आपसे बात करने से या आपको उठने बैठने से या वो इसी पहचान देगा कि इसके साथ कुछ तो मसला चल रहा है
1: मसला
2: तो उनको हाँ. बता देना चाहिए अगर आपको कुछ इस तरह का बंदा मिल जाता है.
0: सही
1: सही हो गया. अच्छा अपने आप से क्या करना चाहिए मुबशर?
2: किस तरह भाई?
1: जैसे अपने आप को किसी वक्त में आप परेशानी में है मुश्किल में है तो अपने आप से आपकी एक होती है ना हमारी मतलब सबसे ज्यादा बातचीत तो हमारी अपने आप से ही होती है तो उसमें अपने आप से क्या कहना चाहिए?
2: अपने आप से तो परेशान होने का फायदा कोई नहीं है कि बस आप परेशान हो के और एक कोने में आप होके बैठ जाएंगे. आपको बेहतर ये है कि हाँ परेशानी है अगर पहले आप अपने आप को काम डाउन करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा घूमने फिरने से हो जाता है रिलैक्स हो जाता है कहीं खाने पीने से हो जाता है पहले रिलैक्स करें और उसको सोल्यूशन ढूंढे बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन परेशानी का फायदा नहीं है कि बस आप खुद के कोने में कह दे कि हाँ मैं तो ठीक हूँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन वो सिर्फ जबान क्या आता है कि वो ठीक तो आप है नहीं है. वो तो आपको उसके ऊपर एफर्ट खुद ही पुट करनी पड़ेगी. कोई दूसरा आपको बाजू पकड़ के नहीं लेके जाएगा कभी चलो जी ये काम करके हमारे समझदार निकल जाएगा.
1: सही हो गया चलें सही हो गया भाई चलें. बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर आपकी कॉल का. जी जी कुछ कहना चाहते
2: हैं? सबसे बड़ी बात चूंकि हम लोग यहाँ पे सारे यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे तो मैं भी अकेले और अकेले तो फिर आपने अकेला खुद को लेके चलना है. आप अच्छे लेके चलो बुरे लेके चलो तो डेफिनेटली सब यही होता है कि हम अपने आप को अपने मसले मसाए सारे खुद ही हल कर लें जैसे भी कर लें. तो वो एक अलादा बात है सारी को एक अलादा टॉपिक है उस पर कभी टॉपिक बात नहीं तो फिर मुझे करें.
1: सही हो गया चलें जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए. थैंक यू जी अल्लाह हाफिज. अच्छा जी मुबशर हमारे साथ थे और उन्होंने जो बात की काफी हद तक हम इससे तफाक करते हैं. हमारे साथ एक और कॉलर है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम जी खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत.
0: आसिफ भाई?
1: नहीं आसिफ भाई नहीं आज कोई और है.
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं हूं.
1: आप ही हैं?
3: जी बिल्कुल मैं हूं. बिल्कुल फिट
0: अब बिल्कुल सही हो गए. अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
1: या अल्लाह. मतलब ये आप मुझे कौन कौन से शॉक्स दे रहे हैं रोजाना. अब तो मुझे आज लगा कि कोई पाकिस्तान से हैं भाई. आपने एक्सेंट भी चेंज किया अपना. हाँ
0: क्या करते थे मतलब ये पूरा दिन बैठकर ये सोचते होंगे प्रैक्टिस करते होंगे कि मैंने ये करना है आज.
3: सिर्फ आप लोग मेहनत कर सकते हो ना. तो शौक देने का शौक है.
1: देखा देखा आज लग रहे हैं आज ही लग रहे हैं पंजाब साइड के कहेंगे या तो इंडिया पंजाब के या पाकिस्तान पंजाब के ऐसा वाला एक्सेंट चल रहा है आज.
3: नहीं तो वही है ना कि सारू के साथ में बैठ के तो सारा एक्सेंट.
1: आपका ना मेरा वाला मसला है आपका फिर मेरा वाला मसला है. मैं ज्यादातर ना कोशिश करती हूँ किसी का एक्सेंट थोड़ा सा प्रोमिनेंट टाइप होना जो नोटिस हो जाता हो तो मैं उससे ज्यादा देर तक बात ना करूँ. अदरवाइज मैं थोड़ी देर के बाद उसी की तरह बोल रही होती हूँ और उसको लग रहा होता है मतलब बहुत हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होता था मतलब बहुत बुरी बात है. हाँ. एक बंदा था हमारे साथ क्लास में जो कि थोड़ा सा ना वो था मतलब जिसको कहते हैं ना तोतला. तो अब वो उससे बात करते हुए मतलब बा कसम कसम खा के कह रही हूँ, मैं उसका मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन थोड़ी देर सुनते सुनते सुनते उसे बात करते करते मैंने वैसे ही बोलना शुरू कर, और वो बेचारा मतलब वो ना इतना अजीब हो गया था और मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा यार मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। तो आपका भी है भाई?
3: बिल्कुल।
1: जिसके
3: साथ संगत सोबत सोबत असर।
1: मतलब आसिफ भाई आज तो आप मुझे लगी नहीं रहे वही वाले, अब मुझे लग रहा है आवाज खराब वाले की आदत हो गई थी हमें।
3: लोगों को अच्छी लग रही थी, आपको खराब लग रही थी।
0: हम रोज नए वाले आसिफ भाई से मिल रहे थे
1: रोज।
0: ओहो अब तो हम बोर हो जाएंगे।
1: जी भाई
3: जी बताएं क्या मौजू चल रहा है आज?
1: मौजू तो बेहतरीन चल रहा है, मौजू ये चल रहा है,
0: मौजू चल रहा है रिलेटेड मैं ठीक हूँ से।
1: हाँ
0: देखें कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते भी लोगों को जवाब दे जाते हैं कि मैं ठीक हूँ, इट्स ओके आई एम फाइन। ये कहना किसी बड़ी परेशानी को छुपाने का कोई तरीका होता है या ये जो है हमारे अंदर और परेशानी क्रिएट कर सकता है, ये चीज़ ये जो हम रैंडमली कह देते हैं ना परेशान होते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे। इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च पढ़ी थी और उसके बाद से ना मैंने लोगों से खास तौर पे ऑफिस में ये पूछना बंद कर दिया था कि आप कैसे हैं। मैं ये जरूर कहती थी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा ठीक है कैसे चल रहा है
1: क्यों।
0: उसके पीछे भी एक वजह थी, मुझे किसी ने एक ऐसा जवाब दिया था कि उसके बाद मैं चुप हो गई थी, मैंने उसको बड़ा सोचा, चुप लग गई थी हाँ मुझे, और ऐसी हकीकत का चपेड़ था।
1: अच्छा।
0: मुझे आगे से जवाब पता है क्या मिला?
1: हाँ।
0: मुझे आगे से जवाब ये मिला और वो शख्स वाकई में बहुत परेशान था।
1: अच्छा।
0: और कुछ टाइम बाद उनकी कोई अच्छी न्यूज़ भी नहीं आई थी, एक बहुत मसले का मामला हो गया था, लेकिन मुझे उस दिन के बाद से बड़ा शौक लगा था क्योंकि उन्होंने आखिरी बार ये कहा था कि बोलूँगा ठीक नहीं हूँ तो कोई मसले का हल निकल आएगा क्या।
1: मैं सोच रही था कौन
0: नहीं इधर हमारे ऑफिस में नहीं,
1: अच्छा अच्छा कहीं और,
0: कहीं और,
1: सही सही सही।
0: तो ये जो होता है ना मैं हम लोग कह देते हैं एकदम रैंडमली कह देते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो आपको क्या लगता है ये क्या है?
3: दिल जो है हर चीज को झूठ मानने की कोशिश करता है, ठीक है, झूठ समझना है ठीक है, और किसी के भी सामने अगर आप जाते हैं तो मैं ठीक हूँ वो कोई कंक्लूजन तो निकाल के देगा नहीं, आप खराब हो या कोई प्रॉब्लम है आपको उसका कोई जो है कंक्लूजन तो निकालना नहीं है, तो बेहतर ये है अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
3: वो आने वाले टाइम में सही हो जाएगा, आज प्रॉब्लम है तो कल आसानी, आज मुश्किल है तो हर आसानी आ जाएगी, तो बेहतर है हम तो परेशान है सामने वाले को क्यों परेशान करें, वो हो सकता है किसी और चीज में मुब्तला हो हमसे ज्यादा परेशान हो, तो बेहतर यही है कि हाँ हम ठीक है
1: सही हो गया,
3: क्योंकि कोई सलूशन नहीं निकाल सकता इस चीज का कि आप ना मैं बीमार हो या भाई जो चीज है जो बंदे के पास जाएंगे बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो ठीक करेगा,
1: सही
3: ठीक है, अल्लाह से दुआ करो, कोई प्रॉब्लम है तो जहाँ चीज का सलूशन निकलता है वहीं जाना चाहिए, और बंदे को तो पता नहीं वो किस परेशानी में खुद मुब्तला और हम उसे और बता दें हम ठीक नहीं है ये है वो है, तो मेरी समझ से तो बेहतर यही है ठीक है
1: सही। अच्छा ये बताएं भाई कि अपने आप से मतलब जिस वक्त हम बहुत परेशान हो तो अपने आप से भी गुफ्तगू चल रही होती है ना, वो क्या करनी चाहिए अपने आप को ये बार बार बताना चाहिए कि बहुत परेशानी है?
3: नहीं जितना अपने आप से बताओगे उतना ज्यादा टेंशन में आओगे, मैंने क्या बोला हमें एक भरम में रहने की आदत पड़ गई है, झूठ दिल को समझाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, वो एक मूवी आई थी कौन सी थ्री इडियट, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल
1: ऑल इज वेल,
3: ठीक है, तो वही सिस्टम है कि हमेशा अपने आप को जो है क्योंकि कोई भी परेशानी उसका एक वक्त आएगा ठीक है, उस वक्त में वो ठीक होगी उससे पहले नहीं, जितने दिन उसको लिखा हुआ है उतने दिन में आप कितनी भी कोशिश कर लो कभी कभी सामने आई हुई चीज सामने रखी हुई है हाथ उठाने से पहले चली जाती है, और बहुत सी चीज ऐसी होती है जो बहुत दूर है जो हमारे
1: बहुत से
3: बाहर
1: है,
3: होती है वो हमारे पास चली जाती है,
1: हाँ जी,
3: तो वक्त हमेशा जो है दिल को भी एक झूठ बोलते रहना चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो,
0: दिल को झूठ क्यों बोलना, दिल को ये समझाना क्यों नहीं कि भाई रियलिटी एक्सेप्ट करो। झूठ का वर्ड ना मुझे वो लगता है कि अपने आप से आप नहीं बोल सकते भाई, झूठ झूठ आपको और उलझाता है और आपको और डिप्रेशन में और एंजाइटी में लेकर जाता है।
3: अब उसको मतलब ऐसा ही समझ लीजिए कि होने वाला कुछ है, सही हो जाएगा बस।
0: अपने आप को तसल्ली देते रहना चाहिए,
3: तसल्ली देते रहना चाहिए।
0: देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। ठीक है,
3: बस ये है क्या। और बताएं आप लोग?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र।
3: करते रहते हैं कभी सवेरे उठ के, फिर उसके बाद देखते रहते हैं कभी 10 बजेंगे कभी आप लोग आओगे।
1: एक चलें गुड़े भाई,
3: एक जॉब, ये भी एक जॉब हो गई है। आसिफ
0: भाई मैंने सुना था सुबह को सर्वर भाई से गप्पे मार रहे थे आप। ये मत बोल रहे थे आप 10 बजे का वेट कर रहे थे।
3: नहीं नहीं भाई, आसिफ भाई सबके साथ में आना है ना, 10 बजे का तो वेट करना ही करना है। नहीं ऐसा थोड़ी ना है, सर्वर भाई से भी अब आफ्टरनून में मुलाकात नहीं होगी ना।
1: सही हो रही है,
3: सर्वर भाई की भी थोड़ी सर्वर भाई की भी खबर लेते रहना चाहिए।
1: सबका इंतजार करते हैं ये कहना चाह रहे
3: हैं। जी बिल्कुल, दिन में 3 टाइम जैसे ब्रेकफास्ट
0: टेलीकॉम कंपनी चली आसिफ भाई की वजह से रही है। अड्डा अड्डा बिल भर रहे हैं हमारी वजह से ये। आसिफ भाई आप जो है ना, थैंक यू सो मच, आप इतना जो है ना वो इंटरेक्टिव रहते हैं, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। हमें हमें अच्छे जो है ना डेडिकेटेड लॉयल लिसनर्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
3: एक्चुअल क्या है देखिए, एक हमें तो मालूम है हमें सवेरे से शाम तक क्या करना है, लेकिन जो आप लोग तैयारी करते हो एक दिन पहले से सारी चीजें कि कल क्या किस तरह से अपने लिसनर्स को खुश करना है, एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पे, तो वो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
0: अरे भाई आप लोगों की वजह से ही चल रहे हैं, मैं बता रही हूँ, ये बहुत लिसनर्स की वजह से चलता है शो।
3: और FM 107 का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे जो है आरजे दिए हुए हैं।
0: अब क्या रुलाएंगे, बस कर जाए।
3: अच्छा एक महावीर पहले थी, एक मतलब महावीर जो है आरजे छोड़ते नहीं है, एक महावीर पहले भी थी, एक महावीर आप भी है।
0: मतलब मेरे ख्याल से
3: पहले भी एक 107 में महावेश
1: महावेश खान थी शायद, मेरे अलावा कोई नहीं है महावेश, मैं ही हूँ वो खान।
3: पहले
1: बहुत पहले 2014 से हूँ मैं यहाँ पे।
3: आप ही हो?
1: मैं ही हूँ।
3: मैं
1: ही हूँ।
3: आप ही हो?
1: जी जी मैं ही हूँ।
3: बहुत लंबी इनिंग खेल,
1: अभी और खेलनी है लंबी।
0: माशाल्लाह
1: 2014 से मैं, मुझे ही सुन रहे हैं आप, मुझसे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई
0: नहीं था, का नहीं
1: कोई और लोग थे
3: पहले, नहीं वही वही वही महावेश खान।
1: सही सही,
3: नहीं अंदाज थोड़ा सा बदल गया है ना आपका,
1: वक्त भी तो बदल गया ना भाई, कितना बदल गया वक्त
0: मेरे साथ रह रहे कि बहुत अच्छा अच्छा।
1: उस वक्त मैं बहुत फास्ट गोइंग हुआ करती थी, बहुत तेज बोलती थी और सब कुछ, थोड़ा सा जाहिर सी बात है उम्र का तकाजा है।
3: उस वक्त में हम लोग कॉल मिलाते रहते थे, कॉल लगती नहीं थी, लेकिन अब तो कॉल लग जाती है।
1: हाँ बहुत मुझ में बहुत फर्क आया, मुझे अपने तौर पे बहुत फर्क आया। मैं पहले बहुत क्या कहना चाहिए जल्दबाज, बहुत फास्ट और मतलब टिकने वाली नहीं थी बिल्कुल, अब मैं थोड़ी सी बहुत पुरसकून सी हो गई हूँ। अब जब भी मैं सफा को बर्दाश्त कर रही हूँ आप सोचे,
0: सालों में मैंने जो इनको ट्रेनिंग दी है ना, अब जाके नजर आ रही
1: भाई हद हुई, मतलब तुम मुझे ट्रेन कर रही
0: हो मेरी। देखिए ये इसे कहते हैं अंडर सफा ट्रेनिंग, तो ये आपको नजर आ रहा है,
1: मुझे नहीं लेनी ऐसी ट्रेनिंग।
0: आप क्रेडिट ले ना ले वो और बात है, इट्स ओके।
1: आसिफ भाई बेचारे परेशान हो जाएंगे कि कहां मैं किन लोगों में उलझ गया हूं।
3: नहीं नहीं पैसा नहीं है, परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बात करके तो थोड़ा सा सुकून हो जाता है।
1: चलें भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला।
3: बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी मेहनत करते हो आप हम लोगों के लिए,
1: बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह
3: हाफिज़।
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। राइट तो ये सीन चल रहा है, मुझे हैरत हो रही है इस बात पे, मुझे पहचाने ही नहीं कि पहले वाली कोई और थी।
0: अच्छा भाई आज जो है वो मुद्दा रिपीट कर देते हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैं ठीक हूँ पर। देखें बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जो मैं ठीक हूँ का जो एक फ्रेज बोल देते हैं ना, ये पता है क्यों बोलते हैं दूसरों को? जैसे
1: आप देखो अब थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देते हैं, अभी तक जितने लोग आ रहे हैं वो मेरे साथ हैं।
0: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए अप्रोप्रिएट इंसान के साथ, वो एक
1: लेकिन ज्यादातर लोगों ने मेरे साथ ही बोला है,
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है करनी चाहिए क्योंकि
1: तो अब अगले से पूछते हैं, वो आपका साथ देने को तैयार हैं क्या? हेलो
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल रऊफ साहब, क्या हाल चाल है?
4: الحمدللہ خیریت, آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمدللہ.
4: ہاں وہ یہ ہے کہ پریشانی اگر ہو کسی کو, یہ تو ہر ایک سے تو شیئر نہیں کریں گے, تو ایسا ہے کہ آپ ان لوگوں سے اپنا شیئر کریں, انہیں بتائیں جو اس کا حل نکال سکتے ہیں.
0: ایگزیکٹلی میں یہی بات بول رہی تھی. ہاں جی صحیح.
4: اور وہ یہ ہے کہ آپ قریبی فیملی ممبرز کو, آپ کی وائف اور مدر وغیرہ بچے ہیں, تو آپ اپنی پریشانی بتائیں گے تو میرا خیال ہے وہ بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے.
1: اچھا آپ کا یہ خیال, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر والوں کو بتا لو, گھر کے باہر نہ بتاؤ.
0: میں کہتی ہوں کوئی ایک آدھا شخص ایسا ہونا چاہیے مخلص, جسے آپ کہتے ہیں ہمارا جو ہم کہتے ہیں سانجے ہوتے ہیں.
4: جی وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ایسے بندے سے شیئر کریں جو اس کا حل,
0: جس کے پاس ہاں پرابلم سالونگ مائنڈ
4: سولوشن ہو اور وہ آپ کو بتا سکے.
0: ایگزیکٹلی.
4: آپ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے.
0: Exactly.
4: تو آپ التجا کریں, گڑگڑائیں کہ یہ میری پریشانی ہے, یہ ہے. تو ان لوگوں سے شیئر کریں اپنی پریشانی. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں گڈ مارننگ آئی ایم فائن, یہ تو ایک

0: पर्सनली मतलब बड़ा कम एतबार करती हूँ बाहर के लोगों के ऊपर. मुझे ये होता है कि यार आपके अपने हाँ होने चाहिए दोस्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ये नहीं कह सकती जैसे तुम्हारा भी हाँ नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि दोस्त मिले नहीं, लेकिन मेरे बहुत अरसे लंबे तक दोस्त चले नहीं. मेरी शायद नेचर उस किस्म की नहीं है कि मैं बहुत लंबे अरसे तक वो कहता हूँ ना स्कूल के दोस्त जैसे मेरे हस्बैंड के हैं, मुझे हैरत होती है क्लास वन से अभी तक दोस्त चल रहे हैं. तो पता नहीं खवातीन का क्योंकि उन बेचारियों की जिंदगी चेंज इतनी होती रहती है ना. मेरे साथ भी ऐसे है मतलब बड़े मतलब वक्ती तौर पर, लेकिन बहुत लंबे नहीं. मैं बहुत लॉयल नहीं हूँ फ्रेंडशिप के मामले में, ये कह सकते भाई. मतलब लॉयल हूँ वक्ती तौर पे, ये नहीं कि वो लंबी लंबी दोस्तियां लेके चलनी है.
1: नहीं मैं बालों में क्लास वन से
0: हाँ
1: मेरा मसला अलग है. मैं बालों में चिपकी बबल गम हूँ और मैं बहुत ध्यान से चिपकती हूँ जिसके सर में चिपकती हूँ.
0: हाँ लेकिन मेरा वो वाला मामला नहीं है. मतलब मेरा ये है कि बड़े ही कम मुख्तसर वक्त के लिए जो लोग साथ हैं फिर उसके बाद चले गए तो चले गए ख़त्म, ऐसा वाला मामला. तो मेरे लिए फैमिली ही सब कुछ है मतलब ये ना. तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि बंदा किसी से शेयर करे कुछ करे, लेकिन हमेशा कोशिश करें शेयर उससे करें जो आपके प्रॉब्लम को छोटा करके दिखाए. अगर कोई आपके प्रॉब्लम को एग्जैक्टली
1: सॉल्विंग
0: करता हो और फिर दूसरा वो आपके प्रॉब्लम को ये ना बोले कि भाई आप उसे कह रहे हो यार ये मसला हो गया, और वो आगे से बोले अब यार क्या होगा कैसे हल होगा. मुझे सीरियसली बहुत बुरी लगती है ये बात कि आपके प्रॉब्लम पे आप इतना परेशान नहीं है जितना अगला परेशान हो गया. तो प्लीज ऐसे लोगों से कभी शेयर ना करें. ऐसे लोगों के साथ आपको लगेगा कि आपके पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं बचा है दुनिया में. तो इसलिए हमेशा उससे शेयर करें जो कि सॉल्व कर सकता हो या कम अज कम
1: और आपको तसल्ली दे सकता हो. हाँ आपको नीचे ग्राउंड से लगा दे कि इट्स ओके निकालते निकालते मसले का हल निकालते साथ बैठ कर
0: हर मसले का हल होता है. ये बोले
1: वहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी है.
0: exactly.
1: अभी नहीं है ये एक अलग बात.
0: एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है अब तो तुम्हारी जिंदगी गई कैसे निकालोगे क्या करोगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर मैंने कभी भी किसी के साथ मसला शेयर किया है मुझे यही सुनने को मिला है. बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ, उसमें एक दो लोगों को हटा दो मतलब मैं उसमें सफा को भी इंक्लूड कर सकती हूँ कि सफा से भी मेरी कुछ मौके पर बात हुई और सफा ने हमेशा मुझे तसल्ली दी है, और कुछ लोग और भी ऐसे हैं जिन्होंने तसल्ली दी है. लेकिन बहुत सारे लोग आपको मोस्टली ऐसे मिलते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि भाई ये मर जाओ
1: चलो हड़ताल
0: चल रही है हम चल रहे हैं गाने की तरफ.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्रिकेट हो
4: and he's hooked that away. That's four runs.
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
3: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राहे रास्त पर आ जाएं।
7: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
8: आप सुन रहे हैं यू मैटर
7: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
8: FM 107 पर। दिल से देसी।
9: वेलकम बैक, हम आ गए एक दफा फिर आप लोगों के साथ। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है एक दफा फिर हम रिपीट कर देते हैं।
10: भाई टॉपिक ये चल रहा है कि ये बताएं कि ये जो मैं ठीक हूँ ये हम क्यों कहते हैं,
9: क्यों कहते हैं,
10: और क्या ये बहुत बड़े मसले को छुपाने का एक, आप कह लें ना, एक पर्दा होता है ना, वो रखने का होता है, और ये पर्दा रखना सही होता है या नहीं होता, कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं जो मैं ठीक हूँ ना, बस इसके ऊपर मैं हूँ ना वाला शाहरुख खान है ना, जो वो वाला हमारे अंदर से निकल कर आ
9: रहा है। शहजाद सलीम कह रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा,
10: आएगा आएगा
9: कब आएगा।
10: ये अजीब दरबार है, यहाँ पे बादशाह सलामत को इंतजार कराया जा रहा है,
9: बादशाह सलामत को इंतजार करवाया जा रहा है और वो आ ही नहीं पा रहे बेचारे,
10: जज्बात बदल गए, हालात बदल गए।
9: हाँ, तो अब उनको कॉल करना तो पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, ये सॉन्ग का लास्ट वर्ड नेपाली है। हाँ सही हो गया, कौन सा सॉन्ग, मसला ये है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन, दैट मींस देयर इज नथिंग टू बी फाइन अंटिल यू आस्क मोर देन 10 टाइम। ये हैबिट मिलेनियल्स गर्ल्स का ही, इंट्रोवर्ट होना जेन जी में टू आई एम फाइन मीन आई एम फाइन नहीं होता है। नो मोर क्वेश्चंस इवन शी इज योर सिस्टर बट बॉयज डजंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन इवन हिज फ्रेंड्स। अच्छा, शेख इरफान कह रहे हैं।
10: अच्छा, लड़कों को क्यों ऐसा बनाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी तरबियत का कुछ हिसाब किताब होता है कि लड़कों को ये बोला जाता है कि क्या कैसे कहा जाए, उनको हाइपर इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है या उनके अंदर बहुत ज्यादा कोई वो डाल दिया जाता है।
9: उनसे इतनी बात नहीं की जाती, ये रीजन होता है,
10: दीवार से लगा देते हैं बस।
9: हाँ, बेचारों को
10: पैदा हो गए तो बस बड़े हो जाएंगे,
9: मतलब बड़े हो जाओ उनको जिम्मेदारी का बोझ डाल दो, तुम नहीं करना है, तुम नहीं करना, तुम ही हो वो।
10: मुझे बात बहुत गलत लगती है।
9: हाँ,
10: मुझे ऐसा लगता है कि जो खासतौर पे मर्द हजरात में जो एंगर इश्यूज और ये वो होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको
9: छुपाना होता है,
10: फीलिंग्स रेगुलेट करना नहीं आती। अब हमारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों को ऐसे करती हूँ, मेरा माशाल्लाह से बेटा है, छोटा है बेशक, लेकिन अगर वो रोता है या कोई टेंट्रम दिखाता है तो मैं ऐसे कहती हूँ इट्स ओके, जब तुम्हारा दिमाग सेट हो जाए ना तो फिर मुझसे बात करने आना। और वाकई में फिर वो पलट कर आता है जब उसका रोना धोना 15-20 में, भाई उसके अंदर बहुत कैपेसिटी, पूरा दिन रो सकता है अगर वो चाहे तो, मेरी औलाद है ना, तो वो आता है फिर पलट कर, फिर
9: रोने देना चाहिए,
10: फिर वो आकर अपनी फीलिंग्स बकायदा बताता है, मम्मा आई एम सॉरी आई डिड दिस बिकॉज आई वाज फीलिंग दिस बिकॉज दिस थिंग हैपेंड, मैंने कहा अच्छा, फिर अच्छा फिर वो सुनने वाला कान भी होना चाहिए ना आपके पास, ये नहीं कि आपने सरसरी सा बोल दिया और आपने निपटा दिया, फिर वो सुनने वाला कान भी होना चाहिए कि अच्छा ये हुआ था, तुमने मेरे साथ ये बदतमीजी की, तुम्हारे साथ ये एंगर इशू चल रहा था, इसकी रूट कॉज क्या थी,
9: आप देखो मोस्टली जो ये हार्ट इश्यूज और ये सब कुछ होता है ना, ये कहते हैं आदमियों में ज्यादा होता है, जो नजर भी आ रहा होता है हमें, तो इसलिए ना प्रैक्टिस करनी चाहिए इस बात की कि अपने कम से कम बेटों को शुरू से आप बोलने का आदी बनाओ, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो।
10: मुझे एक फ्रेज जो है ना जो बहुत बुरा, बहुत जहरीला लगता है ना, जो लड़कों को बोला जाता है कि लड़के हो तुम रो नहीं, लड़के हो ऐसी हरकत नहीं करो,
9: लड़कियां ऐसे नहीं करती, वो दोनों ही गलत है, लड़के लड़कियां दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं।
10: अब देखो मैं बॉडी बिल्डिंग
9: करने जा रही हूं, यही मैं देख रही हूं, सरसर मतलब इतना ये बंदी फ्लेक्स करी है ना अपने मसल्स दिखा दिखा के मुझे इतनी देर से, मतलब ये लग रहा है मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग मावशी एंड सफाती, वेलकम टू यू मैटर। और छुपाने का तरीका ही है सबको, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ कहते हैं, और मस्ट बी वी मस्ट, हम अपने दुख परेशानियां किसी को क्यों बताएं, ये तो हम अपने अल्लाह को बतानी होती है, और बेशक वही हल करने वाला है, किसी को बता के क्या ही होगा, हम अपनी तकलीफ अपनों को बता सकते हैं, वो भी बहुत करीबी अपने। और जी मावशी आपने बिल्कुल सही कहा, हम मर्द हजरात बहुत केयरफुल होते होते अपनी प्रॉब्लम्स घर में नहीं बताते, ट्रू है ये बात,
10: छुपाना शुरू कर देते हैं, और छुपाने से
9: अच्छा, मोहम्मद यूसुफ खान थे वैसे ये।
10: मैं अगर दीनी लिहाज से बोलूँ ना तो दीनी लिहाज से भी मुझे ऐसा लगता है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कम्युनिटी में, हमें बाकी इंसान भी इसीलिए बनाए गए ना, और ये बोला गया है कि जब तुम कोई परेशान हो या तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए हो तो अपने मुखलिसों से आप डिबेट करो उसके बाद, लेकिन मुखलिस से
9: बिल्कुल ऐसे ही। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो मशवरा लेना सुनना था ना, ऐसा कहा जाता है लेकिन देखभाल के। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
10: आप आए, नूर आया,
9: जुल्कर्नैन आए,
2: बातें खत्म हो रही हैं कि नहीं है। तो वो एक फिल्म चली थी अमिताभ बच्चन की, एक जमाना हो गया मर्द, और उसमें डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, मर्द को दर्द नहीं
10: होता।
9: अच्छा ये उसका है, सुना वो बहुत है मैंने, मर्द को दर्द नहीं होता, ये नहीं पता था कि उधर का है।
10: ये उसी टाइम का था,
9: उस टाइम का। अच्छा
10: जहरीला डायलॉग।
2: मेरा छोटा है भाई ये बोलता था, तो जो बीच वाला है ना वो जरा तेज है, वो उसको फिर जरा ठुकाई शुकाई लगा के जब रोने लगता है तो बोलता है ये खुद ही डायलॉग बोल रहा है, रो क्यों रहा है।
9: एक ना मैंने जो देखी थी मूवी, बड़ी मशहूर हुई थी, हमारे पापा भी मतलब पटाई शटाई लगा देते थे, तो मेरा भाई जो है ना वो उस पर बोलता था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी, लेकिन शाहरुख खान बोलता उस पर नहीं लगती, नहीं लगता ऐसे कुछ करके बोलता था, तो वो भाई मेरा जब पापा उसकी पटाई करते थे तो आगे से कभी कभी, पहले तो बेचारा चुप ही रहता था, जब बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना तो आकर भी बोलता था नहीं लगता नहीं लगता, तो हमें हंसी आ जाती, पापा को पता ही नहीं है डायलॉग बोल रहा है वो।
2: तो बाकी आप हर कहते हैं ना हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और जो हर वक्त ये बताते रहते हैं ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, तो फिर उसकी अहमियत भी खत्म हो जाती
9: है।
2: बाहर रहा हूँ तो मैं अपने अब्बू को नहीं बताता था कोई मसला हो, मैं अकेला जब भी रहा हूँ और कंपनियों में बड़े मसले मसाइल, हाँ अम्मी को बताता था, फिर अम्मी का ये काम था चलो मसाला निकालो,
10: अम्मी का ही होता है।
2: तो अबू मेरे जो है ना वो बड़ा सीरियस ले लेते थे, तो वाकई आप हर एक को नहीं बताते, कुछ तो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ अब मजा आया ना तूने ये किया था ना ये हुआ तुम्हारे साथ अच्छा हुआ,
10: जैसे ले रहे होते हैं लोग।
2: तो बाकी तकलीफ या परेशानी सबसे बड़ी वही बात है, हमारे जो दोस्त कह रहे थे आप अल्लाह से कनेक्शन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियां करें, और हर मुसीबत में भी कोई उसमें आसानी या छुपी होती है या कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है। लेकिन अच्छा कुछ लोग ये हदीस ना, बल्कि मुझे याद आ गई, मैं अपनी सिस्टर मैं भी से कहता हूँ, जरा इसको रिक्वेस्ट है जरा इसको चेक कीजिएगा, कि लोग जी कहते हैं सहाबा करम कहते थे हमारे पे मुश्किलात नहीं आ गई पलता नहीं अल्लाह नाराज है, जबकि हम दुआओं में अल्लाह ताला से सेहत और वो मांगते हैं, मुसीबत मांगी नहीं जाती, अगर अल्लाह ताला कोई दे तो उस पर सब्र किया जाता है, पर ये थोड़ी है कि मेरे पे मुसीबत नहीं आ रही اللہ مصیبت بھیج نہیں, ہماری اوقات نہیں ہے. تو ایسی چیزیں کچھ مروی کر دی جاتی ہیں تو لوگ جو ہے نا مصیبتوں کا کوئی انتظار ویسے تو کوئی نہیں کرتا, لیکن میرے خیال میں یہ ان لوگوں نے گھڑی ہے جو لوگوں پہ مصیبتیں لاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اب تم صبر کرو. ہاں صحیح بات ہے.
9: نہیں نہیں یہ ویسے ہے اس طرح کی, یہ حدیث نہیں ہے بیسکلی, یہ ایک واقعہ اس طرح کا ایک صحابی کے ساتھ ہے کہ ان کی شادی ہونی تھی کسی سے اور ان خاتون نے ان سے پوچھا, مطلب اچھا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو پوری پوری آزادی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ اپنے رشتے کو خود سلیکٹ کریں. تو انہوں نے ان سے سارے حال چال پوچھا, انہوں نے کہا سب صحیح ہے, مطلب سب صحیح ہے, اچھا ساری باتیں ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے کہ کوئی بھی مشکل نہیں آتی. پھر خیر وہ تھوڑا سا آگے گئے تو ان کا کچھ ٹکرا کے ان کو کچھ چوٹ لگی کچھ ہوا, تو اس پہ انہوں نے ایک دم سے الحمدللہ کہا. تو ان خاتون نے کہا کہ اب مجھے رشتہ قبول ہے, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مشکلیں یہ نہیں کہ بہت بڑی بڑی بڑی مشکلیں, مشکل آتی تو ہے لیکن آپ کا اس پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں. تو ایسے بندے سے میں ضرور شادی کرنا چاہوں گی. تو وہ بیسکلی وہ یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ بالکل کوئی بھی پریشانی نہیں آ رہی. اب ہمارے دن بھر میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی اگر ہمارا ہاتھ بھی کٹتا ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے, اور اگر ہم اس کے اوپر واویلا نہیں مچاتے, ہم الحمدللہ کہہ لیتے ہیں, تو یہ بیسکلی صبر کرنا ہے. تو یہ اس فارم میں ہے, لیکن ظاہر سی باتیں اپنے لیے تکلیفیں نہیں مانگنی چاہیے.
2: ایسی سمجھدار خواتین اب کہاں پائی جاتی ہیں, بلکہ وہ
9: اچھا بتائیں اس پہ میں نے ایک اور, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے نا تو ایک اور چیز میں میرے دماغ میں آئی ہے, وہ بھی بتا دوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عیادت کے لیے گئے, نام کیا تھا مجھے یاد نہیں, تو وہ بہت کمزور ہو گئے تھے, انتہا سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے. تو انہوں نے, حضور نے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیا مانگ لیا اپنے لیے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ جتنا میرے اوپر آخرت میں عذاب آنا ہے نا مرنے کے بعد, وہ بھی آ جائے اس دنیا میں. تو پھر اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنے لیے یہ کیوں نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار, تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی بچائے گا اور تمہیں آخرت میں بھی بچائے گا.
10: صحیح,
2: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے سنا اور بہت زبردست گائیڈ لائن ہے بالکل. کہ ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں ہم اللہ کے قہر کو آواز نہ دیں, اللہ کے رحم کی طلبگار رہنا چاہیے.
9: بالکل.
2: اور باقی اسی ویسے ایک ان دا لائٹر موڈ نا, ایک بندے نے کہا تھا کہ یار جب ہم لوگ دوسروں کے رشتہ لینے جاتے ہیں تو اتنی اچھی لڑکیاں یہ وہ ملتی ہیں, جب ہماری باری آتی ہے سب کوچے
9: میرے سے. یہ صحیح ہے,
2: آپ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے سے بھر گئی ہیں, اب انہوں نے کہہ کہ یہ جوڑی اکٹھی نہیں چل سکتی.
9: ارے ایسا تو نہیں ہے, ہم بھرے تو نہیں تھے ابھی.
2: آپ بڑا مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کا, ایک نرم ایک گرم اور بڑا ایک کمبینیشن بڑا.
9: ہاں مجھے بڑا مزہ آتا ہے صفا کے ساتھ نا, مطلب مجھے مزہ آتا ہے, میں کسی کو تو سنا سکتی ہوں, مجھے دنیا میں کوئی تو ملا ہوا ہے جس کو میں بھی سنا سکتی ہوں.
10: دیکھو ذرا,
2: اور صفا جو ہے نا میں نے دیکھا ہے اپنی دل کی بات رکھ نہیں سکتا, یہ جو اتنی صاف گو ہے نا یہ بھی بڑا خطرناک ہے, ہر کوئی اس کو ہضم نہیں کر سکتا.
10: یہ مجھے عبید بھائی کہتے تھے صفا اتنا سیدھا نہیں ہونا چاہیے انسان کو
2: میری مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, میں صحیح نہیں ہو سکتی.
10: یہ کچھ مسئلہ ہے, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اب تو عمر ہو گئی ہے, اب کیا ہی چینج کریں گے,
2: کیا ہو گیا, کوئی 60-70 سال کی ہوگی کھیلنے
10: کو. جب اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ نے وہ دکھانا ہوتا ہے نا انٹلیکچوئل سا, تو میچور دکھانا, تو ہم اب عمر ہو گئی ہے نا, اب تو چشمہ وشمہ پہنتے ہیں, اب لوگوں کو کیا پتا چشمہ بہت پہلے سے لگا پہن ابھی رہے.
2: چلے ہو سکتا ہے کوئی اور لائن میں بھی ہو, بڑا مزہ آپ سے بات کر کے. اوکے
9: چلیں بھائی, بہت بہت شکریہ,
2: تھینک یو.
9: تھینک یو رائٹ. تو ہمارے ساتھ زلگنین صاحب تھے, اور اسی کے ساتھ جلدی سے میں لگا, مطلب جلدی سے جو جھٹ پٹ دو چار میسیجز پڑھ دوں. فائقہ کوئن کہتی ہیں کال نہیں مل رہی ہے آج میری, آنسر ہے کہ کل چیٹ جی پی ٹی ایک اچھا آپشن ہے, کافی حد تک تسلی مل جاتی ہے, تو میری ایک پرابلم کا سولوشن چیٹ جی پی ٹی نے نکالا, بس سوال صحیح سے پوچھنا آنا چاہیے ہمیں. میں نے بڑے مزے کی بات سنی, ابھی پاکستان میں ہی دو چار کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ نا چغلی لگا رہا ہے وہ, مطلب اگلا جو چغل خور ہے نا وہ اے آئی چل رہا ہے. ہوا یہ کہ کسی بیٹے نے پوچھا باپ کو زہر دینے کا طریقہ,
10: استغفر اللہ,
9: پولیس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا. تو یہ نیا چغل خور جو نا وہ ہے, اور مطلب لوگ اس قسم کی باتیں پوچھ رہے ہیں یار, اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں.
10: یہ اس کے اوپر مجھے یاد نہیں آ رہا, پچھلے دنوں میں نے بھی ایک دیکھی تھی کہانی, اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, جو کیس تھا نا وہ ایسے سالو ہوا کہ انہوں نے اس بندے کی हिस्ट्री देखी,
9: हिस्ट्री देखी
10: हाँ। ये जो एआई की,
9: लेकिन ये तो वारदात करने से पहले ही पता चल गया पुलिस को,
10: वो वारदात के बाद का जो
9: पता हाँ, ये पहले ही पता चल गया उन्होंने, वो आ गए घर पे कि ये भाई जहर बनाने वाला है इसको पकड़ो। रियाज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, मैं सफा मैम, मैम मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा परेशानियां घर वालों से छुपाई है, लेकिन हमेशा ऐसे लोगों से दिल खोल के रखा है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। वजह तरबियत है। मुझे याद है शाम को घर में फादर के साथ डिनर के लिए बैठक होती थी। मुझे याद है मेरे और मेरे फादर के बीच घंटा घंटा बात नहीं होती थी, क्योंकि मेरे साथ और उनके साथ भी कुछ था ही नहीं, लेकिन एक गैप था जो हाँ, बहुत टाइम तक
10: लड़कों के साथ होता है।
9: बढ़ा नहीं पता था, आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। तो रियाज का मैसेज है,
10: ये मैं इनकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने मियाँ के पास देखा था और वो गैप मैंने कम किया था।
9: अच्छा,
10: मैं डांट डांट की बात कराती थी उनके अब्बा से, और अब जाके जो ना मामला सही, मैं कहती अब्बा से कौन डरता है भाई, क्योंकि हम शायद बेटियां हम ऐसे बड़े बड़े, अब्बा से कौन डरता है। मैं अपने ससुर के साथ भी ऐसी थी, मैं अपने अब्बा के साथ हूँ, तो मेरे ससुर मुझसे कहते थे नहीं मेरे अंदर तो कांटे लगे हुए, तो मेरे साथ बैठते भी नहीं है। तो मैंने अपने मियाँ को बोला, मैंने कहा दिस इज नॉट राइट, जिस आदमी ने अपनी उम्र दी हो आपको, आपके पास इतना नहीं कि आप उसे हिम्मत करके बात
9: अच्छा, लेकिन
10: कर
9: वो एक ऐसे, तरीका कार भी तो होता था ना सफा, पहले के लोग जो है ना वो डरा के रखते थे, डरा डर हो
10: अरे अगर डरा कर नहीं रखते ना तो ये लड़के जो अभी इतने समझदार हैं वो उस वक्त नहीं होते ना माविश। हाँ।
9: अच्छा चलिए जल्दी से मैसेज पढ़ते हैं, फिर कॉल भी है, दो मिनट की कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माविश एंड सफा, तौफीक अल वकरा से कहते हैं, और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रेडियो एफएम 107। मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम इंसान अपने अगले आगे वाले को देख कर शेयर करना चाहिए, हो सके जिनको बता रहे हैं वही इस प्रॉब्लम का हिस्सेदार ना हो, क्योंकि आजकल अपनों में गद्दार छुपे होते हैं। और मुझे
10: उनके बारे में
9: तो याद आ गया,
10: मुझे मुझे ऐसा लग रहा है बेगम के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन है उसको ना बताना।
9: बाकी अपनी अपनी जगह पे सब समझदार हैं, अल्लाह हाफिज। और ये है कौन, उमर फारूक, उमर
10: डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन को घर से बाहर निकाल दो, बचला बेगम करके बाहर कर रही है।
9: मुबीन बुखारी खूब हंस रहे हैं। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने बाप के साथ सांस भी नहीं ले सकता था, बात तो बहुत बड़ी बात है करना। और ये है अरबाज खान, अरबाज खान,
10: हमारा भी ये हाल था, लेकिन हम अपने अब्बा के ऊपर जान देते थे हम। हाँ, अब्बा जब गुस्से में आते हम दरवाजों के बीच छुपते थे, ये तो एक बात है।
9: अच्छा, यूएसए एफबीआई इन्फॉर्म्स पाकिस्तान अथॉरिटीज अबाउट सन प्रिपेयरिंग टू किल हिज फादर यूजिंग केमिकल पॉइजन, ये हुआ सीन। खैर जी, अच्छा जी, ये हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे, हम एक कॉल लेते हैं झटपट एक मिनट की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह का शुक्र है।
10: शहजादा सलीम होशियार, कॉल लंबी गई और हम भी गए। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
11: और सफर
10: देखिए हमारे सामने जो ना खिड़की के बाहर बैठी है सारा बाजी, और वो नोट कर रही है टाइम, तो जल्दी जल्दी बात करेंगे। अब जरा ये बताएं कि ये जो आई एम फाइन वाला चीज है, ये आपको कहाँ तक अफेक्ट करती है, और आपको क्या लगता है कि क्या मसला है, क्या मामला है इसका?
11: एक्चुअली अगर आपकी अपनी जो सिचुएशन पे डिपेंड है, अगर आप अपनी कुछ ऐसी मतलब बुरी हालत या कुछ जरूरत हो या और कहीं ऐसी चीजें हो ना कि यार ये बंदे से बोलूं क्या, नहीं बोलूं, बहरहाल मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तो ये बेस्ट है। क्यों मालूम है, कई लोग ना सुनने के मुंतजिर होते कि ये कितना परेशान है, उनको मजा मिलता
9: है।
11: हाँ, इनको मजा मिलता है कि ये कितना तंगी में है और ये कितना टेंशन में है और इसकी क्या प्रॉब्लम है और इसका मतलब सैलरी कम आ रही है, और इस तरह से ना बड़े लोग है ना खुश होते हैं
9: ऐसे ही।
11: बजाय इसके कि सबसे बेहतर जो मुझे तो जहाँ तक ये हर नमाज में तो मेरा तो यही रहता है कि हसबुनल्लाह नेमल वकील, तो एक ये हाँ कि हसबुनल्लाह नेमल वकील, और अल्लाह के सामने बंदा उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो जिद्दे की हालत में होता है। क्यों ना मस्जिद का रुख किया जाए और क्यों ना शेयर किया जाए अपने सारे मामले को, है ना, और 100% दुरुस्त होना ही होना है। बाकी तवक्कुल रखना, इवन तो ये खास से खास मुखलिस भी क्यों ना हो ना, तो वो तो मतलब एक ये कि वक्त जाया है कि आपको अगर कुछ फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, कोई गारंटी नहीं है उसकी।
9: सही हो गया भाई,
11: मजे ले लेंगे
9: हमारे पास टाइम कम है तो हम इसलिए बात पूरी नहीं सुन सकेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत जबरदस्त।
11: उनके क्वीन सिस्टर के कॉल,
9: हाँ उनको भी हम नहीं कर पाए क्योंकि पता है क्या क्या होता है, कॉल हम जब मिला पाते हैं जब हमारे पास कॉल ना आ रही हो, लेकिन कॉल आ रही हो ना तो उस वक्त हम किसी को कॉल कर नहीं सकते, इसी वजह से आपको भी नहीं कर पा रहे थे काफी दिन से। ठीक है चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सही जी, तो शहजाद सलीम की बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोग सफाई इस इंतजार में होते हैं और मैंने देखा है ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ये वाली होती है हमारे साथ मसला है तो उसके साथ क्यों नहीं, और फिर उस इंतजार में बैठे रहते हैं, जबकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कहा यह गया है कि आप अगर अपने लिए जो दुआ मांगते हो अपने भाई के लिए भी मांगो तो अल्लाह ताला वो भी दे देगा जो तुम अपने लिए मांग रहे हो और उसको भी दे देगा, तो हमें अच्छाई की तरफ रखना चाहिए मामला, बजाय इसके कि हम ये कह रहे हो कि मैं परेशान हूं तो वो परेशान क्यों नहीं है, मैं हूं तो उसको भी परेशान होना चाहिए।
10: मुझे तो एक जवाब बिल्कुल सेट लगता है, आइंदा की बात मुझसे कोई पूछेगा ना मैं तो ये कहूंगी रनिंग ऑन, मुझे आप पूछें हाउ आर यू रनिंग ऑन चाय एंड होप, बस मेरा ये आंसर होना चाहिए, रनिंग ऑन करक एंड होप, बस पॉजिटिविटी रनिंग ऑन कॉफी एंड होप। चलो जी
9: कड़क कड़क चलो जी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।

0: सामने आ जाती है। एक मकूला है जिसका खुलासा यह है कि किसी शख्स के बारे में तारीफ सुनी तो इंतजार करो ताकि वो बोले, अब उसे बोलने दो ताकि तुम उसे पहचान लो। कोई इंसान की पहचान सिर्फ लिबास, नशिस्त या जाहिरी शख्सियत से नहीं होती, उसके अल्फाज भी बताते हैं कि उसकी फिक्र कितनी गहरी है। अब मकसद ये भी नहीं कि इंसान हमेशा खामोश रहे, खामोशी अपनी जगह हिकमत है और मुनासिब मौके पर गुफ्तगू अपनी जगह। अरबी का मारूफ उसूल है लिकुल मकाम मकाल, हर मौके की अपनी मुनासिब बात होती है। आप किसी रिश्तेदार से मिलने गए, किसी दोस्त की इयादत के लिए बैठे हैं या किसी मजलिस में शरीक हैं तो जरूरी नहीं कि मुसलसल आप ही बोलते रहें, कभी अच्छी सोहबत सिर्फ साथ बैठने से भी कायम होती है। अपनी राय हर जगह मुसल्लत करना और हर मौजू में खुद को माहिर साबित करना जरूरी नहीं, और जब आपसे पूछा जाए आपकी इस बारे में क्या राय है तो अगर आप जानते हैं इत्मीनान से बताइए, लेकिन अगर नहीं जानते तो मुझे मालूम नहीं कहना सीख लीजिए।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107।

दुरुस्त हो। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि मेरा काम कितना मकबूल हुआ, उसका काम कितना मकबूल हुआ। कभी अपने दिल से सवाल भी कीजिए कि मैंने काम शुरू किसके लिए किया था। खुसूसन आज सोशल मीडिया के दौर में ये सवाल बहुत अहम है। हजारों लोग आपको सुन सकते हैं, लाखों आपकी वीडियो देख सकते हैं, एक बात सैकड़ों मरतबा शेयर हो सकती है। ये कामयाबी खुशी भी देती है लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। जो आयत आपने पढ़ी क्या सही पढ़ी थी, जो हदीस बयान की क्या दुरुस्त थी, जो वाकया सुनाया क्या तहकीक के बाद सुनाया, और अगर सब दुरुस्त था तो एक सवाल फिर भी बाकी है, नीयत किसके लिए थी। इस तरह इखलास एक मरतबा दुरुस्त करके हमेशा के लिए महफूज कर देने वाली चीज नहीं, इंसान को बार बार अपने दिल की तरफ लौटना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए तो खौफ का इंसानी एहसास भी मौजूद था, मगर अल्लाह की मदद भी साथ थी। आसा अल्लाह के हुक्म से अजीम निशानी बन गया, समंदर रास्ता बन गया और फिरौन जैसी ताकत बेबस हो गई। लेकिन इस पूरे सफर में एक उसूल वाज़ेह रहा कि बंदा अपनी इस्तेआत के मुताबिक कदम उठाता है, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करता है। यही सबक मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी हमें मिलता है। कुरान इंतहाई कमजोरी की हालत में उन्हें फरमाया गया, वहुज़ी इलैकि बिजज़ाइन नखलती तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिया, खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरेंगी। अल्लाह ताला बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के भी रिज़्क़ अता कर सकता था, मगर यह इंसान को एक सबक दिया गया कि अपनी तरफ से सबब इख्तियार करो। आपकी कोशिश बज़ाहिर छोटी हो सकती है लेकिन आपका काम कोशिश करना है। आप बेहतर मुकर्रर बनना चाहते हैं, तरबियत हासिल कीजिए। ज़बान बेहतर करना चाहते हैं, मश्क कीजिए। इल्म चाहते हैं, पढ़िए। किसी मैदान में कामयाब होना चाहते हैं, उस मैदान के लोगों से सीखिए। सिर्फ ये ख्वाहिश काफ़ी नहीं कि काश मैं भी फला शख्स जैसा कामयाब हो जाऊं। हम कामयाब शख्स की मंजिल देखते हैं लेकिन अक्सर वो रास्ता नहीं देखते जिस पर चलकर वो वहां पहुंचा। उसके पीछे कितनी नाकामियां थीं, कितनी मशक थी, कितनी कुर्बानियां, कितनी रातों की मेहनत और कितने बरसों का सब्र था, ये सब नजरों से ओझल रहता है। अब मशक का तरीका ये भी है कि अच्छे लोगों को देखकर उनसे सीखा जाए। एक नौजवान किसी अच्छे मुकर्रर को देखता है, उसके अंदाज़े गुफ्तगू का जायजा लेता है, किसी अच्छे होस्ट से सवाल करने का तरीका सीखता है, किसी कामयाब मीडिया पर्सन की प्रेजेंटेशन को समझता है। इब्तिदा में इंसान दूसरों से सीखता है, फिर रफ्ता रफ्ता अपना मुनफरद अंदाज पैदा करता है। गुफ्तगू की महारत भी सिर्फ किताब पढ़ने से मुकम्मल नहीं होती। घर वालों से बात कीजिए, भाई बहनों से गुफ्तगू, दोस्तों के साथ किसी मौजू पर बाकायदा मुकालमा, लोगों से मिलने और मुख्तलिफ मजलिसों में बैठने का तजुर्बा हासिल कीजिए। बाज़ बच्चे कम उम्री ही से बड़ों की मजालिस में बैठते हैं, मेहमान का इस्तकबाल देखते हैं, खिदमत का तरीका सीखते हैं, बात करने और सुनने का सलीका हासिल करते हैं। फिर 12-13 साल की उम्र में भी उनके अंदाज में एक एतमाद दिखाई देता है। ये कोई पैदाइशी जादू नहीं, बहुत कुछ मुसलसल मशक का नतीजा होता है। तो सामने कराम, हमने बात शुरू की थी गुफ्तगू के फन, क़ियादत और लोगों के दिलों तक पहुँचने के तरीके से। लेकिन जब कुरान के नमूनों को देखते हैं तो मालूम होता है कि अच्छी गुफ्तगू सिर्फ ज़बान की महारत नहीं, उसके पीछे हिकमत, नरमी, इखलास, आजिज़ी और सबसे बढ़कर अल्लाह से मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। उसी की एक रोशन मिसाल लुकमान हकीम और उनके बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। अल्लाह ताला ने लुकमान को हिकमत अता फरमाई, लेकिन देखिए वो अपने बेटे की तरबियत किस अंदाज में करते हैं। न तहकुमाना लहजा, न अपनी बड़ाई का इजहार, न ये अंदाज के मैं बाप हूँ बस मेरी बात मानो, बल्कि मोहब्बत से खिताब करते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और कीजिए, हुक्म बहुत बड़ा है मगर लहजा कितना नरम है, या बुनई प्यारे बेटे। यहाँ वालिदैन के लिए सबक है। बच्चे की तरबियत सिर्फ ये नहीं कि ये करो ये मत करो, असल तरबियत तो ये है कि उसके दिल तक पहुँचा जाए, उसे बात की वजह समझाई जाए और सबसे बढ़कर उसके दिल को अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। वालिदैन हमेशा बच्चे के साथ नहीं रह सकते। एक दिन बच्चा बड़ा होगा, अपनी ज़िंदगी, अपनी मुलाजमत, अपने घर और अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए उसे सिर्फ ये ना सिखाइए कि अब्बू देख रहे हैं, अम्मी देख रही है, बल्कि उसके दिल में ये शऊर पैदा कीजिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। लुकमान अपने बेटे से फरमाते हैं कि बेटा, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो, किसी चट्टान में छुपा हुआ हो, आसमानों में हो या जमीन की तहों में, अल्लाह उसे सामने ले आएगा। कितनी गहरी तरबियत है। गोया बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। इसी तरह बेटे को अकीदे के साथ

0: जिंदगी का पूरा रास्ता बताते हैं, नमाज कायम करने की बात आती है, नेकी की दावत, बुराई से रुकने की बात, और जो मुश्किलात आए इस पर सब्र करने की तलकीन, और उसके बाद फौरन शख्सियत की तरबियत के लोगों के सामने अकड़ कर न चलो, तकब्बुर न करो, अपनी चाल में इत्तेदाल रखो और आवाज भी नीची रखो। सामने कलम औलाद को सिर्फ सहूलत नहीं शख्सियत भी दीजिए। यहाँ वालिदैन के लिए भी सोचने की एक बात है कि हम बच्चे के लिबास, स्कूल, खाने, मोबाइल और मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, और यकीनन करनी चाहिए, लेकिन उसके दिलो दिमाग में क्या दाखिल हो रहा है, उसकी सोच कैसे बन रही है, उसका अल्लाह से ताल्लुक कैसा है, गुफ्तगू का अंदाज कैसा है, ये भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मजीद सामने कराम, दीन का मामला हो तो इस उसूल को अपना लीजिए कि हर आवाज के पीछे न चलें। आज सोशल मीडिया ने मालूमात तक रसाई आसान कर दी है, लेकिन इसी आसानी ने एक मुश्किल भी पैदा कर दी है कि हर बोलने वाला आलिम नहीं, हर मकबूल वीडियो दलील नहीं, और लाखों व्यूज किसी बात को शरी तौर पर सही नहीं बना देते। जिसम बीमार हो तो हम अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, किसी नामालूम शख्स से ये नहीं कहते कि आप सामने आ गए हैं, मेरा इलाज कर दीजिए। तो फिर दीन, जो हमारी दुनिया और आखिरत का मामला है, उसे हर नामालूम आवाज के हवाले कैसे कर दिया जाए? दीनी मसला हो, फतवा हो, या कोई हसास शरी सवाल, मोतबर और अहले इल्म लोगों की तरफ रुजू कीजिए। अपने जिस्म के इलाज में एहतियात करते हैं तो अपने दीन की हिफाजत में उससे बढ़कर एहतियात होनी चाहिए, और साथ ही इंसान को अपनी सलाहियत भी पहचाननी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीज़ुन अलीम। इंसान को मालूम होना चाहिए कि वो किस जिम्मेदारी को अच्छी तरह अंजाम दे सकता है। अपनी खूबी पहचानिए और अपनी कमजोरी भी, क्योंकि जो शख्स खुद को ही नहीं जानता उसके लिए खुद को बेहतर बनाना मुश्किल हो जाता है। मजीद सामने कराम, अंदाजे गुफ्तगू में रहमत की रियायत की जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान नकल करता है कि एक तरफ तौहीद और शिर्क का बुनियादी इख्तिलाफ है, दूसरी तरफ सामने अपना वालिद है। अब देखिए कुरान हमें इख्तिलाफ का अदब कैसे सिखाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार कहते हैं, या अबती, अब्बा जान, अब्बा जान, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती है और न देखती है? फिर या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरी बात मानिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। और फिर आता है, या अबती इन्नी अखाफु अयमसका अज़ाबु मिनर रहमान। अब्बा जान, मुझे खौफ है कि कहीं आपको रहमान की तरफ से अजाब न पहुंचे। सामने कराम, अंदाज जरा इसको देखिए, इख्तलाफ तो शदीद है मगर जबान में एहतराम है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी यहाँ बड़ा सबक है कि हर इख्तलाफ को लड़ाई बनाना जरूरी नहीं। घर में, दफ्तर में, दोस्तों में, हत्ता के दीनी इख्तलाफ में भी आप अपनी बात मजबूती से कह सकते हैं और जबान में नरमी बाकी रख सकते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें गुफ्तगु से आगे यकीन के मकाम पर ले जाती है। जब कौम ने उन्हें आग में डालने का फैसला किया, जाहिरी असबाब एक एक करके खत्म होते नजर आए, लेकिन जिस दिल का ताल्लुक अल्लाह से हो, असबाब खत्म होने पर उम्मीद खत्म नहीं करता। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाला हो जा। वही आग जो जलाने के लिए भड़काई गई थी, अल्लाह के हुक्म से सलामती बन गई। हर तरह सामने कराम, आज की गुफ्तगू को समेटें तो कुरान के ये किरदार हमें मुख्तलिफ मगर एक दूसरे से जुड़े हुए सबक देते हैं। लुक्मान हकीम हमें सिखाते हैं कि नसीहत करनी हो तो मोहब्बत और हिकमत से कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें दिखाते हैं कि इख्तिलाफ में नरमी, आजमाइश में सब्र, और मुश्किल तरीन लम्हे में भी अल्लाह पर यकीन कैसे बाकी रखा जाता है। खुलासा कलाम यही है कि मौसर गुफ्तगू सिर्फ खूबसूरत अल्फाज का नाम नहीं, वो दिल से निकलने वाली ऐसी बात है जिसके पीछे इल्म हो, नीयत में इखलास हो, अंदाज में नरमी हो, शख्सियत में आजिजी हो और दिल में अल्लाह पर यकीन हो। अपने बच्चों से बात करें तो उन्हें अपने हुक्म का नहीं, अपने रब का बंदा बनाइए। लोगों से इख्तिलाफ करें तो हक न छोड़िए मगर अखलाक भी साथ में हो। इल्म हासिल करें तो खुद को बड़ा न समझे बल्कि जिम्मेदारी को बड़ा समझे। अल्लाह ताला हमें हिकमत के साथ बोलने, तवज्जो के साथ सुनने, आजिजी के साथ सीखने, मोहब्बत के साथ तरबियत करने और हर हाल में उसी पर कामिल भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। तमीम कराम, प्रोग्राम आज की दुआ में एक नहायत ही अजीम दुआ हम पेश करने वाले हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त या नमाज की तरफ निकलते वक्त मांगा करते थे। इस दुआ में वातिन और जाहिर में नूर, हिदायत और कल्बी सुकून की तलब है। मतन दुआ यूं है, اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامة। ए अल्लाह, मेरे दिल, आंखों और कानों को मुनव्वर फरमा दे और मेरे दाएं और बाएं और मेरे आगे और पीछे और मेरे ऊपर और नीचे नूर ही नूर कर दे और क़यामत के दिन मेरे लिए नूर को ज़्यादा बड़ा कर दे। दिल को मुनव्वर करने का मतलब यह है कि दिल को ऐसा नूर अता फरमा जो हक़ व बातिल में फ़र्क करे और हसद व कीना से पाक करे। निगाह में नूर का मतलब है ऐसा नूर जो हराम से बचाए और पाकीज़ा मनाजर पर मरकूज रखे। इसी तरह समाअत को भी नूरानी बना जो जिक्र और तिलावत

0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ अपनी नमाज में सजदे में या नमाज के लिए जाते वक्त पढ़ी थी। इस दुआ का मकसद ये है कि बंदा अपनी पूरी साथ और तमाम जिहाद में अल्लाह की हिदायत और नूर का तालिब बन जाए और इस तरह शैतान को कोई रास्ता न मिले। मजीद ये दुआ हमें याद दिलाती है कि असल रोशनी बिजली की या दुनियावी नहीं बल्कि ईमान, तकवा और अल्लाह की हिदायत का नूर है। यही नूर हमें दुनिया में सीधी राह पर रखता है और आखिरत में कामयाब बनाता है। आइए हम सब मिलकर ये दुआ एक मरतबा दोहराते हैं। اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامة।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने किराम, एक ही आयत, एक ही अल्फाज, एक ही माना, लेकिन कभी कोई शख्स उसे पढ़ता है तो हम सुनते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी वही आयत किसी ऐसी आवाज, ऐसे ठहराव और ऐसे एहसास के साथ पढ़ी जाती है कि इंसान चलते हुए भी रुक जाता है, दिल मुतवज्जे होता है, आंख नम हो जाती है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुरान को खूबसूरत आवाज, तरतील और मुनासिब अंदाज के साथ पढ़ने की तरगीब मिलती है। बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज में सूरह तीन पढ़ते हुए सुना, वत्तीन वज़्ज़ैतून, और वो फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत आवाज वाला किसी को नहीं सुना। मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद भी मनकूल है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ों से खूबसूरत बनाओ। और इस तरह मुख्तलिफ रवायात में हुस्न सौत की तरगीब के दूसरे अल्फाज भी आए हैं, यानी कुरान पढ़ते हुए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक आवाज़ को खूबसूरत बनाना, तिलावत को संवारना, अल्फाज को साफ अदा करना, ठहराव के साथ पढ़ना, ये सब कुरान के साथ हुस्न तआमुल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ याद रख

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. Aaj hum ek bahut hi ahem mauzu par baat karenge jo ki bahut sari galatfehmiyan hain. वेट या हेल्दी वेट क्या होता है आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ वेट लॉस टिप्स नजर आती हैं बहुत से तरीके जो हैं वो शेयर किए जा रहे होते हैं कोई कहता है कि आप ब्रेकफास्ट छोड़ दें कोई कह रहा होता है कि सिर्फ एक फूड जो है एक तरह का खाना जो है वो आप खाएं मगर क्या इस तरह करने से जो वजन है वो कम हो जाता है और इसी तरह से कोई ये कहता है कि बहुत कम कैलोरीज जो हैं वो आपको लेनी चाहिए कोई दिन में बहुत ज़्यादा वेट लॉस का दावा भी करता हुआ नज़र आता है लेकिन हेल्थ का मकसद सिर्फ स्केल पर एक नंबर कम करना नहीं होता बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं अब ये कि हेल्दी वेट का मतलब जो है वो हमें पता होना चाहिए हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है उम्र कद जिन्स सब उसके लिहाज से या लाइफस्टाइल से जेनेटिक्स हैं मसल मास है और जो हेल्थ कंडीशंस हैं सब हमारे वजन पर हमारे वेट पर असरअंदाज होती हैं इसलिए सिर्फ वजन देखकर किसी शख्स की मुकम्मल सेहत का फैसला नहीं किया जा सकता या आप ये देखें कि किसी शख्स का वजन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सेहतमंद है हेल्दी है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है अब जहाँ क्रैश डाइट का जो है वो मशवरा दिया जा रहा होता है लेकिन क्रैश डाइट जो है वो बहुत बड़े मसाइल भी पैदा कर सकती है बहुत सख्त डाइटिंग से

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
4: FM 107 presents Tech Update.
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर, FM 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, सिर्फ काम मेरा नहीं है अपडेट देने का, आप मुझे अपडेट रखिए प्लीज। बताइए कोई ऐसा गैजेट आपने इस्तेमाल किया है रिसेंटली जो आपको लगता है ये भाई काम का है, ये दुनिया को पता नहीं है, पब्लिक अनजाने, तो जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स आप जानते हैं FM 107 का। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे अराउंड है, एंड पीपल आर बाइंग इट, पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। ये इसकी कहानी ऐसी है ना कि ये धीरे धीरे इवॉल्व होता चला जा रहा है, बट पीपल आर कंफ्यूज्ड कि जाएं कहाँ। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट ग्लासेस की, जो मेटा रेबैन इंटीग्रेशन के बाद ऐसा हो गया है कि गिमिक से आगे बढ़ गए। पहले लगता था ये

0: अरे सिर्फ शोशेबाजी है, ये चश्मा पहन लिया और उसमें जो है आपको एक बटन दे दिया साइड में और आप गाने वाने सुन रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हो गई थी। बट देन जब मेटा रेबेन इंटीग्रेट हुआ और लगा कि अब कुछ हो सकता है तो लोग इसे खरीदने लगे। इट मूव्ड बियॉन्ड गिमिक्स और हर दिन का एसेंशियल बन गया। तो अभी बिल्ट इन मल्टी मॉडल AI, कैमरा कैप्चर, ओपन एयर ऑडियो, हेडसअप डिस्प्ले ओवरलेज, मेटा और रेबेन इसे और लाइट वेट करने में लगे हुए हैं। दे आर प्लानिंग कि सोशली एक्सेप्टेबल बनाया जाए और फंक्शनल बनाया जाए, क्योंकि देखिए यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप ग्लासेस में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसे थोड़ा सा फ्रेम अलग हो सकता है कि नहीं, दैट कैन नॉट बी डन, ये अभी पॉसिबल नहीं है। बट जो करंट मॉडल है मेटा रेबेन का, वो बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक अगर पूरी फील्ड में देखा जाए कि कौन से मेटा ग्लासेस ज़्यादा पहने जा रहे हैं, सॉरी ग्लासेस पहने जा रहे हैं, स्मार्ट ग्लासेस, तो उसमें मेटा रेबेन ग्लासेस ऊपर ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने कोई दूसरा वर्जन ऐसा कुछ लॉन्च करने का नहीं कहा है, बट दे आर डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग मोर एंड मोर इनटू देयर ग्लासेस ताकि वो खरीदा जा सके। इंडिया की बात करूं तो अभी भी ये अराउंड 30,000 से 40,000 ऐसे प्राइस टैग के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट दैट दे आर गिविंग। एंड ये अभी कतर में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं, यू स्टिल हैव टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड। पर अगर आप खरीद चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं तो बहुत जरूरी होगा। आई थिंक और भी स्मार्ट ग्लासेस हैं जो लोग लेना चाहते हैं, बट लोगों को इतना भरोसा नहीं है बिकॉज वो गिमिकी लगता है। तो स्मार्ट ग्लासेस आप कौन से यूज कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा, एंड आई वुड लव टू नो, क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्ट ग्लासेस हैं जो कतर में अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, और सैडली उनमें से मेटा रेबेन ग्लासेस हैं जो शायद आपको हेडसअप डिस्प्ले दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो अवेलेबल होने चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। व्हाट फिलहाल के लिए आपका एक्सपीरियंस स्मार्ट ग्लासेस को लेकर कैसा है ये जरूर बताइए, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इट। अभी क्या है वो आपने देखा होगा Xiaomi ने भी लॉन्च किया, Xiaomi का हो चुका है वो इमीजिया स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस जो आपको साउंड देते हैं। एंड इसके अलावा स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस के भी 2-3 उन्होंने वर्जन निकाले हैं। फिर आप देख सकते हैं JBL ने भी इसमें अपना एक राउंड खेल दिया है, उन्होंने ऑडियो सनग्लासेस लॉन्च किए हैं। अब लोग बोलेंगे JBL है भाई, Xiaomi है भाई, हलवा थोड़ी है। और 600 रियाल का प्राइस टैग इज नॉट अ बैड प्राइस टैग, क्योंकि उतने में ही आपको जो है मिल जाते हैं ये एयरबड्स एंड ऑल। सो अभी Xiaomi, JBL एंड बाकी और कंपनीज मार्केट में आ चुकी, लेकिन कतर में जो अवेलेबल हैं फिलहाल JBL के हैं। एंड अगर मेरा पर्सनल रिव्यू आप जानकर खरीदने के लिए पहुंचे तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड Xiaomi और JBL के, बट JBL ओवर Xiaomi फॉर ऑडियो एनी डे, दे आर फार फार बेटर। बट ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर उसका प्रीमियम वर्जन की तरफ जाएंगे जिसमें 2 फ्रेम्स अलग से दिए हुए हैं Xiaomi ने, तो 2 फ्रेम्स मिलेंगे आपको, एक तो लिटरल एविएटर टाइप है सनग्लासेस हैं और एक जो है नॉर्मल ग्लासेस हैं, दोनों में अवेलेबल हैं। दोनों के प्राइस टैग JBL के मुकाबले 400 रियाल ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज वर्थ इट, क्योंकि ग्लासेस एनी वे थोड़े से महंगे होते हैं यहाँ पर, तो दैट इज हाउ इट इज। बट डू यू हैव यू बॉट एनी स्मार्ट ग्लासेस रिसेंटली और आर यू प्लानिंग टू बाई इट? ये तो मेरा रिव्यू है, मैंने आपको बता दिया, पर आपने खरीदे तो बताइएगा। FM107 Qatar हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ग्लासेस का मामला भी आगे जा रहा है भाई, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी दुनिया में जिसमें टेक्नोलॉजी ना आए। बट फॉर नाउ दिस वाज़ द टेक अपडेट्स, मिलते हैं अगले में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में आपसे बात करते हैं और आपको इत्तला करते हैं कि कैसे नए जमाने के नए स्कैम से आप बच सकते हैं। इवन हम सॉल्यूशन भी देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह का स्कैम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। वेल दोस्तों, एक स्कैम जो बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है वो है टिफिन का स्कैम। है टिफिन का स्कैम, ये किस तरह का स्कैम है? बात करते हैं कि अगर ये किस तरह का स्कैम है, तो ये स्कैम आम तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो नए नए किसी शहर या कंट्री में आते हैं। हो सकता है कि आने वाले एक महीने में लोग आ रहे हों, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हों, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे बैचलर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, लो वेज वर्कर्स होंगे, कुछ नॉर्मल वर्कर्स होंगे। इन लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है, हम लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है। कई बैचलर्स के फैमिली यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर अच्छी सैलरी में भी आए, तो कई बार आप प्रेफर करते हैं कि खाना ना बनाना पड़े। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि भाई जो टिफिन सर्विस वाले, उनसे हम टिफिन ले लिया करें, उनको पेमेंट कर दिया करें। लेकिन ये एक स्कैम भी हो सकता है। तो फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली यहां पर नहीं है। वो सोशल मीडिया पे, मार्केट प्लेस में, व्हाट्सएप के ग्रुप पर और दूसरे क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर बहुत ही अट्रैक्टिव और फेक एड्स पोस्ट करते हैं। इन एड्स में वो बहुत ही साफ सुथरे रूम्स और टेस्टी टिफिन की फोटोज लगाते हैं, और उनका प्राइस मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा कम होता है, है ना। पर डे के हिसाब से भी जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा यार 7 या 8 रियाल या 4 रियाल में अगर मुझे एक टाइम का खाना मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। और इसी तरह का लोभ जो है, इसी तरह से आपको ललचाया जाता है। जब कोई ज़रूरतमंद बैचलर या वर्कर इन फेक एड्स को देखता है तो वो फौरन उनसे कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उन्हें बहुत तमीज से बात करने का आइडिया होता है। वो तमीज से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, वो आपको अपने जाल में फंसाते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह के टिफिन या रूम के लिए लाइन में लग जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्म चाहिए तो भाई अभी आपको थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हमारे जहां पर ये किचन है, जहां पर ये खाना हम बनाते हैं, यहां पर लिमिटेड ही टिफिन बनाया जाता है। और अभी हमारे पास 2-4 टिफिन बनाने के ही ऑप्शंस पड़े हैं, यानी कि 2-4 टिफिन ही बना सकते हैं।

0: तो ऐसे में आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, या कई बार लोग कहते हैं कि आप फला जगह आइए और वहां पर आप पेमेंट कर दीजिए, हाफ पेमेंट एडवांस में कर दीजिए, आप लोकेशन भी देख लेंगे और आप खाना भी खा लीजिएगा। तो ऐसे में आप सोचते हैं यार खाना भी ऑफर कर रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। तो आप जाते हैं, उनको हाफ पेमेंट करते हैं, वो कहीं पर आपको खाना बिठा के खिलाते हैं और कहते हैं ये है टिफिन। तो आप ऐसे में भरोसा कर लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं, लेकिन खेल यहाँ शुरू होता है जब वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, चाहे एडवांस चाहे आपको खाना खिलाने के बाद किसी लोकेशन पे। आप फिर जब उस लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि आपको दो चार दिन तक कोई आइडिया ही नहीं होता कि खाना आ नहीं रहा है, आपने पेमेंट कर दिया है और फिर आपको एहसास होता है कि जो आपने एडवांस में पेमेंट किया है वो एक्चुअली स्कैम है, क्योंकि ना ही वो बंदा कॉल उठाता है, ना ही वो आपके मैसेज का जवाब देता है, और जो आपने पैसा सेंड किया है उसको आप कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे में सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स बंद हो जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है जो पोस्ट वगैरह अगर की जाती हैं। तो इस फ्रॉड का शिकार होने के बाद उन बैचलर्स और वर्कर्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना होता है अगर रूम्स की तलाश कर रहे हो, और अगर खाने की बात है तो खाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि पेमेंट आप एडवांस कर देते हैं। महीनों की मेहनत से कमाई हुई हार्ड अर्न जो मनी है, जो कैश है, वो भी एक झटके में चला जाता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और अनजान शहर में उनके पास दोबारा खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में कुछ तीन तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले, जो बहुत ही चीप में आपको टिफिन दे रहा है, इन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। उल्टा आप एडवांस पेमेंट ना करके अपने ही घर पे जहां पर आप रह रहे हैं वहां से आप टिफिन मंगवाएं, जो टिफिन आपको देने की बात कर रहा है सस्ते पैसे में, सस्ते अमाउंट में, उनसे टिफिन मंगवाएं 8-10 दिन, उसके बाद फिर पेमेंट दे। एडवांस में टिफिन आता है, पेमेंट एडवांस में नहीं होती है। तो पहले एक महीना खा ले, उसके बाद पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये तरीका आमतौर पे हर जगह फॉलो होता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपसे एडवांस में पेमेंट मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। तीसरा तरीका है, अगर आपको एडवांस पेमेंट करना भी है तो किसी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू करें या फिर किसी के ऐसे अकाउंट में करें जिससे आप ट्रैक भी कर सके कि खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा गायब हो जाए तो आप उस शख्स को अकाउंट के थ्रू ट्रैक कर सके। तो ये कुछ आम तरीके हैं जिनसे आप फ्रॉड होने से या आपके साथ स्कैम होने से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

सोचिए एक बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा है, बॉलर रन अप लेता है और फिर एक ऐसा कवर ड्राइव निकलता है कि बॉल बाउंड्री की तरफ बिजली की तरह चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये क्लास थी, स्टाइल था और पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे सुपरस्टार का अंदाज था जिसे दुनिया माजिद खान के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इसी लेजेंड की जिन्होंने अपनी स्टाइलिश बैटिंग, पावरफुल स्ट्रोक प्ले और ऑलराउंड क्रिकेटिंग एबिलिटी से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास मकाम बनाया। माजिद खान नाम तो सुना होगा आपने। माजिद खान की पैदाइश 28 सितंबर 1946 को लुधियाना यानी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके वालिद जहांगीर खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे, जबकि उनके कजिन इमरान खान आगे चलकर पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप विनिंग स्किपर बने। लेकिन माजिद खान की पहचान सिर्फ एक मशहूर क्रिकेटिंग फैमिली का हिस्सा होना नहीं थी। उन्होंने अपने कारकर्दगी से अपना नाम जो था वो उन्होंने बनाया। माजिद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ बल्लेबाजी तक लिमिटेड नहीं था। शुरुआती दौर में वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी असली पहचान एक स्टाइलिश टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर बनी। माजिद की बैटिंग में एक खास एलिगेंस थी। उनका स्टांस पुरसुकून होता, फुटवर्क बैलेंस्ड होता और जब वो फ्रंट फुट पर आकर कवर या एक्स्ट्रा कवर के थ्रू शॉट खेलते तो क्रिकेट देखने वालों के लिए वो एक खूबसूरत मंजर होता। उनका सबसे यादगार शॉट था कवर ड्राइव। ऐसा लगता था जैसे गेंद को जोर से नहीं बल्कि टाइमिंग और प्लेसमेंट से बाउंड्री तक भेजा जा रहा हो। माजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 63 टेस्ट मैचेस खेले और उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था 167। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट रहा। वो पाकिस्तान के उन अर्ली क्रिकेटर्स में शामिल थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट के डेवलपिंग एरा को एक्सपीरियंस किया। अच्छा, ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट सेंचुरियन यानी पहला सेंचुरी स्कोर करने का जो रिकॉर्ड है वो माजिद खान के पास है। He became the first batsman ever for Pakistan to score a ODI century. तो तारीखी बात है और माजिद खान उस जमाने में जब ODI क्रिकेट एक नया गेम था और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा टक्कर देने का था, तो ODI क्रिकेट के जो फॉर्मेटिव ईयर्स में कई ऐसे बल्लेबाजों ने उस फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग या यू नो आई वुड से कि बहुत एंटरटेनिंग बनाया था, उनमें से माजिद खान वॉज वन ऑफ दोज लीडिंग बैट्समैन। और फिर आता है उनके करियर का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, कप्तानी। माजिद खान ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की लीडरशिप भी की। कप्तान के तौर पर उनका अप्रोच जनरली काम और कंपोज माना जाता था। वो क्रिकेट को सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं बल्कि एक टीम गेम के तौर पर देखते थे। 1970 और 1980 के पाकिस्तान क्रिकेट के दौर में माजिद खान एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी पर्सनालिटी भी उनके गेम की तरह क्लासी थी। उनके क्रिकेटिंग करियर में अप्स एंड डाउन्स भी आए, लेकिन उनकी बैटिंग का स्टाइल और उनका टेम्परमेंट फैंस की यादों में हमेशा जिंदा रहा। 1983 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी माजिद खान का क्रिकेट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से याद रखे जाते हैं और कुछ अपने स्टाइल की वजह से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माजिद खान वॉज नेवर अ सक्सेसफुल क्रिकेटर और अ बैट्समैन। He was immensely popular and he was immensely successful. Statistics say har cheez up, you know, you cannot measure a player's caliber. Ji haan, Don Bradman ke statistics bhi utna hi important hai jitna Sunil Manohar Gavaskar ya Virat Kohli ya Babar Azam ke. Majid Khan bhi usi level ke the jinko English county cricket mein wahan ke us time ke journalists kehte the ki He is a majestic Khan. Majestic Khan से मुराद यह है कि माजिद खान के
जो यू नो जो पर्सनालिटी में एक क्वालिटी ये थी कि अगर कोई निक हो यानी बॉलर अगर गेंद डालने के बाद उनके बल्ले से लगकर कहीं विकेट कीपर या स्लिप फील्डर के पास अगर वो कैच के तौर पर या कुछ भी हो पैड पे लगने के बाद अगर कोई अपील करता तो माजिद खान बिना किसी देखे बिना रुके बिना किसी झिझक के वो क्रीज से सीधा पेविलियन के रास्ता अपना लेता था. दैट वॉज माजिद खान बिकॉज उनको लगता था कि अगर बॉलर ने अपील किया है तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है. तो ये नेवर प्रोटेस्टेड ये ही नेवर यू नो लुक्ड इनटू द अंपायर्स आईज कि भाई ये क्या हो रहा है मैं आउट तो नहीं हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ चलिए आप. उस जमाने में तो डीआरएस वीआरएस तो कुछ भी नहीं था. उस जमाने में कुछ भी नहीं था कि आप नो थर्ड अंपायर या यू नो जो कहते हैं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बताते हैं कि निक हुआ है या नहीं हुआ है आवाज़ आई है नहीं आई है. तो ये सब चीज़ें उस जमाने में तो था नहीं. तो उस टाइम माजिद खान वॉज सो पॉपुलर इनके अपने ही एक जो कहते हैं ना कि आउट से कि उनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस जो बात थी कि चलो भाई लग गया है तो लग गया मीन्स यू नो आई माइट बी आउट. तो ये जो बड़प्पन वाली बात थी वो माजिद खान के अंदर में सबने देखा और इसी वजह से उन्हें कहा भी जाता है कि ही वॉज मैजेस्टी खान. उनके पास रन्स थे विकेट्स थे कप्तानी थी लेकिन सबसे बढ़कर उनके पास एक ऐसा बैटिंग स्टाइल था जो देखने वालों को क्रिकेट से मोहब्बत करने पर मजबूर करता था. माजिद खान पाकिस्तान क्रिकेट का एक स्टाइलिश बैट्समैन यूजफुल बॉलर फॉर्मर कप्तान और एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन का हिस्सा रहा. उम्मीद है आपको आज का हमारा यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। रमजान कतर की जिंदगी में रूहानियत, शुक्र, रहमत और भाईचारे का महीना है। इस महीने में खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं रहता, बल्कि लोगों को जोड़ने, मोहब्बत बांटने और मेहमान नवाजी का जरिया होता है। रोजा इफ्तार के वक्त खोला जाता है। दस्तरखान पर खजूर और पानी रखने की रिवायत अहमियत रखती है। इसके बाद घर के अफराद नमाज अदा करते हैं और फिर मिलकर खाना खाते हैं। कदर में कई खानदान अफराद को एक मुश्तरका लम्हा समझते हैं, जहां बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान एक ही दस्तरखान के गिर्द जमा होते हैं। रिवायती कतरी अफ्तार में हरीज, तुरेद और मजबूस जैसे खाने हो सकते हैं। हरीज गंदम और गोश्त तैयार की जाने वाली नरम और गजाइत से भरपूर डिश है, जबकि सुरेद रोटी के साथ तैयार होने वाला रसीला खाना है। मजबूस खुशबूदार चावल, गोश्त, मुर्गी या मछली की डिश है। इन तमाम खानों में मसालों की खुशबू और धीमी आंच पर पकाने का अंदाज नुमाया होता है। रमजान की खूबसूरत रिवायत अफतारी का तबादला है। पड़ोसी एक दूसरे के घर खाना भेजते हैं और खानदान भी रिश्तेदारों के साथ अफतार शेयर करते हैं। इस अमल से सिर्फ पकवान नहीं बांटे जाते, बल्कि दुआ, अपनायत और खुशी भी एक दूसरे तक पहुंचती है। किसी घर से आने वाली छोटी सी प्लेट भी दूसरे घर के लिए इज्जत और मोहब्बत की निशानी बन सकती है। पुराने कतरी मोहल्लों की जिंदगी में करीबी पड़ोसी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रमजान में घरों के दरवाजे मेहमानों और जरूरतमंदों के लिए खुल जाते। कभी कोई मुसाफिर मस्जिद या इलाके में हो तो उसके साथ खाना शेयर करना खुशी और सवाब का काम समझा जाता है। इस रवैये ने मोहल्ले के लोगों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम किए। कतर की वजारत सकाफत के मुताबिक खानदान अफराद के खाने एक दूसरे को भेजते हैं और अक्सर एक बुजुर्ग खानदानी शख्स या इलाकाई रहनुमा के घर मिलकर खाना खाया जाता है। खवातीन भी अपनी अलग महफिलों में खाना शेयर करती हैं और इस तरह रमजान का दस्तरखान खानदान और मोहल्ले दोनों को करीब ले आता है। रमजान में कहवा और गुफ्तगू की भी अपनी जगह होती है। अफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद लोग कॉफी पीते हैं, सवाल यानी पुरानी यादें और रोजमर्रा की बातें करते हैं। तरावी के बाद रात की महफिलें दोबारा जिंदा हो जाती हैं। इन मजालीस में कभी दीन, कभी खानदानी किस्से और कभी कतर की पुरानी जिंदगी के तजुर्बे बयान किए जाते हैं। रमजान की रातों में गबका भी एक मशहूर समाजी रिवायत है। यह अफ्तार से अलग रात देर का खाना होता है, जो आमतौर पर तरावी के बाद दोस्तों या रिश्तेदारों की दावत में पेश किया जाता है। इसमें भी रिवायती चावल, मछली या गोश्त की डिशें और पीठे पकवान शामिल हो सकते हैं। गपगप का मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत करना, लोगों को एक दूसरे के साथ वक्त देने का मौका फरहम करना भी है। रमजान की मिठास लुकिमात, सागू और दूसरे रिवायती मीठों से भी झलकती है। लुकिमात के छोटे छोटे तले हुए गोले शीरे या खजूर के शरबत के साथ पेश किए जाते हैं। ये अक्सर खानदानी इज्तमात और मेहमानों के लिए तैयार किए जाते हैं। कुछ घरों में पुरानी तरकीबें बुजुर्ग खवातीन से नई नस्ल तक मुंतकिल होती हैं, जिससे जायका वही रहता है, मगर हर नस्ल अपनी याद भी इसमें शामिल कर देती है। आज भी कतर में रमजान फूड बैग्स, समाजी दस्तरखान और अफ्तार की दावतें आम हैं। बहुत से अफराद जरूरतमंद लोगों को खाना तैयार करते और तकसीम करते हैं। اسی طرح باورچی خانے سے نکلنے والی نعمت محلے مسجد اور پوری کمیونٹی تک پہنچتی ہے. رمضان میں بانٹا گیا کھانا ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے. نکال کر بانٹنا صرف چیزوں کا تبادلہ نہیں بلکہ وقت توجہ اور محبت دینا بھی ہے. قطری رمضان ٹیبل کی اصل خوبصورتی کھانوں کی کثرت میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جگہ بنانے میں ہے. اسی روشنی میں افطار ایک کھانے کا وقت نہیں رہتا بلکہ شکر عبادت اور انسانی تعلق کا ایک خوبصورت اظہار بن جاتا ہے. تو لسنرز آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है आप सभी लिसनर्स का स्टूडियो में 1:01 FM 107 की ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। और स्पोर्ट्स राउंड अप में क्या कुछ नहीं हो रहा है ये तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा। मौसम में कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। हाँ, धूप और वो जो इंटेंसिटी वो थोड़ा अब जो लगने लगा है कि मौसम जो है सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं। और इसी के बाद हम कर रहे हैं कि मौसम की बेहतरी और स्पोर्ट्स इवेंट्स कतर में काफ़ी कुछ हो रहा है, होने वाला है। हाँ, अभी भी मौसम में थोड़ा सा अभी वो टाइम लगेगा, लेकिन अब मिड अक्टूबर पर हम पहुंच गए हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इसी बात पे हम कहते हैं कि यार, स्पोर्ट्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट्स हमेशा से हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए है, थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए है, फिटनेस के लिए है। तो दोस्तों, कतर में अभी स्पोर्ट्स काफ़ी हैं, काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स चल ही रहा है, जैसे कि मसलन कतर स्टार्स लीग है, एशियन ओपन बीच वॉलीबॉल है, और साथ साथ आज एक इम्पॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, AFC चैंपियंस लीग फुटबॉल एलिट ग्रुप का एक अहम मैच। बातें होंगी। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, मेरा ये सवाल बड़ा ही वो सवाल होता है जिस पे लाइक आप लोग खींच से वे आ जाते हैं FM 107 के व्हाट्सअप पर, और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता होगा 6622107। और इस पे आज का सवाल क्या है, सवाल ये है दोस्तों, क्रिकेट में अगर आप लोगों ने क्रिकेट तो फॉलो किया होगा और 80s और 90s के क्रिकेट भी आप लोगों ने देखे होंगे, एंड अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो ऑस्ट्रेलियन टीम को आप भूल नहीं सकते। आपको सिर्फ बताना, मैंने लीड दे दिया, आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन टीम में एक जुड़वा भाई, नाम नहीं बताऊंगा, आपको नाम बताना, ये जुड़वा भाई, ये जुड़वे जो थे लोग काफ़ी कुछ कमाल के खिलाड़ी थे दोनों। और दोनों भाई जब आमने सामने नहीं बल्कि जब साथ बैटिंग करते थे तो ओपोनेंट बॉलर्स ओपोनेंट अटैक को बस हवा में उड़ा देते थे। सो आपको बताना है ये जुड़वा जो है, जो ट्विन ब्रदर्स जो थे ऑस्ट्रेलियन टीम के, इनका आप दोनों, अब इन दोनों का नाम आपको बताना है ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 6622107 6622107 FM 107 के इस व्हाट्सएप नंबर पर बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का इस ट्विन ब्रदर्स क्रिकेटर्स के बारे में आपको बताना है, नाम बताना है आपको, और आप मुझे भेजिएगा, आपके नाम के साथ भेजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का नाम लेते हुए बताते हुए कि आपने भेजा है। सो वाई वेट एंड स्टार्ट जस्ट मतलब यू नो जो भी रिसर्चिंग मोड है आप लोगों के पास उसमें करिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये जुड़वा भाई ये जो थे कौन थे आपको बताइए। सो मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स राउंड अप, और जैसे कि मैंने बताया कि बीच वॉलीबॉल एक बड़ा इवेंट है अभी कतर में, दोहा में चल रहा है, और एशियन ओपन बीच वॉलीबॉल, और यहाँ पे कतर की जोड़ी शरीफ यूनुस और अहमद तिजान ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को शिकस्त देकर फाइनल राउंड में जगह बना ली है। तो यहाँ पर एक कतर के लिए एक मेडल, एक अवार्ड, एक ऑनर हम उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम बात करें फुटबॉल की तो दोस्तों, फुटबॉल में असद क्लब, हाँ नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, असद क्लब का आज एक मैच है और इम्पोर्टेंट मैच है। एंड ये अगर कतर की बात करूं तो कतर को रिप्रेजेंट करने वाला ये क्लब जो है वेरी टॉप क्लब, AFC चैंपियंस लीग एलिट, ये जो टूर्नामेंट है इसमें एलिट क्लब्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर असद का आज मुकाबला है अल हिलाल से, सऊदी क्लब, काफ़ी ज़बरदस्त क्लब है, काफ़ी टफ टीम है, तो अल हिलाल के खिलाफ ये मुकाबला जो है आज काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है। इवन उन सद का, सद क्लब के जो कोच हैं, सद क्लब के जो कोच हैं उनका भी कहना ये है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है और इस मैच को जीतने की अहमियत पर इन्होंने ज़ोर दिया है। राजवान लुचेस्कू रोमानिया के हैं और तकरीबन 14 साल के बाद कतर दोबारा वापस आ गए हैं, एंड पहले वो जब कोच थे उस टाइम कोचिंग करवाते थे कतर स्टार्स लीग में क्लब का जन्म था अलजैश, जैश क्लब उस टाइम अलजैश क्लब हुआ करता था, बाद में ये क्लब बन के बना है लखविया। सो अलजैश के कोच रह चुके हैं रजवान लुचेस्कू, का कहना है कि ये काफ़ी अहम मैच है और कतर को जीत की तलाश है, क्योंकि पिछले मैच में दे लॉस्ट टू इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द एएफसी चैंपियंस लीग में। सो उनको पॉइंट चाहिए, एंड सद के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि सद को अगर इस टूर्नामेंट में टिकना है यानी बचा रहना है तो दे हैव टू विन दिस गेम। और कल दो मैचेस खेले गए हैं दोस्तों एएफसी चैंपियंस लीग एलिट में, जहां पर कतर के अल गराफा क्लब को हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट ईरान्स इस्तेग्लाल क्लब। और इस्तेग्लाल क्लब आपको पता है कि वन ऑफ द वेरी टॉप टीम्स इन दिस रीजन, और अल गराफा क्लब जो है थोड़ा बहुत अगर कोशिश करने पे लगी रहा था कि हाँ दे डिड क्वाइट अ बिट, एक गोल तो उन्होंने वापस किया, बट इन द एंड इट वॉज नॉट दैट इनफ फॉर देम टू यू नो विन दिस गेम। वहीं अशमाल ने ट्रैक्टर एफ सी भी ईरान का ही क्लब है, ट्रैक्टर एफसी को अशमाल क्लब ने रोक दिया, यानी गोल इज ड्रॉ रहा, तो शमाल के लिए यहाँ पर एक पॉइंट रहा है। सो देखते हैं क्या सद के साथ क्या होता है, सद नीड्स टू पुल इन देयर सॉक्स, नीड टू पुल इन देयर परफॉर्मेंसेस टू स्टॉप अल हिलाल फ्रॉम विनिंग दिस मैच। और अभी एक बात और भी है कि यू नो यहाँ पर फुटबॉल की बात करते करते हम चलते हैं कि फिर स्पेन में क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि स्पेनिश क्लब जो है ओसासुना ने अपने कोच को हटा दिया है, मिगल रामिस को बर्खास्त कर दिया है और टीम के क्यादत जो है अरासाते को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है। सो देर इज़ अ चेंज इन द क्लब कोचिंग स्ट्रक्चर। और आज यूएफए चैंपियंस लीग में बार्सिलोना टीम रात को उतर रही है एंड अगेंस्ट गलातासाराय तुर्की का नंबर वन क्लब है। एंड तुर्की के इस क्लब को मैं क्या कहूँ, आई मीन इट्स अ वेरी लेजेंडरी क्लब है गलातासाराय, लेकिन जीत की बात करूँ या परफॉर्मेंस की बात करूँ, जब यूरोपियन स्टैंडर्ड पे पहुँचते हैं या यूरोपियन कॉम्पिटिशन में जब पहुँचते हैं तो गलातासाराय पता नहीं कहीं बिखर जाते हैं, अदरवाइज गलातासाराय इज रियली अ गुड टीम। अच्छा ये भी एक आपको एक फैक्ट बता दूं, एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि 1996 के बाद बार्सिलोना को गलातासाराय कभी नहीं हरा पाया। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मैच ऑफ टेस्ट एंड मैच ऑफ पेशेंस फॉर गलातासाराय फैंस, एंड गलातासाराय ये मैच अपने ही घर पर आज खेल रहा है इन इस्तांबुल। सो इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच, क्योंकि घर पर खेलना इट्स काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट है, और बार्सिलोना अपने फुल फोर्स के साथ दे विल बी अप अगेंस्ट गलातासाराय। टेनिस की बात करूं दोस्तों, स्पेन के कार्लोस अल्काराज बाहर हो गए हैं और ये टूर्नामेंट का नाम है शंघाई टेनिस चैंपियनशिप, और इस तीसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्लोस अल्काराज इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो दोस्तों ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स जो अपडेट्स हैं उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये सवाल भी पूछा था, ये सवाल था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में एक जुड़वा भाई दे लोग ट्विन ब्रदर्स थे, वो लोग खेलते थे एक ज़माना पहले और दे वर रियली गुड एंड देर मतलब उस लेवल के थे जहाँ पर यू नो एवरीबडी सेड नो दे हैव द टैलेंट, और ऑस्ट्रेलिया के लिए कई मैचेस जितवाए एंड साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को नंबर वन टेस्ट टीम बनाने में भी इन लोगों का काफ़ी अहम रोल रहा है। तो आपको बताना है इन दोनों भाइयों का नाम क्या है, आपको सिर्फ बताना है और आपके नाम के साथ बताना है 666-22-107 पर। मैं यहाँ पर लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तब आप लोगों से मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट को लेकर बात करेंगे। सुनते रहिए, टिल देन सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: Sports Roundup.
1: Sports Roundup
0: with our sports journalist Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
2: क्या बात है, इस्तकबाल है आप सभी लिसनर्स का। और क्रिकेट के मैदान पर चले जाते हैं डायरेक्टली, और क्रिकेट में आज काफ़ी कुछ मैचेस हैं। देखिए, क्रिकेट भरपूर इस जो मौसम है इसमें क्रिकेट ही खेला जा रहा है। और बता दूं कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच है, आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है, और ये दोहा टाइम अगर है तो 4 बजे के वक्त में ये मैच होगा। ये तीसरा मैच है T20 सीरीज़ के, जो तीसरा और अगर आखिरी मैच अगर कहें तो, या अन पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस सीरीज़ को अपने जेब में लेकर मैं मुतमईन हूँ कि एकदम बैठे हुए हैं कि चलिए आज थर्ड मैच में भी श्रीलंका को हरा देंगे तो 3-0 से ये सीरीज़ अपने जेब में और पाकिस्तान विल बी रिलैक्स्ड। और वहीं अगर बात करूं नेपाल वर्सेस ओमान का, नेपाल वर्सेस ओमान के दरमियान भी एक मैच है, और ये मैच जो ICC CWC लीग 2 और ये मैच जारी है। इस नेपाल की टीम से बात कर लेते हैं। नेपाल हैज़ स्कोर 263/8 इन 50 overs, और वहीं ओमान हैज़ रिप्लाइंग बैटिंग और 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन। सो नेपाल इज ऑन द ड्राइवर सीट, यानी नेपाल इज द फेवरेट राइट नाउ, लुक्स लाइक फेवरेट। और अगर बात करूं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोस्तों पिछले दिनों

पिछले दिनों माज ने कमाल बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को सेकेंड मैच में जितवाने के बाद, ऑब्वियसली ये तीन मैचों की सीरीज है तो इसमें 2-0 से ऑलरेडी दे आर अप बाय पाकिस्तान, आई मीन पाकिस्तान टीम, होम टीम इज अप, सो ऑब्वियसली ये सीरीज पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुके हैं. और आज देखना यह है कि क्या श्रीलंका पाकिस्तान को रोक पाएगी या नहीं, आई मीन दैट इज अ बिग क्वेश्चन. और ये मैच जो है रावलपिंडी में खेला जाएगा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी उतना ही एक्साइटिंग होंगे जितना पहले दो मैचेस हम देख चुके थे. अच्छा, बात हो रही है श्रीलंका, नहीं अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान ये टेस्ट मैच जो है ये जारी है. जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते करते मुझे ये सवाल दोबारा आप लोगों से लिए मैं रिपीट करना चाहूँगा, आज का जो क्विज है कि ऑस्ट्रेलिया के 1980s या 1990s के दौर में ट्विन ब्रदर्स ये लोग खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, इन दोनों क्रिकेटर का नाम क्या आप लोग बता सकते हैं 666-2107 पर. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद, मैं सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम, और ये आज का क्विज, आज का सवाल ये था कि ये ट्विन, ये जुड़वा है कौन, आपको बताना है सिर्फ नाम के साथ, आपके नाम के साथ. तो चलिए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कि आज जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट में जो ये मैच है 5 days, आज आखिरी दिन है और एंड ऑफ सेशन वन में साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी जो है वो लड़खड़ा रही है 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन और टारगेट है 255, तो बहुत ज़्यादा टारगेट भी नहीं लग रहा, लेकिन ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट 6 विकेट. उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत ले, और ये भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत ले, कि क्रिकेट में हर चीज़ जो है आखिरी गेंद तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड मैच दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड द किंग्स मीट डर्बन में, और ये मैच आप लोग फॉलो कर सकते हैं. एंड फाइनली बता दूं कि साउथ अफ्रीका 6 विकेट नुकसान पर 166 रन इन द सेकेंड इनिंग्स एंड दे स्टिल आर शॉर्ट ऑफ सम रन, और उनका टारगेट ही है 255 रन. तो अभी जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं उनका नाम बता दूं, जेनसन जो है 7 रन बनाकर, और मार्करम 200 गेंदें खेलकर 69 रन पर नॉट आउट है, तो ओपनिंग बल्लेबाज है मार्करम, माफ कीजिएगा. सो आज देखना यह है कि कैन दीज टू बैट्समैन सेव द डे फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन ही है दोस्तों, फर्स्ट सेशन खत्म हो गया है, लंच टाइम है अभी, इसके बाद जब शुरू होना है वो उसमें देखना यह है कि कैन साउथ अफ्रीका सेव दिस टेस्ट मैच. हाँ बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका इज द दिफाई चैंपियन है WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो कि पिछले साल ये मैच फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये जो फाइनल के जो टाइटल था वो अब साउथ अफ्रीका के पास है. तो सब कुछ हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट वी हैव टू वेट अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड, दैट इज हाउ द क्रिकेट इज. एंड बांग्लादेश पर आते हैं, एंड बांग्लादेश इज डूइंग रियली वेल, 346 फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकेंड इनिंग्स में 372 7 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स को डिक्लेयर करने के बाद अफगानिस्तान को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया था, एंड अफगानिस्तान 240 पे फर्स्ट इनिंग्स पर ऑल आउट होने के बाद नाउ इन द सेकेंड इनिंग्स, एंड अफगानिस्तान के पास एक चुनौती है, 228 रन जीत के चाहिए एंड 39 ओवर्स अभी भी फेंके जाने हैं, और अभी अफगानिस्तान के पास जो रन है 5 विकेट के नुकसान पर 251 रन. ये मैच जो है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जा रहा है, अभी जारी है ये मैच, और बांग्लादेश के लिए अफगानिस्तान के लिए जो भी बल्लेबाज बैट कर रहे हैं वो है अटल, 102 रन बनाकर छोड़ नहीं रहे हैं, मीन ही इज समथिंग लाइक ऑफ अ वेरी टफ बैट्समैन. और दूसरा बैट्समैन जो उनको साथ दे रहे हैं वो शहीदी हैं, वो 52 गेंदों पर 25 रन बनाकर अभी उनको साथ दे रहे हैं. दोस्तों ये है अपडेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और जो कि वन ऑफ टेस्ट मैच है बिंग प्लेड इन अबू धाबी एट द शेख जायद स्टेडियम पर. ये मैच अगर बांग्लादेश जीत जाती है तो बांग्लादेश विल बी, अगर पिछले महीनों की बात करूं फ्रॉम बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो बांग्लादेश विल बी गोइंग मूविंग अप ऑन द WTC पॉइंट्स टेबल पर. WTC पॉइंट्स मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ईयर, ICC के छत्र छाया में ये टूर्नामेंट है, ये चैंपियनशिप है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया फिलहाल दे आर नंबर 1 रैंक टीम है ऑन द WTC 2025-2027 स्टैंडिंग्स में. बांग्लादेश इज 4th. दोस्तों कमजोर मत समझिए बांग्लादेश को, द टाइगर्स. और बांग्लादेश की पिछले परफॉर्मेंस को अगर मद्देनजर रखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि बांग्लादेश इज रियली रियली टफ टीम दीज डेज. ऑस्ट्रेलिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, और वो सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ था. और अगर आज बांग्लादेश अगर ये मैच जीत जाए वन ऑफ टेस्ट, तो बांग्लादेश विल जंप ऑन द
पॉइंट्स टेबल।

अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो आपका ये जवाब भी सही है एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपका ये गलत है. आपने बहुत सही भी मैंने इस पर इनपुट डाला है. वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट. आप

इन दोनों भाइयों का जो कि जुड़वा भाई, आई मीन ट्विन ब्रदर्स, देखते लगता ही नहीं था कि अगर हेलमेट पहन ले तो पता भी नहीं चलता था कि कौन किस तरफ है। एंड डेफिनेटली स्टीव वॉ थोड़ा सा एक्टिव रहते थे बिकॉज ही वॉज ऑलराउंडर, चेंज बॉलर के तौर पर काफ़ी खतरनाक साबित होते थे। मार्क वॉज मोर ऑर लेस वॉज अ बैट्समैन एंड एनी वे इन दोनों के कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते। और आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट डेवलप्ड, एक रोल मॉडल बने ये दोनों, एंड आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जिस मकाम पर है इन दोनों भाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं मैं इजाज़त और उम्मीद है आप लोग स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं, स्पोर्ट्स सुन रहे हैं, स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं। आज क्रिकेट में काफ़ी कुछ मैचेस हैं, यूएफए चैंपियंस लीग है, देखना मत भूलिएगा, रात को 10 बजे है गलातासराय वर्सेस बार्सिलोना। क्रिकेट देखने हो तो आप 4 बजे दोहा टाइम में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच भी देख सकते हैं। तो एनीवे एंजॉय योरसेल्फ, कीप लिसनिंग टू एफएम 107 और याद रखिएगा स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। कीप लिसनिंग टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 1:30।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हाँ जी, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? उम्मीद करें आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया, और एक घंटा आपके साथ रहने वाली हूँ। और अच्छे से आज आपने अपने दिन की शुरुआत की होगी, दिन को एंजॉय किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। देखो जी, बाहर का मौसम ना चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारी जो वाइब है वो बिल्कुल कूल और पॉजिटिव रहने वाली है। तो बस आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है हम सब के दिल को लिटरली छू जाएगा। और कैसे छूएगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, उसके पहले आप अपना हालचाल मुझे बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। नंबर्स हैं 6662107। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्टली कॉल करके बात करना चाहते हैं, तब हमारा नंबर है 4434377। देखो जैसे ही आए हैं वैसे ही हमने सोचा कि नहीं, अब तो सीधी बात टॉपिक पे ही होगी, क्योंकि एक घंटा है फिर कम पड़ जाता है, फिर आप लोग के मैसेज रह जाते हैं तो कॉल रह जाती है। तो आज ये दोनों चीज़ें भरपूर तरीके से इंक्लूड करनी है मुझे अपने शो में। सो फॉर दैट, आज जो टॉपिक है उस पर बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज है 13th of October, ट्यूसडे का दिन। और आज 13th October को सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर्स। हाँ वही ना, फेलियर्स के दिन, मतलब फेलियर जो हमें मिल रही है लाइफ में उन्हें बाकायदा सेलिब्रेट करने का आज दिन है। वही फेलियर्स जो अक्सर हम और आप जो है ना, यू नो, छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते, झिझकते हैं, लेकिन हाँ आज वो दिन है जब अपने फेलियर्स को खुल के सामने सबके बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी लोग मानते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी में हमने जो फेलियर्स उठाए होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बड़ी कामयाबी की बुनियाद होते हैं। तो बस आपने भी बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन जो है उनकी स्टोरी सुनी होगी, और आपने जाना होगा कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो है वो फेलियर्स को अपना जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है वो है उनकी हिम्मत। हिम्मत नहीं हारना, थक के नहीं बैठना, आगे बढ़ते रहना। तो बस आज इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर, इसी दिन को सेलिब्रेट करते हुए आज का हमारा जो सवाल है वो भी इसी के आसपास है। आज मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि बताइए हमें कि जिंदगी का वो कौन सा फेलियर था जो आपकी जिंदगी में मतलब कामयाबी का सबक बना, या फिर आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा फेलियर था जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, वो आज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स है 6662107, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। फिलहाल यहाँ पे कुछ मैसेजेस हमारे साथ हैं, तो चलिए उन्हें शामिल करते हैं। ओके, तो आज हुसैन जी हमारे साथ हैं, एंड गुड आफ्टरनून मैडम। सुबह से, अब आप जो है दोपहर में आ गए। हाँ जी, सुबह से, अब सुबह के तो बहुत टाइम से, मैं तो आफ्टरनून में ही हूँ भाई, लेकिन हाँ फाइनली आफ्टरनून में आपकी हमारी मुलाकात होगी। अच्छा, यहाँ पे मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सलाम कहते हैं अरबाज जी हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम। फिर तौफीक जी का मैसेज है, सलाम कहते हैं अलवकरा से, वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मुदस्सिर जी हैं? आसिफ अंसारी जी, ओहो, ये भी आपका छुपा हुआ टैलेंट है कि आवाज बदल बदल के बात करना।
3: नहीं है, अभी कुछ जो है आवाज सही हुई है।
1: अच्छा, आपकी आवाज ठीक नहीं थी, अब तबीयत ठीक है आपकी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: ओके, अच्छा आज जो है वो दिन है इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर, तो कोई ऐसा फेलियर जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, या कोई ऐसा फेलियर जिसने आपको इतनी हिम्मत दी कि लेटर ऑन वो आपकी कामयाबी का जो है वो बहुत बड़ी एक फाउंडेशन उसने रखी है, कुछ हुआ ऐसा कभी?
3: हाँ बिल्कुल हुआ। जब तक फेल नहीं होंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी।
1: वाओ क्या बात है,
3: गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है।
1: ये बात तो है, सच बात है। तो कभी क्या हुआ एग्जैक्टली, अगर कुछ आप हमें बताएं, कोई स्टोरी है कुछ?
3: स्टोरी यही है, 2022 में मैं यहाँ से इंडिया गया, अपना बिजनेस स्टार्ट करा, जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, हिम्मत वहाँ से बनी कि फर्स्ट टाइम पे माल लेके गए और अनजान सिटी में वहाँ पे सेल करी, हिम्मत बढ़ गई।
1: नाइस।
3: उसके बाद काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, मुझे मैंने दो नाव पे कदम रख दिए, पैर रख दिए थे। ठीक है, एक अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाया था, दूसरा मैंने जो है काम शुरू कर दिया था एक्सपोर्ट में। तो वो जो है मेरा जो लेदर का जो काम स्टार्ट किया है मैंने
1: जी,
3: वो मेरे लिए थोड़ा सा फेलियर साबित हुआ, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा फेलियर साबित हुआ। यहाँ से शुरू करा था, वहीं पे उसने ला के छोड़ दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है कि हिम्मत नहीं टूटी मेरी। ठीक है, और फिर भी अपना जो पहले जो काम स्टार्ट किया था कपड़े का, वो आज भी जो है अपना धीरे धीरे रनिंग कर रहा है। मैं कतर में अपना जॉब कर रहा हूँ।
1: नाइस, वाओ, चलिए तो बहुत अच्छा है कि आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप जॉब भी कर रहे हैं और आपका माशाल्लाह से बिजनेस भी चल रहा है।
3: सबसे बड़ी चीज यही थी कि अल्लाह ताला ने जो एक्चुअल क्या था, पहले तो मुझे ये चीज बुरी लग रही थी यार, ये हो गया मेरे साथ में, गलत हो गया। लेकिन अल्लाह ताला को दो जगह से मुझे एक कमाई का जरिया बनाना था।
1: ट्रू।
3: ठीक है, मतलब पहले से ज्यादा मजबूत करना था, और जो लोग साथ में थे, खड़े थे, और ये चीज भी पता चलनी थी कौन अपने साथ में खड़ा है बुरे वक्त में, कौन जो है हमारे बुरे वक्त में भाग जाएगा।
1: तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सीखा, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, कि फेलियर से सीखा बहुत कुछ,
3: बहुत कुछ मिलता है। फेल होना जो है बहुत अच्छी चीज है इंसान के लिए, कि स्ट्रगल करते रहो आप। अगर मेरी, मैं नाजिया जी एक बात बताऊं आपको, मैं ये समझता हूं कि इंसान को हर दिन एक टास्क होना चाहिए जिंदगी में, और हर दिन एक परेशानी जरूर छोटी हो या बड़ी हो सीखने को मिलती है।
1: सीखने को मिलती है,
3: बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मजा आता है जिंदगी जीने में। नहीं तो हर तरफ से पैसा आ रहा है, सब कमा रहे और उसके बाद कोई टास्क नहीं है जिंदगी में, बोर हो जाएगी, कैसे क्या करेंगे, मजा ही नहीं आएगा।
1: लाइफ में गोल्स होने चाहिए, वो हमें जीने का एक मजा भी देते हैं और हम मोटिवेटेड
3: मजा आता है। और दूसरी चीज, हिम्मत मिलती है सारी चीजों को, कम से कम इसी सब चीजों से अपने रब को याद करा करते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने, आदमी फेलियर्स के दौरान जो है वो ज्यादा करीब भी हो जाता है, और वैसे भी होना चाहिए लेकिन और ज्यादा हम करीब हो जाते हैं।
3: और इस चीज का सारा जो फेल के बाद जो है दोबारा जो मैं एक्टिव हुआ हूँ, जो भी मुझे खड़ा करा, इसका सबसे ज्यादा मैं अपनी वाइफ को जो है इस चीज के लिए मैं मानता हूँ। क्योंकि एक चीज मैंने जो है, बहुत सारी चीजें थी उससे पहले जब मैं यहाँ पे था, तो मैं बहुत सारी चीजें उसे शेयर ही नहीं कर सकता था वाइफ से।
1: अच्छा,
3: ठीक है, जब प्रॉब्लम आई तो सबसे आगे कौन, मेरी वाइफ खड़ी थी।
1: ठीक है, देखिए आपकी वाइफ कितना आपका साथ, ये आपने बात कह के बहुत अच्छा किया।
3: बहुत वाइफ जो है जिंदगी में, एक चीज मैंने सीखी है कि अगर कभी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले अपने शौक वाइफ खत्म करती है, अपने शौहर, बीवी अपने शोहर के लिए खत्म करती है। सबसे पहले जो है अपने जेवर वही बेचती है कि प्रॉब्लम से खत्म हो जाए। तो इसलिए जो है सारा क्रेडिट मैं अपनी, मतलब ज्यादातर क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ।
1: माशाल्लाह, हैट्स ऑफ, आप जैसे हस्बैंड होने चाहिए, और मैं कहूंगी आपकी जैसी वाइफ सबको मिलनी चाहिए, एंड यू डिजर्व दिस।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त में मेरा साथ दिया है।
1: बड़ी बात है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं,
3: अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया, वहाँ पे वो मेरे साथ में खड़ी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी अब अच्छे से अच्छे तरबियत दे रही है, सब कुछ है। उससे ज्यादा मैं ये मानूंगा कि मेरी जिंदगी खूबसूरत उसने बना दी। ठीक है, जो कल तक मैं जो हूँ, कुछ साल पहले उसको ज्यादा उतना वो नहीं करता था। मतलब वाइफ, हस्बैंड वाइफ में प्यार तो होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन सारी चीजें उससे शेयर नहीं करता था, क्या है क्या नहीं है, मुझे जो करना है तो मैं
1: अब आपने करना शुरू कर दिया
3: आप अपने आप से, लेकिन अभी जो है
1: सब कुछ
3: दोनों लोगों को मशवरा होता है, उसके बाद ही कुछ आगे
1: कुछ होता है। ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त, एंड थैंक यू सो वेरी मच आपकी कॉल के लिए। आपने बहुत कुछ सीखा और हमारे जितने लिसनर सुन रहे हैं उन्होंने भी आपसे कुछ सीखा, कुछ ना कुछ अच्छा सीखा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी चीज़ जो आपने बताई कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम नहीं करते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग इट, यू नो,
3: ब्लेम नहीं करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
3: मोड़ पे हमें लाके, क्योंकि हर फेलियर के बाद ही जो है सक्सेस मिलनी है, सीखने के बाद ही
1: सक्सेस मिलती है। नाइस, ब्यूटीफुल।
3: जब तक आप फेल नहीं होगे तो आपको जब चलते रहोगे आपको कोई कहीं ना कहीं गिरना जरूरी है तो पता चलता है, नहीं तो आसान सी जिंदगी में आप जब कभी जो छोटी परेशानी आएगी ना तो उसको आप बर्दाश्त नहीं, जब सक्सेस मिलती रहती है और फेलियर हो जाता है ना तब आपको जो है बहुत परेशानियां हो जाती है, लेकिन जब शुरू से जो है परेशानियां मिलती रहती है, फेलियर होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमको जो है सक्सेस की कदर मालूम होती है।
1: बहुत सही, बहुत जबरदस्त। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अंसारी जी आपकी कॉल का। अपना बहुत ख्याल रखिए।
3: हो गए
1: नहीं आप है ना
3: भाई, तो सवेरे सवेरे भेज दिया आपने सरवर भाई को, मैंने पांच दिन कहा था।
1: अरे मैंने सरवर भाई ने खुद कहा, अरे मुझे एक घंटा कम पड़ता है, मुझे हर चीज कम पड़ती है, उनको ना हर चीज ज्यादा चाहिए होती है, तो फिर ज्यादा टाइम चाहिए था, तो ये हुआ ठीक है आप सुबह जाइए फिर, तो दैट्स हाउ हैप्पीली वो सुबह सुबह गए हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि सुबह की शुरुआत सरवर भाई के साथ, सुबह सुबह सरवर भाई
3: को मैंने बोला था, मैंने कहा क्या हुआ, बजट में प्रॉब्लम आ गई क्या, जो दो दो दो दो क्यों करने लगे भाई, काम खाओ थोड़ा लेकिन एक टाइम ड्यूटी करो। बोला नहीं नहीं एक ही टाइम है मेरी ड्यूटी।
1: हाँ नहीं एक ही टाइम पर है सर्वर भाई ने कहा, एक ही टाइम पर मैं खूब बातें कर लूँ, जैसे उनको लगता था ना हमेशा कहते थे एक घंटा मुझे कम लगता है, एक घंटा मुझे बहुत कम लगता है, उन्हें तीन घंटे दिए गए और मुझे तो बड़ी खुशी है आसिफ जी। अब सुबह सुबह आप चाय और समोसे की बात नहीं करेंगे, आप सीधा बिरयानी कोरमे और डोसे की बात करेंगे। सुबह होगी ऐसे
3: अलग लाइन है उनसे।
1: अच्छा आप खाने के बाद शौकीन नहीं। चलिए जी, थैंक यू सो मच।
3: ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, एंड वी आर नाउ कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर। हेलो, आर वी कनेक्टेड? शायद ड्रॉप हुई है कॉल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो,
4: हाँ जी,
1: हाँ जी, कैसे हैं बाबा जी आप?
4: बहुत बढ़िया, तुसी दसो जी किदा
1: हाल चाल? अरे बढ़िया बढ़िया, तुसी दसो अपना हाल चाल।
4: अच्छा नाजिया जी, आपने खाने पीने की बात की है ना,
1: वो तो मैं बता रही हूँ, सुबह का माहौल कितना सेट चल रहा होगा। अभी सुबह ना चाय की बात है, ना कॉफी की, ना समोसे की, सीधा कोरमे की, बिरयानी की, दावतों की। अरे एक फील आती होगी आप लोग को, मजा आ रहा होगा कि हर रोज वीकेंड है, हर रोज दावत की बात सुबह सुबह सुबह।
4: बिल्कुल, और मैडम अरेबिक ब्रेकफास्ट में एक चीज और फेमस है सुबह के टाइम, वो है हमूस।
1: ये तो है आपका फेवरेट
4: तो
1: है
4: मैडम। जी मैडम, जैसे ही हमूस का मेरे दिमाग में आया ना मैडम, तो आपकी थोड़ी सी तारीफ भी मेरे दिमाग में आ गई, जेनुइन।
1: अच्छा, प्लीज गो अहेड।
4: जी बिल्कुल।
1: देखिए
4: नाजिया जी, जिस हिसाब से हम लोग हमूस लेते हैं ना,
1: हाँ,
4: तो ऑलरेडी उसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा बहुत रहता है, मगर जो ऊपर से हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला जाता है ना उसमें, तो उसका मैडम टेस्ट बहुत ही डिलीशियस कहना चाहिए, या यूनिक हो जाता है,
1: एनहांस हो जाता है। सही कहा आपने।
4: उसी हिसाब से मैडम जी, ये जो आपका प्रोग्राम है ना, देखिए प्रोग्राम तो आपने करना ही है, ये आपकी ड्यूटी है।
1: सही।
4: मगर टुवर्ड्स योर प्रोग्राम जो मैडम आपकी डेडिकेशन है ना,
1: वो छलक रही है थोड़ी थोड़ी।
4: मैं क्यों जी, वो छलक रही है थोड़ी थोड़ी नहीं मैडम, पूरी झलक रही है वो। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आइडिया है थोड़ा बहुत?
1: नहीं प्लीज और बताइए मुझे, काइंडली इलैबोरेट, अच्छा लग रहा है सुनते हुए
4: जी। एक्चुअली मैडम, जो कल आपने शो किया ना, विदाउट अ सिंगल सॉन्ग, पूरा शो मैडम आपने बिल्कुल डिसेंट एनर्जी के साथ हैंडल किया वो।
1: हाँ, मुझे बाद में ध्यान आया कि एक भी गाना नहीं चला, और इत्तेफाक ऐसे हुआ एक भी गाना चल ही नहीं पाया, लेकिन इसमें क्रेडिट आप लोगों को जाता है, बताया जितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग लेकर आते हैं ऑन एयर सोच के आते हैं और टॉपिक के वाले से कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं इट्स रियली इनसाइट

0: बहुत मजा आता है, तो मुझे महसूस ही नहीं होता कहीं से कहीं तक कि मुझे गाना चलाना चाहिए यहाँ पर. ये बहुत बड़ा क्रेडिट हमेशा राइट फ्रॉम द मॉर्निंग में ये कहती आ रही हूँ कि आप लोग को जाता है, एंड स्टिल आई एम गोना रिपीट द सेम, आप लोग को ही जाता है.
1: देखिए नाजिया जी, बात ऐसी है, देखिए जो भी इंसान 107 के साथ में जुड़ा हुआ है एज अ लिसनर, एज अ कॉलर, एज अ मैसेंजर, वो हर एक बंदा टैलेंटेड तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है मैडम. मगर जो आप मैडम सिंगल हैंडेड प्रोग्राम अपना हैंडल करते हो ना, चाहे वो 1 आवर का हो चाहे मैडम 3 आवर का हो, अपनी डिसेंट एनर्जी के साथ मैडम, उसका तोड़ नहीं है मेरे हिसाब से कोई भी.
0: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अब मुझे लगता नहीं कि मुझे लंच की जरूरत पड़ेगी, आपने मेरा ठीक ठाक भीड़ भर दिया. इतनी सारी अच्छी बात है.
1: हम उस हैवी हो जाए मैडम, उसका कोई नुकसान नहीं होता.
0: हाँ वो मैं कह सकती
1: हूँ, क्योंकि मसाले नहीं ना होते ज्यादा उसमें.
0: हाँ ये तो है, ये बात तो है. अच्छा आज आप कुछ बहुत अच्छा मुझे बताएंगे ही बताएंगे, मुझे उम्मीद है. आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है. मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था, जो बाद में आप कह सकते हैं कि यू नो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला.
1: मैडम मैं फेलियर को आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस वगैरह में या जॉब्स के मसले में कई बार फेल हो चुका हूँ. मगर मैं आपको बात करूंगा अपने इमोशंस की मैडम. एक्चुअली मैडम पहले क्या होता था, आज से 5 या 10 साल पहले अगर कोई मेरे को बंदा टॉन्ट करता था या टीचर करता था, वो चीज मेरे ऊपर मैडम बहुत ज्यादा असर करती थी मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर, या मैं मैडम खुद डिससेटिस्फाई या सैड हो जाता था उस चीज से. जब से मैडम मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, तो उस समय से मैडम मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, कोई मैडम कुछ भी कहे. तो उस फील्ड में मैडम मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ. कोई कितना मर्जी क्रिटिसाइज करे, कोई कुछ मर्जी कहे.
0: गावा जी इसके लिए तो वाकई ताली, और अगर मैं होती सलामी दे सकती थी तोपों की, तो सरवर भाई की तरफ उसका एंगल करके मैं सलामी भी देती आपको. बट ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का या किसी तरह के क्रिटिसिज्म का. हम अपने आप में मजबूत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट दैट बस.
1: देखिए मैडम पता
0: बहुत बड़ी कामयाबी है.
1: देखिए एक मैडम कुदरत का असूल है, अगर आपने पेड़ का बीज बो दिया वो उगेगा जरूर, हो सकता है 5 साल के बाद उगे या 10 साल के बाद उगे. अगर आप सच्चे हो, आप सही काम कर रहे हो, कानून के दायरे में काम कर रहे हो, आप रह कहीं भी रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज मैडम झलके ही झलकेगी, चाहे आज झलके चाहे कल झलके. वो चीज मैडम पक्की है, वो तो सच्चाई है एक.
0: वाह बहुत ही अच्छी बात कहेगा बच्ची, बहुत ही अच्छी बात. ये आपका बड़ा कमाल का टैलेंट है कि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, सटीक बातें, बिल्कुल रियलिस्टिक और एकदम टू द पॉइंट लेकर. बहुत अच्छी आपने बात कही, टॉपिक के बिल्कुल करीब ही है, क्योंकि कई बार हम अपने आप से जुड़े फेलियर्स को, इमोशन से जुड़े फेलियर्स को नहीं देख पाते. फाइनेंशियल लॉस और प्रॉफिट तो गिन लेते हैं, बट दिस इज लाइक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हमारे मेंटल.
1: जी देखिए, चाहे आप हैं चाहे मैं हैं चाहे कोई भी लिसनर है, बस एक छोटा सा नुक्ता है मैडम, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए. आपके खुद के इमोशंस हैं, आपकी खुद की जिम्मेदारियां हैं, खुद एंजॉय कीजिए लाइफ को मैडम, बस इतनी सी बात है.
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हो जुड़ते हैं मेरे साथ. थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा. ओके अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, आज है इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर. हालांकि फेलियर्स जो हैं अपने जितने भी हमारे जो जहाँ हम फेल होते हैं उस पर बात करना हमें अच्छा नहीं लगता. हम यूजुअली चाहते हैं कि हमारे फेलियर्स को कोई डिस्कस ना करे, बट आज मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने फेलियर्स को डिस्कस करें, एडमिट करें और उसके बारे में बात करें. एंड डू लेट मी नो कि उन फेलियर से आपने क्या सीखा, क्या आपने कोई अच्छे बड़ी चेंज आया, एंड उस चेंज ने आपका फ़ायदा किया. कुछ कमाल की स्टोरी है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरी लिसनर्स के लिए शेयर कीजिए. एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
2: जी मेरा नाम रियाज है.
0: रियाज जी कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. सो आज के हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, पहले तो मुझे बताइए आपको फेल होने से डर लगता है?
2: फेल होने से डर तब तक लगता है जब आप अपने फेलियर को हरा नहीं देते. जैसे वो बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो आप अपने फेलियर को जब तक फेस नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ।
0: जी जी,
2: कि हो सकता है मेरे साथ कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन बचपन से हमें फेलियर से डराया गया है, इसीलिए भी हमें ये नहीं सिखाया है कि फेलियर जो है वो सक्सेस की तरफ एक पहला कदम है।
0: बहुत अच्छा।
2: लेकिन हमेशा यही सिखाया है कि फेलियर जो है, अगर आप फेल हो गए तो मतलब आपका काम तमाम। तो बाद में हमें रियलाइज हो गया कि जिस चीज से हम डर रहे हैं, या जिस चीज को हम फेलियर समझ रहे हैं, वो असल में फेलियर नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है।
0: बहुत
2: जब तक अच्छा। एक बच्चा जब नया नया कदम ले रहा है, जब तक वो
0: गिरता है,
2: मतलब गिरता नहीं है, आप उसको सहारा नहीं देते हो, आप उसको गिरने नहीं देते हो, आप उसको मतलब साथ नहीं देते हो, तब तक वो चलना नहीं सीखेगा। सेम वही है कि मतलब जब हाँ जब आप फेलियर है का फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप उस लॉस को मतलब दो नजरिए से देखते हो। एक किस्म के लोग उसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि चलो मैं तो खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, सर पकड़ो, लोगों के साथ डिस्कस करो, लोगों को बताना शुरू कर दो, अरे मेरा तो ये हो गया, मेरा ये हो गया। वो लोग उस चीज का रिजल्ट नहीं निकाल सकते कभी भी।
0: बहुत सही कहा।
2: ना आपकी परेशानी का, ना आपके फेलियर का, वो खुद आपको खुद करना पड़ेगा।
0: बहुत ही
2: उसके लिए कोई दूसरा कोई नहीं आएगा जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे।
0: बिल्कुल सच। तो फेस करना आना चाहिए। और आपने
2: वो चीज एक्सेप्ट की थी।
0: जी जी प्लीज गो अहेड, कहिए। नहीं आप कहिए, क्या कहते हैं।
2: तो सबसे जरूरी चीज ये है कि एक्सेप्ट करें। हम लोग क्या करते हैं, हमारे हम तो एक्सेप्ट करना नहीं आता है। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हमें करना नहीं आता है, या हमें सिखाया नहीं किया है, जो भी है। लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट होगा, तब आप जाके जो है ना वो आगे बढ़ने का आपको एक मौका मिलेगा। जब तक आप नया लाइसेंस लोगे और आप गाड़ी नहीं चलाओगे,
0: सही बात है,
2: रोड पे नहीं निकलोगे, एक आध एक्सीडेंट नहीं करोगे,
0: ये मत कहिए,
2: फेस नहीं करोगे, तब आप उस्ताद नहीं बन सकते किसी भी। वो आपको फेस करना पड़ेगा लाजिम।
0: और हर फेलियर एक एक्सपीरियंस है, जो आपने कहा बिल्कुल सच।
2: एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस का दूसरा नाम ही फेलियर है। जब तक आप फेल नहीं होगे, आप एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर सकते।
0: नहीं कर सकते, ट्रू, वेरी वेल सेड। बहुत ही अच्छी बात।
2: हमारे यहाँ क्या होता है,
0: जी
2: हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको मौका नहीं दिया जाता। जैसे आप कहीं भी आप जॉब कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है। उसमें मेरे को एक दिक्कत ये है कि जब कोई भी हमको चांस नहीं देगा,
0: एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ये सच है। ये तो मैंने भी कहीं अपने जॉब इंटरव्यू में कहा था कि जब तक आप चांस ही नहीं देंगे, तो एक्सपीरियंस कहाँ से हम गेन करेंगे? हमारे जैसे और बहुत सारे फ्रेशर्स कहाँ से एक्सपीरियंस गेन करेंगे? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी को तो चांस देना ही पड़ेगा ना। तो बस वही शुरुआत है, सो व्हाई नॉट। बिल्कुल,
2: शुरुआत जो है, शुरुआत जरूरी है। आपको आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल सही।
2: आप चलते जाओगे, अपने आप चलते जाओगे। अगर आपको वक्रा जाना है और आप मेट्रो चले गए और आप लुसेल वाले में बैठ गए, तो आप कभी भी वक्रा नहीं पहुंच सकोगे।
0: सही कहा आपने,
2: पहले पहुंचोगे।
0: तो फेल होने से हमें नहीं डरना है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कि आप हिम्मत रखिए एंड जस्ट put on your
2: हाँ. अगर आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब जरा भी दे मतलब

0: हैं,
1: होते हैं
0: बड़े खींचने वाले लोग मिलते हैं जिंदगी में,
1: तो मेरे साथ भी बैठा करते थे, बैठते थे
0: हाँ, इसलिए तो हमने उसको काट दिया ना, वो कट हो गए, सुबह चले गए, उड़ गए,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज और भी पता है, मेरी दादी कहती थी कि जब बहुत खुश हो ना तो अपनी खुशी का इजहार मत करो ज्यादा, उसको अपने दिल में रखो, तो ऐसे नजर नहीं लगे, ऐसे नजर नहीं लगे,
0: कहाँ जा रहे हो, कितना तरक्की कर रहे हो वो किसी को मत बताओ, हम क्या करते है, हम क्या करते है, हम अपने आप को हर किसी के सामने ना खोल देते हैं, ये हो गया वो हो गया।
1: हाँ लेकिन आप मुझे पता है आपकी बात अच्छी लगी कि एक तो हम बचपन से डरा के रखते हैं, डर डर डर, फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं फेल हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिनेरियो, तो अब फेल होने से डर लगना शुरू हो जाता है बचपन से ही, और फिर हमारा वो जो डर है वो एम्बैरेसमेंट में चेंज हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर ऐसा हो गया, अगर मुझे जॉब नहीं मिली और लोगों को पता चल गया कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हमारे दिल और दिमाग पे इतनी हावी हो जाती हैं कि फिर जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो धीरे धीरे लो हो जाता है और फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है या कम हो जाती है। तो बस ये आप सबसे मैंने अभी तक यही समझा है कि आप लोग वाकई स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली एंड आप डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, एंड फेल होना इज़ ऑलवेज समथिंग गुड, क्योंकि वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है हम सब के लिए।
0: सिंपल लास्ट में सिर्फ दो बात कहूंगा, सिंपल रूल है खुद टेस्ट करें, और जो आपके आसपास लोग हैं ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने से या वो नेगेटिविटी या मतलब आपको डराने जो भी है चाहे वो कोई भी हो उनको कट करें, आप अपना सीधा रास्ता ना पिए, सिंपल,
1: बहुत ही सही बात,
0: कुछ भी नहीं हुआ,
1: कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी कॉल के लिए, अपना ख्याल रखिए जी, थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर और मैंने सोचा कि आपसे सवाल किया जाए फेलियर के ही हिसाब से, तो अब थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे बताइए फेल होने से आपको ज़्यादा डर लगता है या एम्बैरेसमेंट से, कि फेल होने के बाद जो शर्मिंदगी मुझे या जो मुझे सबके सामने जो मेरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी वो ज़्यादा आपको परेशान करती है, तो मुझे बताइएगा कि फेल होने से ज़्यादा डर लगता है या फिर एम्बैरेसमेंट से। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद एक मैंडेटरी ब्रेक तो है ही जिसकी तरफ हमें बढ़ना ही बढ़ना था, तो छोटा सा ब्रेक एंड वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेजेस भी लेंगे, बट बिफोर दैट एक बार वापस से हम रिपीट कर देते हैं आज का हमारा सवाल जो है वो यही है कि फेल होने से ज़्यादा डर लगता आपको या फिर एम्बैरेसमेंट से। हाँ जी दोस्तों, रबी के लिए देव नेगी निकिता गांधी की आवाज में बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक, एंड आई थिंक आप सबका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, नॉट द ओरिजिनल वन लेकिन फिर भी इसकी वाइब मैच करती है। सुनिए कमाल का ट्रैक एंड स्टे हुक्ड टू FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और कहाँ निकल गया फिर से, एक आधा घंटा पता ही नहीं चला। इट्स 2:03 ऑन द क्लॉक।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, मैं हूँ नासिया आपके साथ। दो चार होते हुए हम इस वक्त, हमारे साथ एक कॉलर भी यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: सलाम वालेकुम नासिया मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन है मेरे साथ?
3: आप भूल गए, आपका नाम मैंने ले लिया था, अलग बात, अलग नाम
1: आपने मेरा
3: मैडम बोल के ले लिया था ना आपका नाम।
1: हाँ, सही सही सही सही, आपका नाम मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। आपने कुछ तो बताया था जब हम सर्वर भाई के साथ लास्ट वाला वो थर्सडे वाला शो कर रहे थे ना, क्या नाम था?
3: हाँ वही ना,
1: बताइए प्लीज अपना नाम। अब से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी।
3: मोहम्मद यासिर।
1: ओ यस, मोहम्मद यासिर जी, तो बताइए कैसे हैं आप और कैसा गुजरा अभी तक आपका दिन?
3: अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है नाजिया मैडम।
1: हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज हम ना आज हम बात कर रहे हैं फेल होने पर। आपको फेल होने से ज्यादा डर लगता है या फिर फेल होने के बाद लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इससे ज्यादा परेशानी होती है? या किस तरह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा चार लोगों के सामने, ये आपको ज्यादा दुख लगता है?
3: जिस तरह से ये सवाल है ना मैडम, मेरे को तो लगता है कि फेल होने पर ऑटोमेटिकली आदमी फेल हो जाएगा तो एम्बैरेसमेंट तो होगी सबके सामने। ऐसा नहीं है कि फेल होने के बाद कोई मोटिवेशन तो जरूर मिलती है, क्यों ऐसा किया तुम, पढ़ा क्यों नहीं, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन फेलियर भी एक लाइफ में पार्ट ऑफ द लाइफ बेस्ट एक्सपीरियंस है। फेल होने के बाद ही उसके बारे में मालूम होता है, मतलब देखो सामने वाला, हम दो फ्रेंड्स है, दो फ्रेंड्स में एक फ्रेंड पास हो गया, एक फ्रेंड फेल हो गया, लेकिन पास होने वाले के ऊपर थोड़ा बहुत उसको सेलिब्रेशन चलता रहता है और उसको डिमोटिवेशन चलता करते रहते हैं ना, उसको भी एक टारगेट मिल जाएगा। हाँ नहीं, नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट असेसमेंट में, सॉरी मेरे को जुबान नहीं अच्छी हो रही है।
1: नहीं, आप सही कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा एम्बैरेसमेंट्स की वजह से ही घबराते हैं, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर दूंगा, ये सारी चीज़ें आना बहुत ही कॉमन है। ये बिल्कुल सच है। और जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है वो यही है कि हम सोशल जजमेंट, उसका फियर हमको बहुत ज़्यादा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये परेशानी हमको बहुत ज़्यादा है। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ओपिनियन हमारे बारे में क्या होगी। और ये हमें बेचैनी बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है कि हम अपने फेलियर को छुपाएं भी, बात भी ना करें और अजीब से यू नो डिस्टर्ब से रहें। तो बस आज यही दिन। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई बड़ा फेलियर है ऐसा जो आप कहेंगे कि हाँ दैट वॉज माई रियली बिग फेलियर, कोई है ऐसा?
3: फेलियर बोले तो
1: कोई जॉब, कहीं रिजेक्शन, समथिंग यू नो?
3: नहीं ऐसा, मेरे को कॉलेज लाइफ में एक बार हुआ था ऐसा ही।
1: अच्छा, ओके।
3: कॉलेज लाइफ में मेरे को यानी क्या बोलते हैं, एग्जाम देना जाने वाला था, वो एक मेरे को थोड़ा सिकनेस से मैंने एग्जाम नहीं दिया, इससे मेरा मेरे मार्कशीट पर ही मार पड़ गया, इरेगुलर बोल के वही फेलियर है
1: ना इसमें। ये आपकी लाइफ का फेलियर है? नहीं, ये तो है, आपकी प्रॉब्लम भी थी, अब आप बीमार हो ही गए, बिल्कुल सच था इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन चलिए कुछ ना कुछ फेलियर हमें सिखा रहा है ये सबने अभी तक यूनानिमसली कहा है, जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग एज सच बहुत ज़्यादा यू आर स्केयर्ड ऑफ, तो बस अपने फेलियर्स को एडमिट करना आना चाहिए, और फेलियर से सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट पता है क्या, एक्सेप्टेंस, लाइफ में हमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए, हम उसे एक्सेप्ट तो कर पाए कि हम फेल हुए।
3: हाँ, हाँ। बात तो सही है, आपकी बात तो सही है, लेकिन आज जो आसपास में रहते हुआ रहने वाले रहते हैं ना, वो उनका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो कम तो की बहुत ज्यादा हो जाता है, आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, उसके चक्कर में है ना वो अपने जो लाइफ की पटरी से बाहर उतर जाता है आदमी। ये है वो, इसलिए जो भी लिसनर्स है आपके सुन रहे हैं, यही कोशिश रहती है कि जो भी फेल होता है उसके उसके लिए मोटिवेशन करना जरूरी है। ये मतलब आजकल का जनरेशन कैसा है बोले तो, अब छोटी छोटी बात पे बच्चे लोग सीरियस हो जाना शुरू हो जाते हैं, फेल हो गए लाइफ में बहुत बड़ा ये हो गया बोल के। बस यही कहना
1: भाई, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोशल जजमेंट, यही हमारा डर खौफ कि हमारी इमेज खराब, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये बहुत हावी हो जाता है। ट्रू,
3: हाँ, ये इन लोग का जजमेंट रहता ना, ये लोग के जजमेंट से ही आदमी फेल हो जाता
1: है। सही, चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो है बहुत ही स्ट्रांग हैं, इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेंगे और अपने फेलियर से लाइफ में छोटे बड़े जैसे भी फेलियर्स आ रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, दैट्स अ प्रॉमिस।
3: इंशाल्लाह अपना गोल है, अपने गोल के ऊपर फोकस करो, आजू बाजू वाले के ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: क्योंकि हमारा लाइफ है, हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ को चलाने वाले हम खुद है, हमारी लाइफ दूसरे लोग कोई चला नहीं सकते, तो उनकी जो बात बोल रहे हैं उनकी भी बात सुनो, यानी ना सुनने की बात भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स ले लो, बाकी के जो भी डिमोटिवेशन पॉइंट्स रहते हैं उनको साइड करके अपने गोल पे फोकस करो।
1: नाइस, बहुत ही अच्छी बात, अब मुझे आपका नाम याद रहेगा, मोहम्मद यासिर। इतनी अच्छी आपने बात की
3: मैडम, मेरे को भी आपका नाम याद रहेगा,
1: है ना,
3: तूफान से नाजिया मैडम में चेंज हो गए।
1: नहीं, आप मेरा नाम भी याद रखिएगा, मैं भी आपका, ठीक है, फिर टेस्ट लेंगे हम दोनों एक दूसरे का इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच मिर्जा साहब। तो सुबह है, अब मेरे मुंह से निकल रहा था निकल लिए, मतलब यहाँ से स्टूडियो से जा चुके हैं। सर्वर भाई सुबह सुबह आ रहे हैं एकदम, कोरमे बिरयानी दावत और कोरमा सब कुछ लेके सुबह कह रहे हैं कि भाई दोपहर तक नहीं मैं वेट कर सकता, सुबह सुबह खाना। बस अपने दिन की शुरुआत कीजिए सर्वर भाई के साथ,
3: इंशाल्लाह
1: ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा,
3: बहुत अच्छा लगा, हैव अ नाइस डे,
1: मुझे भी, यू टू, बाय, लव यू। ऑलराइट, आज हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं, फियर की बात कर रहे हैं, एम्बैरेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने पहले तो बताइए कि फेलियर को एक्सेप्ट कर पाते हैं, इतनी हिम्मत है आप में, जस्ट रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो। अगर आप ड्राइव करें तो प्लीज़ हाथ ऊपर ना कीजिएगा, बस बता दीजिए मैसेज करके भी मुझे 666-221-07 के, हाँ मैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ या ना, मुझे तो काफ़ी घबराहट होती है अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करने में। फिलहाल एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
4: हेलो, गुड आफ्टरनून आजुआ।
1: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आजुआ आप?
4: या आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई एम श्योर आप बहुत ही कमाल की इनसाइट शेयर करने वाले हैं।
4: या एक्जेक्टली, एक्चुअली द फेलियर इज नॉट ऑपोजिट साइड ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली।
1: नाइस, nice.
4: So never afraid the failure, learn from it and believe yourself and try again. आजकल जो word है ना never give up, वो जो the best meaning of the failure, आपको कुछ try कर रहा है आप give up किया तो you should be a failure.
1: अच्छा एक चीज मुझे बताइए, क्या आपके लिए failure is more of a like connected to social judgment or it is like a ego or identity से ज़्यादा connect करता है?
4: Oh, see. Nadia, my life journey and the other's life journey is totally different path. So everyone has a different path and maybe mera success takes some time and from my opposite side maybe he could get soon. So it depends. It depends on the time and it depends on what you are.
1: Depends.
4: So it take time only, but like if you fail or if you miss something, definitely आपको learn करने के लिए बहुत चीज मिलेगा.
1: बहुत कुछ मिलेगा.
4: Especially especially आपको just by luck maybe if you got means you doesn't learn anything. But आप fail हो रहे तो आपको या learn करने के लिए बहुत चीज मिलेगा. वो opposite वाला and one more thing मैं तो failure है. मेरा friend was success. कोई कोई advice लेने का भी maybe I'm getting boring. Because okay he's success. I'm not success. So मैं उसको ज़्यादा सोच के मैं परेशान लेने वाला नहीं है. I should find out the solution how I become a success.
1: True. And at times we tend to feel a effect called spotlight effect. आपने शायद सुन रखा होगा ये concept है spotlight effect where we believe that we feel that everyone is paying attention to our mistakes. जबकि reality is altogether different. Most of the people they are busy thinking about their own lives. But हमें ऐसा लगता है कि हाँ they are busy, they look to our mistakes only.
4: Yeah, because I'm depressed for my failure. But the opposite side, the mind-free area, so he can give whatever suggestion he can give. But for my side, I'm not taking more stress so that time.
1: सही, बिल्कुल सही.
4: तो किसी को advice लेने का भी मेरे को दिल नहीं रहता.
1: नहीं, important ये है कि आप अपने failures को accept कर रहे हैं first, second उससे कुछ सीख रहे हैं and third is कि आप वापस से फिर कोशिश कर रहे हैं. यही तीनों चीज इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट है, इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए.
4: एक्सेप्ट योर फेलियर एंड हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट
1: है. बहुत इम्पोर्टेंट है.
4: लेकिन ये मैं एक्चुअली आफ्टर माय कॉलेज आई डिडंट फेस एनी फेलियर. उसके बाद मेरे फादर ने बोला यू शुड रन योर सेल्फ योर ओन. उससे मैं कॉलेज खत्म किया फिर भी मेरा फादर का साथ बैठ के वो अच्छा नहीं लगता है. इसलिए मेरा फादर बोला यू शुड वर्क ऑन योर ओन फ्यूचर. बोल मैं तो मैक्सिमम 20
1: अजू जी मैं एक चीज बताऊं, फेलियर इज रियली अ प्राइवेट एक्सपीरियंस.
4: या इट्स अ रियली प्राइवेट एक्सपीरियंस.
1: या इट इज.
4: या इट्स नॉट अ ग्रुप स्टडी और इट्स नॉट इन द ग्रुप.
1: फिर हम क्यों इतना डर रहे हैं, है ना? फिर नहीं इतना घबराना चाहिए.
4: इट्स नॉट अबाउट द फियर, बट सम पीपल आगे सोचेगा ना फ्यूचर के लिए. वो वाला बहुत डरता है. फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरव्यू दिया, आप नहीं मिल रहे तो तो ज्यादा सोचेगा तो वो डाउट योरसेल्फ. बट देयर इज अ लॉट ऑफ फिश इन द ओशन. यू कैन कैच एनीवन.
1: And maybe you can, can start working on a altogether different way. आप अपनी strategy पे काम कीजिए, देखिए कि किस चीज की वजह से आप failure, figure out करना कितना important है. हर problem का solution क्या है, identify the problem's root cause. ये important है. Most of the time ये हम बहुत ही last में छोड़ देते हैं, जो जिस पर हमें सबसे ज़्यादा focus करना चाहिए कि what is the root cause, क्या वजह क्या है. Identify तो करें उस problem को.
4: मेरा फॉर माई सेल्फ इफ आई फेल समथिंग आई जस्ट अप्लाई वाई. जितना वाई मैं ऐड करेगा मेरा सॉल्यूशन
1: मिलेगा.
4: सो आई जस्ट ऐड द 5 why ऑप्शन. सो वाई आई वांट टू फेल, ओके ये मेरा पास नहीं है, ओके आई ऐड दैट वन लाइक दैट. मोर देन वाई टू टेक द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स एंड फॉर योर फेलियर.
1: बहुत ही अच्छा, जबरदस्त. थैंक यू सो मच अज्जू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर योर कॉल. बहुत ही अच्छी बात की आपने. हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ. ओके, टेक केयर, बाय. ओके, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई एम टॉकिंग अबाउट फेलियर्स. फेल होने से ज्यादा डर लगता है या फिर एम्बैरेसमेंट से. चलिए इसी टॉपिक पे बात करने के लिए एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मोहम्मद अकरम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
5: टॉपिक बहुत अच्छा है.
1: क्या कहेंगे?
5: मेरे हिसाब से फेलियर से जो है ना वही आगे जाके बहुत आगे ना बहुत अच्छा बढ़ते हैं. एक फेलियर के बाद फिर अपने प्रैक्टिस, फिर फेल, फिर प्रैक्टिस, फिर इतना पॉलिश हो जाता है कि बस फिर ना लोग उनके पास ही सीखने आते हैं.
1: क्या बात है,
5: मालूम पड़ता है कि भाई ये भाई अब ये बंदा स्टार्टिंग में कैसा था फिर बाद में ना ही इज अ ट्रेनर.
1: हाँ यस, बहुत सही कहा आपने.
5: क्योंकि अगर वो अब फेल हो गया लोग, अब ये दुनिया में क्या है कि अगर आप फेल हो गए तो फिर आपके ऊपर नाम रखना शुरू करते हैं लोग, है ना. वो जो है नाम जो लेना शुरू कर देते ना, वो बोलते यार ये तो मेरे को ऐसे बोलते रहते, मैं आगे क्यों बढ़ू. भाई आप इसको प्लस पॉइंट बनाइए, प्लस पॉइंट बना के ना उनको दिखा दीजिए कि भाई है ना मैं अभी ये था ना आगे जाके क्या बन सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ. कभी भी वो भी एक टाइप ऑफ लेसन है. हमेशा आप है ना फुटबॉल में आप जीत नहीं सकते, आपको हारेंगे तो मजा आएगा.
1: हारेंगे
5: तो आप जब हारेंगे हमेशा विनिंग विनिंग विनिंग, वो कभी फेलियर क्या है यानी कि लूज क्या है आप कभी नहीं सीख सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना स्कूल का लाइफ लेता हूँ कि भाई मैं छोटा था और यानी कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था.
1: अच्छा.
5: तो मेरा क्लासमेट बहुत फास्ट रनर था, वो आके मुझे ना खो खो में शायद वो आके मुझे आउट करके बोलता है हाँ मोटू. उसके बाद मैं बोला यार तो मेरे को मोटू बोल दिया. उसके बाद मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैराथन भागा, स्पोर्ट्स, फुटबॉल टीम, बास्केटबॉल यानी के ऐसी चीज, उसको फिर हरा के भी बता दिया भाई वापिस नहीं आना फिर. यानी कि अगर आप इसको है ना प्लस पॉइंट लेके सीखो. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक चैलेंज है कि भाई आप कोई बोल दिया नहीं भाई तुमसे नहीं होगा, अच्छा मैं करके दिखा दूंगा,
1: करके दिखाऊंगा
5: उसको. आप कभी इसमें एम्बैरेसमेंट नहीं है, आप इसमें अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, आप सीख रहे, एक नई चीज सीख रहे हैं. 10 बार मिस्टेक होने दो लेकिन आप एक दिन परफेक्ट हो जाओगे.
1: परफेक्ट
5: आप एक बार हो गया नहीं, 2 बार हो गया नहीं, 3 बार नहीं. नहीं भाई वैसी लाइफ नहीं चलती. आप है ना अपने आप को ना स्टैंड अप लीजिए और ये फेलियर को है ना आज फेलियर है तो कल आप है ना आगे बढ़ेंगे.
1: बिल्कुल.
5: अब वो नहीं बोलते कि बैक बेंचर्स है ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं.
1: That's the reality. वाकई बैक बेंचर्स जो है बहुत कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में. क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सारी चीजें समझी हैं पीछे बैठ के.
5: और अच्छा ना बोले परफॉर्मेंस करके दिखाना, एक बार जिद आ गई तो खलास. मगर आप उसको ना लूज में लेंगे तो फिर फायदा नहीं कभी भी लाइफ में हमेशा.
1: बहुत ही अच्छी आपने बात.
5: अलग है कि शादी के बाद है ना आप अलग है कि भाई आप योर द बॉस इज ऑलवेज राइट समझना पड़ेगा.
1: ये तो खैर एक अलग ही चीज है. लेकिन हाँ जो आपने पॉइंट कहा ना वो बहुत ही रेलेवेंट है कि फेलियर वाकई टेम्परेरी है लेकिन उससे सीखा हुआ लेसन परमानेंट होता है लाइफ.

0: सीखते हैं आप, नई चीज सीख लेते हैं और सीखने में और नई चीजें ना अपन एक्सपीरियंस करते हैं।
1: और जिस दिन ना हमारे फेल होने का डर खत्म हो जाए हमें, उस दिन से मैं कहती हूँ आपकी ग्रोथ वाकई शुरू हो जाती है। एम्बैरेसमेंट का डर हमें खत्म हो जाए, लोग हमें कैसा जज कर रहे हैं ये डर हमारे दिमाग से निकल जाए, हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे सबके सामने कि अरे हाँ मुझसे वो गलती हुई थी एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस।
0: बस लोग आपको बोलते हैं ये तुम फेलियर है, तुम एम्बैरेसमेंट है, ये तुम्हारे से वो अपने खुद की गलतियां छुपाते हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: अपने गलतियां अगर आप उनकी रिकॉर्ड देख लेंगे तो और मजा आता है, लेकिन है ना अपने आपको टॉप बताने के लिए आपकी गलतियां बताते जाते खुद की गलतियां नहीं देखेंगे,
1: नहीं देख पाते। अच्छा मैं सोच रही थी कि कोई ये भी एंगल ऐड करेगा कि हम अपने ही फेलियर से नहीं दूसरों के फेलियर से भी सीखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कई बार हम दूसरों को इतना ऑब्जर्व भी करना और हमें चाहिए भी और उनके फेलियर से भी सीखना चाहिए। हर चीज़ हम पर्सनली खुद ही एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, ठीक है ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि कोई प्रिपेयर तो नहीं होता ना फेलियर्स के लिए, लेकिन जो दूसरों की लाइफ में हो रहा है जो फेलियर्स वो शेयर कर रहे हैं तो उससे भी प्लीज सीखिए,
0: उनके लाइफ से भी बहुत सीखा जा सकता है।
1: हाँ
0: भाई उसने क्या किया था, क्या हुआ था,
1: राइट
0: ग्रुप में है ना बहुत सारी चीजें ना बैठ के ना सीख लेते हैं, भाई बैठे ये गलती हुई थी, बैठे में फेस में ये हो गया था, इसमें ऐसी मेहनत नहीं किया था, तो वो भी एक सीखता कि आपके भाई इसने ऐसे मेहनत नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम वो मेहनत करके जब वो कामयाब होगा ना सामने वाले खींच के लेके जाएगा, भाई तुम भी ऐसा करो, तुम भी उधर से निकल के आ जाओ। यहाँ तो लोग ये एक दूसरे का ना वो क्या बोलते हैं वेल में पुश धक्का मारने के लिए वेट कर रहे हैं।
1: और एक चीज आप देखिए ना आज के, हाँ लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो है वो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं एंड एट टाइम्स ये पूछा जाता है कि शेयर योर सक्सेस स्ट्रेटजी या शेयर योर या डिस्क्लोज योर फेलियर स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजीज देखिए फेलियर स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाता, अगर आप देखें तो कोई भी आज तक कंपनी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपनी फेलियर स्ट्रैटेजी बताए, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि क्यों फेल हुआ ये या इस प्रोजेक्ट को हम क्यों नहीं सही से डिलीवर कर सके, व्हाट्स द रीज़न। उनको बाकायदा डिस्कस इसलिए ही किया जाता है कि वहाँ से हर एक के लिए एक बेस्ट टेक अवे हो, कुछ ना कुछ पावरफुल टेक अवे उन सब के लिए निकल के आए। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, एकदम ऑनेस्टली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ये प्राइवेट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट इस पब्लिक एक्सपीरियंस आल्सो देन आल्सो गो अहेड एक्सेप्ट करो कि हाँ हुआ, ये बात है। चलिए बहुत ही अच्छी बात एंड थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी बात हमारे लिसनर्स के लिए शेयर की, थैंक यू वंस अगेन।
0: करके भी लेट हो गया, ऑफिस से भी लेट निकला मैं, बोला अच्छा आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि आई लाइक द टॉपिक, वो थोड़ी देर ट्राई कर रहा था कि ना वो बच्चे जो ड्राइंग करते हैं वॉल पे उनको ड्राइंग बुक दे देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, तो उस टाइम भी मेरे पास अच्छे मेरा बच्चों के साथ मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो फिर उस टाइम बोलना चाह रहा था, लेकिन
1: वी अप्रिशिएट आपके हमेशा जो भी आप हमारे साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते वी ऑलवेज अप्रिशिएट दैट एंड इसीलिए हम चाहेंगे कि आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए व्हेनेवर यू गेट टाइम, ठीक है। चलिए थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज। दोस्तों अभी मैंने अभी तक मैसेजेस आप लोगों के नहीं लिए हैं, आई थिंक मुझे एक आध मैसेज भी ले लेना चाहिए वरना लोग कहेंगे कि आप मैम मैसेज नहीं लेती हैं। यहाँ पर हमें कुछ मैसेजेस हैं, तौफीक जी का हमने मैसेज ले लिया, सलाम कहते हैं, आप और सर्वर की दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं आप तो बहुत ही अच्छे हैं। अरमान जी सुबह सुबह मिलिए सर्वर भाई से। अच्छा यहाँ पर सलाम कहते हैं, कैसी है मैम, गुड आफ्टरनून, नाइस शो, नाइस वॉइस, ओहो थैंक यू सो मच मुमताज अहमद जी, और कहते हैं आपका हर प्रोग्राम सुपर हिट, वाह कितने पॉजिटिव शख्स हैं आप, है ना सर्वर भाई को आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। गुल नफीस जी का मैसेज है, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत से है मैम आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये नाम इनका यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अगर आप अपना नाम भी बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। रहमान जी हमारे साथ सलाम कहते हैं, मैं ऊपर का मैसेज पढ़ रही थी, कैसी हैं आप और सर्वर भाई, नज़र नहीं आ रहे, उम्मीद है सब ठीक है, नज़र तो वो आएंगे आपको बिल्कुल धूप की, मतलब मेरा मतलब सुबह सुबह आपको सुनाई देंगे, नज़र फिर भी नहीं आएंगे लेकिन सुबह सुनाई देंगे। अच्छा यहाँ पे अहमद मुस्तफ़ा खान जी हैं और कहते हैं हम

ही बताता है. दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज और बहुत ही पावरफुल मैसेज. आई थिंक अ कंक्लूडिंग मैसेज ऑल्सो. बहुत ही अच्छी बात आपने कही. अच्छा यहाँ पर मैम हम अच्छा यहाँ पे कहते हैं मैम हम रेडियो सुन के थोड़ा खुश आने आते हैं लेकिन यहाँ तो सब बीवी की तारीफ शुरू कर देते. तो आपको बीवी की तारीफ से क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे. खैर फिर उन्होंने मजाक भी लिखा है और इस टॉपिक के बारे में मैं यही कहूँगा कि 22 साल की उम्र में लगातार फेल होता रहा लेकिन मैं कभी हार नहीं माना. क्या बात है. वक्त के साथ मैंने उन बातों को सोचना छोड़ दिया. फेलियर तो ज़िंदगी में होते रहते हैं. ये तो छोटी छोटी बातें हैं. इंसान को बस आगे बढ़ते रहना चाहिए. आप तो कितने पॉजिटिव हैं अरबाज जी. बीवी का क्या पंगा. एक दिन उनसे भी हमारी बात कराइए. मतलब हम लोगों की बात कराइए. अच्छा यहाँ पे सलाम कहते हैं. मोहम्मद यूसुफ जी का मैसेज है. कैसी हैं आप. वेलकम का है. हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून आपको भी. और आगे कहते हैं फेलियर से तो थोड़ा डर लगता है लेकिन उसके बाद का जो है वो इससे ज़्यादा डरा देता है. इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश ना करें. एक पोम भी है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. बहुत सही कहा आपने. और सही है कि हम फेलियर्स से बहुत कुछ सीखते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा केयर के साथ करते हैं. बहुत सही बात है. फेलियर्स आर रियली जैसे एक भाई ने कहा ना फेलियर जो है ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है. फेलियर सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है. दैट्स ट्रू. बहुत ही खूबसूरत मैसेज. अकेले अकेले कैसा लग रहा है मैडम. बहुत ही चंगा लग रहा है आसिफ जी. क्या बताएं. फिर वही है ना कि ज़्यादा खुशी मुझे रास नहीं आती. अच्छा फेलियर इज़ न्यू स्टार. इट हिट्स योर ईगो एंड मोटिवेट यू टू अवॉइड योर पास्ट मिस्टेक्स. ये भी है. ये भी एक पॉइंट है. और यहाँ पे बगदादी जी का मैसेज है. मुबीन जी अपनी लाइफ में ही सेट. और तौफीक जी ने भी कुछ हमें खाने वाने की कोई अच्छी सी डिश भेजी है. अच्छा दोस्तों ऐसे तो मुझे और भी बहुत कुछ बोलना था बट वाकई सर्वे भाई सही है. तो एक घंटा कम पड़ता है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है. बस जाते जाते यही कहूँगी कि एक बात जो हमें और आपको समझनी है और जानना है वो ये कि फेलियर एंड नहीं है. एक नई शुरुआत है. गिरना इंसान की कमजोरी नहीं है. गिरकर उठना उसकी ताकत है. और हर नाकामी अपने साथ एक सबक एक तजुर्बा और एक नई राह लेकर आती है. शायद मुश्किल के बाद ही हमें समझ में आता है कि कामयाबी की कितनी अहमियत है. यही बातें आपने मुझसे कही बस मैंने इनको आपके लिए झटपट से रिवाइज कर दिया. लाइफ में जो है वो कुछ भी परमानेंट नहीं है. फेलियर बहुत टेम्परेरी है. उससे सीखा हुआ लेसन जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ चलता है. तो एक्सेप्ट करिए सीखिए और आगे बढ़िए. मेरा भी वक्त हो गया आगे बढ़ने का. आगे बढ़ के गेट खोल के बाहर जाने का. आई मीन टू से खुदाफिज कहने का. कल वापस आपकी और मेरी मुलाकात होगी 1:30 इसी शो में. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, एक ही आयत, एक ही अल्फाज, एक ही माना, लेकिन कभी कोई शख्स उसे पढ़ता है तो हम सुनते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी वही आयत किसी ऐसे

0: ऐसी आवाज, ऐसे ठहराव और ऐसे एहसास के साथ पढ़ी जाती है कि इंसान चलते हुए भी रुक जाता है, दिल मुतवज्जे होता है, आंख नम हो जाती है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुरान को खूबसूरत आवाज, तरतील और मुनासिब अंदाज के साथ पढ़ने की तरगीब मिलती है। बराए इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज में सूरह तीन पढ़ते हुए सुना, वत्तीन वज़्ज़ैतून, और वो फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत आवाज वाला किसी को नहीं सुना। मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद भी मनकूल है, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ों से खूबसूरत बनाओ। और इस तरह मुख्तलिफ रिवायात में हुस्न सौत की तरगीब के दूसरे अल्फाज भी आए हैं, यानी कुरान पढ़ते हुए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक आवाज़ को खूबसूरत बनाना, तिलावत को संवारना, अल्फाज को साफ अदा करना, ठहराव के साथ पढ़ना, ये सब कुरान के साथ हुस्न तआमुल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ याद रखिए, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। चूँकि हर इंसान की आवाज़ मुख्तलिफ है, हर शख्स की आवाज़ यकसां खूबसूरत नहीं, और सुन्नत आपसे किसी दूसरे की आवाज़ नहीं मांगती, आपसे आपकी बेहतरीन कोशिश मांगती है। तो यहाँ एक बहुत अहम तवाज़ुन पेश नज़र रहे कि आवाज़ खूबसूरत करना सुन्नत है, लेकिन कुरान को आवाज़ की नुमाइश बना देना मकसद नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि कारी की पूरी तवज्जो इस बात पर चली जाए कि मेरा सुर कैसा लग रहा है, लोग मेरी तारीफ करेंगे या नहीं, लोग मुतासर हो रहे हैं या नहीं। यहाँ हमें अपनी नीयत का जायज़ा लेना चाहिए। कुरान हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करे, हम कुरान के जरिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे में न लग जाएं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो माना से बेखबर तेज़ी से पढ़ रहा है, और दूसरा शख्स शायद इतनी दिलकश आवाज़ नहीं रखता, मगर हर लफ्ज़ एहतियात से अदा करता है, दिल हाजिर है, आयत समझने की कोशिश कर रहा है। अब आप ही बताइए कि किसकी तिलावत अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल होगी। बहरहाल मकबूलियत तो अल्लाह का फैसला है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि सिर्फ आवाज़ की खूबसूरती से उसका फैसला नहीं किया जाता। कुरान की तिलावत इबादत है, और इबादत में इखलास बुनियादी है। अब चलें देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात कैसी थी। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात कैसी होती थी। उन्होंने फरमाया, कान यमुद्दु मद्दन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद के साथ पढ़ते थे। जहाँ हरूफ में मद की गुंजाइश और कायदा होता, वहाँ उन्हें मुनासिब तौर पर खींच कर अदा फरमाते, यानी हर लफ्ज को उसका हक मिलता था, हर हर्फ अपनी जगह वाज़े होता था। और जैसे कि सामने के नाम आप सब जानते हैं कि कुरान में तरतील मतलूब है। तरतील को सिर्फ खुशालहानी समझ लेना भी मुकम्मल तसव्वुर नहीं। तरतील में अल्फाज की दुरुस्त अदायगी है, ठहराव, मुनासिब रफ्तार, हरूफ का हक और माने के साथ ताल्लुक भी सारे के सारे मौजूद हैं। सामने के नाम एक खूबसूरत तिलावत की कामयाबी शायद ये है कि कुछ देर बाद सामे कारी को भूल जाए और कुरान सुनने लगे। हमारी तिलावत का हुसन लोगों को हमारी शख्सियत पर रोकने के बजाय अल्लाह के कलाम तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें कुरान की सही खूबसूरत और बाखुशु तिलावत नसीब फरमाए, हमारे दिलों को उसके मानी के लिए खोल दे, और हमारे किरदार को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर, एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, सिर्फ काम मेरा नहीं है अपडेट देने का, आप मुझे अपडेट रखिए प्लीज। बताइए कोई ऐसा गैजेट आपने इस्तेमाल किया है रिसेंटली जो आपको लगता है ये भाई काम का है, ये दुनिया को पता नहीं है, पब्लिक अनजाने, तो जरूर बताइएगा सोशल।

0: जनरल साहब जानते हैं FM 107 कतर। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे अराउंड है एंड पीपल आर बाइंग इट, पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। ये इसकी कहानी ऐसी है ना कि ये धीरे धीरे इवॉल्व होता चला जा रहा है, बट पीपल आर कंफ्यूज कि जाएं कहाँ। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट ग्लासेस की, जो मेटा रेबैन इंटीग्रेशन के बाद ऐसा हो गया है कि गिमिक से आगे बढ़ गए। पहले लगता था यार ये सिर्फ शोशेबाजी है, ये चश्मा पहन लिया और उसमें जो है आपको एक बटन दे दिया साइड में और आप गाने वाने सुन रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हो गई थी। बट देन जब मेटा रेबैन इंटीग्रेट हुआ और लगा कि अब कुछ हो सकता है तो लोग इसे खरीदने लगे। इट मूव्ड बियॉन्ड गिमिक्स और हर दिन का एसेंशियल बन गया। तो अभी बिल्ट इन मल्टी मॉडल AI, कैमरा कैप्चर, ओपन एयर ऑडियो, हेड्स अप डिस्प्ले ओवरलेज, मेटा और रेबैन इसे और लाइट वेट करने में लगे हुए हैं। दे आर प्लानिंग कि सोशली एक्सेप्टेबल बनाया जाए और फंक्शनल बनाया जाए, क्योंकि देखिए यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप ग्लासेस में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसे थोड़ा सा फ्रेम अलग हो सकता है कि नहीं, दैट कैन नॉट बी डन। ये अभी पॉसिबल नहीं है, पर जो करंट मॉडल है मेटा रेबैन का वो बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक अगर पूरी फील्ड में देखा जाए कि कौन से मेटा ग्लासेस ज़्यादा पहने जा रहे हैं, सॉरी ग्लासेस पहने जा रहे हैं स्मार्ट ग्लासेस, तो उसमें मेटा रेबैन ग्लासेस ऊपर ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने कोई दूसरा वर्जन ऐसा कुछ लॉन्च करने का नहीं कहा है, बट दे आर डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग मोर एंड मोर इनटू देयर ग्लासेस ताकि वो खरीदा जा सके। इंडिया की बात करूं तो अभी भी ये अराउंड 30,000 से 40,000 ऐसे प्राइस टैग के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट दैट दे आर गिविंग। एंड ये अभी कतर में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं, यू स्टिल हैव टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड। पर अगर आप खरीद चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं तो बहुत जरूरी होगा। आई थिंक और भी स्मार्ट ग्लासेस हैं जो लोग लेना चाहते हैं, बट लोगों को इतना भरोसा नहीं बिकॉज वो गिमिकी लगता है। तो स्मार्ट ग्लासेस आप कौन से यूज कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा, एंड आई वुड लव टू नो, क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्ट ग्लासेस हैं जो कतर में अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, और सैडली उनमें से मेटा रेबैन ग्लासेस हैं जो शायद आपको हेड्स अप डिस्प्ले दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो अवेलेबल होने चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट फिलहाल के लिए आपका एक्सपीरियंस स्मार्ट ग्लासेस को लेकर कैसा है ये जरूर बताइए, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इट। अभी क्या है वो आपने देखा होगा Xiaomi ने भी लॉन्च किया, Xiaomi का हो चुका है वो Meizia स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस जो आपको साउंड देते हैं, एंड इसके अलावा स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस के भी 2-3 उन्होंने वर्जन निकाले हैं। फिर आप देख सकते हैं JBL ने भी इसमें अपना एक राउंड खेल दिया है, उन्होंने ऑडियो सनग्लासेस लॉन्च किए हैं। अब लोग बोलेंगे JBL है भाई, Xiaomi है भाई, हलवा थोड़ी है। और 600 रियाल का प्राइस टैग इज नॉट अ बैड प्राइस टैग, क्योंकि उतने में ही आपको जो है मिल जाते हैं ये एयरबड्स एंड ऑल। सो अभी Xiaomi, JBL एंड बाकी और कंपनीज मार्केट में आ चुकी, लेकिन कतर में जो अवेलेबल हैं फिलहाल JBL के हैं। एंड अगर मेरा पर्सनल रिव्यू आप जानकर खरीदने के लिए पहुंचे तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड Xiaomi और JBL के, बट JBL ओवर Xiaomi फॉर ऑडियो एनी डे, दे आर फार फार बेटर। बट ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर उसका प्रीमियम वर्जन की तरफ जाएंगे जिसमें 2 फ्रेम्स अलग से दिए हुए हैं Xiaomi ने, तो 2 फ्रेम्स बनेंगे आपको, एक तो लिटरल एविएटर टाइप है सनग्लासेस हैं और एक जो है नॉर्मल ग्लासेस है, दोनों में अवेलेबल है। दोनों के प्राइस टैग JBL के मुकाबले 400 रियाल ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज वर्थ इट, क्योंकि ग्लासेस एनी वे थोड़े से महंगे होते हैं यहाँ पर। तो That is how it is. But do you have you bought any smart glasses recently? Or are you planning to buy it? ये तो मेरा review है, मैंने आपको बता दिया, पर आपने खरीदे तो बताइएगा। FM 107 Qatar हमारे social media handles पे। Glasses का मामला भी आगे जा रहा है भाई, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी दुनिया में जिसमें technology ना आए। But for now, these were the tech updates. मिलते हैं अगले में। Stay tuned for more.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

स्मार्ट मनी, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टर्म एसेट्स पर। एसेट्स क्या है? जब भी हम अकाउंटिंग, फिनांस या बिजनेस की बात करते हैं तो एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है ना, एसेट्स। अगर आप किसी बिजनेस को ओन करते हैं, इन्वेस्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपसे पूछूं कि कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो अक्सर आप एसेट्स की तरफ ही इशारा करेंगे, है ना। यहाँ तो मैं आपका जवाब नहीं सुन रही, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो एसेट्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अपने

0: ऑडियंस को समझाने के लिए समझाऊं तो एसेट वो चीज है जो आप ओन करते हैं और जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। यानी अगर कोई चीज आपके पास है और वो आपको पैसा कमा कर दे सकती है, पैसा बचा सकती है या फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो वो हुआ आपका एसेट। चलिए और समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपके पास 50,000 कतरी रियाल कैश है। ऑफिस का फर्नीचर है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंपनी का व्हीकल है, इन्वेंट्री है, कस्टमर से मिलने वाले पेमेंट्स हैं। ये सब आपके एसेट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सब फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेंगे। इसीलिए अकाउंटिंग में एसेट्स को कंपनी की इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहा जाता है। अब एसेट्स की अहमियत बहुत है। सोचिए, अगर एक कंपनी के पास कोई कैश ना हो, कोई इन्वेंट्री ना हो, कोई मशीनरी ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, तो क्या वो बिजनेस चला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एसेट्स को बिजनेस का इंजन कहा जाता है। जितनी मजबूत और प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे, उतनी ही कंपनी ग्रो करने की पोजिशन में होगी। एसेट्स कंपनी की अर्निंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसेट्स के दो अहम टाइप्स भी हैं। यहाँ पर जो कॉमन टाइप है वो है करंट एसेट और दूसरा है फिक्स्ड एसेट। चलिए इस पे भी झटपट से बात कर लेती हूँ कि करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में यूज होते हैं। इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। जैसे कैश, सबसे कॉमन एसेट है कैश, बैंक अकाउंट में रखा पैसा या फिर कंपनी के पास अवेलेबल कैश, ठीक है। इन्वेंट्री, वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी बेचने के लिए रखती है। मिसाल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं तो मोबाइल फोन्स होंगे, लैपटॉप्स हैं, एक्सेसरीज हैं, सब इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री भी एसेट है क्योंकि सेल होने पर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज है समझने के लिए, वो है लायबिलिटीज। लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगी, वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगी। लायबिलिटीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अलग एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूँ। अब बात कर लेती हूँ पर्सनल लाइफ में एसेट्स की। एसेट्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के पास नहीं होते, हर इंसान के पास भी एसेट्स होते हैं। जैसे उनकी कैश सेविंग, हाउस है, लैंड है, गोल्ड है, कार है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब आपकी पर्सनल एसेट्स हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे, उतने ही आपकी फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग होगी। कामयाब लोग इनकम से ज्यादा एसेट्स पर फोकस करते हैं। इनकम आज आती है और कल खत्म हो जाती है, लेकिन एसेट्स वक्त के साथ वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले लाइफ में एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे। तो बस जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल बात जो मैं आपके हवाले करने वाली हूँ, वो ये कि एसेट्स आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की बुनियाद है, चाहे बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ। असल दौलत वो नहीं जो आपने कमाई गवाई, बल्कि वो है जो आपने संभाल के रखी। जो लोग एसेट्स बनाना सीख लेते हैं, वो वक्त के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी उसके करीब पहुंचेंगे। वेल, अभी के लिए इजाजत। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107। और हाँ, रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो एसेट्स बिल्ड करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

सोचिए एक बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा है, बॉलर रन अप लेता है और फिर एक ऐसा कवर ड्राइव निकलता है कि बॉल बाउंड्री की तरफ बिजली की तरह चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये क्लास थी, स्टाइल था और पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे सुपरस्टार का अंदाज था जिसे दुनिया माजिद खान के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप

रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इसी लेजेंड की जिन्होंने अपनी स्टाइलिश बैटिंग पावरफुल स्ट्रोक प्ले और ऑलराउंड क्रिकेटिंग एबिलिटी से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास मकाम बनाया। माजिद खान नाम तो सुना होगा आपने। माजिद खान की पैदाइश 28 सितंबर 1946 को लुधियाना यानी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके वालिद जहांगीर खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे जबकि उनके कजिन इमरान खान आगे चलकर पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप विनिंग स्किपर बने। लेकिन माजिद खान की पहचान सिर्फ एक मशहूर क्रिकेटिंग फैमिली का हिस्सा होना नहीं थी। उन्होंने अपने कारकर्दगी से अपना नाम जो था वो उन्होंने बनाया। माजिद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में किया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ बल्लेबाजी तक लिमिटेड नहीं था। शुरुआती दौर में वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी थे लेकिन वक्त के साथ उनकी असली पहचान एक स्टाइलिश टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर बनी। माजिद की बैटिंग में एक खास एलिगेंस थी। उनका स्टांस पुरसुकून होता, फुटवर्क बैलेंस्ड होता और जब वो फ्रंट फुट पर आकर कवर या एक्स्ट्रा कवर के थ्रू शॉट खेलते तो क्रिकेट देखने वालों के लिए वो एक खूबसूरत मंजर होता। उनका सबसे यादगार शॉट था कवर ड्राइव। ऐसा लगता था जैसे गेंद को जोर से नहीं बल्कि टाइमिंग और प्लेसमेंट से बाउंड्री तक भेजा जा रहा हो। माजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 63 टेस्ट मैचेस खेले और उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था 167। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा। वो पाकिस्तान के उन अर्ली क्रिकेटर्स में शामिल थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट के डेवलपिंग एरा को एक्सपीरियंस किया। अच्छा ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट सेंचुरियन यानी पहला सेंचुरी स्कोर करने का जो रिकॉर्ड है वो माजिद खान के पास है। He became the first batsman ever for Pakistan to score a ODI century. तो तारीखी बात है और माजिद खान उस जमाने में जब ODI क्रिकेट एक नया गेम था और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा टक्कर देने का था तो ODI क्रिकेट के जो फॉर्मेटिव ईयर्स में कई ऐसे बल्लेबाजों ने उस फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग या यू नो आई वुड से कि बहुत एंटरटेनिंग बनाया था उनमें से माजिद खान वॉज वन ऑफ दोज लीडिंग बैट्समैन। और फिर आता है उनके करियर का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कप्तानी। माजिद खान ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की लीडरशिप भी की। कप्तान के तौर पर उनका अप्रोच जनरली काम और कंपोज्ड माना जाता था। वो क्रिकेट को सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं बल्कि एक टीम गेम के तौर पर देखते थे। 1970 और 1980 के पाकिस्तान क्रिकेट के दौर में माजिद खान एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी पर्सनालिटी भी उनके गेम की तरह क्लासी थी। उनके क्रिकेटिंग करियर में अप्स एंड डाउन्स भी आए लेकिन उनकी बैटिंग का स्टाइल और उनका टेम्परमेंट फैंस की यादों में हमेशा जिंदा रहा। 1983 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी माजिद खान का क्रिकेट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से याद रखे जाते हैं और कुछ अपने स्टाइल की वजह से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माजिद खान वॉज नेवर अ सक्सेसफुल क्रिकेटर और अ बैट्समैन। He was immensely popular and he was immensely successful. Statistics say har cheez up, you know, you cannot measure a player's caliber. Ji haan, Don Bradman ke statistics bhi utna hi important hai jitna Sunil Manohar Gavaskar ya Virat Kohli ya Babar Azam ke. Majid Khan bhi usi level ke the jinko English county cricket mein wahan ke us time ke journalists kehte the ki He's a majestic Khan. Majestic Khan से मुराद ये है कि माजिद खान के जो you know जो पर्सनैलिटी में एक क्वालिटी ये थी कि अगर कोई निक हो यानी बॉलर अगर गेंद डालने के बाद उनके बल्ले से लगकर कहीं विकेट कीपर या स्लिप फील्डर के पास अगर वो कैच के तौर पर या कुछ भी हो पैड पे लगने के बाद अगर कोई अपील करता तो माजिद खान बिना किसी देखे बिना रुके बिना किसी झिझक के वो क्रीज से सीधा पेविलियन के रास्ता अपना लेता था। दैट वॉज

आजिद खान, बिकॉज उनको लगता था कि अगर बॉलर ने अपील किया है तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है. तो ये नेवर प्रोटेस्टेड, ये ही नेवर यू नो लुक्ड इनटू द अंपायर्स आईज कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं आउट तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलिए आप. उस जमाने में तो डीआरएस वीआरएस तो कुछ भी नहीं था, उस जमाने में कुछ भी नहीं था कि आप नो थर्ड अंपायर या यू नो जो कहते हैं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बताते हैं कि निक हुआ है या नहीं हुआ है, आवाज आई है नहीं आई है, तो ये सब चीजें उस जमाने में तो था नहीं. तो उस टाइम माजिद खान वॉज सो पॉपुलर, इनके अपने ही एक जो कहते हैं ना कि आउट से कि उनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस जो बात थी कि चलो भाई लग गया है तो लग गया, मीन्स यू नो आई माइट बी आउट. तो ये जो बड़प्पन वाली बात थी वो माजिद खान के अंदर में सबने देखा, और इसी वजह से उन्हें कहा भी जाता है कि ही वॉज मैजेस्टी खान. उनके पास रन्स थे, विकेट्स थे, कप्तानी थी, लेकिन सबसे बढ़कर उनके पास एक ऐसा बैटिंग स्टाइल था जो देखने वालों को क्रिकेट से मोहब्बत करने पर मजबूर करता था. माजिद खान पाकिस्तान क्रिकेट का एक स्टाइलिश बैट्समैन, यूजफुल बॉलर, फॉर्मर कप्तान, और एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन का हिस्सा रहा. उम्मीद है आपको आज का हमारा यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। वजारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के शौकीन अफराद को हिदायत दी है कि हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी या वाटर डाइविंग को महफूज बनाया जा सके। याद रखें कि डाइविंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है जो किसी ऑफिशियल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समंदर और मौसमी सूरत हाल भी चेक करना चाहिए ताकि नामुनासिब हालत में डाइविंग को अवॉइड किया जा सके। वजारत दाखला ने वाजे तौर पर कहा है कि जब आप अकेले हों तो डाइविंग मत कीजिए और खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग मत कीजिए जो तवज्जो या होश पर असर डाल सकती हो। ये भी याद रखिए कि समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच कर लेना लाजमी है ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया बियॉय लगाएं ताकि वहां पे जो कश्तियां या दूसरे लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का अंदाजा हो सके। डाइविंग के दौरान पानी की गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हुदूद से दूर रहना जरूरी है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी के साथ उठाएं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107
3: दिल से देसी।
4: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेरी वार्म वेलकम टू जनरेशन टॉक ऑन एफएम 107 कतर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम फिर एक ऐसे कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां दो जनरेशंस और आप कह लेंगे दो जनरेशंस के आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए मैं जनरेशन टॉक का मकसद सिर्फ डिफरेंट जनरेशंस के ऑप्शंस को या ओपिनियंस को सामने लेकर आना नहीं है बल्कि उन ऑप्शंस के पीछे छुपी सोच को समझना भी है, क्योंकि हर जनरेशन अपने वक्त, अपने चैलेंजेस और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ग्रो करती है। और भाई जब बात एजुकेशन, करियर, एम्बिशंस और फ्यूचर की होती है ना, तो भाई जनरेशन गैप और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मैं कहूँगी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए फेमिलियर भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और मैं कहूँगी कि इसको कैसे पुट इन किया जाए। हाँ, मैं कहूँगी कि टॉपिक कुछ ऐसा है कि आर स्टूडेंट्स चूजिंग करियर्स फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर पेरेंट्स। अच्छा, क्या स्टूडेंट्स अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं या फिर कभी कभी करियर का डिसीजन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली वैल्यूज और सोसाइटी के प्रेशर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है, ये है कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करियर चूज करते वक्त प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बहुत सारा, या वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उन्हें एक सोर्स या एक आप कह लें कि नहीं मैं कहूँगी कि या ऐसा होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। हर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन यही होती है ना कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा करे। तो भाई हम आज इसी डिसीजन को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट की चॉइस, पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस और टीचर की ऑब्जर्वेशन तीनों रिस्पेक्टिवली एक साथ चलती हैं तो क्या होता है। आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक ऑन एफएम 107 और मैं हूं सफा। और हाँ जी, आप अपने फीडबैक्स हमारे एफएम 107 के पेज पर भी भेज सकते हैं, हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं @FM107Qatar, या चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 666-22107 पर। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, आज हम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हम अपनी और हमारी आज की डिस्कशन को समझाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक जर्नी को बहुत करीब से ऑब्जर्व करती हैं। हमारे साथ हैं आरजू सदफ जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल के कैम्ब्रिज लेवल पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस टीच करती हैं। अच्छा, टीचिंग के थ्रू मैं कहूँगी कि उन्हें स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एबिलिटीज और एम्बिशंस और करियर रिलेटेड डिसीजंस को भी उन्होंने बहुत क्लोजली उन्हें समझने का मौका मिलता है। तो भाई आरजू सदफ के पीछे आप कह लें कि ये जो हैं पिछले 7 ईयर्स से कतर में ये मुकीम है और एजुकेशन की फील्ड में उनका एक्सपीरियंस उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल अपना प्रस्पेक्टिव देने का, रखने का मौका देता है। जब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेते हैं तो उनकी अपनी चॉइसेस कितनी स्ट्रांग होती हैं और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कितनी उसे इन्फ्लुएंस करती हैं, ये हम आरजू से पूछेंगे। और आरजू, मैं कहूँगी कि आरजू सदफ जो हैं वो जनरेशन टॉक में आपको मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।
3: कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
3: और भाई मैं तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरा छूटते के साथ सवाल यही होता है टीचर्स के साथ

0: बात कि आप जो हैं एज अ टीचर, टीचर के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो वाकई में खुद अपनी करियर्स चूज कर रहे हैं या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अभी भी उनके डिसीजंस, अपने मेजर डिसीजंस पेरेंट्स के ही हैं उनके?
1: इसमें अगर हम देखें ना तो थोड़ा सा मिक्स्ड रिस्पांस हमारे पास आता है, लेकिन ये तो जेन्युइनली बात बिल्कुल ठीक है कि ज्यादा इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का ही होता है। तो इसलिए भी कि ये जो चॉइस जब उन्हें दी जाती है ना बच्चों को, तो उनकी एज होती है उस वक्त 12 या 13,
0: सही,
1: तो वो इतने छोटे होते हैं उस टाइम कि उन्हें खुद भी इतना एक्सपोजर नहीं होता और इतना पता नहीं होता, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं।
0: सही,
1: तो ज्यादा इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो जिन्हें क्लियरली पहले से ही पता होता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, ऐसा है।
0: और ये जो अक्सर औकात ये भी कहा जाता है ना कि कुछ बोर्ड्स या कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं, जैसे कहा जाता है कैम्ब्रिज सिस्टम के बच्चे बड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं, ब्रिटिश कोरिकुलम के बच्चे अलग सोचते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो IGCSE लेवल पर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह से अपने मैं कहूँगी कि 8th 9th 10th ये वाला सिस्टम इनका होता है, ये थोड़े बहुत इनको एक्सपोजर मिल रहा होता है दुनिया का, आपको क्या लगता है इनको इनको क्या क्लियर आइडिया होता है कि इन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, या ये कंफ्यूज ही होते हैं अभी भी?
1: नहीं, कंफ्यूजन तो हर लेवल पर ही होती है, इवन हम एज एन एडल्ट भी बहुत सारे फैसलों में हमें कंफ्यूजन का सामना होता है, और ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है करियर, तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि IGCSE के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी क्वेश्चनिंग माइंड होता है, हमारा टीचिंग स्टाइल भी ऐसा ही होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, हम एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही रखते हैं ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। बिल्कुल, तो इसलिए उनमें रिसर्च का, हर चीज के लिए उन्हें रिसर्च भी करनी पड़ती है, हर टॉपिक के लिए खुद से ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना, तो वो रिसर्च करते हैं, इस वजह से उनको एट टाइम्स को वो हमसे भी ज्यादा, मतलब किसी भी टॉपिक में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे हैं जिनको हमसे भी ज्यादा अप टू डेट नॉलेज होती है उस वक्त, तो उनसे हम भी सीखते हैं। तो क्लासरूम जब हमारा क्लास चल रही होती है तो ये टू वे चल रहा होता है, कुछ हम उनसे सीख रहे होते हैं और वो हमसे सीख रहे होते हैं, तो ये तो है कि एक्सपोजर ज्यादा होता है, उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन इस यंग एज में कंफ्यूजन का शिकार तो वो हमेशा ही रहते हैं,
0: बच्चे हैं तो कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्लियर साइन होता है ना, क्योंकि मेरा डीपली बहुत ये मानना है कि अब बहुत टाइम चेंज हो गया है, पहले टीचर्स किसी और क्राइटेरिया से और किसी और पर्सपेक्टिव से देखा करते थे एजुकेशन को और बच्चों को, अब चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं, तो जब आप देखती हैं किसी बच्चे को आप कैसे डिफरेंशिएट कर लेती हैं, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर लेती हैं किसी भी बच्चे को कि इसके ऊपर पेरेंट का प्रेशर है या ये बच्चा अपना डिसीजन ले रहा है?
1: ये ना थोड़ी से कुछ जब टाइम गुजरता है ना, जब बच्चे सिलेक्शन करते हैं, और एक बात मैं आपको बताऊं, आपने खुद भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा कि स्कूल लेवल पे स्पेशली अगर क्लास में, मतलब अगर किसी ग्रेड में 30 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 6 या 7 ही बिजनेस या इकोनॉमिक्स चूज करेंगे।
0: सही,
1: उसमें से मेजॉरिटी जो है ना वो साइंसेस में ही होगी, बायो में, कंप्यूटर।
0: हाँ, ये बात में मानती
1: हूँ, यही पढ़ेंगे,
0: ये पुराना है एक ट्रेंड।
1: हाँ, क्यों, तो क्यों है ये, अभी भी यही है। क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस यही होता है कि साइंस जो है ना वो एक सिक्योर फील्ड है, ठीक है, और फिर ये होता है कि अगर आपने आगे जाके चेंज करना हुआ तब भी आपके पास ऑप्शंस खुले रहे होंगे।
0: साइंस
1: लेना जो है ना, हाँ, साइंस है ना वो सेफेस्ट ऑप्शन है, बच्चा कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है, तो लेकिन यही प्रेशर किया जाता है कि नहीं, आप एटलीस्ट IGCSE के लेवल पर तो साइंसेज ही पढ़ें, बाद में अगर आपने चेंज करना हुआ ना तो कर लीजिएगा। हालांकि उसके बाद उन्हें वो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती क्योंकि उनकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होती।
0: सही,
1: हालांकि जो बच्चे शुरू से कॉमर्स, मतलब इकोनॉमिक्स या बिजनेस पढ़ रहे होते हैं उनकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो अब यहाँ से आप अपने अगर डेटा को भी देखें ना, तो स्कूल्स के डेटा से ही आपको ये पता चलेगा कि कितना पेरेंटल इन्फ्लुएंस है कि बच्चे उसी में जाते

0: साइंसेस में। जो बच्चे आते हैं, मैं आपको ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि जैसे हम शुरू में ओरिएंटेशन क्लासेस देते हैं कि बच्चे आए एक हफ्ता क्लास में बैठे देखें, अगर पसंद आए तो कर लें। एक हफ्ता मेरे पास क्लास में 20 बच्चे बैठे होंगे, लेकिन बाय द एंड जो है ना, और वो ये भी कहेंगे कि मैम ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स रियली क्लोज टू द डेली लाइफ, वो एक्सपीरियंस भी करते तो देखते भी हैं, इंटरेस्टिंग भी है, तो वो पर्सनली वो लेना चाहते हैं, लेकिन घर से उनको परमिशन नहीं मिलती कि नहीं आपने ये चूज करना। और फिर ये होता है एक दो साल के बाद वो जब साइंसेस में नहीं चल पाते तो वो फिर यही करियर चूज करते हैं और यही सब्जेक्ट चूज करते हैं, लेकिन शुरू में उनको ये फ्रीडम नहीं मिलती।
1: मुझे आपने ये बात करकर ना बड़ा ही इमोशनल कर दिया, क्योंकि ये कहानी कुछ बहुत रिलेटिव लग रही है मुझे कि बेटा अभी कर लो, अभी कर लो, अच्छा अच्छा एक साल और गुजार लो, अच्छा दो साल और गुजार लो, अच्छा अच्छा जो है ना फार्मडी कर लो, अच्छा डेंटिस्ट्री कर लो, करते करते करते करते सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिर में आकर घड़ी वहीं पर रुकी कि सफा ने तो बिजनेस पढ़ना है या सफा ने फलानी चीज पढ़नी है, सफा ने फैशन डिजाइनिंग करनी है, तो वो बच्चे को अगर बच्चा बोल भी रहा होता है ना तो उसकी सुनी नहीं जाती।
0: नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं भी, ऐसा होता भी है, क्योंकि शुरू में पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं होता, उन्हें लगता है कि कर लेंगे, इतना भी नहीं है हमारा बच्चा, क्योंकि ये हमने अटैच किया हुआ है कि जो डल बच्चे हैं ना,
1: हाँ
0: और जो
1: आर्ट्स और कॉमर्स सिर्फ वो बच्चे लेंगे, इकोनॉमिक्स सिर्फ वो बच्चा लेगा जिसकी परसेंटेज जो है वो 60 से लोअर है, वो मजबूरी में ले लेगा। अच्छा, मैं समझती थी कि ये चीज हमारी सोसाइटी से निकल गई है, परे हो गई है, लेकिन आपकी बात सुनकर अभी ये तो 2026 चल रहा है, तो आपकी बात सुन के मैं फिर परेशान हो गई हूँ कि ये हमारी सोसाइटी और कल्चर से अभी भी चीज कहीं गुम नहीं हुई।
0: लेकिन एक बात है सफा, ये मैं आपसे शेयर करूंगी कि 7 years का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पाकिस्तान में, मतलब यहाँ कतर में है ना, उससे पहले 9 साल मैंने पाकिस्तान में पढ़ा,
1: ठीक
0: है, तो मेरे पास हमेशा जो स्ट्रेंथ होती थी ना स्टूडेंट्स की, वो 4, 5, 7 स्टूडेंट्स यही हो, हमेशा यही रहा, साइंसेस की क्लासेस भरी होती थी और हमारे पास वो गिने चुने बच्चे हमेशा से।
1: हमारा ये रहा है कि हम लोग मजाक में एक टाइम पर, जब हमारा टाइम था, मैंने खुद मेडिसिन पढ़ा हुआ है, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो हमारे टाइम पर हम लोग मजाक उड़ाते थे, हम ये कहते थे कि भाई पत्थर भी उठाओगे ना तो हर पत्थर के नीचे से 4 डॉक्टर निकल आएंगे, तो ये अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये
0: लेकिन अभी... नहीं, अब मैं आपको बताऊं ना कि अब मेरे पास ये पहला साल है या पहला बैच है जिसमें मेरी जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो 16 है, जिसमें मुझे फील होता है क्लास, तो मुझे ये नजर आ रहा है ना कि चेंज आ रहा है, और उसमें अब पहले मेरे पास वो स्टूडेंट्स होते थे जो के मतलब हर तरफ से रिजेक्ट होकर पास ना होकर
1: आ जाते, समझ गई बात,
0: उन्हें मैं जबरदस्ती पढ़ा रही थी, लेकिन अब मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना वो बाय चॉइस,
1: वो बाय चॉइस है, सही सही,
0: तो मुझे बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा,
0: वो बाय
1: एक और चीज ये कि आप तो माशाल्लाह से इतने सालों से पढ़ा रही हैं, जरा मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ आपको अंदाजा होगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं इकोनॉमिक्स या बिजनेस के आपके पास कि जिनको देखकर या जिनको समझकर आप ये कह सकती हैं कि अच्छा ये इनकी चॉइस इसलिए है क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आगे अपना फैमिली बिजनेस संभालें या अपना कुछ कॉर्पोरेट रूटीन बनाएं या कुछ कुछ ऐसा करें, उनके दिमाग में कोई विजन है?
0: नहीं, ऐसे हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं जो बाय चॉइस आ रहे हैं ना, उनसे अगर आप पूछें तो उनके पेरेंट्स भी या तो अकाउंटेंट्स हैं या कोई कॉर्पोरेट जॉब्स करें, तो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि इट्स अ प्रॉपर फील्ड, और आजकल मतलब आगे फ्यूचर में भी इन्हीं की डिमांड होने वाली है, मार्केट चेंज हो रही है, वो उनका बैकग्राउंड हमेशा वो ही होता,
1: सही सही, सही।
0: कि वो इसी बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं जो बाय चॉइस आ रहे हैं,
1: तो अब चेंजेस आ रहे हैं, बहुत
0: चेंजेस
1: आ रहे हैं। अगर हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो बाकी प्रोफेशन कहाँ जाएंगे भाई। तो सामीन, मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले, सुनते रहिए FM 107 पर जनरेशन टॉक विद सफा।
2: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये

0: को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। जनरेशन टॉक्स।
2: अच्छा मुझे जरा एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारी आज की या जो पहले की भी सोसाइटी है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रही हैं चेंज हो रही है, आपको लगता है ये डॉक्टर इंजीनियर ये प्रोफेशन ही सबसे सिक्योर क्यों माने जाते हैं? अच्छा मजे की बात ये, मैंने खुद कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन में काम किया, मेरे पास BBA की भी मास्टर्स है और मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया है, और बैंकिंग में भी अगर अगर फाइनेंस के हिसाब से कोई देखे ना तो लोगों का एक नज़रिया होता है ना, एक एक जनरेशन ऐसी थी जो कहती थी नोट छापना है एक बात थी ना, करियर का मकसद ही ये था जिंदगी का कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी का कॉन्सेप्ट ये था दैट यू हैव मोर बिगर पॉकेट, ठीक है आपके पास पैसा ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्शन में या बैंकिंग में पैसा नहीं है, बैंकिंग में भी बहुत पैसा है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स को ही नजर में रखते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है?
3: नहीं मुझे अब ये नहीं लगता।
2: तो हाँ
3: मेरे टाइम में अगर मैं समझूं कि हाँ जब मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ रही थी तो तब शायद ये था, लेकिन अब तो मुझे लगता है क्योंकि देखें डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना भी कितने लोग जो मेडिकल में जाते हैं वो वाकई डॉक्टर बन के निकलते हैं।
2: हाँ जी मैं मानती हूँ
3: वो पूरा जर्नी पूरा नहीं कर पाते,
2: वो बर्नआउट मोड पर आ जाते हैं कि हमने करना ही था, हमें जबरदस्ती डाल दिया गया।
3: और अब की जनरेशन तो शॉर्टकट जाती है कि फौरन हम अर्न भी करें, मतलब अभी भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये होता है वो कोई ना कोई तरीके ढूंढते रहते हैं कि हमारी बस अर्निंग स्टार्ट हो जाए, अभी हमारी डिग्री कम्प्लीट हुई है या नहीं लेकिन हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए।
2: सही, हाँ जी ये है।
3: तो मुझे अब ये लगता है कि अब ये पर्सपेक्टिव चेंज हो गया क्योंकि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए काफी साल चाहिए और इतना पेशेंस अब के स्टूडेंट्स में अनलेस एंड अंटिल के वो मतलब वो उनका पैशन ही हो तो फिर तो मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी भी कितने लोग हैं जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना सक्सेसफुल करियर है, अनलेस एंड अंटिल के वो उनके खुद का पैशन हो।
2: आप इस बात को मानती हूँ। सही।
3: तो अब तो बहुत चेंज आ गया। मैं अब इस बात पे बिलीव नहीं करती, बेशक क्योंकि देखें पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा अपने बच्चे का भला कौन चाहता है,
2: सही
3: सबसे ज्यादा वो कब आपके लिए। हाँ उनसे गलती हो सकती है कि वो आप शुरू में अक्सर पेरेंट्स पुश करते भी हैं इन सब्जेक्ट्स में, लेकिन जब बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता तो उन्हें भी समझ आ जाता, वो ये चाहते हैं कि बच्चे उनके सक्सेसफुल ही हों चाहे वो किसी भी फील्ड में हों। और अब वो जमाना तो चला गया जब जो हमारा जमाना था जिसमें पेरेंट्स ने कह दिया तो कह दिया,
2: या ये होता था
3: कॉन्वर्सेशन नहीं होगी,
2: या ये भी होता था एक इमोशनल, मैं कहती हूँ डैमेज, एक इमोशनल डैमेज वाला सेंटेंस ये था कि हमने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया और आखिर में आकर तुम हमारे साथ ये कर रहे हो।
3: बिल्कुल ये नहीं, अब चीजें बहुत चेंज होगी क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे, और अब मैं वो एक्सपीरियंस करती हूँ कि वो बातें जो मेरे अपने बच्चे मुझे कह देते हैं और डिबेट करते हैं उस पर वो मैं तो दिल में ही रहेगी मेरे कभी नहीं कहीं।
2: अच्छा तो, आप माशाल्लाह से मदर भी हैं तो अगर मैं अभी का आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है आजकल के बच्चों को देख कर, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जनरेशन गैप को हजम कर लेते हैं, हाँ भाई बच्चे चेंज हो रही हैं चीजें वक्त बदल रहा है, कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स में, कह दिया तो कह दिया, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ आजकल कैसा वाला रिलेशन रखना जरूरी है?
3: बच्चों के साथ इस टाइम पर ना बहुत फ्रेंडली होने की जरूरत है।
2: सही।
3: और ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन और उनकी सुनने की जरूरत है।
2: सही।
3: उनको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के बच्चे वो बच्चे नहीं है, वो बदल गए हैं और जमाना भी बदल गया। जो हमारे टाइम में सही था वो उस वक्त सही था, वो शायद अब सही ना हो।
2: सही।
3: तो मैं तो एज अ पेरेंट भी सबको यही कहना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे मुझे लगता है कि वो हम जितना तो कम से कम जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे किसी चीज पर बात करेंगे तो
2: समझ
3: मतलब हम उस एज में इतनी समझदारी की बात शायद नहीं करते तो हमारे लिए ठीक था कि हमारे पेरेंट्स ही हमें बता रहे हैं क्या करना, लेकिन आजकल एक्सपोजर इतना ज्यादा है, एक्सेस है उनके पास नॉलेज की,

0: कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप अगर बैठ कर उनसे बात करें तो वो आपसे अपनी बात मतलब ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स मनवा लेंगे।
1: मैं ये
0: और लॉजिक होगी उसमें
1: सही। और अक्सर औकात तो ये भी होता है कि बच्चे मैंने देखे हैं, अभी अभी हम अगर एज के बारे में बात करें अपने एज ग्रुप के बारे में, तो हम लोग 12-13 साल की उम्र में हमें कोई सेंस कोई चीजों का इतना नहीं था, डेवलप
0: नहीं था।
1: लेकिन आज का 12 से 13 साल का बच्चा अम्मा अब्बा को आकर मुंह पे कह देता है कि मैंने फर्दर स्टडीज के लिए, जबकि वो अभी अपने बोर्ड क्लासेस में भी नहीं गया, मैंने फर्दर स्टडीज के लिए फलानी जगह जाना है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप कहेंगे ना कि भाई तुम्हें अपना खाना तक तो बनाना नहीं आता, तुम आ जाके क्या? हमारा पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि हमने खाना बनाना नहीं आता तुम्हें, तुम सर्वाइव क्या कर? उनका दिमाग बिल्कुल किसी और जगह पर है, दे आर थिंकिंग वेरी डिफरेंटली। वो अपने आप को उस वक्त मैनेज कर लेंगे, उनको पता है, वो कहेंगे हम कर लेंगे।
0: और उनके पास प्लान भी होते
1: हैं, ऐसा
0: नहीं, उनको वहाँ की यूनिवर्सिटीज का भी पता है, उनको सब पता है कि वो क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और वहाँ पे किस तरह से
1: स्कॉलरशिप दे रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सही सही। अच्छा एक और चीज मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आर टुडेज स्टूडेंट्स मोर ब्रेव, या मैं कहूंगी कि आर दे ब्रेव इनफ टू डिसअपॉइंट देयर पेरेंट्स फॉर देयर ओन ड्रीम्स, और क्या आपको ये गलत बात लगती है? ये एक बहुत हैवी क्वेश्चन है, मुझे पता है।
0: हाँ, है तो बहुत हैवी,
1: ये बहुत हैवी क्वेश्चन है, लेकिन मैं मुझे इसका जवाब किसी एजुकेशन पर्सन से रिलेटेड ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एक एरा देखा है, यू नो माशाल्लाह से आई वुड से 10+15+ ईयर्स आपने देखे हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदलते देखा है, बच्चों की सोच को बदलते देखा है, दुनिया को बदलते हुए देखा है भाई, इट इज़ अ बिग थिंग। तो आपको क्या लगता है कि इज इट अ गुड थिंग कि यू बिकम ब्रेव इनफ टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड यू स्टिक टू द थिंग कि नहीं भी मुझे यही करना है?
0: इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है ना, उनमें ये करेज बहुत कम ही होती है,
1: क्योंकि उनको डर होता है, उनको ये
0: डर होता है कि क्या पता हमारा ये डिसीजन ठीक ना हो।
1: सही।
0: तो मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना सैक्रिफाइस किया है, तो हम उन्हें डिसअपॉइंट कर देंगे और क्या पता हम गलत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि है परसेंटेज ऐसी है कुछ, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। हाँ, बात करने की अगर आप ब्रेवरी की बात करें ना, तो वो तो काफी है कि वो बात जरूर करेंगे, लेकिन एक्चुअली कोई डिसीजन लेना और उस पे डटे रहना कि हमने ये ही करना है, ये परसेंटेज थोड़ी कम ही है।
1: सही सही सही सही।
0: तो बच्चे ना अपने, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर भी यूं नहीं होता कि वो कह के प्रेशर थोड़ी डालते हैं,
1: वो इमोशनल एक होता है,
0: वो इमोशनली ना,
1: वो इमोशनल डैमेज एक चलता है।
0: और नहीं, अगर स्पेशली हम एक पाकिस्तानी फैमिली की बात करें ना, तो वो इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड होते हैं।
1: सही। देसी पेरेंट्स होते हैं भाई, सिर्फ पाकिस्तानी की बात नहीं है, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली, ये हमारे जो देसी हम लोग है ना, वो हैं, हम लोग बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में दिल जुड़े हुए होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारी ऐसा हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी नहीं है ना कि बच्चा 18 का हुआ तो वो इंडिपेंडेंट होके उसने खुद से कमाना और वो अपने फिर अपने डिसीजन का रिस्पॉन्सिबल।
1: हमारा माइंड सेट ये होता है कि हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट ही हमारी औलाद है, ये होता है माइंड सेट। सही।
0: तो और हमने हमेशा ही कनेक्टेड रहना।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल रूट्स ऐसी हैं, हमारी वो कनेक्टेड रहती हैं।
0: दिस इज, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए।
1: यस, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो भाई अर्जु जी, आज की कन्वर्सेशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि करियर का डिसीजन सिर्फ एक डिग्री या एक जॉब नहीं होता, वो जो है एक, मैं कहूँगी कि यंग इंसान की पर्सनैलिटी भी होती है, पैशन, एबिलिटीज, और फ्यूचर का डिसीजन भी होता है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे बेहतर है कि खुद अपने डिसीजंस ले लें, ना कि कल को ये बोलते फिरें कि हमने तो ये नहीं करना था, अम्मा पापा ने फंसा दिया,
0: ये तो आपने जबरदस्ती करा।
1: हाँ, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जरूर काउंट होता है, उनकी गाइडेंस भी जरूर काउंट होती है, लेकिन बच्चों की अपनी एक आवाज होती है जो कि सुनना चाहिए, जो कि जरूरी है आजकल के दौर में। और स्टूडेंट्स के लिए ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी चॉइसेस का मतलब ये नहीं होता कि भाई पेरेंट्स की कोई एडवाइस ही ना लो, इग्नोर कर दो। वो एक टिपिकल सा डायलॉग है बच्चों का कि भाई आपके दौर में कुछ और होता था।
0: फाइनेंशियली भी तो पेरेंट्स ही सपोर्ट।

0: डॉक्टर हैं, उनके पेरेंट्स और उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो एज एन एजुकेटर आप क्या मिडिल ग्राउंड सजेस्ट करेंगी? मुझे कोई एडवाइस देना, कुछ ऐसा सिनेरियो सोचें कि एक बच्चा है जो कि बिजनेस स्टडीज में जाना चाह रहा है, जो कि डिफरेंट करना चाह रहा है लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स लगे हुए वही उंगली को सीधा करने के चक्कर में कि भाई नहीं, ये तुमने यही करना है, हमने जो बोल दिया, तो आप कोई कुछ मिडिल ग्राउंड निकाले ना, कुछ एडवाइस दें क्या किया जाए।
1: ठीक, देखिए ऐसे केसेस में ना सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी डिसीजन ना आउट ऑफ रिबेलियन ना करें। कभी कभी ये भी होता है ना कि जिद बना लेते हैं।
0: सही,
1: तो ये सोच के पहली बात तो ये है कि वो इसलिए ना करें क्योंकि पेरेंट्स भी हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक,
0: सही,
1: लेकिन बिल्कुल अपनी चीज, अगर एक चीज के बारे में पैशनेट हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ भी ना दें, अपनी रिसर्च करें, करियर्स देखें, और अपने पेरेंट्स को लॉजिकली
0: समझाने की कोशिश
1: करें।
0: सही,
1: कि मेरा ये प्लान है, और इसमें यह है कि स्कूल भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है करियर काउंसलिंग की, जिसमें पेरेंट्स आके करियर काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि इन सब्जेक्ट्स में आगे क्या क्या स्कोप है, और जब उन्हें वो चीज समझ आ जाती है तो फिर वो अग्री करते हैं।
0: सही सही,
1: तो पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है ना वो खुश हो, सिक्योर भी हो और सक्सेसफुल भी हो।
0: वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं।
1: लेकिन विद टाइम जब वो बच्चे के साथ एग्री करके, अनलेस एंड अंटिल बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज बच्चा, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं, कई बार वो अपने लिए इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, और कई बार पेरेंट्स के पुश करने पे आते हैं, लेकिन बाद में वो उसी सब्जेक्ट में डेवलप कर लेते हैं अपना इंटरेस्ट।
0: सही,
1: और वो फिर बाद में कहते हैं कि शुक्र है कि हमें किसी ने उस वक्त पुश कर दिया, तो वरना हम तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ये है कि बच्चों को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को इतनी लिबर्टी दें कि वो उनके साथ बैठ के बात करें, और मतलब सिर्फ हाई सैलरी होना तो एक वो नहीं है ना कि ये हाई पेइंग जॉब्स हैं।
0: हाँ जी,
1: हो सकता है वो करके भी वो बच्चा उसमें ना ऐसी जॉब एक्वायर कर पाए।
0: वो एक हम कहते हैं ना, दिल खराब होता है, सुबह उठते हैं कंधे पे बैग डाला या सामान उठाया और मजबूरी में गए, वो आजकल की जनरेशन मुझे लगता है उस चीज से भागती है। ड्यूटी नहीं बनानी, मजा लेना है काम।
1: मजा लेना। और ये देखिए इससे कितना क्रिएटिव काम, जो क्रिएटिविटी आती है ना वो इसी चीज से आती है, जब तक आप एंजॉय ना कर रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं जब लोगों ने एंजॉय करके काम किया, तो उन्होंने कोई बड़े ही काम किए।
0: हाँ जी, ये बात मैं मानती हूँ, जितने भी बड़े जो नाम हैं उनकी आप हिस्ट्री उठाकर देखें, दे हैव बीन थ्रू अ वेरी रफ टाइम विद देयर फैमिली, कि नहीं भाई ये नहीं। आपका जनरेशन टॉक में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, इट वॉज अ वेरी मीनिंगफुल टॉक विद यू। और भाई बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आप भी अपने करियर को लेकर किसी कंफ्यूजन में हैं, या आप कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के साथ फ्यूचर उसका डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट गोज बोथ वेज। करियर सिर्फ इसलिए चूज नहीं करना चाहिए कि भाई दुनिया क्या चाहती है या आगे जाके जेब कितनी भारी होगी, बल्कि इसलिए भी होता है कि बच्चा किसी चीज़ में बेहतर परफॉर्म करना चाह रहा है, क्या पता वो अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाह रहा है, क्या पता उसे खुशी मिलती है अंदर से। और बात तो ये कि कभी कभी भरी हुई जेब वाले भी खुशी महसूस नहीं कर रहे होते,
1: नहीं कर पाते, बिल्कुल।
0: तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे जितने लिसनर्स हैं मैं उनको ये बताती चलूँ कि भाई हमारा वक्त अब आज का यहीं पे ख़त्म होता है जनरेशन टॉक का। मैं हूँ सफ़ा और आप सुन रहे थे FM 107 पर जनरेशन टॉक। और भाई अपने आप हमें थॉट्स और फीडबैक्स भेज सकते हैं, चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, और चाहे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमें फॉलो किया जा सकता है, जो कि है @FM107 Qatar। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, और एक नई जनरेशन की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, एक मैं कहूँगी कि एक दूसरी जनरेशन को सिर्फ समझने की नहीं सुनने की भी कोशिश कीजिए। मी साइनिंग आउट, और मुझे सफ़ा को और हमारी जो मोहतरम गेस्ट रही हमारे साथ आरजू सदफ, उनको और हमारे साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में आपसे बात करते हैं और आपको इत्तला करते हैं कि कैसे नए जमाने के नए स्कैम से आप बच सकते हैं। इवन हम सॉल्यूशन भी देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह का स्कैम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों एक स्कैम जो बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है वो है टिफिन का स्कैम। है टिफिन का स्कैम, ये किस तरह का स्कैम है? बात करते हैं कि अगर ये किस तरह का स्कैम है तो ये स्कैम आम तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो नए नए किसी शहर या कंट्री में आते हैं। हो सकता है कि आने वाले एक महीने में लोग आ रहे हों या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हों, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई ऐसे बैचलर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, लो वेज वर्कर्स होंगे, कुछ नॉर्मल वर्कर्स होंगे। इन लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है, हम लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है। कई बैचलर्स के फैमिली यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर अच्छी सैलरी में भी आएँ तो कई बार आप प्रेफर करते हैं कि

0: किया करें, लेकिन ये एक स्कैम भी हो सकता है। तो फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली यहां पर नहीं है, वो सोशल मीडिया पे, मार्केट प्लेस में, व्हाट्सएप के ग्रुप पर और दूसरे क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर बहुत ही अट्रैक्टिव और फेक एड्स पोस्ट करते हैं। इन एड्स में वो बहुत ही साफ सुथरे रूम्स और टेस्टी टिफिन की फोटोज लगाते हैं और उनका प्राइस मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा कम होता है ना। पर डे के हिसाब से भी जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा यार 7 या 8 रियाल या 4 रियाल में अगर मुझे एक टाइम का खाना मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। और इसी तरह का लोभ जो है, इसी तरह से आपको ललचाया जाता है। जब कोई जरूरतमंद बैचलर या वर्कर इन फेक एड्स को देखता है तो वो फौरन उनसे कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उन्हें बहुत तमीज से बात करने का आइडिया होता है। वो तमीज से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, वो आपको अपने जाल में फंसाते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के टिफिन या रूम के लिए लाइन में लग जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्म चाहिए तो भाई अभी आपको थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हमारे जहां पर ये किचन है, जहां पर ये खाना हम बनाते हैं, यहां पर लिमिटेड ही टिफिन बनाया जाता है और अभी हमारे पास 2-4 टिफिन बनाने के ही ऑप्शंस पड़े हैं, यानी कि 2-4 टिफिन ही बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, या कई बार लोग कहते हैं कि आप फला जगह आइए और वहां पर आप पेमेंट कर दीजिए, हाफ पेमेंट एडवांस में कर दीजिए, आप लोकेशन भी देख लेंगे और आप खाना भी खा लीजिएगा। तो ऐसे में आप सोचते हैं यार खाना भी ऑफर कर रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। तो आप जाते हैं, उनको हाफ पेमेंट करते हैं, वो कहीं पर आपको खाना बिठा के खिलाते हैं और कहते हैं ये है टिफिन। तो आप ऐसे में भरोसा कर लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं, लेकिन खेल यहां शुरू होता है जब वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, चाहे एडवांस चाहे आपको खाना खिलाने के बाद किसी लोकेशन पे। अब फिर जब उस लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि आपको 2-4 दिन तक कोई आइडिया ही नहीं होता कि खाना आ नहीं रहा, आपने पेमेंट कर दिया है और फिर आपको एहसास होता है कि जो आपने एडवांस में पेमेंट किया है वो एक्चुअली स्कैम है, क्योंकि ना ही वो बंदा कॉल उठाता है, ना ही वो आपके मैसेज का जवाब देता है और जो आपने पैसा सेंड किया है उसको आप कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे में सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स बंद हो जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है जो पोस्ट वगैरह अगर की जाती हैं। तो इस फ्रॉड का शिकार होने के बाद उन बैचलर्स और वर्कर्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना होता है अगर रूम्स की तलाश कर रहे हो, और अगर खाने की बात है तो खाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि पेमेंट आप एडवांस कर देते हैं। महीनों की मेहनत से कमाई हुई हार्ड अर्न जो मनी है, जो कैश है, वो भी एक झटके में चला जाता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और अनजान शहर में उनके पास दोबारा खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में कुछ 3 तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले, जो बहुत ही चीप में आपको टिफिन दे रहा है, इन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। उल्टा आप एडवांस पेमेंट ना करके अपने ही घर पे, जहां पर आप रह रहे हैं, वहां से आप टिफिन मंगवाएं जो टिफिन आपको देने की बात कर रहा है सस्ते पैसे में, सस्ते अमाउंट में, उनसे टिफिन मंगवाएं 8-10 दिन, उसके बाद फिर पेमेंट दे। एडवांस में टिफिन आता है, पेमेंट एडवांस में नहीं होती है। तो पहले 1 महीना खा ले, उसके बाद पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये तरीका आमतौर पे हर जगह फॉलो होता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपसे एडवांस में पेमेंट मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। तीसरा तरीका है, अगर आपको एडवांस पेमेंट करना भी है तो किसी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू करें या फिर किसी के ऐसे अकाउंट में करें जिससे आप ट्रैक भी कर सके कि खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा गायब हो जाए तो आप उस शख्स को अकाउंट के थ्रू ट्रैक कर सके। तो ये कुछ आम तरीके हैं जिनसे आप फ्रॉड होने से या आपके साथ स्कैम होने से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी। गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107, Time Check.
1: दोस्तों बस आवाज बदली है, सिर्फ और सिर्फ आवाज, लेकिन रिश्ता वही है, आवाज नई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है द रिक्वेस्ट शो। टाइम फॉर द टाइम चेक। एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, रिक्वेस्ट शो सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हां जी, एफएम 107 पे ये है द रिक्वेस्ट शो। आवाज अभी अभी तक आपने सुनी, लेकिन अमिता छुट्टी पर हैं तो इस वजह से ये काम जो है वो मेरे सर पे आया। और इससे बहुत ज्यादा कोई पुराना रिश्ता तो नहीं है हमारा और आपका, रिश्ता हमारा और एफएम 107 और हमारा साथ ही द रिक्वेस्ट शो का रिश्ता बहुत पुराना है। एक बार फिर से इस शो में अपन जो है वापसी कर चुके हैं, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलेंगे। और आज जैसे हम जब पहले शो करा करते थे तो थीम हुआ करती थी, लेकिन आज किसी तरह की थीम नहीं है। आज सवाल है और उस सवाल पर बेस्ड आपके सॉन्ग होंगे। तो बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब होने वाला है आज के इस रिक्वेस्ट शो में। उम्मीद है कि आज का जो शो होगा आपकी प्लेलिस्ट, लोगों की प्लेलिस्ट इतनी तगड़ी होगी कि पूरा दोहा एंजॉय करेगा, मज़ा आएगा आपको भी और आपके आसपास जो दोस्त बैठे हैं, जो पैसेंजर हैं, जो घूमने फिरने वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको बड़ा मज़ा आएगा। तो तैयार कर लीजिए, जल्दी से आ जाते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ये जो आर है, ये जो घंटा है पूरा एक घंटा, इसमें वक्त बहुत कम होता है। गाने हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चला पाएं, क्योंकि आज कोई थीम नहीं।

ही है आज, सिर्फ सवाल है और उस सवाल के ऊपर आपके सॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल है जो ये कि ऐसा कौन सा गाना है आपके लिए जो आपको डांस करने पर, गाने पर मजबूर कर देता है, है ना। आपके आसपास ऐसा कोई गाना प्ले होता हो कि आपको यार डांस करने का दिल कर जाता है, आपका गाने का दिल कर जाता है, वो सॉन्ग कौन सा है, ठीक है। अब ऐसे कई लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही आप लोग बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 6622107 पे, 6622107 पे, कि ऐसे कौन से गाने हैं कि आपको गाने का मन करता अगर वो प्ले हो जाए, आपको डांस करने का मन करता अगर वो प्ले हो जाए, तो बस वही सॉन्ग आज हम प्ले करने वाले हैं। और जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आएगा हम कोशिश करेंगे 3 से 4 सॉन्ग जल्दी से प्ले करें, और वो सॉन्ग प्ले करने के बाद, ठीक है, फिर हम दूसरे सवाल पर जंप करेंगे और फिर उस पर बेस्ड जो आपके जवाब होंगे, जो आपके गाने होंगे, वो इस शो में प्ले होंगे, द रिक्वेस्ट शो में। तो आज की जो प्लेलिस्ट बनेगी वो प्योरली इंसानों के जज्बात पे, इंसानों के पसंद किए गए गानों पर बनेगी। 4:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, जल्दी से आते हैं लोगों के मैसेज की तरफ। वेलकम बैक फजील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, क्या नाम है आपका? नाम कल तो मैंने देखा था आपका, नाम कहीं तो ऊपर लिखा था आपने, कहा है, नाम लिख देते भाई, रिजवान, हाँ ठीक है, रिजवान इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, आज आप भाई बहुत दिनों बाद हिशाम से इमोजी के अलावा या GIF के अलावा कुछ पढ़ा है मैंने, अगर उन्होंने कुछ लिखा। वालेकुम अस्सलाम, हाँ भाई आज मैं छुट्टी पर है अमिता। फिर यह है, जीता था जिसके लिए मरता था, आय हाय, रोने वाले गाने जब तक ना हो तब तक कैसे दिन बनेगा। नाम आपने कहाँ लिखा है, लेकिन प्रोफाइल पे कुछ तो लिखा है, जमान नाम है आई गेस। मुमताज ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हैं, दरे को शो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। पर शहर की लड़की अच्छा है, इस गाने को सुनने के बाद आपका डांस करने का मन करता है, बहुत ही बेहतरीन, यू आर बैक अगेन एट 4, अरे वाह। नहीं भाई, मैं बस एक दिन के लिए आया हूँ और शाम को 6 बजे भी आएंगे मुजाहिद साहब, लेकिन हमारा आज आपके साथ का रब्ता है, जो सॉन्ग आपको गाना गाने पर, डांस करने पर मजबूर कर देता है, वो सॉन्ग आपको बताना है। शहर की लड़की मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अरे मतलब गाने का नाम है ये, मतलब ऐसा नहीं कि लड़की ढूंढने की कोशिश, नहीं वो तो ढूंढ लिया भाई, मतलब वो इस कदर ढूंढी है कि अब वो घर पे ही है। यूसुफ भाई का मैसेज है, वेलकम बैक फजील भाई, कैसी है तबीयत? मैं ठीक ठाक हूँ, और प्यार दिलों का मेला है, ओ माय गॉड, प्यार दिलों का मेला, ये गाना सुनने के बाद आपका होता है कि आज मैं डांस ही कर लूँ, ऐसा गाने का दिल कर जाता है। ओके, शहर की लड़की अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये गाने का नाम है शहर की लड़की, टंग टंग टंग टंग, रक्षक, अरे यार 1996 का ये गाना है। नहीं ये वो गाना नहीं है भाई जो मुझे प्ले करना है, कोई और बताओ, शहर की लड़की SH, और किसी नाम से ढूंढ लेता हूँ मैं। और एक तो मिला है, ये वही वाला यार, हाँ भैया ये तो बड़ा झंझटी काम है यार, एक तो मेरी उंगलियां उस तरह से काम नहीं करती ना, पहले अपन आते थे तो अपने को पता था कैसे काम हो रहा, अभी वो वाला, अच्छा ये गाना है बादशाह और तुलसी कुमार का, देख ले भैया पता चला कोई और गाना निकला तो, पहला गाना तो अपन प्ले कर उसके बाद धीरे धीरे शुरू कर लेंगे। ये वो गाना है कि नहीं पता चला, प्ले कर दिया और वो गाना, हाँ ये है, यही है, म्यूजिक से पता चल गया अपने को, थोड़ा बहुत तो पता है अपने को, बाकी सॉन्ग की तरफ एक और रिक्वेस्ट थी, यूसुफ भाई कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी, ढूंढो, प्यार दिलों का मेला है ये गाना, गाने के बाद ये गाना सुनने के बाद मेरा तो वो हो जाता है कि ट्रक वरक की याद आने लगती है, मुझे लगता है ऐसा कि मैं कहीं बस वस में बैठा हूँ और किसी ड्राइवर भाई का दिल जो है वो टूटा है। दुल्हन हम ले जाएंगे, अलका याग्निक और सोनू निगम का ये गाना है। चलो बैक टू बैक हमें 2 सॉन्ग मिल गए हैं, बाकी अब आपकी मर्जी है दोस्तों, जो हमें बाहर से सुन रहे हैं आपको ये बताना है। वैसे मैं 3 गाने प्ले करूंगा, जितनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट उतना बेहतरीन, 1 सवाल पे 3 गाने, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, जल्दी से आपको ये बताना है कि ऐसा गाना जो आपको डांस करने पर, गाने पर मजबूर कर दे, वो गाना कौन सा है, नंबर 6622107।

0: क्या बात है, अलका और सोनू निगम की आवाज में प्यार दिलों का मेला है ये गाना। सच में ये मैं मानता हूँ कि इस गाने को सुनने के बाद आपका दिल आपका बदन धड़कने तो लगता है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, रिक्वेस्ट शो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हाँ भाई, अगर डांस कर लिया हो, मजे कर लिया हो और इस गाने पे ग्रूव कर लिया हो तो अब वक्त आ गया है आपके बाकी रिक्वेस्ट की तरफ आने का। एक बीइंग ह्यूमन है, भाई ने नाम नहीं बताया है, प्रोफाइल पे तो यही लिखा है, हेलो माय नेम इज, अच्छा लिखा, ओ सॉरी सतीश बाद में लिखा है, और कहा है कि कोई भी सॉन्ग हिमेश का प्ले कर दे। तो मुझे यार हिमेश का वो गाना याद आता है कि नाम तेरो तेरो, नाक से गाया हुआ इकलौता ऐसा गाना जो बहुत ही लाजवाब है। तो इस गाने को मैं प्ले कर रहा हूं FM 107 पे, अगला गाना यही है। लेकिन मैंने कहा था कि एक सॉन्ग पे तीन गाने अपन प्ले करेंगे, अब दूसरे गाने की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। सो आज का जो दूसरा गाना है, यानी कि कहे दूसरा तरीके का गाना है, या दूसरा सवाल जिस पर बेस्ड आपके जवाब होंगे, वो है कि 90s के वो कौन से बॉलीवुड एंथम या गाने हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं और आज भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटिंग, उतने ही ज़्यादा नए और एकदम तड़कते भड़कते लगते हैं। तो वो गाने आज आप हमसे प्ले करवा सकते हैं। तो ऐसे तीन गाने ही प्ले करूंगा, तो जल्दी आप करिए और जल्दी से मैसेज करिए ताकि आपके मर्जी के गाने प्ले हो पाए। जिनके ऑलरेडी प्ले हो गए उनके रिक्वेस्ट अब मैं नहीं लूँगा, ठीक है? तो एक क्या है कि बाकी लोगों को भी मौका मिले, मेरा भाई है ना, तो इसलिए ये सवाल है और इस सवाल पर बेस्ड आपके जवाब होने चाहिए। तीन गाने ही मैं प्ले करूंगा, तीन लोग जो जल्दी कह देंगे उनके गाने मैं प्ले करूंगा, जो ऑलरेडी बोल चुके हैं जिनके गाने यहाँ पर प्ले हो चुके हैं उनके नहीं प्ले होंगे, जैसे कि यूसुफ भाई के प्ले नहीं होंगे, सतीश भाई के प्ले गाने अब नहीं होंगे जो अगला सवाल है उस पर। सो बॉलीवुड का 90s का वो गाना या 2000 का वो गाना जो बड़ा ही लाजवाब था और आज भी उतना ही ज़्यादा नया है, उतना ही ज़्यादा आपको एक्साइट करता है और उतने ही बेहतरीन है जितना आपने पहली बार सुनने के बाद आपको लगा था, वो आपको गाने की लिस्ट बतानी है। तीन लोगों की रिक्वेस्ट यहां पर प्ले होगी, जल्दी से बताइए, नंबर है 666-22107। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, और सब लोगों के मैसेज लेना बड़ा ही ज़रूरी है। जो पहला सवाल था उस वो वाले तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन उनके मैसेज जरूर लेंगे। ये मैसेज है बालू बातिया भाई अली जफर, सॉरी मेरा भाई अब तो वक्त निकल गया है। टुनक टुनक ये क्या है? नसीम कहते हैं कितनी चाहत दिल में छुपाए बैठे हैं फज्जुमिया, इधर भी देख लो। नसीम साहब देर हो गई, अब आपको एक पश्तो का भी चला दो। ऐसा नहीं होता भाई, आपको गाने का नाम बताना पड़ेगा मेरा भाई। माजिद साहब थोड़ा सा डिटेल में आइए, हल्लू हल्लू नहीं आई। साजन तुमसे प्यार, फजील भाई ये सॉन्ग लगा दो, देर हो गई है, अभी जल्दी से रिक्वेस्ट कर लो नए जो अभी सवाल किया उस पर। सलाम फजील भाई, हाउ आर यू, व्हाट अबाउट योर कार? मिल गई भाई, बहुत दिनों बाद यार, 8 दिन लग गए यार बनने में, होता ना कभी कभार पार्ट्स नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ता है, तो हमारा गराज वाला भाई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी से, तो मिल गई अभी। अभी अपन जो है मक्खन चला रहे हैं और बाकी डिटेल थोड़े बाद में बताएंगे। बाकी अजहर भाई को सलाम। फिर रमेश ने कहा है थैंक यू भाई, जो मज़ा ओल्ड वर्जन में उतना रिमिक्स में नहीं है। ओके, लेकिन जो मैंने गाना ये प्ले किया वो रिमिक्स नहीं था। फिर एक और ये है, तस्वीर दी है, आय हाय अच्छा हमारे, और एक और वेद भाई के साथ की फोटो है ये। फजील भाई वेलकम टू इवनिंग, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। अयाज ने फोटो भेजी है, और अब्दुल लतीफ़ की जो इनके भाई हैं।

शाकिरुल्ला खान। शाकिर भाई अभी मैंने बताया पश्तो सॉन्ग अगर प्ले करवाना तो एक नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आई एम आयसन फ्रॉम बांग्लादेश, वेलकम मेरा भाई, कैसे हैं आप? और किसी भी गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, मैं ये अच्छा है ये बात कि आपने लाइन लिख दी है। शुरुआत में उन्होंने कहा है मुझसे शादी करोगी, फिर लिखा है प्ले दिस सॉन्ग। मैं कसम से दिल में जो घबराहट होती है वो आज समझ में आया मुझे। वो दिल में घबराहट होती है ना जब आप बहुत लेफ्ट लेन में चल रहे हो और पीछे से एक भारी भरकम कार आ रही हो और दो चार बार डिपर मारे आपकी हालत ऐसे तक तक तक तक तक तक करने लगता है, वैसे ही इस लाइन में मुझे धक तक तक तक हो रहा था जब आपने लिखा मुझसे शादी करोगी प्ले दिस सॉन्ग। जॉक्स अपार्ट, ये गाना जो है बिल्कुल सबसे पहले नंबर पे आएगा आफ्टर दिस सॉन्ग विच इज हिमेश का कोई भी गाना, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बाकी आओ, और उसके अलावा पश्तो सॉन्ग का मुझे पता नहीं है भाई कि पश्तो सॉन्ग, कुछ लोग कह रहे हैं ना कोई भी गाना प्ले कर दो, तो मैं इसलिए नहीं प्ले कर सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि उल्टा सीधा कोई भी गाना प्ले कर दिया और बहुत ही ज़्यादा वो कोई पुराने ज़माने का या उसके कुछ लफ्ज़ ऐसे हुए जो हमारे समझ में नहीं और कुछ गलत निकल गया तो मेरे ऊपर आएगा। कोड़े वाला भैया बाहर बैठा है, कोड़ा तैयार कर रहा है, ठीक है। तू है कहाँ सॉन्ग प्ले कर दें, ठीक है भाई का शो कट टाइम सुबह का है यार, इनका सुबह का है। कबीर भाई तो लेकिन छुट्टी पर चले गए, अभी सर्वर हैं शायद। तू है कहाँ सॉन्ग प्ले कर दें, हैदर फ्रॉम पाकिस्तान, तू है कहाँ, ये किस मूवी का है, थोड़ा डिटेल में आ यार। ठीक है हैदर खान, मैं ये गाना ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल गया तो ये गाना आपका ज़रूर प्ले करूंगा। बाकी मेरी नाक जो है वो अभी उस तरह से साथ नहीं दे रही है तो गाना का गाला निकल जाए तो समर कर लेना, समझ जाना बीमार आदमी है, कल पैरासिटामोल ने भी कोई ऐसा काम किया नहीं है। हमको मोहब्बत ढूंढ रही है अब्दुल अजीज, ये कौन सी लिरिक्स है भाई, हमको मोहब्बत ढूंढ रही है, ये गाना ढूंढना पड़ेगा हमको। फिर एक और मैसेज है, आई गेस ये है मोहम्मद तैमूर रहमान, ओके चुरा के दिल मेरा, ठीक है ये गाना भी मैं प्ले कर देता हूँ। सबसे पहला लेकिन जो गाना प्ले होगा वो बीइंग ह्यूमन वाले भैया का होगा, बाकी तीसरा सॉन्ग मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी मुझे अच्छा 99 ग्रेड वाला पश्तो सॉन्ग। ये भाई ऐसे मैं कैसे प्ले करूँ, आप थोड़ा और डिटेल में आएंगे तब मैं अब ये कैसे 99 ग्रेड लिखूंगा यहाँ पर, वो हमारा डेटाबेस जो है ना वो कहेगा आगे बढ़ो। हमारे पास ना सर्च करने का ऑप्शन होता है, अगर मैं सर्च में ये 99 ग्रेड डालूंगा ना हमारा हैंग कर जाएगा सिस्टम भाई, फिर किसी का नहीं प्ले हो पाएगा। थोड़ा डिटेल में आओ मेरा भाई, ऐसे थोड़ा होता। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, होप ऑल इज वेल, मूवी नेम मुसाफिर सॉन्ग ओसा गिजागिर, देखो ये होता है तरीका है भाई, साकी ए साकी कहां है, चलो मैं ये ढूंढ लेता हूँ, ओसागी साकी मुझे लगता है ये गाना है। बाकी सबसे पहले हिमेश का गाना आ रहा है आपके लिए FM 107 पे, और

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
3: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
2: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
4: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
5: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 PM हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, रिक्वेस्ट शो, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
6: बिल्कुल सही सुना आपने, एफएम 107 पे आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने प्ले होते हैं। और अब वक्त आ गया है कि आपकी अपनी मर्जी के गाने दोबारा से प्ले किए जाएं नए सवाल के साथ। तो बाकी नए सॉन्ग कौन से हैं जो अभी प्ले होने वाले हैं, वो एक्चुअली मेरे सवाल पर डिपेंड करता है, और फिर आपका जवाब क्या होगा 6662107 पे, उस पे डिपेंड करता है। तो सवाल ये है, बड़ा सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक, सवाल तो बस इतना सा है कि अगर आपको मौका मिले, आपके रिलेटिव आए, आपके दोस्त यार आए हुए हैं, दावत में बैठे हुए हैं सब लोग एकदम, और नौजवान लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बूढ़े लोग नहीं है, सारे जवान लड़के बैठे हुए हैं, सारे नए कपल बैठे हुए हैं जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए अगर कोई गाना प्ले करना हो, एक कोई गाना प्ले करना हो, तो वो आपकी प्लेलिस्ट से कौन सा सॉन्ग होना चाहिए ये मुझे बताइए। नंबर है 6662107, वही सॉन्ग मैं प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनके सॉन्ग रह गए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ फिर से वही लिख के जल्दी से भेज देता हूँ, तो आप वही कॉपी पेस्ट करके भेज दें, मैं आपको निश्चित ही बता रहा हूँ कि अपन प्ले कर देंगे वो गाना, ठीक है। बाकी जल्दी से बताएं, आपके दोस्त यार बैठे हुए हैं, कपल अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत नए नौजवान लोग हैं, बूढ़े लोग नहीं है, पुराने गाने नहीं प्ले करने, नए जमाने के गाने अगर प्ले करने हैं तो आप कौन सा गाना प्ले करेंगे अपने दोस्तों यारों के लिए, अपने अगर किसी को दावत दिया अगर आपने, उनके लिए कौन सा गाना आप प्ले करेंगे। जिनके गाने ऑलरेडी प्ले हो चुके हैं उनके गाने प्ले नहीं होंगे। मुमताज़ भाई ने सबसे पहले जवाब दे दिया है, कॉपी पेस्ट, अखियों से गोली कितनी बार सुनना चाहते हो यार, अखियों से गोली मारे, जब मैं द रिक्वेस्ट शो करता था तब भी आप यही रिक्वेस्ट करते थे यार। मुमताज़ भाई आगे निकलो यार, आंखों से किसकी आँख?

पसंद आ गई है यार, तुम मान नहीं रहे यार, मतलब 3 महीने हो गए नहीं मान रहा अगला आदमी। पता नहीं आंखों से कौन सी ऐसी गोली पसंद आ गई है भाई को कि वो वहीं पर अटके हुए हैं। खैर प्ले कर देंगे क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट आ गई है, फिर प्रिंसन की रिक्वेस्ट है और कहते हैं जब से हुई शादी आंसू बना बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूं। फ्रॉम द मूवी थानेदार। ये कोई बात है, अगला आदमी जो है दोस्तों यारों के साथ बैठे जिसमें उसकी खुद की बीवी भी है और ऐसे गाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रिंसन भाई अपनी जान से तुम्हें प्यार नहीं है? मैं दूसरी गले से जो जान निकल जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो अंगूठे से आत्मा निकल जाती है ना, पैर के अंगूठे से, वो वाली जान की बात कर रहा हूँ। तुम बड़े ही निडर आदमी हो या फिर प्रिंसन भाई की हुई नहीं अभी तक शादी। फिर एक और मैसेज है जहान जेब साहब का, तेरा मेरा प्यार अमर, बहुत पुराना गाना, अगर तुमने कर दिया मेरा भाई मेरा दिल दुख जाएगा मैं बता रहा हूँ। फिर ये मैसेज है एक और भाई का, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अमन कहते हैं ए जाते हुए लम्हो ज़रा ठहरो ये प्ले कर दो। अरे यार इतना पुराना गाना नहीं मेरा भाई, नौजवान लोग बैठे हैं क्यों नौजवानों को बूढ़ो जैसा फील दे रहे हो यार। जल्दी बताओ हमारे पास 3 गानों की जगह बची है। फिर ये कौन सा कह रहे हैं तेरा मेरा प्यार अमर, अमे यार ये कौन सा नया गाना है, किस मूवी का है तेरा मेरा प्यार अमर? मुझे तो नहीं लगता किसी ने ये गाना गाया होगा, कुमार सानू का गाना है तेरा मेरा प्यार अमर ही, मुझे पता है ये बहुत ही पुराना गाना होगा, 2-4 आंसू जब तक निकलवाएंगे नहीं ना लोग मानते नहीं है फिर तब तक। तेरा मेरा प्यार तक तो आ गया हूँ, अमर वाला गाना नैना का है और लता जी का है, लता जी का तो बहुत ही पुराना होगा, नया ये कवर गाना है, लेट मी चेक ये गाना। ये तभी प्ले होगा, ये सुन पहले ही जो आवाज आई ना मैं समझ गया भाई ये बहुत ही रोने वाला गाना होगा, तो मैं इस पर यही कहूंगा ये 3rd नंबर पे आएगा या 2nd नंबर पे आएगा वो तब, अगर इस गाने में वो वाइब हुई तो ठीक है। तो मुमताज भाई की पहली रिक्वेस्ट अभी भी है, अफसाना भाई न्यू सॉन्ग। अफसाना भाई यार ये आधी आधी बात क्यों लिखते हो, अफसाना भी लिखूंगा 100 गाने आ जाएंगे। हाँ अभी देखो मैं 150 गाने आ गए अफसाने में, अब अफसाने के अलावा जो भी अफसाने लिखे हैं वो सारे सर्च में आ जाते हैं इंजन में, सब दिखाने लगता है भाई, हमारा डेटाबेस भर जाता है। थोड़ा और डिटेल के साथ आओ। फिर ये कहते हैं अफसाना बना, अच्छा ये वाला तो नहीं कह रहे हिमेश का, अब लिखा इन्होंने हिमेश बाबू, अफसाना वाला गाना कहाँ है तुम्हारा? ठीक है वो गाना भी अपन प्ले कर देंगे क्योंकि मुझे पता है वो गाना कौन सा है, अफसाना बना के भूलना जाना। ठीक है तो ये गाना 2nd नंबर पे आ गया है और ये रिक्वेस्ट किस भाई की है, नाम देखना पड़ेगा, सैयद अरसलान, अरसलान भाई आ गए हैं लाइन पे, तो अरसलान भाई की रिक्वेस्ट 2nd नंबर पे। तो सबसे पहले ये 2 गाना प्ले करते हैं और फिर जिनकी किस्मत रही 3rd नंबर पे वो सॉन्ग आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, फिर कभी और कोई ना कोई गाना प्ले हो जाएगा। अखियों से गोली मारे सबसे पहले लेकर आना पड़ेगा, अखियों से, अखियों लिखना भी बड़ा झंझटी काम है, अखियों से गल कर गई ये भी गाना है, गोली वाला नहीं दिख रहा है, आंखियों से गोली मारे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बहुत सर्च कराते हो मेरा भाई, नहीं मिल गया, एक तो आया है, अखियों से देख रहो, अखियों से गल कर गई है गोली मारे ये गाना नहीं आ रहा है। कभी कभार सर्च इंजन ना अपना ही हिसाब किताब दिखाता है, अभी किसी और नाम से सर्च कर लूंगा दिख जाएगा तुरंत। अखियों से रहने दो और है कौन सी मूवी, मूवी के नाम से सर्च करने की कोशिश कर लेता हूं मैं, ANKHYY, सब तो लिख रहा हूं यार मैं, क्यों नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है यार, मैं ये वाला गाना छोड़ रहा हूं फिर क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, मैंने जितना लिखना था सब लिख लिया है, मुझे लगता है मुमताज भाई से मुझे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि नहीं आ रहा भाई, किस मूवी का है अगर ये दिख जाता, यार ये मूवी तो बहुत ही फेमस थी, अब मेरे को आप जब यहाँ पर बैठो ना कुर्सी पे सब इंसान भूल जाता, दूल्हे राजा आ जाओ अपना वाला गाना लेके मेरा भाई, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं है मेरा भाई ये गाना नहीं है, ये मिला, देखा सेम, देखो सेम स्पेलिंग है
ठीक है, जो मैं लिख रहा था, लेकिन दूल्हे राजा से मिला मुझे। खैर, सोनू निगम और जसविंदर की आवाज में ये गाना सुनो FM 107 पे, दूल्हे राजा मूवी का ट्रैक, 1998 की मूवी, अभी भी नया है, ताजा है, ठीक है।

0: सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: भाई जो अभी दो गाने प्ले हुए हैं वो ऐसे गाने थे, अगर आप यू नो अपने घर पे प्ले कर दें और सारे लोग आपके रिश्तेदार आपके दोस्त आपके यार बैठे हों, अगर गाने प्ले कर दें तो वो साथ में जरूर गाएंगे। और ऐसा ही एक और गाना है संग बाय हिमेश एंड तुलसी कुमार, और गाना है अफसाना बना के भूल ना जाना। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इस गाने के रिक्वेस्ट की है अरसलान बुखारी ने। और इसी के साथ ये शो अपने अख्ताम को पहुंचता है, मुलाकात होगी अब आपसे एक घंटे बाद शाम 6 बजे इसी जगह से FM 107 के स्टूडियो से। सुंदर FM 107 दिल से देसी।

0: सब्र के साथ आप कुछ मलात अल्लाह के सुपुर्द करके चैन की नींद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें जाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता फरमाए, सोने से पहले वजू और मसनून अज़कार की पाबंदी नसीब आए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगियों में उन्हें नाफिज के तौफीक अता फरमाए। इसके साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हल्के से तकनीक की मुआविन शकील अहमद और अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेर लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। Only on FM 107 दिल से देसी।
2: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
3: روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
4: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 سے صرف ایف ایم 107 پر
5: دوستوں گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے یاد رکھیے آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर के पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर एक एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है A यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें ना कि आग के। नंबर 3 है जो कि इसकी को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से S यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से लिए आप सभी को सेफ ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-ZIX पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: गेम चेंजर सीजन 2। खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है, यह है जज्बा, मेहनत और वो इरादा जो तारीख बदल देता है। यह है गेम चेंजर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और ये एक सफर है उन स्पोर्ट्स

रिसेप्शन का एहतमाम किया। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आईची नागोआ 2026 एशियन गेम्स के दौरान जापान के नागोआ शहर में बैत कतर पर टूर्नामेंट के हवाले से प्रमोशनल इवेंट्स का एक सिलसिला मुनक्किद कर रही है। अब्दुल रहमान अब्दुल हमीद ने आईची नागोआ 2026 एशियन गेम्स में कतर के मेडल टैली का खाता खोल दिया है। उन्होंने कराटे में सिल्वर मेडल जीता। और एशियन गेम्स वुमेन्स क्रिकेट फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के बाद अब हम बात करेंगे गेम चेंजर पर। गेम चेंजर में आज हमारा हीरो कौन है आप लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करें। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बॉलिंग या विकेट कीपिंग की वजह से मशहूर नहीं होते, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने खेल से ज्यादा कुछ लेकर आते हैं। वो अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देते हैं, वो मुश्किल वक्त में अपने टीममेट्स के साथ खड़े होते हैं और प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और सबसे बढ़कर वो अपनी लीडरशिप से एक पूरी जनरेशन की सोच बदल देते हैं। क्रिकेट में इंडिया के लिए ऐसा ही एक नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। या दोस्तों MS धोनी, जिसको हर कोई नौजवान आज की तारीख में भी एक आइडल मानते हैं, एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के फैंस के लिए सिर्फ एक क्रिकेटर का नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक ऐसा नाम जिसके साथ हेलीकॉप्टर शॉट, लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग, फिनिशिंग, वर्ल्ड कप ट्रॉफीज और कैप्टन कूल जैसे लफ्ज फौरन जहन में आते हैं। लेकिन MS धोनी की कहानी सिर्फ ट्रॉफीज की कहानी नहीं है, ये एक छोटे से शहर के लड़के की कहानी है जो रेलवे स्टेशन और फुटबॉल ग्राउंड से होता हुआ क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंचा। ये उन खिलाड़ी की कहानी है जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। इट डिडंट कम वेरी इजी फॉर MS धोनी। ये उस कप्तान की कहानी है जिसने यंग खिलाड़ियों पर भरोसा किया, और ये उस लीडर की कहानी है जिन्होंने प्रेशर के सबसे बड़े लम्हों में भी अपना दिमाग को ठंडा रखा, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो दोस्तों आज के गेम चेंजर में बात होगी महेंद्र सिंह धोनी यानी माही वे MS धोनी। गेम चेंजर सीजन 2। चलिए शुरुआत करते हैं रांची से। रांची शहर झारखंड का एक वेल नोन सिटी, लेकिन दिल्ली और मुंबई के मुकाबले में रांची इज नॉट अ हाई प्रोफाइल सिटी। और महेंद्र सिंह का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में ही होता है, और उस वक्त रांची इंडिया के क्रिकेट के सबसे बड़े सेंटर्स में शुमार नहीं होता था, बल्कि आज भी रांची इतना पर नहीं है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। लेकिन धोनी का टैलेंट आम नहीं था। बचपन में उनका रुझान क्रिकेट के साथ फुटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी था। स्कूल में धोनी फुटबॉल के गोलकीपर थे, और यहीं से उनकी विकेट कीपिंग जर्नी का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हुआ। फ्रॉम फुटबॉल गोलकीपर टू क्रिकेट विकेट कीपर, एक क्रिकेट कोच ने उनकी गोलकीपर वाली स्किल्स देखी और उन्हें विकेट कीपिंग ट्राई करने का मशवरा दिया। धोनी ने ग्लव्स पहने और फिर जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उनकी रिफ्लेक्सेस नेचुरली बहुत तेज थे, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त था, और विकेट के पीछे उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन धोनी की लेबाजी भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू किया। बिहार और बाद में झारखंड के लिए खेलते धोनी ने सेलेक्टर्स की नजरों में जगह बनाई। उनका बैटिंग स्टाइल ट्रेडिशनल टेक्स्टबुक क्रिकेट से थोड़ा मुख्तलिफ था। वो गेंद को एग्रेसिवली हिट करते थे, उनका बैकलिफ्ट बड़ा था और उनके शॉट्स में पावर नजर आती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहम बात यह है कि धोनी दबाव से नहीं डरते थे। दैट वॉज द हॉलमार्क ऑफ MS धोनी। 2004 में धोनी को इंडिया के ODI स्क्वाड में जगह मिली। बांग्लादेश के खिलाफ उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, लेकिन डेब्यू बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट नहीं था, जैसे कि बाकी खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। धोनी अपनी पहली ODI इनिंग्स में रन आउट हो गए। लेकिन क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी की कहानी मैच से डिसाइड नहीं होती है दोस्तों, धोनी भी उन्हीं में से थे। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एक इनिंग्स ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया को

एक स्पेशल बल्लेबाज मिल गया है। There entered MS Dhoni। विशाखापट्टनम में धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 123 गेंदों पर 148 रन स्कोर किए। इमेजिन द फास्टेस्ट रन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैटिंग एवरेज है, स्कोरिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज लीजिए, 123 गेंदों पर 148 रन। ये इनिंग सिर्फ रन्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी, एक बोल्ड स्टेटमेंट बाय अ बैट्समैन हु केम फ्रॉम रांची। एक ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज जो बॉलिंग अटैक्स को इंटिमिडेट कर सकता था, डरा सकता था, और फिर श्रीलंका के खिलाफ उनकी वो पारी आई जो ओडीआई क्रिकेट के फैंस कभी नहीं भूलेंगे। धोनी ने 183 नॉट आउट स्कोर किए। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ये इनिंग्स उस वक्त एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। उन्होंने श्रीलंकन बोलिंग अटैक को एग्रेसिवली अटैक किया और इंडिया को चेज में विक्ट्री दिलाई। यहां से धोनी की रेपुटेशन सिर्फ एक विकेटकीपर के तौर पर नहीं रही, अब वो इंडिया के खतरनाक बैट्समैन में शुमार होने लगे थे। 2005 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट से बिल्कुल मुख्तलिफ चैलेंज है दोस्तों। यहाँ से अटैकिंग शॉट्स काफी नहीं होते, पेशेंस चाहिए, टेक्निक चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और धोनी ने धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने इंडिया के लिए 90 टेस्ट मैचेस खेले और उनके नाम 4,876 रन हैं। उनका हाई स्कोर 224 रन है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में बनाया था। टेस्ट करियर में धोनी ने 6 सेंचुरीज और 33 50 स्कोर की, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ बैटिंग तक लिमिटेड नहीं थी। विकेट के पीछे वो बॉलर्स के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते थे, फील्ड प्लेसमेंट्स में इनपुट देते थे और नौजवान गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस देते थे। 2008 के बाद जब धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान बने तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की। इंडिया उनकी कप्तानी में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचा, और ये धोनी के करियर का एक ऐसा चैप्टर है जो कभी कभी उनकी वर्ल्ड कप सक्सेस के साए में रह जाता है। अब आते हैं धोनी के करियर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स में से एक पर। साल था 2007। इंडिया को पहले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका जाना था। इंडियन टीम की कप्तानी धोनी को दी गई। यह फैसला बहुत इंटरेस्टिंग था। धोनी उस वक्त इंडिया के सबसे सीनियर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पर भरोसा किया। टीम काफी यंग थी, टी20 क्रिकेट नया फॉर्मेट था और किसी को भी पता नहीं था कि यह टूर्नामेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। इंडिया ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ एक ड्रामेटिक ग्रुप मैच खेला, मैच टाई हुआ और बॉल आउट में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन असली टेस्ट फाइनल में था, जोहान्सबर्ग का स्टेडियम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हर इंटरनेशनल कप्तान को होता है। डिफरेंस ये था कि धोनी प्रेशर के वक्त अपनी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे, और क्रिकेट में कप्तान के सबसे इंपॉर्टेंट काम अक्सर यही होता है। 2008 के बाद धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन गए। ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट्स में लीडरशिप का प्रेशर उनके कंधों पर डाल दिया गया। इंडिया के पास टैलेंटेड प्लेयर्स की कमी नहीं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली, हरभजन सिंह, जाहिर खान और बहुत से दूसरे प्लेयर्स। धोनी का काम सिर्फ टीम सेलेक्ट करना नहीं था, उन्हें ड्रेसिंग रूम को मैनेज भी करना था। इमेजिन करिए, आपके जो मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन धोनी ने किया। सीनियर प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स के दरमियान बैलेंस बनाना भी था, उसमें भी धोनी सक्सेसफुल, और सबसे बढ़कर रिजल्ट्स डिलीवर करने थे और वहां पर भी धोनी कामयाब। और 2011 जब आता है तो वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए सब लोग तैयारी कर रहे थे, ऑल क्रिकेटिंग टीम्स। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक बहुत स्पेशल टूर्नामेंट था। वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश में होस्ट हो रहा था। इंडियन टीम टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में शुमार किया जा रहा था। टीम में एक्सपीरियंस भी था और यूथ भी। धोनी कप्तान थे, सचिन तेंदुलकर अपने छठे वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग एक्सप्लोसिव ओपनर थे, युवराज सिंह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे थे, जाहिर खान बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे, और यंग विराट कोहली भी टीम का हिस्सा थे।

इंडिया ने ग्रुप स्टेज में इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज हासिल की। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने मोहाली में विक्ट्री हासिल की और फिर आ गया वर्ल्ड कप फाइनल 2 अप्रैल 2011 मुंबई शहर वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए और इंडिया को टारगेट मिला 275 का, लेकिन चेज की शुरुआत आइडियल नहीं हुई। वीरेंद्र सहवाग जल्द ही आउट हो गए, सचिन तेंदुलकर भी पैवेलियन वापस चले गए, प्रेशर बढ़ता गया। गौतम गंभीर क्रीज पर थे, विराट कोहली आए, फिर कोहली आउट हो गए। अब इंडिया को स्टेबिलिटी चाहिए थी और धोनी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर ले आए, यानी प्रमोट किया, सेल्फ प्रमोशन। कैप्टन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली। गौतम गंभीर के साथ धोनी ने पार्टनरशिप बनाई और धोनी ने प्रेशर को बहुत ही बाखूबी के साथ एब्जॉर्ब किया, सिंगल्स लिए, डबल्स लिए और जब अपॉर्चुनिटी मिली बाउंड्रीज भी लगाई। मैच के आखिरी मोमेंट्स में इंडिया विक्ट्री के करीब था और फिर वो मोमेंट आया। श्रीलंकन बॉलर नुवान कुलासेखारा, धोनी क्रीज पर, गेंद आई, धोनी ने अपना मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट खेला, बॉल हवा में गई और बाउंड्री लाइन के बाहर चल गई। वर्ल्ड कप चैंपियंस बना आफ्टर 1983। धोनी ने क्या किया, धोनी ने 91 नॉट आउट इनिंग्स खेली और ये मैच विनिंग इनिंग्स थी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। लेकिन उस रात सबसे यादगार चीज सिर्फ उनके 91 रन्स नहीं थे, वो इमेज थी, धोनी के हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जश्न, इंडियन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू और 28 साल बाद इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियंस। गेम चेंजर में बात हो रही है एमएस धोनी के बारे में, कैप्टन कूल। और 2011 वर्ल्ड कप धोनी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था और हिज करियर। He showed the cricketing world the what a brilliant player he was, not just a player but the man management karne mein mahir. Acha ab Dhoni ne jis shot se India ko, you know, the winning stroke jisko hum kahenge, is match mein kiya tha in the final of the 2011 World Cup final mein, wo helicopter shot. अब क्रिकेट में कुछ शॉट्स अपने खिलाड़ी के नाम से मशहूर हो जाते हैं। धोनी का नाम आता है तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर शॉट याद आता है। ये कन्वेंशनल क्रिकेट बुक का शॉट नहीं था, डेफिनेटली नॉट। धोनी ने अपनी रिस्ट और बॉटम हैंड पावर का इस्तेमाल करके इस शॉट को अपनी सिग्नेचर आइडेंटिटी बना दिया था। यॉर्कर लेंथ गेंद को भी वो बाउंड्री के पार भेजने की एबिलिटी रखते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ एक स्टाइलिश शॉट नहीं था, ये धोनी के बैटिंग फिलोसॉफी का हिस्सा था। दोस्तों, रिस्क लेना, बॉलर को प्रेशर में लाना और मैच की सिचुएशन के मुताबिक शॉट को सेलेक्ट करना, इस शॉट ने दुनिया भर के यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया और आज भी क्रिकेट ग्राउंड में जब कोई भी नौजवान खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है तो लोग फौरन कहते हैं धोनी, धोनी स्टाइल। इसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी की कप्तानी का अगला बड़ा चैप्टर था। इंग्लैंड में टूर्नामेंट हुआ, कंडीशंस बहुत ज्यादा इजी नहीं था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ऑपोजिशन स्ट्रांग थी और इंडिया ने टूर्नामेंट में अनबीटन कैंपेन कंप्लीट किया। फाइनल में इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड होता है, बारिश की वजह से मैच को 20 ओवर पर साइड तक रिड्यूस कर दिया गया, इंडिया ने लिमिटेड टोटल बनाया, इंग्लैंड चेज के करीब पहुंच गया, लेकिन धोनी ने प्रेशर में अपने बॉलर्स का स्मार्टली इस्तेमाल किया, इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और इस फतेह के साथ धोनी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट तक पहुंच गए। वो पहले और अब तक वाहिद कैप्टन बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों मेजर ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। ये रिकॉर्ड धोनी की कप्तानी लेगेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अब बात करते हैं विकेट कीपर धोनी कैसे, व्हाट मेड धोनी सच अ ब्रिलियंट विकेट कीपर। दोस्तों, अगर धोनी को सिर्फ बल्लेबाज या कप्तान समझा जाए तो उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। धोनी की विकेट कीपिंग भी उनकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। उनकी सबसे खास क्वालिटी थी स्पीड, उनकी स्टंपिंग्स बहुत तेज होती थी, वो विकेट के पीछे बॉल को कलेक्ट करके ऑलमोस्ट एक ही मूवमेंट में बेल्स गिरा देते थे। बैट्समैन को समझ भी नहीं आता था कि वो क्रीज से बाहर कैसे निकला। धोनी का ग्लव वर्क यूनिक था, वो कन्वेंशनल विकेट कीपिंग टेक्निक से कुछ चीजों में मुख्तलिफ थे, लेकिन उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस उन्हें स्पेशल बनाता था। ओडीआई क्रिकेट में अगर नजर डालूं तो पता चलता है कि उनके नाम 123 स्टंपिंग्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट की

पर के तौर पर उनकी टोटल डिसमिसल्स की तादाद भी बहुत इम्प्रेसिव रही, लेकिन नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनका इन्फ्लुएंस। उन्होंने इंडिया के विकेटकीपिंग स्टैंडर्ड्स को एक नए लेवल तक पहुंचाया। और अगर क्रिकेट में फिनिशर की डेफिनेशन लिखी जाए तो धोनी साहब का नाम जरूर आएगा, परफेक्ट फिनिशर, जो कि सचिन भी नहीं था। और मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली को कहा जाता है कि धोनी के मोल्ड में बैटिंग करता है ये बंदा, फिनिश कर देगा, यानी मैच को वहां तक ले जाएगा, आखिरी ओवर तक खेल लेगा और इंडिया को जिता भी देगा। धोनी ऐसा ही था। धोनी को चेस के आखिरी ओवर्स में बैटिंग करना पसंद था इसीलिए, और वो अक्सर इनिंग्स के शुरू में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते थे। बहुत ही वाज अ वेरी कैलकुलेटिव बैट्समैन। वो सिचुएशन रीड करते, रिक्वायर्ड रन रेट को देखते, फील्ड को ऑब्जर्व करते और फिर इनिंग्स के आखिरी फेज में एक्सेलरेशन लाते, यानी तेजी से रन बनाना चालू कर देते। उनकी बैटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, कैलकुलेशन। कैलकुलेटर का तरह काम करता था उनका दिमाग। कितने रन चाहिए, कितनी गेंद बाकी है, कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फील्ड कहाँ सेट है और किस ओवर में अटैक करना है, धोनी इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करते नजर आते थे। और इसीलिए उन्हें दुनिया के ग्रेटेस्ट फिनिशर्स में शुमार किया जाता है। जहां धोनी आखिरी ओवर में है, इंडिया को जीत हासिल है। दैट वॉज द क्वाइट यू नो स्पेकुलेशन उस जमाने में था कि धोनी आखिरी गेंद पर बैट कर रहे हो और इंडिया फैंस उम्मीद में है कि ये मैच तो हमारा ही है, और होता भी था। ओडीआई करियर अगर देखे तो एक्सट्रॉर्डिनरी नंबर्स से भरा हुआ है। 350 ODIs खेले, टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले में ODIs उन्होंने ज्यादा खेले, और उन्होंने 10,773 रन स्कोर किए और उनका बैटिंग एवरेज 50 से ज्यादा रहा। स्ट्राइक रेट तकरीबन 87.5 रहा और उनके नाम 10 ODI सेंचुरीज और 73 50s हैं। और विकेट कीपर के तौर पर उनकी परफॉर्मेंसेज ने उन्हें इंडिया के ग्रेटेस्ट लिमिटेड ओवर्स प्लेयर्स में शुमार कर दिया। लेकिन धोनी के ODI करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक नहीं दोस्तों, वही है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, 2011 का वर्ल्ड कप विक्ट्री। T20 में भी खेले उन्होंने। T20 क्रिकेट में धोनी का रोल थोड़ा डिफरेंट रहा। उन्होंने इंडिया के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 1,617 रन स्कोर किए। उनका हाईएस्ट T20 स्कोर रहा 56। लेकिन T20 में उनके कंट्रीब्यूशन को सिर्फ रन से मेजर करना मुश्किल है। वो विकेट कीपर थे, कप्तान थे, फिनिशर थे और ड्रेसिंग रूम में सीनियर एक इंडिविजुअल क्रिकेटर थे। 2007 के इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में उनकी लीडरशिप ने इंडियन क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया और इंडिया की T20 क्रिकेट जर्नी में धोनी का जो अहम किरदार रहा वो हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए 2007 में आज से तकरीबन 20 साल पहले T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। न्यू व्हाट इज T20 क्रिकेट, 20 ओवर का गेम होते हैं, लेकिन 20 ओवर 50 ओवर से मुख्तलिफ है, 50 ओवर का गेम जो है टेस्ट क्रिकेट से मुख्तलिफ है। तो हर फॉर्मेट में यू नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी और इस डिफरेंट स्ट्रैटेजी को मुकम्मल करने के लिए एक बंदा था इंडिया के पास, उनका नाम है MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी माही वे। सो माही वे ने अपने ही वे में T20 क्रिकेट खेलना सिखाया इंडियन क्रिकेटर्स को कि ऐसे खेलो, ऐसे जीतो। और आज अगर इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है तो इसके पीछे MS धोनी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर हम T20 की बात करें तो वाई नॉट टॉक अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स इन IPL। इंटरनेशनल क्रिकेट से हटकर धोनी की सबसे बड़ी लेगेसी में से एक है इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में IPL शुरू हुआ, धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन डोमेस्टिक T20 क्रिकेट की सबसे आइकॉनिक स्टोरीज में शुमार होती है। धोनी और चेन्नई, येलो जर्सी नंबर 7 और स्टेडियम में धोनी धोनी की आवाज, और धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने मल्टीपल IPL टाइटल जीते। उन्होंने टीम को एक कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद की। IPL में धोनी की इंपॉर्टेंस सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक लिमिटेड नहीं थी, उनका ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस, जैसे कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बताया था, यहां पर भी डोमेस्टिक क्रिकेट, यंग खिलाड़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन, मैच सिचुएशंस को रीड करना और प्रेशर में डिसीजंस लेना, ये सब CSK कल्चर यानी चेन्नई कल्चर का हिस्सा बन गया। चेन्नई यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लब ऑफ IPL। धोनी IPL के सबसे रिकॉग्निजेबल फेसेस में से एक बन गए। और नंबर 7 जर्सी, धोनी का जर्सी नंबर भी उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। इस नंबर के साथ धोनी का नाम इतना स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो गया कि क्रिकेट फैन

0: फैंस के लिए सात का मतलब अक्सर धोनी ही होता है। उनके बर्थ डेट भी 7 जुलाई है, इसीलिए नंबर 7 उनके करियर का एक इंटरेस्टिंग सिंबल बन गया। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट से आईपीएल तक नंबर 7 ने धोनी की जर्नी का साथ दिया। अब धोनी की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा हम अगर बात करें तो ये मत पता चलता है कि उनके कप्तानी को समझने के लिए सिर्फ ट्रॉफीज देखना काफी नहीं है, यहाँ पर उनका लीडरशिप स्टाइल भी समझना जरूरी है। धोनी अक्सर अपने खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे जो बहुत कम लीडर्स देते हैं, और अगर किसी यंग बॉलर को प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग देनी हो धोनी उस पर भरोसा करते कि जाओ भाई जाओ तुम गेंद डाल लो, और अगर कोई यंग बल्लेबाज नाकामयाब रहता है तो अक्सर उन्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती। उनकी फिलोसॉफी में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन ट्रस्ट के साथ अकाउंटेबिलिटी भी थी। या आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं लेकिन आप चले जा रहे हैं, जीरो पे आउट हो रहे हैं, यू नो विकेट्स भी नहीं ले पा रहे हैं, उसके पीछे एक अकाउंटेबिलिटी भी जोड़ देते थे धोनी साहब। धोनी का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेट था, वो अपने खिलाड़ियों को पब्लिक प्रेशर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। जब टीम जीतती क्रेडिट खिलाड़ी को, जब टीम हार जाती कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। दैट वॉज एम एस धोनी। ये लीडरशिप स्टाइल ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है, एंड दैट अ पर्सन फ्रॉम अ यंग सिटी ऑफ रांची हैज शोन टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि मैं छोटा शहर से हूं लेकिन मेरा दिल जो है बहुत बड़ा है। अक्सर हमने देखा नहीं है ऐसे, दिल्ली या बॉम्बे मुंबई कह लीजिए या चेन्नई बैंगलोर, इस सब बड़े शहरों से जितने भी क्रिकेटर्स आए और इंडिया के कप्तान बने, आई थिंक देर आर लिमिटेड, देर आर एक्सेप्शनल, बट मोस्टली इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज हमें देखने को नहीं मिला है। इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा नाम अगर आज कोई कहता है तो वो विराट कोहली है, और धोनी के साथ कोहली की जर्नी भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोहली 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और धोनी उस वक्त इंडिया के कप्तान थे। दोनों ने मिलकर बहुत से मैचेस खेले। धोनी ने कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट के अर्ली इयर्स में लीडरशिप एनवायरनमेंट दिया। बाद में कोहली इंडिया के टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स कप्तान बने और धोनी ने सीनियर खिलाड़ियों के तौर पर टीम में अपना रोल कंटिन्यू रखा। ये ट्रांजिशन इंडियन क्रिकेट में लीडरशिप सक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का डिसीजन लिया। उनका टेस्ट क्रिकेट करियर 90 मैचेस पर खत्म हुआ। उन्होंने 4,876 रन बनाए और इंडिया को टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 तक पहुंचाने में कप्तान के तौर पर इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। लेकिन धोनी का इंटरनेशनल करियर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनका फोकस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पर रहा और वो 2015 वर्ल्ड कप तक इंडिया की लीडरशिप करते रहे। धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 2019 वर्ल्ड कप के बाद अपने फाइनल फेज में पहुंचा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल उनका आखिरी ओडीआई मैच बना। उस मैच में धोनी ने इंडिया को चेज में वापस लाने की कोशिश की लेकिन इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच सका। और उसके बाद धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट 2020 में कर दिया। एक सिंपल अनाउंसमेंट और क्रिकेट दुनिया में एक एरा ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन धोनी की कहानी यहां खत्म नहीं हुई क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए लेजेंड्स रिटायरमेंट के बाद भी लेजेंड्स ही रहते हैं। तो दोस्तों, धोनी के करियर में बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल टाइटल्स हैं, रन्स हैं, स्टंपिंग्स हैं, फिनिशिंग है, लेकिन अगर मुझे धोनी के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी चूज करनी हो तो वो है कंपोजर। तो इसी के साथ आज का गेम चेंजर यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम आप बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और कीप फॉलोइंग एफएम 107। गेम चेंजर के अगले एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गेम चेंजर
1: सीजन 2 कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे टाइम चेक का 6:02
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: तो भाई डायरेक्टली FM 107 की स्टूडियो से बीमार आदमी का स्वागत जो है कर लो आज। आज मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करूंगा, मेरा स्वागत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तबीयत खराब होने के बाद भी अगला आदमी काम करने को आए, मजदूरी करने को आए, तो उसको लगता है कि कोई तो मुझे कह दे कि अरे आप तो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सहानुभूति भी अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो वो कम है, ज्यादा तो वो है कि अगर महीने के आखिर में पैसा मिल जाए, अरे भाई साहब आप आए थे, आप 2 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा लीजिए भाई। 2 दिन आप काम करके गए, भले 1 दिन आए हो, क्योंकि आप तबीयत खराब में आए थे, तब तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन खैर जुकाम ऐसी चीज है कि इंसान काम कर सकता है और छुट्टी नहीं मिलती है, हालांकि काम करने का दिल बिल्कुल नहीं होता है, बट अपना काम चल जाता है। तो इस्तकबाल है आप सभी का 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अभी से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और एक भाई पूछ रहे थे अभी कुछ देर पहले कि भाई गाड़ी बन गई क्या? अरे एकदम चकाचक बन गई भाई, लाजवाब बन गई है। बगैर कार के यार ऐसा लग रहा था कि अब क्या करूं मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ पैर नहीं है यार, मेरे को पैदल चलने में मौत आ रही थी यार, मेरा कैब का इतना खर्चा हुआ है जितना पेट्रोल का 3 हफ्ते में नहीं होता है। मुझे ऐसी तन्हाई तब नहीं लगी जब मैं तन्हा था, जितनी तन्हाई तब लगी जब मेरे पास कार नहीं थी। भाई यार कसम से अजीब लग जाता। वो तो हमारे मैकेनिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आखिरी ये 2 दिनों में उन्होंने, 2 नहीं 3 दिनों में उन्होंने मुझे कार दे दी, वो 3 दिन सुकून रहा है। लेकिन कल जब बन के आई भाई, मेरा स्टीयरिंग बहुत हार्ड चल लिया था, तो जब उसको मोड़ो तो ऐसा लगता है कि मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। अबे भाई मतलब बहुत बुरा लगता था मुझे है। और अच्छा जब गाड़ी चलाओ तो वो गाड़ी स्टीयरिंग आराम से मोड़ जाती थी, ठीक है, वेल डन। लेकिन जब आप खड़ी खड़ी गाड़ी मोड़ते हैं ना, तो आपको एक हाथ से मोड़ने मजा आता है भाई, मेरे को दोनों हाथ लगाना पड़ता था। आपने पता नहीं ट्रैक्टर वाले को देखा है जो खेत वगैरह में काम करते, दोनों हाथ से पूरी जान लगा देते हैं और उनके मुंह से थोड़ी सी आवाज भी आ जाती है जब वो स्टीयरिंग मोड़ते हैं, उनके मुंह से आवाज आती है

0: मतलब मुझे वही करना पड़ता था, बस आवाज नहीं निकलती, थोड़ा तो स्मूथ था। एक और नुकसान ये था कि मुड़ते हुए मेरी गर्दन भी मुड़ती थी, क्योंकि भाई क्या करे, कोई मजबूरी है ना, इंसान जब ताकत लगाता तो गर्दन और बॉडी पूरी मुड़ जाती, तो वो काम करना पड़ रहा था। और हाँ, दूसरा ये था कि वाइब्रेट मोड पे आ गई थी, है ना, तो किसी ने तो साइड का बटन जो है वो नीचे की तरफ कर दिया था मेरे कार का। और गाड़ी 120 के पास चलती थी तो कहती थी भैया हिलो हिलो, तो हिल डुल की नच नच, ये हो जाता था उसके साथ। बट अभी तो फिलहाल एकदम मक्खन चल रही है भाई, अपना राइट हैंड रखता हूँ हेडरेस्ट पे, एक हाथ से गाड़ी मोड़ता हूँ, ओ फो आप एकदम लग्जरी फील आता है, अब लगता है ट्रैक्टर नहीं चला रहा हूँ। खैर, माइलेज भी ठीक करा ली तुम्हारे भाई ने। अभी 6:05 और आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आज का सवाल मेरे बाप चाचा से आया है। तो अब्बा और चाचा दोनों अलग अलग मेरे दौर में रहे हैं, चाचा थोड़े जवान टाइप के हैं, अब्बा हमारे थोड़े बूढ़े टाइप में हो गए, है ना, बूढ़े टाइप में उनकी सोच कह लो। तो चाचा हमारे रहते हैं दिल्ली में और एकदम नौजवान, और उनके लड़के भी अभी मेरे ख्याल में छोटे हैं, मुझे लगता 12-15 साल के, तो अभी भी नौजवान है हमारे चाचा, उनका सोचने का तौर तरीका अलग है, अब्बा का सोचने का तौर तरीका अलग है। तो मेरे मन में एक सवाल था जो हमने दोनों से अलग अलग कर लिया, अब उन दोनों ने दो अलग जवाब दिए हैं, मेरा दिमाग समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा सवाल सोसाइटी में घूम भी रहा है, तो सवाल पर आ जाते हैं कि आज का सवाल मेरे बाप और चाचा से आया है, ठीक है।
1: मेरे सवाल का जवाब दो,
0: तो घर पे ऐसी बात चल रही थी और मेरे दोस्तों का भी अपना हिसाब किताब बढ़ रहा है, तो उनने ये कहा कि यार मैं ना, मेरे पास इतने इतने रुपए हैं इंडियन रुपीज में, तो मैं एक जमीन खरीदूं या मैं एक अपार्टमेंट या फ्लैट टाइप में। तो ये चाचा के कान में बात अलग गई, अब्बा के कान में बात अलग गई। अब्बा का कहना है कि भाई आप जो है जमीन खरीदिए, उसमें जो है कि आप जब घर घर बनाते हैं तो छत भी आपकी होती है, जमीन भी आपकी होती है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, आपको घर के अंदर भी कोई तोड़ फोड़ करानी है, कोई चेंजेस कराने आप कर सकते हैं। तो अब्बा ने इस तरह के पर्क्स के बारे में बात करी जब आप जमीन खरीद के घर बनवाते हैं। ऐसे ही चाचा ने कहा नहीं देखिए, क्योंकि चाचा तो दिल्ली में रहे तो अपार्टमेंट में रहना चॉइस नहीं मजबूरी है। और अब्बा थोड़े से शहर में नहीं, मतलब वो वाले शहर में रहते जो थोड़ा गरीब शहर होता है ना, जो टॉप टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 20 में नहीं आते, है ना, मेट्रो शहर नहीं होते वो, तो वो वाले शहर में रहते हैं जिसमें पैसे कम लगे ज़मीन मिल जाया करती है। तो उनने अपने हिसाब से बताया होगा, लेकिन वहाँ पर भी अपार्टमेंट वगैरह बनने लग गए। सो ऐसे में चाचा ने कहा नहीं देखिए, अपार्टमेंट का अपना फ़ायदा है, लिफ्ट लगी रहती है, एक लिफ्ट से आप जो है आराम से अपने घर पे भी पहुँच जाते हैं, खर्चा भी कम होता है, मेंटेनेंस दीजिए, वहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है, चोरी चकारी का डर नहीं होता है, टेंशन फ्री रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी चॉइसेस जो हैं अटकी हुई हैं। तो सवाल यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो सही तरीका क्या है, लोगों को लैंड खरीदना चाहिए या अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर हमारे चाचा का ये कहना है कि आप अगर यू नो अपार्टमेंट खरीद भी लेते हैं, तो आप अपार्टमेंट में नहीं भी रह रहे हैं तो आप किराए पर तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब तक आपने घर नहीं बनवाया है तो आप किराए पर नहीं चढ़ा सकते। और फिर जिस जगह पर आप चढ़ा भी रहे हैं वहाँ का रेट इस बात पर भी या रेंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर लोग या रिहायशी इतनी है या नहीं है, लोग आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। वरना पता चला आपने 10 लाख की ज़मीन खरीद ली, घर बनवाया, 20 लाख की ज़मीन खरीद ली, घर बनवाया और आपको 3,000 रुपया मिल लिया। तो सवाल इसी पर अटका हुआ है कि करना क्या है क्या नहीं करना है, इसी पर मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों से पूछ लिया जाए। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं शहर में अपार्टमेंट लेने के, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं गांव या छोटे शहर में ज़मीन वगैरह लेने के। आप अगर होते, आपके हाथ में 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, व्हाटएवर जो भी अमाउंट है, अगर इंडियन या पाकिस्तानी है, तो आप क्या प्रेफर करते, ठीक है, ज़मीन, लैंड या फिर अपार्टमेंट। नंबर है 666-22107, जहां पर आप आकर बता सकते हैं, 666-22107। तो बाकी अब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, लोगों का क्या कहना है इस पर नजर डालें। तो सबसे पहले मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, नाम है इनका नसीम, आवाज आती थी आपने सुना नहीं यार। अब देखो मैं इतनी बातें करके निकल गया हूँ, मेरे को नहीं आइडिया, आवाज़ आती थी आपने सुना नहीं, ये क्या आपने कहा है। बाकी नसीम साहब लिखते हैं ऐसी जमीन घर बनाने वाली है और पैसा तो बेस्ट है। जमीन घर बनाने वाली, अच्छा मतलब यानी कि जमीन लो और पैसा है तो बेस्ट है, जमीन लेने के बाद घर बनाने के लिए अगर पैसा है तो बेस्ट है। ओके, ये नसीम भाई की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो और ये मैसेज है सलाम का, हिशाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम रवाई, उम्मीद है बढ़िया होंगे। अच्छा एक मैसेज है, आज बारिश होने वाली है, क्या बात कर रहे हो यार, कौन है ये कौन है जिसने बताया बारिश होने वाली है, मैं कूद के वहीं पर पहुंचने वाला हूँ, अब तो गाड़ी भी बन गई है। एक हाथ से गाड़ी की स्टेयरिंग मुड़ेगी भाई साहब, अब मजा आने वाला। फिर कौन मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई कहते हैं हैप्पी ट्यूसडे। अच्छा ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है ओके मेरा भाई। फिर एक मैसेज और है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, नाम है रहबर, ये नाम होते हैं, मैंने तो ये शायरी में सुने हैं ये लफ्ज रहबर, लेकिन ठीक है। रहबर भाई ने कहा है कि अपार्टमेंट बेस्ट है, किराए पे भी किराए पे चढ़ा सकते हो, ये तो सबसे आसान है कि इधर लिया अगले दिन किराए से पीछे आने चालू हो गए, और खास तौर पे जब आप गल्फ वगैरह में रह रहे हो तो बेहतर तो यही है। फिर कौन मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, एडवांटेज है इसके बाद टाइपिंग कर रहे हैं। पहले लिख दिया एडवांटेज है, अब अगला आदमी सोचता रहे कि लैंड पे या अपार्टमेंट में। कार रेडी हो गई, हाँ कार, अच्छा ये कार वाली बात पे कह रहे थे, हाँ भाई कार एकदम चकाचक रेडी हो गई है, अब जो है माइलेज भी बढ़िया है, बताओ कहाँ आना है, बारिश हो रही है, जिधर हो रही है मेरे को बताना जरूर, ठीक है। क्या नाम है भाई आपका, अरे बाप रे बाप, इतना लंबा लिख दिया है कि हम पढ़ नहीं, ये पढ़ नहीं सकते, खैर नाम लिख देते भाई, थोड़ा आसान हो जाता, ऊपर भी ना दिख रही है मेरे को, प्रोफाइल पे तो लिखा है लाइफ फ्रॉम अल्लाह, लीव फॉर अल्लाह, जो भी भाई नाम लिख सकते हैं, लेकिन गदर लिखा है आपने। जमीन, जमीन का रुख किया है रिजवान साहब ने, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, लेकिन क्यों आप कोई रीजन के साथ आओ, ऐसा थोड़ी है कि आपने जो बात कह दी वो मान लिया, आपका कोई रीजन भी होगा ना, कोई वजह भी होगी, तो वो मेरे को बताओ, छोटे शहर में जमीन है। ओके फिर एक और मैसेज, सलाम वालेकुम अस्सलाम, एक और दो अपार्टमेंट के आ गए और दो जमीन वाले आ गए, ठीक है। लेकिन ये वाला मैसेज किस भाई का है, अपार्टमेंट लेकिन रीजन के साथ आओ, आपको भी मैं यही इल्तिजा करूंगा, रीजन के साथ आओ मेरा भाई। आपका नाम क्या है, यासीन, ओ यासीन भाई ने कहा है कि अपार्टमेंट सही है। यूसुफ भाई ने कहा है कहाँ पे हो रही बारिश, ये तो मैं भी सुनना चाह रहा हूँ। फजील यहाँ बिन उमरान आपके करीब में काले काले बादल छाए हुए, मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है एक मिनट गाना सुन लो, मैं आ रहा हूँ, मैं गाने सुन लो, मैं बाहर का मौसम देख लूं, फिर वरना निकल जाता है यार, निकल जाता मौसम, मैं आया, दो मिनट गाने सुनो है, जल्दी से मैसेज पढ़ लेता हूँ, बाकी के बादल छाए में बारिश की आसार नजर आ रहे हैं, अल्लाह करे बारिश हो जाए, आमीन। इतनी बड़ी आमीन मैंने अपनी जिंदगी में पड़ी जमीन लेने के लिए नहीं की है जितनी बड़ी अभी कर दी है कि आमीन बारिश हो जाए, बारिश हो जाए आमीन, सब आमीन लिखो, आमीन लिखो, चलो ये सब आमीन लिखो, हाँ मुबीन भाई से शुरू हो गई आमीन की बात है, सब एक साथ लिख के आना चाहिए आमीन।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: बाकी सोशल मीडिया पे एक पेज है और उस पेज ने कहा था कि आने वाले 10 दिन में भयंकर बारिश होने वाली है, और वो वेदर को ट्रैक करती है, वो जो भी बंदा है जो सोशल मीडिया पे वो पेज चलाता है, कतर वेदर करके है, उन्होंने कहा है आने वाले 10 दिन में ना तगड़ी बारिश होगी, 10 दिन के अंदर अंदर, और ऐसी वाली बारिश नहीं कि बस बारिश हो गई भयानक वाली और यू नो चीज़ें आपको देखने को मिल गई कि फलाना पानी भर गया, ये हो गया, ऐसी वाली नहीं बारिश होगी भाई, जहां पर बिजली ककड़ेगी बिजली, बाकी ये तो जग जाहिर है कि कतर में जब भी बारिश होती है, नए लोगों को मैं बता दूं, बारिश हो तो कहीं छुप मत जाना, घर के अंदर मत बैठना, कार लेके निकल जाना भाई, ये इतना खूबसूरत लगता है कतर, यहाँ कीचड़ नहीं होते भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर जब बारिश होती है दो सांड लड़ते हुए नहीं दिखेंगे तुम्हें। सच बता रहा है, यहाँ पर बारिश होती है तुम गाड़ी लेकर निकलो, और मतलब पैदल भी अगर निकलना चाहो, गाड़ी नहीं है कोई मसला नहीं, अभी नए आए हो लाइसेंस नहीं मिला होगा, अगर आप गाड़ी लेकर ना भी निकलें तो आपको यहां पर ऐसा नहीं मिलेगा कि बगल से कोई ऑटो या कार वाला गया और उसकी सारी चीज सारी कीचड़ आपके ऊपर।

पड़ अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, अगर कहीं बार पानी भरा है तो आप बाकायदा खड़े होंगे और कहेंगे कार वाले से छीट मार के जाओ यार, मेरे को बड़ा मजा आता है। यहाँ की बारिश मजेदार होती है भाई, दिल खुश हो जाता है। फिलहाल बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ लेते जल्दी से। सबने लिख लिया है आमीन। क्या बात है मेरा भाई। जमीन का रेट बढ़ता रहता है, ये नसीम साहब ने कहा। ओए ये पॉइंट पे मुझे लगता है कि जमीन जो है इससे आगे कोई नहीं दे सकता। अपार्टमेंट पीछे छूट जाएगा, अपार्टमेंट किराया दे सकता है, रेट नहीं दे सकता बाबा। लेकिन नसीम साहब यहां पर एक कैच है। सोचिए, आपने जमीन लिया, आपने रख दिया, 5 साल में जितना रेट बढ़ेगा अपार्टमेंट उतने ही 5 साल में आपको रेंट के हिसाब से पेमेंट करता रहेगा, है ना। तो आपको मंथली पेमेंट आता रहेगा, एक तरह से सैलरी बन जाती है। ये भी एक पॉइंट था मेरे चाचा का। चाचा इसी बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, कह रहे बेटा जमीन जो है वो फिर 5 साल बाद में तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। अबे भैया इतना भारी वर्ड सुना मैंने, लिक्विडिटी। तो उनने समझाया, वो पढ़े लिखे आदमी, तो उनने कहा कि अरे क्या है कि आप देखिए अपार्टमेंट आप चाहें तो 1-2 महीने में बिक सकता है, पैसा आ जाएगा कैश हाथ में। जमीन के लिए आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं, 1-2 महीने का काम नहीं है, उसमें 5-6 महीना लगना पड़ता है। अच्छा रेट मिले ना मिले, बड़ा झंझट है मजील। पता इस बात पे मैंने क्या कहा और अब्बू ने क्या कहा? मैंने कहा अब्बू ने कहा इनकी मत सुनो। अब्बू ने कहा कि जमीन सही है, सुरक्षित है, बाउंड्री करवा दो, खत्म काम। बूढ़े लोगों का यही होता है। ब्रदर, देयर इज नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन लैंड इफ देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद द लैंड पेपर्स, बिकॉज इफ द पोजीशन ऑफ द लैंड इज गुड द प्राइस विल ऑलवेज इंक्रीज। ये नसीम भाई ने भी कहा है, लेकिन सोहेल साहब ने ये बात कही है, ये तब वैलिड है जब आप सही में अच्छी लोकेलिटी में अच्छे लोकेशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑन लैंड, तो ये बहुत सही है। और अगर नहीं, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कहीं पर तो इन्वेस्ट कर लिया और 10 साल तक रेट बढ़ता नहीं है, है ना। तो ये भी होता है, मैंने एक लोगों को रोते हुए देखा और वो पता है कौन है? मेरे चाचा। बेचारे एक जगह जमीन थी लखनऊ में, 4 साल बाद उनने बेचा, 1 लाख रुपए बढ़ा था उसका। और बेचा ही इसलिए कि 1 ही लाख रुपए बढ़ा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है चाचा जो है अपार्टमेंट के लिए बात कहते हैं। फिलहाल अंसारी कहते हैं आमीन, बहुत ही उम्दा। लंबा वाला आमीन मेरे कुरैशी साहब ने भी लिख दिया, मेरा भाई ने बहुत ही उम्दा आमीन। फिर मोमिन भाई ने बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं, मुझे एक ज़माना लगेगा पढ़ने के लिए, और उस ज़माने के लिए एक गाना तो बनता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं भी एक बाहर राउंड लगा के आता हूँ आमीन के साथ। मोहम्मद इरफान की आवाज में बेहतरीन सा गाना सुने FM 107 दिल से।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, वजारत दाखला ने अवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके ज़राए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार की गई थी और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में ही हजारों अफराद तक पहुंच जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जोर देकर कहा है कि आवाम हमेशा मुअद्दबर और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान

0: इस सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. Only on FM 107, दिल से देसी. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील.
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी.
3: कोई बारिश आरिश का चांस नहीं लग रहा मेरे को यार. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. अपन बिन उमरान के आसपास रह ले रहे हैं और यहाँ पर मैं एक्चुअली बाहर तो नहीं गया लेकिन शीशे से पार देखा. मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भी ऑफिस के अंदर से देख रहे हैं और कह रहे हैं मौसम अच्छा है, लग रहा है बारिश हो जाएगी. यार अंदर बैठ के बारिश कोई नहीं हो रही है, अंधेरा हो गया इसलिए लग रहा है आपको कि हाँ बादल छा रहे हैं. कुछ नहीं होने वाला लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है. बाकी हम तो दुआ कर रहे हैं, लिख तो दिया आप सबने मिलकर आमीन. फिलहाल 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी में कॉल आ रही है, जरा कॉल उठा लेते हैं. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हो मेरे भाई?
3: मैं भाई आपकी यादों में हूँ.
4: यादों में तो हो ना, थोड़ी थोड़ी सी बीमारी मुझे भी लगी है यार. मैंने तो मैं भी कर रहा हूँ सर.
3: मैंने कौन सा आपके पास आकर छींक दिया यार, मेरी वाली तुम्हें लग गई मेरा भाई.
4: आ गई ना भाई.
3: और सुनाए कैसे?
4: मैं अल्लाह से राजी हूँ, बस सुन रहा था भाई को कि आपने जो आज सवाल लाया है बड़ा बढ़िया सवाल है यार.
3: अच्छा मतलब आपके चाचा भी?
4: हाँ ना जी, ऐसे हमारे लाइफ में भी ये चीजें हमने देखे कि भाई इधर इन्वेस्ट करो, अगला हाँ. कह रहा नहीं जी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो.
3: हाँ.
4: ये हर फैमिली का मामला है अगर जिसके पास 4-5 पैसे हो तो.
3: हाँ. नहीं नहीं फैमिली लेकिन बताया मत करो मेरा भाई कि आपके पास है. जहाँ आप बताओगे ना तो जिसको बताओगे उसको नहीं लेकिन उसके बच्चे को, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर को, है ना. जैसे फुप्पी को बताया तो फुप्पी को लड़की जो है ना उनकी, उनके मियाँ को बहुत जरूरत पड़ जाती पैसों की, तो मत बताया करो कि है. पता है आपको अगर उधारी देने से बचना है ना, इससे पहले कि वो मांगे उससे पहले आप, बड़ी गरीबी है, बहुत परेशानी है वहां पर, मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ के आ रहा हूँ, गल्फ कंट्री में नहीं रह पाऊंगा, और यहाँ पर अमीर बनते रहो भाई. ये तरीका है, मैं ये अपनाने लगा हूं भाई.
4: नहीं अच्छी बात है ना, पहले से उसको बोलने से पहले आपने उनको वार्निंग देनी होनी है कि भाई अब हाँ. उनके पास तो कुछ नहीं है यार.
3: जबकि ऐसा हाँ, भी करता हूँ तो, मैं जब वो मुझसे मांगे उससे पहले मैं मांग लेता हूँ कि दे दो मुझे लोन देना है. खुद ही स्मार्ट बन के ना.
4: लेकिन एक बात पॉइंट की है, देख पहले जब हम बच्चे थे ना हाँ. सुनते थे कि यार एक ऐसा टाइम आएगा लोग, यानी ये इंसान आपस में एक दूसरे को देख के समझ जाएंगे
3: हाँ.
4: कि अगला क्या मांग रहा है. वाकई यार वो चीज अभी आप जब बंदे के आंखों को जैसे मतलब आप उसके चेहरे को देखोगे ना आप लगेगा कि भाई ये कुछ मांगने आया
3: है. हाँ चेहरा और बात करने का जो तरीका होता है ना, जबान में एक अलग सी मिठास हो जाती है. जब नहीं मांगना होता है वो कहते हैं और भाई कैसे हो, और जब मांगना होता है कि भाई बहुत दिनों बाद आए भाई, बहुत याद आ रही थी यार, मैं देखना चाह रहा था तुम्हें यार. ये सब हो जाता है मिठास है,
4: बात पता चल जाता है कि मांग रहा है
3: हाँ.
4: तो आपकी गाड़ी ठीक हो गई मेरे भाई?
3: मेरी हाँ वो गाड़ी ठीक हो गई है. मैं खराब हो गया हूँ भाई, मेरा अलाइनमेंट खराब हो गया, मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट सही हो गया. मैं ठीक रहा हूँ
4: मेरे भाई. एक चीज की आदत पड़ जाती है ना यकीन, जब यहाँ पे बंदे के पास गाड़ी ना हो ना समझो हाथ पांव दोनों कट चुके हैं.
3: हाँ भाई बस यही आदत पड़ रही है, जो आदत नहीं चाहिए वो आदत हो रही है, जो चाहिए वो नहीं हो पा
4: रही. आपके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी गाड़ी को भी और आपको भी दोनों को सलामत रखे, कभी आपको गाड़ी ना यानी गाड़ी के बगैर निकलना ना पड़े.
3: हाँ भाई बात सही भी है, मैं तो वैसे भी 5 रियाल की पैरासिटामोल खा लूंगा. कार खराब होती है भाई वो 3,000 रुपए का अपना मसाला लेकर आती है, वो बहुत ज्यादा लेकर आती है काम.
4: इसमें तो कोई शक नहीं, एक्सपेंसिव है. तो सवाल बड़ा बढ़िया है. अब इसमें एक चीज का मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि आप वो जो इन्वेस्ट की बात कर रहे हो
3: हाँ.
4: यानी पैसा का या खुद रहने के लिए?
3: नहीं खुद रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे. आप तो गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, इवन आप किसी अपने मुल्क में रहते हो वहां पर आपके पास है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार अपार्टमेंट लेना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जमीन लेना चाहिए, क्या सही तरीका है?
4: ये बात तो बढ़िया है, अपार्टमेंट में सर जायद है ना, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं और कम कीमत पे भी मिल सकता है आपको. लेकिन उसके तो फिर अलग मसले मसायल है ना, अगर कुछ हो

0: के जो वगैरह होते हैं ना, तो अगला रोना धोना ये तो है उसमें।
1: मेरे अब्बा कह रहे थे बेटा अपार्टमेंट ले लोगे, रेंट पे दोगे, वो तोड़ फोड़ मचाएगा, देख नहीं पाओगे तुम आकर, समझे, जगह जगह
0: चीज भी नहीं टोक सकते ना किसी चीज के लिए। अगला खराब कर दिया
1: है। नीचे वाले ऊपर आ जा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे चले आ रहे हैं, अरे भाई साहब क्या कर रही है आप?
0: ये मस्ते मस्ते। बहरहाल बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करनी चाहिए, अपार्टमेंट आपको अच्छा खासा अपार्टमेंट का।
1: और मुझे लगता है कि अगर आप यू नो बाहर रहते हैं, आप जाकर बार बार देख नहीं सकते हैं अपने घर को, तो अपार्टमेंट ज्यादा सही है, क्योंकि लैंड पे क्या होता है कि आप पर कोई और कब्जा कर सकता है भाई, अगर आपके नाम पे कितना भी कोई और रख सकता है, तो आप अपार्टमेंट का क्या चढ़ा दिया फिर उसका रेंट आ रहा।
0: वो कब्जा भी इजी है भाई, अगला जाके बंदे खड़े कर देते हैं भाई, कौन किसी के लपड़े में पड़ता है, बोलता है जाने दो यार मेरा क्या। अपार्टमेंट का तो अपना एक सिस्टम होता है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता।
1: सही सही सही,
0: बहुत बढ़िया आपसे बात करके। ओके,
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और अब अगर पैसा आया तो अपार्टमेंट ही लूंगा मैं,
0: बाद में बता देता हूँ।
1: ओके भाई, ओके
0: ओके, अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ तो भाई तय हो गया है, अपार्टमेंट लेना है। बाकी आप और रोशनी डाल सकते हैं, जैसे कि अरमान मलिक ने कहा है कि फजील भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम, ज़मीन सबसे बेहतर है क्योंकि वो वक्त के साथ उसका रेट भी बढ़ जाता है। मैंने 5 साल पहले ज़मीन खरीदी और आज उसका रेट 5 गुना बढ़ गया है, माशाल्लाह मेरा भाई। अरमान भाई और बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है यार, मैं आपको देखना चाह रहा था, मतलब कहाँ हो यार, बड़ी याद आ रही थी आपकी यार, साथ में बैठ के कुछ खाना नहीं खाया, आओ मिलते हैं यार। अरमान कहाँ रहते हो? अरमान मिलने का अरमान है आपसे। अरमान भाई इस तरह की लाइनें आपके पास आ सकती हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव से थोड़ा खबरदार रहना। बाकी मुबीन साहब ने कहा है दिल दिया गल्ला मेरा मोस्ट फेवरेट। ओके फजील भाई, अभी कार का दर्द है या न्यू भी दे रहे? नहीं यार कोई दर्द नहीं, अब कार मसला नहीं है मेरे लिए। आप परचेज करने को बात कर रहे हैं, आई वुड से लैंड इज लैंड में ज़्यादा फ़ायदा है कि जब आप सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अपार्टमेंट या रेडी घर लेंगे तो नुकसान है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, क्योंकि बिल्डिंग के रेट पर डिप्रिसिएशन लगता है जबकि लैंड पे नहीं। आई वाह, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको जमीन की तरफ मोड़ देगा, तो ये एक्चुअली डिबेटेबल है ना, और डिबेटेबल में यहां पर तो यही होता है कि किसके पॉइंट्स मजबूत हैं और ज्यादा वैलिड रहेंगे। फिर उसके बाद लिखा है आगे यूसुफ भाई ने कि मैंने भी एक बना बनाया घर लिया वहां अपने सिटी में, फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं अपना घर बना रहा था तब वो सेल किया तो उतना अच्छा रेट नहीं मिला जितना कि लैंड में आता है। सभी कह रहे थे कि घर पुराना हो गया, डिप्रिसिएशन करके रेट कम ही आएगा। हाँ ये भी एक बड़ा मुद्दा है, और जब आप अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं तो उसकी जो मजबूती है ना वो धीरे धीरे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और अगर आप 20 साल बाद बेचेंगे तो सेम रेट मिलता है या फिर थोड़ा मोड़ा बढ़ा हुआ रेट, और वो भी जो बढ़ा हुआ रेट मिलता है वो इन्फ्लेशन में कैद हो जाता है, तो आपको एक्चुअली में कोई बढ़ा हुआ रेट नहीं मिलता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अगर आपने 20 लाख रुपए का कोई अपार्टमेंट खरीदा है, 10 साल बाद बेच रहे हैं 21 लाख में, तो 10 साल बाद 21 लाख की वो वैल्यू थोड़ी है जो 10 साल पहले 20 लाख की वैल्यू थी, उल्टा एक तरह से देखा जाए तो नुकसान ही है। कर लेकिन अपने अपने तरीके हैं, और उस 10 साल में आप रेंट के जरिए भी कुछ यू नो पैसे निकाल लेते हैं अगर देखा जाए तो। बाकी अपने थॉट हैं। अब फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कुछ ही देर में अजान का वक्त हो जाएगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लान ढूंढ रहे हैं, उनको अगर आप कुछ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ठीक है, लैंड या फिर अपार्टमेंट, लेकिन एक मजबूत पॉइंट के साथ आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107, 666-22107। 666-22107 पे आपको बताना है कि एक खत लिखना है, बताना है, खत लिखना है, वो ये कि अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको लैंड पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपार्टमेंट में, एक मजबूत रीजन के साथ ही आपको बताना है दोनों में से क्या?

अंजी रंजन की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे। हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल आप सभी का और 6:50 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। आगे बात कर लेते बड़ी इंपॉर्टेंट वाली, और वो ये है कि सवाल का जवाब तो कई लोगों ने दे दिया, लेकिन एक आखिर में जवाब ये बचता है कि उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आगे आने वाले वक्त में कुछ सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे, और एक सॉलिड पॉइंट के साथ। अच्छा, आज मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि सारे लोगों के जवाब बहुत ही मुख्तसर से हैं, उसमें उन्होंने अपने सारे राज जो है ना वो खोल दिए हैं। कि एक ने तो कुछ अलग ही बात करी। सबसे पहले दानिश भाई ने जो कहा है वो मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा है कि बिजनेस में पैसा डालो, मतलब उनका ये कि अगर पैसा है तुम्हारा तो लैंड वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, अपार्टमेंट के चक्कर में मत पड़ो, अगर कर सकते हो तो बिजनेस। भाई अगर बिजनेस करना होता तो सवाल कुछ और होता ना मेरे भाई, काहे बिजनेस करवा रहे हो? अगला आदमी रहता ही कहीं और है, वो कर ही नहीं सकता, या तो अपार्टमेंट या लैंड कर सकता है। दानिश भाई तुम्हारे अलग ही हैं, कहीं और ही सोच रहे हो यार। कोई बात नहीं, खैर हो सकता है आपने देर में ट्यून इन किया हो, है ना, तो आपको नहीं समझ में आया। फिर एक और मैसेज है मंसूर साहब का, सलाम लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं भाई आपके सवाल का जवाब है, अगर मंथली सैलरी टाइप में आपको चाहिए तो अपार्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। मंथली सैलरी में अगर चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाले भैया सुन लो, अगर महीने महीने का कुछ चाहिए तो सही तरीका है अपार्टमेंट। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि अगर आपको माँ बाप को भिजवाना है, आपके किसी और काम में है, आपका छोटा मोटा कोई लोन चल रहा है जो आपके अपने मुल्क में चल रहा है, तो आप पेमेंट करके वो धीरे धीरे उतार सकते हैं, या फिर उससे थोड़ी सहायता जो है रेंट से वो मिल सकती है। तो मुझे लगता है ये बात मंसूर साहब की बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा जासिम साहब ने भी, जासिम है या जसीम है, आई डोंट नो, डबल ई लगा तो आई गेस जसीम साहब है, कहते हैं कि लैंड की देखभाल करने वाला चाहिए, अपार्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। ओके, ये भी काफी लेजिट वैलिड पॉइंट है कि अगर आपका कोई दोस्त यार है जो जा जाकर देख सकता है, और वो दबंग भी होना चाहिए भाई, क्योंकि एक बार अगर किसी ने कब्जिया लिया ना तो फिर नहीं निकलवा पाओगे भाई। ऐसा कोई दोस्त जो कर कुछ ना पाए भले, लेकिन हट्टा कट्टा जरूर होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, अंगोछा अंगोछा डाल के चला गया, कभी सर पे अंगोछा डाल के चला गया है, और कुछ कलाइयों में पहना हुआ है उसने, ऐसा तगड़ा दिख रहा है और गुस्से वाला चेहरा है, भले उसकी आवाज़ जो है पतली हो कि हेलो भैया कैसे आप। ऐसी आवाज़ भी हो तो चलेगा, हट्टा कट्टा है अगर ऐसी आवाज़ हो तो चलेगा, लेकिन बीच बीच में उसको एक एक महीने के लिए भेजते रहो। मुझे ये लगता है, लेकिन जसीम भाई ने अपनी बात सही कही है कि यार देखने के लिए कोई चाहिए, आपके माँ बाप रहते हो या आपकी फैमिली मेंबर और रिलेटिव है जो देखता रहे। फिर एक और मैसेज है, नाम है इनका अहमद, अहमद साहब क्या कहते हैं, अहमद ने तो

सीधा लिखा है अपार्टमेंट ताकि लैंड वालों के भाव ना बढ़े। देखो कोई ये तरीका है बात करने का? ये क्या बात हुई कि अपार्टमेंट ले लो भाई, भाव नहीं बढ़ना चाहिए किसी का, इसलिए तुम अपार्टमेंट ले लो। हाँ, और फिर ये वही लोग हैं जो बाद में खुद जाके लैंड लेंगे भाई। तो पहले दूसरों को चूना लगवाओ और मालूम है फिर ये वही करेंगे, ये लैंड लेके फिर दो चार बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। अरे यार ये भी एक सही तरीका है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि जमीन खरीद के उसी पर फ्लैट बनवा दो और फिर वो फ्लैट बिकवा दो, है नहीं? क्या मस्त आइडिया भाई। और मैं यकीन से बता सकता हूँ ये ऐसे ही लोग हैं, अहमद भाई यही करेंगे। लैंड वालों के भाव नहीं बढ़ने चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे और कल शाम को 4 से 5 अमिता ही आपको मिलेंगे FM 107 पे और मैं शाम को 6 बजे। बाकी आप अपना डिसाइड करिए लैंड या फिर अपार्टमेंट। आज के सवाल में काफी कुछ जवाब आपको मिल ही गया होगा। अगला गाना फिलहाल आ रहा है प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाज में, गाने का नाम फिर न ऐसी रात आएगी। अभी तक फिलहाल फजील के साथ थे आप दिल से देसी।

शख्सियात की एक बड़ी तादाद भी उस मौके पर मौजूद होगी। इस साल नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी सतह पर वसी शिरकत देखने में आ रही है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब कतर और खित्ते में सेहत की देखभाल के शोबे में दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है। जबकि तीन रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ साइंसी और पेशावराना सरगर्मियाँ भी मुनक़िद होंगी, जिनमें सेमिनार्स, मुज़ाकरें, वर्कशॉप्स और खुसूसी साइंसी प्रोग्राम्स के साथ साथ शुरका को एक दूसरे से राबते, तजुर्बात के तबादले और पेशावराना तआवुन बढ़ाने के मौके भी फराहम किए जाएंगे। क्यूमेट के तीसरे एडिशन का इनेकाद उन कोशिशों का हिस्सा है जिनके ज़रिए कतर को सेहत की देखभाल के शोबे से मुतालिक खुसूसी नुमाइशों, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम तकरीबात की मेज़बानी के लिए एक नुमायाँ इलाकाई मरकज़ के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ कतरी और बैनुल अक़वामी मंडियों के दरमियान राब्तों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जो मुल्क के शोबे सेहत में जारी मुसलसल तरक्की से भी हम आहंग है। ये खबरें उर्दू रेडियो FM 107 से नशर की जा रही है। दुनिया भर में आज कुदरती आफात के खतरात में कमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस बात का एहसास मुसलसल बढ़ रहा है कि कुदरती आफात की तादाद और नौइयत में इजाफे के साथ है उनके मनफी असरात से निपटने के लिए मौसर तैयारी और मुश्तरका कोशिशें पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक बिलवास्ता नुकसानात और माहौलियाती निज़ाम पर मुरतब होने वाले असरात को भी शामिल किया जाए तो दुनिया भर में आफात से होने वाले मजमूई इक्तसादी नुकसान की मालियत इस वक्त सालाना 2.3 ट्रिलियन डॉलर से तजावज़ कर चुकी है। इंसानी सतह पर भी उसके असरात नहायत संगीन हैं और अक़वामे मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक 2016 से 2025 के दौरान आफात से हर साल औसतन तकरीबन 10 करोड़ अफराद मुतासर हुए। वजारत मुआसरात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हंगामी हालात और मुमकिन तातुल से निमटने की अपनी तैयारी जांचने के लिए मुतादद फर्जी मशकों और अमली आजमाइशों का इनेकाद किया है, जिनका मकसद हादसात और बहरानों से निमटने के मनसूबों की मौसरियत का जायज़ा लेने के साथ साथ मुतल्लिका टीमों की फौरी रद्दअमल और बाहमी रबते की सलाहियत को जाँचना था। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सलजूक बैरकदार ओगलों ने आज अपने पाकिस्तानी हम मनसब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। तुर्क जनरल स्टाफ की जानिब से जारी बयान के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान तुर्की और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के अलावा मुतअद्दिद इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। यमन में कानूनी हुकूमत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के शुमाल में 3 ड्रोन्स को फिजा में रोककर तबाह करने का ऐलान किया है। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने आज सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया कि रियाज के शुमाली इलाके में 3 ड्रोन्स का सुराग लगाने के बाद उन्हें कामयाबी से रोक कर तबाह कर दिया गया है। इधर फलस्तीनी काबीना ने गजा की पट्टी में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर खबरदार करते हुए कहा है कि जंग चौथे साल में दाखिल हो चुकी है, जबकि जंगबंदी के माहदे को 1 साल गुजरने के बावजूद इसराइली जंगी कार्रवाइयों में शहरियों की जानें मुसलसल ज़ाय हो रही हैं। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीनी वकील खालिद कजमार को साल 2026 का इंसानी हकूक़ एवार्ड देने का ऐलान किया है, जो उन्हें तकरीबन 4 दहाइयों से फ़लस्तीनी बच्चों के हकूक़ के दिफा और उनके तहफ़ के लिए जारी कोशिशों के एतराफ़ में दिया जा रहा है। अरब लीग की काउंसिल ने मुस्तकिल मंदूबीन की सतह पर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वह आलमी अमन सलामती के तहफ़ से मुतालिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और फ़लस्तीनी आवाम को बैनुल अक़वामी तहफ़ फराहम करने के लिए मौसर क़रारदाद मंजूर करने के साथ साथ अपने मुतालिका करारदादों पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएं। अरब लीग के काउंसिल ने कोलंबिया की जानिब से अल-कुद्स में अपना सफारत खाना खोलने के इरादे की भी शदीद मजम्मत करते हुए उसे बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और एक गैर कानूनी कदम करार दिया है, जो अरब ममालिक और कोलंबिया के दरमियान सियासी, सफारती और इकतसादी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। जबकि कोलंबिया से मुतालबा किया गया कि वो उस फैसले से पीछे हटे, उसके साथ

इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ

0: 107 through CDC.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करियर ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज प्रमोशन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, लर्निंग कर्व्स एंड री इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, हर तरक्की सिर्फ प्रमोशन लेटर से नहीं होती। हर कदम जो आपको बेहतर इंसान, बेहतर प्रोफेशनल और बेहतर फर्द बनाए, वो भी ग्रोथ ही होती है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों के दिल का बोझ हल्का कर देगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में अक्सर ये समझा जाता है कि अगर जॉब टाइटल चेंज नहीं हुआ तो शायद आपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन असल सच ये है कि इंसान की वैल्यू डेजिग्नेशन में नहीं, उसकी काबिलियत, उसके उसूल और उसके असर में होती है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आइडेंटिटी सिर्फ प्रोफेशन से नहीं होती। लोग अपना हकीकी असर किस तरह घर, कम्युनिटी और सोसाइटी पे डालते हैं, और सबसे अहम, ग्रोथ की कितनी सूरतें हैं जो प्रमोशन के बगैर भी मौजूद होती हैं। तो आइए साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम अपने आप को नए नजरिए से देखेंगे, जहां हम सीखेंगे कि काम सिर्फ रोटी रोजी नहीं बल्कि डेवलपमेंट का जरिया भी है, और जहां हम समझेंगे कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी का अपना मकाम। तो ख्वातीनों हजरात, सवाल ये उठता है, हम वाकई कौन है? क्या हम सिर्फ अपनी जॉब का टाइटल है? भाई वही इंजीनियर, ड्राइवर, प्रोड्यूसर, टीचर, ऑफिसर वगैरह वगैरह, या फिर हम उससे बढ़कर भी कुछ और हैं? हमारी अपनी पहचान अक्सर हमारे कार्ड पर लिखे लफ्जों से बंधी होती है, मगर असल पहचान वो होती है जो हम घर वालों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, मोहल्ले वालों के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं। एक सिंपल मिसाल देता हूं आपको। अगर कोई आदमी ऑफिस में मैनेजर नहीं है, क्या इसका मतलब वो लीडर नहीं बन सकता? अगर कोई खातून घर संभालती हैं, क्या इसका मतलब वो करियर नहीं कर रही? जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट फैमिली होता है, और इसके लिए मैनेजमेंट, पेशेंस, मल्टीटास्किंग सब कुछ चाहिए होता है। हमारी सोसाइटी ने एक गलत रिश्ता जोड़ दिया है, सेल्फ वर्थ इज इक्वल्स टू जॉब टाइटल, और यही फिक्र अक्सर लोगों के अंदर प्रेशर, डिप्रेशन और कंपैरिजन पैदा करती है दोस्तों। और मिसकंसेप्शन क्या है, लोग समझते हैं कि अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो आप रुक गए हैं, मगर असल बात ये है कि आपने नए लोगों को गाइड किया, ये भी लीडरशिप है। आपने अपने बिहेवियर से टीम का माहौल बेहतर किया, भाई हंसी मजाक से ही सही, अच्छी बातों से ही सही, ये भी कंट्रीब्यूशन है। आपने किसी को मुश्किल वक्त में मोटिवेट किया, उसको अच्छा मशवरा दिया, उसको उसकी परेशानी में से निकलने में मदद की, ये भी इम्पैक्ट है। टाइटल चेंज हो या ना हो, इंसान बदल सकता है, सोच ब्रॉडन हो सकती है और सोसाइटी पर असर पैदा हो सकता है। जिंदगी का असल मकसद सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं दोस्तों, वैल्यू क्रिएशन है। आप हर रोज किसी की मदद करके, किसी को मुस्कुराहट ही देकर, कोई अच्छे मशवरे देकर सोसाइटी को बेहतर बना रहे होते हैं। एक छोटा सा अमल कभी कभी बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है, और यही असल आइडेंटिटी है।

इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है।

0: प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: चलिए दोस्तों, प्रोग्राम के अब इस मरहले में बात करते हैं पर्पस और ग्रोथ की। तो ये जानिए दोस्तों, पर्पस एंड ग्रोथ दोनों ही आराम से हासिल करी जा सकती हैं, वो भी किसी प्रमोशन के बगैर। हमारे पास चार इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। पहला, डिस्कवरिंग स्किल्स एंड पैशन बियॉन्ड वर्क। हर इंसान के अंदर एक छुपा टैलेंट होता है। कोई अच्छी फोटोग्राफी करता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई रिपेयर का हुनर रखता है, कोई लोगों को मशवरा देने का सलीका रखता है। लेकिन हम इन चीजों को कभी करियर ग्रोथ नहीं कहते। भाई क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये जॉब टाइटल से लिंक नहीं होता? मगर यही टैलेंट एक दिन आपको रीइन्वेंशन का मौका देता है। सक्सेस सिर्फ सैलरी स्लिप या डेजिग्नेशन नहीं, सक्सेस होता है अपने आप को समझना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, नए टूल्स सीखना, नए लोगों से मिलना और एक्सपीरियंस बढ़ाना। अगर आज का आप कल के आप से बेहतर है, दोस्तों यकीन कीजिए आप ग्रो कर रहे हैं एंड दिस इज सक्सेस। तीसरा, कोपिंग विद प्रेशर एंड कंपैरिजन। ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। सोशल मीडिया पर देखने वाली प्रमोशन अनाउंसमेंट्स, कोलीग्स का सैलरी ब्रैगिंग, लोगों का कहना अभी तक प्रमोशन नहीं हुई, ये सब इंसान का हौसला गिरा देती हैं। लेकिन असल बात ये है कि जिंदगी में हर शख्स का अपना टाइम होता है। जिस वक्त आप सीख रहे होते हैं, आप ग्रो कर रहे होते हैं। एंड देन रेजिलियंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। रेजिलियंस वो क्वालिटी है जो इंसान को हर दफा उठकर

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो दोस्तों, आज के एपिसोड का सफर यहीं तक था, मगर जाने से पहले कुछ सोचने लायक सवाल आपके सामने रख देता हूँ। क्या मैं अपनी जिंदगी को प्रमोशन से डिफाइन कर रहा हूँ, और क्या मैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को वैल्यू देता हूँ, और क्या मैं अपने घर, सोसाइटी और अपने आसपास किसी चीज का बेहतर सबब बना हूँ कि नहीं। अपने आप को समझना, एक्सेप्ट करना और अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। हर शख्स का रास्ता, वक्त और मंजिल अलग होता है। आपकी वर्थ डेजिग्नेशन से नहीं होती, आपकी वर्थ इंसानियत, अखलाक

और कैरेक्टर से होती है जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह इंसान के लिए नई अपॉर्चुनिटीज रखता है ये हमेशा याद रखिए कभी प्रमोशन की सूरत में कभी स्किल की सूरत में कभी किसी के लिए रोशनी बनाकर तो दोस्तों एक बात क्लियर है हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है हमारी वर्ड हमारे जज्बात एक्शंस और रिलेशनशिप से डिफाइन होती है आपने अपने आप से ये सवाल पूछिए मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ या बना सकता हूँ आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं घर पर ऑफिस में सोसाइटी में सब के सब इम्पोर्टेंट है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए याद रखिए आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं आपकी इंसानियत से है इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से दिल।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी

एसेट्स क्या हैं। जब भी हम अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस की बात करते हैं वो एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है ना, एसेट्स। अगर आप किसी बिजनेस को ओन करते हैं, इन्वेस्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपसे पूछूं कि कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो अक्सर आप एसेट्स की तरफ ही इशारा करेंगे, है ना। यहाँ तो मैं आपका जवाब नहीं सुन रही, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो एसेट्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए समझाऊं, तो एसेट वो चीज है जो आप ओन करते हैं और जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। यानी अगर कोई चीज आपके पास है और वो आपको पैसा कमा कर दे सकती है, पैसा बचा सकती है या फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो वो हुआ आपका एसेट। चलिए और समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपके पास 50,000 कतरी रियाल कैश है। ऑफिस का फर्नीचर है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंपनी का व्हीकल है, इन्वेंट्री है, कस्टमर से मिलने वाले पेमेंट्स हैं। ये सब आपके एसेट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सब फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट क्रिएट है। इसीलिए अकाउंटिंग में एसेट्स को कंपनी की इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहा जाता है। अब एसेट्स की अहमियत बहुत है। सोचिए, अगर एक कंपनी के पास कोई कैश ना हो, कोई इन्वेंट्री ना हो, कोई मशीनरी ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, तो क्या वो बिजनेस चला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एसेट्स को बिजनेस का इंजन कहा जाता है। जितनी मजबूत और प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे, उतनी ही कंपनी ग्रो करने की पोजीशन में होगी। एसेट्स कंपनी की अर्निंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसेट्स के दो अहम टाइप्स भी हैं। यहाँ पर जो कॉमन टाइप है वो है करंट एसेट और दूसरा है फिक्स्ड एसेट। चलिए इस पे भी झटपट से बात कर लेती हूँ कि करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में यूज होते हैं। इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। जैसे कैश, सबसे कॉमन एसेट है कैश, बैंक अकाउंट में रखा पैसा या फिर कंपनी के पास अवेलेबल कैश, ठीक है। इन्वेंट्री, वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी बेचने के लिए रखती है। मिसाल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं तो मोबाइल फोन्स होंगे, लैपटॉप्स हैं, एक्सेसरीज हैं, सब इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री भी एसेट है क्योंकि सेल होकर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज है समझने के लिए, वो है लायबिलिटीज, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगी, वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगी। लायबिलिटीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अलग एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूँ। अब बात कर लेती हूँ पर्सनल लाइफ में एसेट्स की। एसेट्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के पास नहीं होते, हर इंसान के पास भी एसेट्स होते हैं। जैसे उनकी कैश सेविंग, हाउस है, लैंड है, गोल्ड है, कार है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब आपकी पर्सनल एसेट्स हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे, उतने ही आपकी फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग होगी। कामयाब लोग इनकम से ज्यादा एसेट्स पर फोकस करते हैं। इनकम आज आती है और कल खत्म हो जाती है, लेकिन एसेट्स वक्त के साथ वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले लाइफ में एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे। तो बस जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल बात जो मैं आपके हवाले करने वाली हूँ, वो ये कि एसेट्स आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की बुनियाद है।

0: बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ, असल दौलत वो नहीं जो आपने कमाई गवाई, बल्कि वो है जो आपने संभाल के रखी। जो लोग एसेट्स बनाना सीख लेते हैं वो वक्त के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी उसके करीब पहुंचेंगे। वेल, अभी के लिए इजाजत। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107। और हाँ, रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो एसेट्स बिल्ड करते हैं।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में आपसे बात करते हैं और आपको इत्तला करते हैं कि कैसे नए जमाने के नए स्कैम से आप बच सकते हैं। इवन हम सॉल्यूशन भी देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह का स्कैम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। वेल दोस्तों, एक स्कैम जो बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है वो है टिफिन का स्कैम। है टिफिन का स्कैम, ये किस तरह का स्कैम है? बात करते हैं कि अगर ये किस तरह का स्कैम है, तो ये स्कैम आम तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो नए नए किसी शहर या कंट्री में आते हैं। हो सकता है कि आने वाले एक महीने में लोग आ रहे हों, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हों, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई ऐसे बैचलर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, लो वेज वर्कर्स होंगे, कुछ नॉर्मल वर्कर्स होंगे। इन लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है, हम लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है। कई बैचलर्स के फैमिली यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर अच्छी सैलरी में भी आएँ, तो कई बार आप प्रेफर करते हैं कि खाना ना बनाना पड़े। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि भाई जो टिफ़िन सर्विस वाले, उनसे हम टिफ़िन ले लिया करें, उनको पेमेंट कर दिया करें। लेकिन ये एक स्कैम भी हो सकता है। तो फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली यहां पर नहीं है। वो सोशल मीडिया पे, मार्केट प्लेस में, व्हाट्सएप के ग्रुप पर और दूसरे क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर बहुत ही अट्रैक्टिव और फेक एड्स पोस्ट करते हैं। इन एड्स में वो बहुत ही साफ सुथरे रूम्स और टेस्टी टिफिन की फोटोज लगाते हैं, और उनका प्राइस मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा कम होता है, है ना। पर डे के हिसाब से भी जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा यार 7 या 8 रियाल या 4 रियाल में अगर मुझे एक टाइम का खाना मिल जा रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। और इसी तरह का लोभ जो है, इसी तरह से आपको ललचाया जाता है। जब कोई ज़रूरतमंद बैचलर या वर्कर इन फेक एड्स को देखता है तो वो फौरन उनसे कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उन्हें बहुत तमीज से बात करने का आइडिया होता है। वो तमीज से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, वो आपको अपने जाल में फंसाते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह के टिफिन या रूम के लिए लाइन में लग जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्म चाहिए तो भाई अभी आपको थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हमारे जहां पर ये किचन है, जहां पर ये खाना हम बनाते हैं, यहां पर लिमिटेड ही टिफिन बनाया जाता है, और अभी हमारे पास 2-4 टिफिन बनाने के ही ऑप्शंस पड़े हैं, यानी कि 2-4 टिफिन ही बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, या कई बार लोग कहते हैं कि आप फला जगह आइए और वहां पर आप पेमेंट कर दीजिए, हाफ पेमेंट एडवांस में कर दीजिए, आप लोकेशन भी देख लेंगे और आप खाना भी खा लीजिएगा। तो ऐसे में आप सोचते हैं यार खाना भी ऑफर कर रहा है तो इससे बेस्ट क्या है। तो आप जाते हैं, उनको हाफ पेमेंट करते हैं, वो कहीं पर आपको खाना बिठा के खिलाते हैं और कहते हैं ये है टिफिन। तो आप ऐसे में भरोसा कर लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं। लेकिन खेल यहां शुरू होता है जब वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, चाहे एडवांस, चाहे आपको खाना खिलाने के बाद किसी लोकेशन पे। आप फिर जब उस लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि आपको 2-4 दिन तक कोई आइडिया ही नहीं होता कि खाना आ नहीं रहा, आपने पेमेंट कर दिया है, और फिर आपको एहसास होता है कि जो आपने एडवांस में पेमेंट किया है वो एक्चुअली स्कैम है, क्योंकि ना ही वो बंदा कॉल उठाता है, ना ही वो आपके मैसेज का जवाब देता है, और जो आपने पैसा सेंड किया है उसको आप कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे में सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स बंद हो जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है जो पोस्ट वगैरह अगर की जाती हैं। तो इस फ्रॉड का शिकार होने के बाद उन बैचलर्स और वर्कर्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना होता है अगर रूम्स की तलाश कर रहे हो, और अगर खाने की बात है तो खाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि पेमेंट आप एडवांस कर देते हैं। महीनों की मेहनत से कमाई हुई हार्ड अर्न जो मनी है, जो कैश है, वो भी एक झटके में चला जाता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और अनजान शहर में उनके पास दोबारा खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में कुछ 3 तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले, जो बहुत ही चीप में आपको टिफिन दे रहा है, इन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। उल्टा आप एडवांस पेमेंट ना करके अपने ही घर पे, जहां पर आप रह रहे हैं,

वहां से आप टिफिन मंगवाएं जो टिफिन आपको देने की बात कर रहा है सस्ते पैसे में, सस्ते अमाउंट में, उनसे टिफिन मंगवाएं 8-10 दिन, उसके बाद फिर पेमेंट दें। एडवांस में टिफिन आता है, पेमेंट एडवांस में नहीं होती है, तो पहले एक महीना खा ले उसके बाद पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये तरीका आमतौर पे हर जगह फॉलो होता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपसे एडवांस में पेमेंट मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना है क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। तीसरा तरीका है, अगर आपको एडवांस पेमेंट करना भी है तो किसी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू करें या फिर किसी के ऐसे अकाउंट में करें जिससे आप ट्रैक भी कर सके कि खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा गायब हो जाए तो आप उस शख्स को अकाउंट के थ्रू ट्रैक कर सके। तो ये कुछ आम तरीके हैं जिनसे आप फ्रॉड होने से या आपके साथ स्कैम होने से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि वेट या हेल्दी वेट क्या होता है। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ वेट लॉस टिप्स नज़र आती हैं, बहुत से तरीके जो हैं वो शेयर किए जा रहे होते हैं। कोई कहता है कि आप ब्रेकफास्ट छोड़ दें, कोई कह रहा होता है कि सिर्फ एक फूड जो है, एक तरह का खाना जो है वो आप खाएं, मगर क्या इस तरह करने से जो वज़न है वो कम हो जाता है। और इसी तरह से कोई ये कहता है कि बहुत कम कैलोरीज जो हैं वो आपको लेनी चाहिए। कोई दिन में बहुत ज़्यादा वेट लॉस का दावा भी करता हुआ नज़र आता है। लेकिन हेल्थ का मकसद सिर्फ स्केल पर एक नंबर कम करना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं। अब ये कि हेल्दी वेट का मतलब जो है वो हमें पता होना चाहिए। हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है, उम्र, कद, जिंस, सब उसके लिहाज से या लाइफस्टाइल से, जेनेटिक्स हैं, मसल मास है और जो हेल्थ कंडीशंस हैं, सब हमारे वज़न पर, हमारे वेट पर असरअंदाज होती हैं। इसलिए सिर्फ वज़न देखकर किसी शख्स की मुकम्मल सेहत का फैसला नहीं किया जा सकता। या आप ये देखें कि किसी शख्स का वज़न ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, हेल्दी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब जहाँ क्रैश डाइट का जो है वो मशवरा दिया जा रहा होता है, लेकिन क्रैश डाइट जो है वो बहुत बड़े मसाइल भी पैदा कर सकती है। बहुत सख्त डाइटिंग से बाज़ अफराद को शुरू में वेट कम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन ऐसी डाइट्स को लंबे अरसे तक मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आप बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो रिक्वायरमेंट है उससे भी बहुत कम जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो हमारे सिस्टम हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है उससे हमारी एनर्जी कम हो रही होती है, आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और बाज़ अफराद में बाज़ औकात ओवर ईटिंग भी हो सकती है। इसलिए जो सस्टेनेबल हैबिट्स हैं, आदत हैं, वो ज़्यादा अहम हैं। इसके अलावा ये कि अपनी प्लेट देखिए, अपनी प्लेट को बेहतर और ख़ूबसूरत भी बनाइए। खाने की प्लेट में सब्जियां शामिल कीजिए, मुनासिब मकदार में प्रोटीन लीजिए और इसके अलावा होल ग्रेन या जो न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। पोर्शन साइज़ बहुत अहम है कि पोर्शन साइज़ पर हमें तवज्जो देनी है। आपको अपनी पसंद की हर चीज़ हमेशा के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, असल चीज़ बैलेंस है और मॉडरेशन है। यानी बहुत ज़्यादा आपने कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, मगर यह है कि बैलेंस भी रखना है उसमें। इसी तरह जो ड्रिंक्स हैं वो भी बहुत अहम है और उन्हें भूलना भी नहीं है। पानी तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, मगर बाज़ अफराद खाने से बहुत मोहतात रहते हैं लेकिन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज और फिर शुगर ले रहे होते हैं। इसलिए शुगरी ड्रिंक के इस्तेमाल को कम करना एक प्रैक्टिकल तब्दीली हो सकती है। इसमें मूवमेंट बहुत अहम है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अहम है और जो वेट हम कंट्रोल कर रहे होते हैं या आप वेट मैनेजमेंट की तरफ होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डाइट है उसी का मसला नहीं होता, बल्कि ये हमारी जो मजमू सेहत है उसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और रूटीन के मुताबिक या जितनी

0: ये अपनी कैपेसिटी है, अपनी जितनी मूवमेंट कर सकते हैं, रोज़ाना जो है वॉक कर सकते हैं, वो आप शामिल रखिए अपनी रूटीन में। इसी तरह से जो नींद है वो भी बहुत अहम है, और जो रूटीन की नींद है अगर मुसलसल ख़राब है तो फिर हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और उससे फिर आपका वेट जो है वो भी मैनेज नहीं हो पाता। कभी हम भूख की वजह से, बल्कि जो है बोर अगर हो रहे होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या बहुत उदास होते हैं तो खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या हमें वाकई ही भूख लगी है या किसी इमोशन को मैनेज करने के लिए हम खा रहे हैं। अगर इमोशनल ईटिंग बार बार हो रही है तो अपने ट्रिगर्स को समझना और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सपोर्ट लेना बेहद मुफीद साबित हो सकता है। इसलिए जो वेट लॉस है उसमें आप ये ना सोचिए कि सिर्फ कितने किलोज जो हैं वो हमें कम करने हैं, मगर उसके साथ साथ ये भी सोचिए कि मैं ज़्यादा एक्टिव कैसे हो सकता हूँ, या अपनी जो स्टेमिना है उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी डाइट को, जो रोज़मर्रा की डाइट है उसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, अपनी नींद को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर किसी शख्स को जो वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत हो तो फिर डॉक्टर या फिर क्वालिफाइड डाइटिशियन से आप ज़रूर एडवाइस लीजिए, खसूसन अगर हार्मोनल इश्यूज हैं या हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई भी दूसरी मेडिकल कंडीशन है। तो लिसनर्स, आपको भूखा रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हर एक को पसंदीदा अपनी खुराक भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दिन परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर ये कि अपनी हैबिट्स जो हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करनी है ताकि वो लॉन्ग टर्म रह सकें। इसलिए वजन के नंबर से ज्यादा अपनी मजमूई सेहत पर जरूर तवज्जो दीजिए। योर हेल्थ मैटर्स।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

सोचिए एक बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा है, बॉलर रन अप लेता है और फिर एक ऐसा कवर ड्राइव निकलता है कि बॉल बाउंड्री की तरफ बिजली की तरह चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये क्लास थी, स्टाइल था और पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे सुपरस्टार का अंदाज था जिसे दुनिया माजिद खान के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इसी लेजेंड की जिन्होंने अपनी स्टाइलिश बैटिंग, पावरफुल स्ट्रोक प्ले और ऑलराउंड क्रिकेटिंग एबिलिटी से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास मकाम बनाया। माजिद खान नाम तो सुना होगा आपने। माजिद खान की पैदाइश 28 सितंबर 1946 को लुधियाना यानी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके वालिद जहांगीर खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे, जबकि उनके कजिन इमरान खान आगे चलकर पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप विनिंग स्किपर बने। लेकिन माजिद खान की पहचान सिर्फ एक मशहूर क्रिकेटिंग फैमिली का हिस्सा होना नहीं थी। उन्होंने अपने कारकर्दगी से अपना नाम जो था वो उन्होंने बनाया। माजिद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ बल्लेबाजी तक लिमिटेड नहीं था। शुरुआती दौर में वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी असली पहचान एक स्टाइलिश टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर बनी। माजिद की बैटिंग में एक खास एलिगेंस थी। उनका स्टांस पुरसुकून होता, फुटवर्क बैलेंस्ड होता और जब वो फ्रंट फुट पर आकर कवर या एक्स्ट्रा कवर के थ्रू शॉट खेलते तो क्रिकेट देखने वालों के लिए वो एक खूबसूरत मंजर होता। उनका सबसे यादगार शॉट था कवर ड्राइव। ऐसा लगता था जैसे गेंद को जोर से नहीं बल्कि टाइमिंग और प्लेसमेंट से बाउंड्री तक भेजा जा रहा हो। माजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 63 टेस्ट मैचेस खेले और उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था 167। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा। वो पाकिस्तान के उन अर्ली क्रिकेटर्स में शामिल थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट के डेवलपिंग एरा को एक्सपीरियंस किया। अच्छा, ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट सेंचुरियन यानी पहला सेंचुरी स्कोर करने का जो रिकॉर्ड है वो माजिद खान के पास है। He became the first batsman ever for Pakistan to score a ODI century. तो तारीख की बात है और माजिद खान उस जमाने में जब ODI क्रिकेट एक नया गेम था और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा टक्कर देने का था, तो ODI क्रिकेट के जो फॉर्मेटिव ईयर्स में कई ऐसे बल्लेबाजों ने उस फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग या यू नो आई वुड से कि बहुत एंटरटेनिंग बनाया था, उनमें से माजिद खान वॉज वन ऑफ दोज लीडिंग बैट्समैन। और फिर आता है उनके करियर का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, कप्तानी। माजिद खान ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की लीडरशिप भी की। कप्तान के तौर पर उनका अप्रोच जनरली काम और कंपोस्ट माना जाता था। वो क्रिकेट को सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं बल्कि एक टीम गेम के तौर पर देखते थे।

1970 और 1980 के पाकिस्तान क्रिकेट के दौर में माजिद खान एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी पर्सनालिटी भी उनके गेम की तरह क्लासी थी। उनके क्रिकेटिंग करियर में अप्स एंड डाउन्स भी आए, लेकिन उनकी बैटिंग का स्टाइल और उनका टेम्परमेंट फैंस की यादों में हमेशा जिंदा रहा। 1983 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी माजिद खान का क्रिकेट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा किया। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से याद रखे जाते हैं और कुछ अपने स्टाइल की वजह से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माजिद खान वॉज नेवर अ सक्सेसफुल क्रिकेटर और अ बैट्समैन। ही वॉज इमेंसली पॉपुलर एंड ही वॉज इमेंसली सक्सेसफुल। स्टैटिस्टिक्स से हर चीज आप यू नो यू कैनॉट मेजर अ प्लेयर्स कैलिबर। जी हाँ, डॉन ब्रैडमैन के स्टैटिस्टिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सुनील मनोहर गावस्कर या विराट कोहली या बाबर आजम के। माजिद खान भी उसी लेवल के थे जिनको इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में वहां के उस टाइम के जर्नलिस्ट कहते थे कि इज अ मैजेस्टिक खान। मैजेस्टिक खान से मुराद यह है कि माजिद खान के जो यू नो जो पर्सनैलिटी में एक क्वालिटी ये थी कि अगर कोई निक हो, यानी बॉलर अगर गेंद डालने के बाद उनके बल्ले से लगकर कहीं विकेट कीपर या स्लिप फील्डर के पास अगर वो कैच के तौर पर या कुछ भी हो पैड पे लगने के बाद अगर कोई अपील करता तो माजिद खान बिना किसी देखे, बिना रुके, बिना किसी झिझक के वो क्रीज से सीधा पेविलियन के रास्ता अपना लेता था। दैट वॉज माजिद खान, बिकॉज उनको लगता था कि अगर बॉलर ने अपील किया है तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है। तो ये नेवर प्रोटेस्टेड, ये ही नेवर यू नो लुक्ड इनटू द अंपायर्स आईज कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं आउट तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलिए आप। उस जमाने में तो डीआरएस वीआरएस तो कुछ भी नहीं था, उस जमाने में कुछ भी नहीं था कि आप नो थर्ड अंपायर या यू नो जो कहते हैं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बताते हैं कि निक हुआ है या नहीं हुआ है, आवाज़ आई है नहीं आई है, तो ये सब चीज़ें उस जमाने में तो आ नहीं। तो उस टाइम माजिद खान वॉज सो पॉपुलर, इनके अपने ही एक जो कहते हैं ना कि आउट से कि उनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस जो बात थी कि चलो भाई लग गया है तो लग गया, मीन्स यू नो आई माइट बी आउट। तो ये जो बड़प्पन वाली बात थी वो माजिद खान के अंदर में सबने देखा और इसी वजह से उन्हें कहा भी जाता है कि ही वॉज मैजेस्टिक खान। उनके पास रन्स थे, विकेट्स थे, कप्तानी थी, लेकिन सबसे बढ़कर उनके पास एक ऐसा बैटिंग स्टाइल था जो देखने वालों को क्रिकेट से मोहब्बत करने पर मजबूर करता था। माजिद खान पाकिस्तान क्रिकेट का एक स्टाइलिश बैट्समैन, यूजफुल बॉलर, फॉर्मर कप्तान और एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन का हिस्सा रहा। उम्मीद है आपको आज का हमारा यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महबश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। रमजान कतर की जिंदगी में रूहानियत, शुक्र, रहमत और भाईचारे का महीना है। इस महीने में खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं रहता, बल्कि लोगों को जोड़ने, मोहब्बत बांटने और मेहमान नवाजी का जरिया होता है। रोजा इफ्तार के वक्त खोला जाता है। दस्तरखान पर खजूर और पानी रखने की रिवायत अहमियत रखती है। इसके बाद घर के अफराद नमाज अदा करते हैं और फिर मिलकर खाना खाते हैं। कदर में कई खानदान अफराद को एक मुश्तरका लम्हा समझते हैं, जहां बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान एक ही दस्तरखान के गिर्द जमा होते हैं। रिवायती कतरी अफ्तार में हरीज, तुरेद और मजबूस जैसे खाने हो सकते हैं। हरीज गंदम और गोश्त तैयार की जाने वाली नरम और ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश है, जबकि सुरेद रोटी के साथ तैयार होने वाला रसीला खाना है। मजबूस खुशबूदार चावल, गोश्त, मुर्गी या मछली की डिश है। इन तमाम खानों में मसालों की खुशबू और धीमी आंच पर पकाने का अंदाज नुमाया होता है। रमजान की खूबसूरत रिवायत अफतारी का तबादला है। पड़ोसी एक दूसरे के घर खाना भेजते हैं और खानदान भी रिश्तेदारों के साथ अफतार शेयर करते हैं। इस अमल से सिर्फ पकवान नहीं बांटे जाते, बल्कि दुआ, अपनायत और खुशी भी एक दूसरे तक पहुंचती है। किसी घर से आने वाली छोटी सी प्लेट भी दूसरे घर के लिए इज्जत और मोहब्बत की निशानी बन सकती है। पुराने कतरी मोहल्लों की जिंदगी में करीबी पड़ोसी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रमजान में घरों के दरवाजे मेहमानों और जरूरतमंदों के लिए खुल जाते। कभी कोई मुसाफिर मस्जिद या इलाके में हो तो उसके साथ खाना शेयर करना खुशी और सवाब का काम समझा जाता है। इस रवैये ने मोहल्ले के लोगों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम किए। कतर की वजारत सकाफत के मुताबिक खानदान अफराद के खाने एक दूसरे को भेजते हैं और अक्सर एक बुजुर्ग खानदानी शख्स या इलाकाई रहनुमा के घर मिलकर खाना खाया जाता है। खवातीन भी अपनी अलग महफिलों में खाना शेयर करती हैं और इस तरह रमजान का दस्तरखान खानदान और मोहल्ले दोनों को करीब ले आता है। रमजान में कहवा और गुफ्तगू की भी अपनी जगह होती है। अफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद लोग कॉफी पीते हैं, सवाल यानी पुरानी यादें और रोजमर्रा की बात।

0: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ. रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026, जहां पर आपको कतर में हो रहे बेहतरीन इवेंट्स और वीकेंड के अट्रैक्शन, मेजर अनाउंसमेंट्स और साथ साथ नई ओपनिंग्स के बाद हम कॉन्सर्ट, फूड फेस्टिवल, मॉल एक्टिवेशंस के बारे में बात करते हैं, एग्जीबिशन के बारे में बात करते हैं और क्या एक्सपीरियंस आप कतर में ले सकते हैं. उन सारी बातों पर यहाँ कतर 2026 में बात होती है. तो सबसे पहले कतर में मेजर अनाउंसमेंट क्या हुई है वो बात कर लेते हैं. कतर ने अभी, मैं ये नहीं बताऊंगी क्या क्या अनाउंस हुआ है, क्योंकि आपको जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते रहेंगे, आगे आते रहेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे. लेकिन कतर टूरिज्म ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने सीजनल इवेंट्स के बारे में और अथॉरिटीज ने अनाउंस किया है कि 100 कल्चरल, म्यूजिक और स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है वो आ रहे हैं कतर में और कतर के रीजनल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे. साथ ही ये बता दें कि कतर ने एक और वादा किया है, कतर टूरिज्म ने एक और वादा किया है कि अब वो छोटे मोटे इवेंट्स नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल के हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल फोरम्स और मल्टी मिलियन डॉलर के टूर्नामेंट्स को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है. तो आपने 2022 का जो माहौल देखा था वो एक बार फिर से हर साल आप देखेंगे. ये सारे बड़े इवेंट्स और बिजनेस मीटिंग्स, यानी कि ये जो मौसम आ रहा है ना, इस दौरान होगा और अलग अलग जगहों पर ये होगा. साथ ही कतर के सिर्फ दोहा शहर में नहीं और भी कई जगहों पर भी होगा, जैसे कि अलखोर की तरफ भी थोड़ा माहौल बनाया जाएगा, वखरा की तरफ भी माहौल बनेगा. अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे ये माहौल होने वाला है. उसके अलावा अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कतर में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं. कतर वर्ल्ड कप 10, यानी कि कतर वर्ल्ड कप 10 बॉल 2026 जो है, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है. और अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है. ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिलियर्ड्स पूल टूर्नामेंट है जो 19 अक्टूबर को एजदान पैलेस होटल में शुरू होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट ऐसे दुनिया के सबसे बेस्ट और टॉप क्लास खिलाड़ी जो है वहां पर आएंगे और दोहा में एक साथ जमा होंगे और एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे. इस मेगा इवेंट के अलावा लोगों के बीच लेट अक्टूबर में होने वाले दूसरे बड़े इवेंट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन बनी हुई है. उन्हीं बड़े इवेंट्स में एक नाम आता है जिसका नाम है कतर इंटरनेशनल बाजा. ये एक इवेंट है जो कि एक बहुत ही थ्रिलिंग और मशहूर ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट रैली रेस है. तो जिनको डेजर्ट से ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, उससे मोहब्बत है, तो वो इनके लिए है. लेकिन इसके बारे में हम तफसील से थोड़ा सा और ये हफ्ता गुजर जाए उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके अलावा एक और एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं और एंजॉय करने के लिए 16-17 अक्टूबर का जो वीकेंड है ना वो बड़ा लाजवाब होने वाला है. फवारित ब्रिक इवेंट, यहाँ पर जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात भी की थी, फवारित काइट बीच, ये एक ऐसी लोकेशन है जो आपको कुछ अलग और यूनिक एक्सपीरियंस देगी. अगर अभी तक आपने दुनिया भर के फैमिली की एक्टिविटीज, इवेंट्स, शहर में होने वाले इवेंट्स के बारे में देख लिया, खेल देख लिया है ना, कॉन्सर्ट देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन अगर कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना है तो दिस प्लेस इज फॉर

और यू फवेरित काइट बीच, जहां पर आप उड़ती हुई काइट देखेंगे, वो वाली पतंग नहीं जो मंजे और डोरों से उड़ रही है, ये जो काइट बीच है यहाँ पर आप हवाओं से चलने वाले काइट और उस काइट से जुड़े हुए इंसानों को देखेंगे जो सर्फिंग कर रहे होंगे, और बहुत ही ज्यादा यू नो खूबसूरत लगता है, लाजवाब होता है। इसके अलावा जो लोग थोड़ा सुकून और कल्चरल चीजें पसंद करते हैं वो कटारा कल्चरल विलेज की तरफ जा सकते हैं, वहां पर लोग आउटडोर धाव क्रूजेस का मजा ले रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, दोहा कॉर्निश पर भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, और सीनिक ब्यूटी जो शाम को आती है करीब 5 बजे के बाद वो लाजवाब है। वेल, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा यानी कि अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत आएगा तो जो शाम है वो थोड़ी जल्दी होगी, इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना भी पड़ेगा, 4:30-5 बजे पहुंच जाए धाव क्रूज पे बैठे और फिर निकल जाए समंदर के बीच, और वो जो सुनहरी धूप है जब समंदर पे पड़ती है तो मोतियों से चमकता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है, तो इस जगह पे भी आप जा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम जरा नई ओपनिंग्स के बारे में, कुछ नया हो रहा है तो बताओ फजील भाई। तो भाई न्यू ओपनिंग्स की बात करें तो वर्टिगो दोहा की रीओपनिंग एंट्री होटल में मौजूद मशहूर लग्जरी हॉटस्पॉट वर्टिगो दोहा ने ऑफिशियली अपने जो डोर्स हैं वो लोगों के लिए खोल दिए कि भैया आइए मजे कीजिए। इस वेन्यू को एक नए अलग ही अंदाज में पेश किया गया है जिसमें कम्प्लीटली रीडिजाइंड और वाइब्रेंट कल्नरी मेन्यू जो है वो शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसका इंटीरियर स्टाइल अब पहले से कहीं ज्यादा एलिवेटेड और अपस्केल भी बनाया गया ताकि गेस्ट को एक प्रीमियम लग्जरी एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही सीजनल बीच क्लब्स और पॉपअप लाउंजेस के बारे में बात करें तो वर्टिगो की रीओपनिंग के साथ साथ कतर के 2 सबसे पॉश एरियाज यानी कि द पर्ल और लुसेल बुलेवार्ड में कई सारे सीजनल बीच क्लब्स और आउटडोर पॉपअप लाउंज लॉन्च किए जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो पतझड़ का मौसम है इसमें भी स्वागत के लिए आपको बुलाया जा रहा है। ये सारे आउटडोर सेटअप और बीच क्लब्स खास तौर पर इसलिए शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोग आने वाले खूबसूरत ठंडे हल्के मौसम को, हल्के दिनों को पूरे मजे के साथ एंजॉय कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ कतर 2026 में अब वक्त है हम बात करें कॉन्सर्ट के बारे में, जिनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, फिर हम बात करें फूड फेस्टिवल के बारे में, एंड देन मॉल में क्या एक्टिवेशंस चल रही हैं। सबसे पहले कॉन्सर्ट के बारे में जरा बात करते हैं। आइकॉनिक इजिप्शियन सुपरस्टार है जिनका नाम है अंगहम, ये एक बहुत ही बड़े जबरदस्त म्यूजिशियन है, लाइव परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं यहाँ कतर में। थर्सडे का दिन है 15 अक्टूबर, नोट कर लीजिए, लोकेशन है कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर बोले तो QNCC में। उनका ये हाईली एंटिसिपेटेड शो जो पूरे यू नो मेरे ख्याल से पिछले महीने से इंतजार कर रहे हैं लोग, और एंटरटेनमेंट इस वीकेंड पूरा रहेगा जहां लोग उनके मशहूर मिडिल ईस्टर्न वोकल्स हिट्स को एंजॉय करेंगे और एक बेहतरीन कल्चरल इवनिंग का मजा भी लेंगे। तो खास तौर पे ये उनके लिए जिनको यू नो मिडिल ईस्ट के म्यूजिक से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी एग्जीबिशन जो कि फूड फेस्टिवल है दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी कतर 2026 एग्जीबिशन 14 अक्टूबर को रैप अप हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो अब आपको बहुत तेजी में इसकी तरफ रुख करना पड़ेगा। इस इवेंट में बहुत बड़े लेवल पर कल्नरी शोकेसेस और लाइव शेफ कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं। इसके साथ ही लोकल होटल्स और फूड हब्स ने स्पेशल ग्लोबल फूड वीक्स भी शुरू किया है जिसमें आफ्टरनून टीज और ओपन एयर बीच फ्रंट लाइव कुकिंग स्टेशंस लोगों के लिए अट्रैक्शन बने रहेंगे। तो फूड फेस्टिवल यानी कि दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में जरूर जाइएगा, हॉस्पिटैलिटी कतर 2026 के एग्जीबिशन का लुत्फ जरूर उठाइएगा। इसी के साथ मॉल में क्या कुछ नया है, मॉल ऑफ कतर में इस वक्त काफ्स शॉप विद स्टाइल कैंपेन चला है, यहां ओएसएस

प्राइज जीतने का मौका भी है। अलावा पूरे दो अलग अलग मौसम इंटरैक्टिव रेस सिलेटर्स लगाए जा रहे हैं ताकि इस महीने के एंड में होने वाले बड़े ऑटोमेटिव ड्रिफ्ट शोकेसेस के लिए अभी से लोगों में मोमेंटम और एक्साइटमेंट का माहौल बनाया जा सके। तो ये सारी जो है ना माहौल बनाने के लिए भी हो रहा है, क्योंकि यार अक्टूबर नवंबर ये जो महीने आ रहे हैं, इस महीने का इंतजार बाबू भैया 8-8 7-7 महीने लोग करते हैं। गर्मियों के बाद लोगों को मौका लगता है कि अब तो निकलेंगे और छत्ता ही जो है ना पूरे शहर में मतलब भिन्ना जाएंगे, घूम लेंगे पूरे शहर को, एक एक कोने को जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये मौका है आपका भी, जब इस तरह के इवेंट्स आ रहे हो तो शहर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार। अब साथ ही एग्जीबिशन के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 में कई बार हमने एग्जीबिशन के बारे में बात करा है अलग अलग यू नो हफ्ते, और एग्जीबिशन के मामले में देखा जाए तो कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। एग्जीबिशन क्या, इवेंट के बारे में तो लोग बहुत ज्यादा एड्स वगैरह चलवा देते हैं। एग्जीबिशन एक ऐसी चीज है जहां पर आप कल्चर और ट्रेडिशन बहुत ही खूबसूरती से सीखते हैं और समझते हैं। कुछ देर पहले हमने बात करी ना हॉस्पिटैलिटी कतर 2026 के बारे में, और सबसे पहले हॉस्पिटल कतर का एडिशन हो रहा है 13-14 तक BCC में, इसको जरूर एंजॉय करिए। 13-14 कितने ही दिन बाकी है ना, तो इसका लुत्फ उठाइए। ये इवेंट ग्लोबल और बेवरेजेस को एक साथ कनेक्ट करता है। इसके तुरंत बाद जो मैं बात करने वाला हूँ अब वो है प्रेस्टीजियस इवेंट, यानी कि मिलिपोल कतर 2026 शुरू होगा। तो एक तो हॉस्पिटैलिटी कतर 2026 का लुत्फ उठाइए, उसके बाद मिलिपोल कतर 2026। ये एक होमलैंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन 20 अक्टूबर को ओपन होगा, जहां कटिंग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और एडवांस डिफेंस सिस्टम को शोकेस किया जाए। तो सिक्योरिटी के बारे में है, अगर आप डिफेंस सिस्टम के शोबे में हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो यू नो ऑफिसेस के डिफेंस या ऑफिस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आपको इस तरफ रुख करना चाहिए DECC की तरफ। 20 अक्टूबर नोट कर लें। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो आपके लिए कुछ अलग है, फुटबॉल और पेडल टूर्नामेंट आपके लिए आ रहा है। क्या है ये, इस पर जरा नजर डालो। फुटबॉल लवर्स के लिए कतर स्टार्स लीग में एक बहुत बड़ा और हाईली एंटिसिपेटेड इंतजार किए जाने वाले फुटबॉल का जो शोडाउन है वो होने जा रहा है। इसमें दो बड़े राइवल्स अलसद और अल-दुहैल स्पोर्ट्स क्लब, कौन नहीं जानता इनकी राइवलरी। इनकी राइवलरी पूरे गल्फ में फेमस है, एक दूसरे के आमने सामने होंगे ये दो टीमें, ये दो स्पोर्ट्स क्लब। ये ब्लॉकबस्टर मैच जो है फ्राइडे 16 अक्टूबर को जासिम बिन हमद स्टेडियम में, अगर आप घर से बिन हमद स्टेडियम की तरफ है तो आपको पता है डीले आपको फेस करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर यू नो डील किया जाता है ट्रैफिक से और रूट से वो बड़ा लाजवाब है, आपको ज्यादा ट्रैफिक झेलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए FIP प्रोमिसेस पेडल टूर्नामेंट भी शेड्यूल किया गया है, जो 15-18 अक्टूबर तक एस्पायर अकेडमी में चलेगा। तो दोस्तों कतर 2026 में हमने कॉन्सर्ट एग्जीबिशन है ना, मेजर जो अनाउंसमेंट है, न्यू ओपनिंग्स है, इन सब चीजों के बारे में बात कर लिया। लेकिन अब वक्त है कतर के 2030 के विजन के बारे में बात करने का। अब कतर का जो 2030 का विजन है उसमें स्मार्ट सिटी के अपडेट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, एडुकेशन के इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में। 30 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने 6th रीसाइक्लिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को होस्ट करने के लिए सारे लॉजिस्टिकल प्लान फाइल कर लिए हैं। इसके साथ ही अर्थना ऑर्गेनाइजेशन ने 11th एडिशन ऑफ कतर सस्टेनेबिलिटी वीक 2026 के लिए इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। ये बिग इवेंट्स लेट अक्टूबर में शेड्यूल किए गए हैं, जिसका मेन मकसद कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाना और देश के नेशनल एनवायरमेंटल गोल्स को आगे ले जाना है। इसी के साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट्स है, विच इज अलाइंड टू 2030 विजन, जो कि नेशनल विजन है कतर का। लेट सितंबर में एक नई रिसर्च से पता चला है कि कतर की स्मार्ट सिटीज मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ये 2034 तक 9.68 बिलियन की हो जाएगी, जो कि 14.14 CAGR की शानदार ग्रोथ रेट को दिखाता है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट अपडेट्स में गीकेंड 2026 को हाईलाइट किया गया है। ये इवेंट अक्टूबर 1 से लेकर 3 तारीख तक चला, जो लुसेल बुलेवार्ड के गीक डोम बिल्डिंग में टेक एक्टिवेशंस और स्मार्ट एंटरटेनमेंट लेकर आया था। साथ ही दोस्तों एडुकेशन इनिशिएटिव में देखें तो सितंबर 29 को कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन और हायर एडुकेशन ने एक बहुत बड़ा और

0: मेजर सेरेमनी होस्ट किया था। इस इवेंट का मेन मकसद देश के 81 आउटस्टैंडिंग पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स को ऑनर करना। रीजनल और इंटरनेशनल पर पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़े एकेडमिक माइलस्टोन्स और अचीवमेंट्स हासिल की थी। तो दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के चेंजेस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने राइड हेलिंग टैक्सी के लिए नए रेगुलेशंस और रूल्स अपडेट किए हैं। इसके तहत उन्होंने एक फाइनलाइज्ड रजिस्ट्री पब्लिश की है जिसमें 11 ऑथराइज्ड राइड हेलिंग के नाम जिनको कतर के अंदर लीगली ऑपरेट करने की परमिशन दी गई है। इसके साथ ही कतर ने सितंबर 10 को विंटर शेड्यूल एक्सपेंशन को कन्फर्म किया है। अब एयरलाइन पूरी तरह तैयार है और दुनिया भर के 170 ग्लोबल डेस्टिनेशंस के लिए हर हफ्ते 186 से ज्यादा वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करेगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में लोग बहुत ज्यादा सफर करने के लिए अब निकलेंगे। और पूरी तरह से कतर एयरवेज ने सितंबर 10 को ही मतलब एक महीने पहले ही ऐलान कर दिया था, तो अब पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी है, फ्लाइट्स रेडी है, बस टिकट बुक करिए और एंजॉय करिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम की न्यूज भी आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अक्टूबर 1 को अनाउंस किया है कि उनके इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर नेटवर्क्स ने, जिसमें तास्मू एक्सेलरेटर भी शामिल है, 130 को सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। ये सारे स्टार्टअप्स मिलकर 178 मिलियन कतरिया रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इस बड़ी खबर के साथ ही देश में QFEX 2026 AI और डिजिटल एसेट एक्सपो भी शुरू हो चुका है, जिसका मेन टारगेट फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के इंटेग्रेशन और नए डिजिटल एसेट को एक्सप्लोर करना है। दोस्त स्टार्टअप इकोसिस्टम की ये खास न्यूज। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक कतर 2026 के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर दिल से।

0: हेलो,
1: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: FM 107

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के इस नए हलके में एक मतलब आप सबको खुश आमदीद। सामिन किराम, कुरान आप सब जानते हैं कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और हकीमाना तरतीब रखने वाली किताब है। अक्सर लोग कुरान को इस अंदाज से पढ़ते हैं कि एक सूरत ख़त्म हुई दूसरी शुरू हो गई, लेकिन कभी ये सवाल जहन में नहीं आता कि ये तरतीब क्यों है। क्या हर सूरत अपनी जगह इत्तेफाकन रखी गई है या उसके पीछे भी अल्लाह ताला की हिकमत है। सामिन किराम, कुरान मजीद की 114 सूरतें मुख्तलिफ ग्रुपों और ख़ानदानों की शक्ल में मुनज़्ज़म हैं। हर ग्रुप का एक मरकज़ी मौजू है और उसके अंदर मौजूद सूरतें एक दूसरे की तकमील करती हैं। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह मायदा को देखिए, ये चारों मदनी सूरतें हैं, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये सब लंबी सूरतें हैं और इस्लामी माशरे की तश्कील, कानून, इबादत, ख़ानदानी निज़ाम, जिहाद, अदल और इज्तमाही ज़िंदगी के अहकाम बयान करती हैं। जब आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि गोया चार सूरतें कोई मुस्तकिल या अलग मौजू नहीं बल्कि एक ही मुसलसल गुफ्तगू के मुख्तलिफ अबवाब हैं। इसी तरह कुरान में बाज़ बड़ी मक्की सूरतें भी एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। इनका अंदाज, इनका पैगाम और इनका मुखातब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ मालूम होते हैं। इसलिए सिर्फ एक सूरत को अलग पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि उसकी पड़ोसी सूरत कौन सी है, इससे पहले क्या मज़मून था, इसके बाद गुफ्तगू किस तरफ जा रही है। सामने किराम, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ें तो क्या हर बाब बेतरतीब होता है? हरगिज़ नहीं। पहले तारुफ़, फिर बुनियादी उसूल, उसके बाद तफसीलात, फिर नताइज। अगर तरतीब ना हो तो पूरी किताब समझना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल उसी तरह कुरान करीम भी एक किताब है और अल्लाह ताला ने खुद उसे किताब का लक़ब अता फरमाया, कहा है कि किताबुल्लाह। कुरान में इरशाद होता है किताब अहकमत आयातु, यानी ये ऐसी किताब है जिसके आयात मजबूती के साथ तरतीब दी गई है। एक नहायत लतीफ नुक्ता इस सिलसिले में ये है कि अरबी में किताब का लफ्ज़ सिर्फ लिखी हुई तहरीर के लिए नहीं आता बल्कि इसमें जमा, तरतीब और मजबूत रब का मफहूम भी शामिल है। गोया कुरान खुद ऐलान कर रहा है कि उसकी हर आयत और हर सूरत अपनी मुकर्रर जगह पर रखी गई है। जैसे कपड़ा सिलाई के बाद खूबसूरत लिबास बनता है, वैसे ही कुरान की हर आयत अपने मकाम पर एक हिकमत के तहत रखी गई है। अगर सिलाई का एक टांका भी अपनी जगह से हट जाए तो लिबास ख़राब हो जाता है, उसी तरह कुरान की तरतीब भी अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा है। इसीलिए तयशुदा

पहले कभी किसी ने कदम न रखा हो तो शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे दीवाना कहते हैं, उसके ख्वाब को नामुमकिन करार देते हैं। आज खेलों की दुनिया में अगर कोई अजीम खिलाड़ी आलमी चैंपियन बनता है तो उसकी कामयाबी की कहानी सुनाते हुए बताया जाता है कि बचपन में वो कहा करता था, मैं एक दिन वर्ल्ड कप जीतूंगा। उस वक्त लोग हंसते थे, कहते थे पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करो, ये ख्वाब बाद में देखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों से हिम्मत नहीं हारते, वो मुसलसल मेहनत करते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं और आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। इस्लाम की तारीख में भी यही मंजर हमें दिखाई देता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की तो उन्होंने भी एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जिस पर उनके माशरे में, पूरे माशरे में कोई नहीं चल रहा था, न उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द, न उनके कबीले का कोई। उनसे कहा गया, क्या तुम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दोगे? क्या तुम वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हो? क्या तुम अपने पूरे कबीले के खिलाफ खड़े हो जाओगे? लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक था, अगर ये अल्लाह का हक है तो हम उसी पर कायम रहेंगे। ऐसे लोगों को हम आज की जबान में पेनियर्स यानी रास्ता बताने वाले कहते हैं। वो लोग जो सबसे पहले किसी सच्चाई को कबूल करते हैं हमेशा सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं। बाद में जब वही रास्ता कामयाब हो जाता है तो हज़ारों लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। शुरू में लोग उन्हें दीवाना कहते हैं, बाद में उन्हीं को रहनुमा और रोल मॉडल करार देते हैं। सहाबा इकराम भी ऐसे ही थे। उन्होंने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब दुनियावी एतबार से उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था, बल्कि हर तरफ नुकसान ही नुकसान था। इसीलिए कुरान ने उनके लिए खास अल्फाज इस्तेमाल किए, अस्साबिकून अलवलून, यानी वो लोग जो सबसे पहले ईमान लाए। समय किराम फिर हिजरत हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। यहाँ हालात बदल गए, अब इस्लाम सिर्फ चंद अफराद की दावत नहीं रहा बल्कि एक मुआशरा बनने लगा। मदीने के बहुत से लोग पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो एक बड़ी आबादी आपके इस्तकबाल के लिए तैयार थी। अब मुसलमान कमज़ोर अकलियत नहीं रहे थे, वो एक मुनज़्ज़म जमात बन चुके थे। यहीं से एक नई आजमाइश शुरू होती है। मक्का में मुसलमान सिर्फ एक ही किस्म के थे, वो जो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। लेकिन मदीना में मुसलमानों की तीन मुख्तलिफ किस्में सामने आईं। पहला गुरुह वही अजीम लोग थे जिन्होंने इब्तिदा में ईमान कबूल किया था, मुहाजिरीन, और अंसार में से वो लोग जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की। ये ईमान के सच्चे और साबिकीन अलमबरदार थे। दूसरा गुरुह वो था जिसने इस्लाम को दिलो दिमाग से कबूल किया, लेकिन उनके लिए इस्लाम लाना नस्बतन आसान था। उन्हें अपने घर नहीं छोड़ने पड़े, उन्हें शदीद जुल्म का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि उन्हें उसकी सच्चाई नज़र आई। ये भी मुखलिस मुसलमान थे, लेकिन उनकी आजमाइश अभी बाकी थी। और फिर तीसरा गुरुह पैदा हुआ, ये वो लोग थे जिन्हें कुरान मुनाफिकीन कहता है। उन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया कि वह अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि मदीना में इस्लाम एक ताकत बन रहा है। अगर वह इस्लाम कबूल न करते तो माशरे में उनकी हैसियत कम हो जाती। इसलिए उन्होंने ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनके दिल ईमान से खाली थे। वो दीन को नहीं बल्कि अपनी सियासत, अपनी हैसियत और अपने मफादात को बचाना चाहते थे। यही निफाक था। यहाँ एक अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है, वो ये कि दूसरे गुरुह के मुसलमान अगरचे मुखलिस थे, लेकिन चूंकि उन्होंने इस्लाम नस्बतन आसान हालात में कबूल किया था, इसलिए अब उनकी आजमाइश शुरू होने वाली थी। क्यों? क्योंकि मक्का के मुशरिक खामोश नहीं बैठे थे, वो मदीने पर हमले की तैयारी कर रहे थे। चंद ही महीनों बाद बदर, फिर उहद, फिर खंदक जैसे मारे के आने वाले थे। अब दीन के दिफा के लिए जान, माल और वक्त की कुर्बानी भी दरकार थी। अब हर मुसलमान से सवाल होने वाला था, क्या तुम सिर्फ इसलिए मुसलमान हुए थे कि इस्लाम एक मजबूत जमात बन गया है, या तुम वाकई अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो? यही वजह है कि मदनी सूरतें बार बार अहले ईमान को पुकारती हैं, या अय्युहल्लज़ी

0: हेलो,
1: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

हमद, तो वलिल्लाहिल्हम्द तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाह की बड़ाई हम बयान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह शुक्रिया आपने हमें रमज़ान दिया, शुक्रिया आपने हमें ईद की नमाज पढ़ने की तौफीक दी, शुक्रिया कि आपने हमें एक नए साल में शव्वाल का महीना अता किया। और फिर हम आगे और भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें और भी इस तरह के कई रमज़ान नसीब हो, या अल्लाह तो कबूल कर ले और हम तेरे जो ना और भी मुकर्रब तरीन बंदों में शामिल हो जाए। या अल्लाह हमारे ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इन्होंने और भी इस तरह रोज़े रखने इंशाल्लाह अगले रमज़ानों में, अगले महीनों में, तो ये जो है ना नमाज भी सही से पढ़ेंगे। इन्होंने बताया मुझे कि ये लोग जो है ना कुरान के साथ भी उनका जो ताल्लुक़ है वो भी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी कायम रहेगा। तो अल्लाह सुभान व तआला आप इनको और भी रमज़ान अता करें और भी ज़्यादा जो है ना इबादत की तरफ मुतवज्जे करें। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हमें और भी कई रमज़ान नसीब फरमाएंगे सेहत व आफियत के साथ, अमन व अमान के साथ। तो क्या आप जानते हो इस सवाल को मैं कैसे कहूँ? ओके, तो प्रोग्राम के इस मरहले में मैं अपने बच्चों से एक सवाल करता हूँ। चलें, क्या आप जानते हो रमज़ान का नाम कहाँ से आया है? अच्छा, रमज़ान आप सब तो ये जानते हैं कि रमज़ान अरबी लफ्ज़ है, ठीक है ना, इसमें तो कोई आपकी यानी मुखालफत नहीं है। ओके, तो हमने एग्री कर लिया कि हाँ रमज़ान ये अरबी लफ्ज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, रमज़ान लफ्ज़ आया कहाँ से? रमज़ान लफ्ज़ रम्द से आया है, एक है रा मीम बाद रम्द से आया है। अच्छा, रम्द का क्या मतलब है? शदीद गर्मी। तो शदीद गर्मी, इसके साथ रमज़ान का क्या ताल्लुक है? माशाल्लाह से रमज़ान तो हमारा, इस साल का रमज़ान तो काफ़ी यानी सर्दी में गुजरा है ना, कहाँ इतनी गर्मी थी, काफ़ी मौसम तो ठंड और काफ़ी हम तो चादर वगैरह ओढ़ कर और काफ़ी यानी रमज़ान की शुरुआत में तो हम जैकेट वगैरह भी पहनते थे, तो मौसम तो काफ़ी सर्दी थी। तो यानी निस्बतन हम कह सकते हैं, निस्बतन सर्द था मौसम। तो वैसे पुराने ज़माने में जब ये महीना, जब इस महीने का नाम रखा गया ना, ये इस तरह कहते हैं जो लिंग्विस्टिक्स के साथ जिनका ताल्लुक है, जो तारीख मुख्तलिफ अल्फाज की तारीख के हवाले से बात करते हैं ना कि दरअसल इस नाम को इससे कब रखा गया है, तो ये तमाम बातें आपको लुगत और डिक्शनरी में मिलेंगे, जो तफसीली डिक्शनरी होती है उसमें। तो वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब ये महीना आया था ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस वजह से किसने कहा उसका नाम रख दिया रमज़ान। और इसके बाद जो है ना लोग बाद में इसे रमज़ान ही कहते गए। अब वो सर्दी के मौसम में आता है, गर्मी के मौसम में आता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अब चूँकि हम माशाल्लाह से रमज़ान जो है ना हमारा सर्दी में गुजरा है, लेकिन फिर भी हम तो उसे रमज़ान ही कहते हैं, कहाँ हम इसे यानी किसी कोई अलग नाम से इसे पुकारते हैं। हदीस में भी इसे रमज़ान कहा गया है ना। तो यानी नाम का जो अपना माना है, जो मतलब है, वो सही यानी फुल वो माना यहाँ पर अप्लाई नहीं की जा सकती इस महीने में, चूँकि सर्दी गर्मी उतनी थी नहीं, हाँ सर्दी थी। तो फिर भी सवाल ये रहता है कि अच्छा इस तरह का नाम उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि उन्हें पता है कि महीने जो है ना वो मुख्तलिफ मौसम से, ऐसे मौसमी हालात से गुजरते रहते हैं, कभी इस महीने में सर्दी, कभी इसी महीने में गर्मी। तो ये हालात जो है ना, बिलखसूस जो कमरी जो हिसाब है, मून के हिसाब से जो महीने का हिसाब लगाया जाता है, तो उसमें आप मौसम मुख्तलिफ ये महीने, चांद के जो महीने हैं वो मुख्तलिफ मौसम से गुज़रते हैं। यानी आप अगर बात करें कि शमसी जो हिसाब है, कैलेंडर है, सूरज के हवाले से, सूरज के तरीके से जो हिसाब लगाकर वो कैलेंडर बनाते हैं, और वो जो आम तौर पर हम यूज़ करते हैं ईसाई जो कैलेंडर है, जिसे हम आप जैसे अभी 2026 साल है और ये महीना है मार्च का या फिर अप्रैल का, तो ये तमाम बातें किस हिसाब से है वो शमसी कैलेंडर या फिर सूरज के हिसाब से, ये 365 दिन का हिसाब जो हम

0: करता हूँ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
2: वेलकम बैक सामीन, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आंखें बंद कर लो अभी, क्योंकि कुरान फॉर किड्स प्रोग्राम के मेजबान आपके दोस्त तलहा अशरफुज़्ज़मान अब जो है ना आपको एक करिश्मा दिखाने वाले हैं। आंख बंद करो, खामोश हो जाओ, खामोश तसव्वुर करो कि भाई अल्लाह सुभानहु व तआला का कलाम और तिलावत कुरान अब आपके सामने की जाएगी, तो दिलचस्पी के साथ दिल और मन लगा के सुनो ये तिलावत कलाम पाक, इरशादे खुदावंदी है।

0: डे मना रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, साल में एक मरतब आता है। तो ये रमज़ान का महीना कुरान का जो है ना सालगिरह है, तो हाँ ज़रूर इसको हम यानी वो दिन गुजर गया, वो महीना चला गया और फिर ख़त्म, बात ऐसी नहीं, बल्कि जिस तरह हम कहते हैं मदर डे वगैरह में कि भाई माँ की ममता हम पूरे साल इसको जी कर यानी ज़िंदा रखेंगे और उनके साथ वही ताल्लुक़ फरमानबरदारी का ताल्लुक़ हमारा हर वक्त वैसा ही कायम रहेगा। तो हम यहाँ भी कहते हैं कि नहीं भाई, जिस तरह हमने रमज़ान को हिदायत का महीना कहा है, इस हिदायत की जो रोशनी है इसको हम पूरे महीने इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे और इससे हम मुस्तफ़ीद होंगे, महजूज होंगे। तो ये दरअसल अल्लाह ने इंसान को एक तरबियत का एक महीना अता किया था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस महरूमी का यानी दरअसल ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हम तो अल्लाह सुब्हानहू ने हमें तरबियत का महीना दिया था, मश्क किया था हमने, लेकिन अगर हम बाद में फेल करेंगे तो पता चलता है कि भाई रमज़ान में हमारी तरबियत में कोई मसला था, हमारी ट्रेनिंग में ज़रूर हमने कमज़ोरी दिखाई है। नहीं नहीं, हम तो ये बात साबित होने नहीं देंगे, हम तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे गोया कि हमारा रमज़ान सही से गुजरा है, रमज़ान हमारा मकबूल हुआ है, रमज़ान हमारा जो है ना मुबारक था। तो वैसे ही हम अगले दिनों को भी ऐसे ही मुबारकबाद कहेंगे। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि कुरान। तो दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ने तमाम महीनों में से रमज़ान को चुन लिया कुरान के लिए। जैसे आपके माँ बाप, आपके अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो कभी कभार किसी ख़ास वजह से आपके भाइयों में से किसी एक को या आपको जो है ना कोई ख़ास तोहफ़ा देते हैं, तो ऐसे ही कुरान जो है ना ये रमज़ान में उतारा गया है और इसकी फजीलत भी उतनी है। अल्लाह हमें जो है ना कुरान के साथ ताल्लुक़ को जोड़ कर रखने वालों में शामिल करें, कुरान को हजर करने वालों में नहीं, या अल्लाह। तो बच्चों, हमें क्या करना है? कुरान के साथ दोस्ती करनी है, ठीक है ना, दिल लगाकर कुरान पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में से नाफिज़ करने की भी कोशिश करें। और इस तरह जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए सारी की सारी जो है ना आसानियाँ पैदा की, कोई मुश्किल चीज़ हमारे लिए नहीं। ये बच्चों के लिए भी आसान है कुरान पढ़ना, बड़ों के लिए भी आसान है, और यहाँ पर हर एक जो है ना अपने तरीके से इस कुरान से मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सीखने की तौफीक अता फरमाएं। और आप सब जानते हैं कि इस सिलसिले में एक हदीस भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान सीखे और सिखाए वो सबसे बेहतर है। अल्लाह अकबर। तो कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ यानी खैरियत का ताल्लुक़ बेहतरी, यानी आप सबसे बेहतर हैं अगर आपने आपको अब कुरान से जोड़े रखते हैं, और कुरान कभी आपको रुस्वा नहीं करे। कुरान हमें सबक सिखाता है, हौसला देता है, याद दिलाता है कि हम अल्लाह के लिए ये सब कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दीजिए हमें इजाज़त, मुलाकात होगी आइंदा हलके, आइंदा हफ्ते दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा शफ़ जमान को दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है. बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें. गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए. उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें.